ओम शांति। जिम्मेदारी मनुष्य को सशक्त और महान बनाती है। जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूर्ण करते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जिम्मेदारियों में हल्के रहना ये भी एक बहुत बड़ी ज्ञान युक्त स्थिति है। कई लोग जिम्मेदारी मिलते ही भारी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात सामने आते ही टेंशन में आ जाते हैं, हल्के नहीं रह पाते। लेकिन हमें याद रखना है कि कल पहले भी तो हमने इस जिम्मेदारी को पूर्ण किया था। हमारे अंदर तो शक्ति है जिम्मेदारी को पूर्ण करने की, क्योंकि बाबा ने हमें अपनी संपूर्ण शक्तियां दे दी हैं। तो चाहे लौकिक जिम्मेदारियां हों चाहे अलौकिक जिम्मेदारियां हों, लौकिक में कोई बड़ा कार्य सामने आ गया हो जो हमें करना हो, उसको हल्के रूप से पूर्ण करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और एक संकल्प अपने अंदर पहले से ही भर लेंगे, मेरे साथ बाबा है। ये बहुत सुंदर बात है, हम सबको याद रखना है। जो योगयुक्त रहते हैं या जो ये स्मृति बहुत पावरफुल रखते हैं कि मेरे साथ बाबा है, तो बाबा उनके साथ जैसे कि कार्य करने लगता है, बाबा की शक्तियां उनसे जुड़ जाती हैं। हमारी शक्तियां और बाबा की शक्तियां दोनों जब जुड़ जाएं तो कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास आ जाएगी, और तब हम हर जिम्मेदारी का हर बड़े कार्य का सहज सहज पालना कर सकेंगे। और उसमें यदि कोई विघ्न और समस्याएं भी आएंगी तो हम उन्हें हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्मृति है कि बाबा हमारे साथ है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं। तो जिम्मेदारियों को वहन करते हुए बहुत अच्छा अभ्यास करें जैसे बाबा कर करा रहा है। जब उसने वायदा कर दिया, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां सभी पूर्ण करने लगूंगा, तो इसके बहुत अच्छे अनुभव हम सबको करने ही होंगे। और पहले से ही एक बहुत सहज आदत बनानी पड़ेगी कि हल्का रहें। ये जो भारी होने की आदत है ये हमारी शक्तियों को जैसे दबा देती है, विस्मृत करा देती है। और जो भारी हो जाते हैं उनके काम भी भारी हो जाते हैं, जो टेंशन में रहने लगते हैं उन्हें हर कदम कदम पर विघ्नों का सामना करना पड़ता है, और जो स्वयं बहुत हल्के रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत हल्की हो जाती हैं। तो अपनी सामर्थ्य को याद रखते हुए, अपने मन की शक्तियों को स्मृति में रखते हुए संकल्प शक्ति को यूज करेंगे। संकल्प शक्ति को यूज करने का अर्थ यही है कि हम सुंदर संकल्प करेंगे ये कार्य ये तो हुआ कि हुआ, अरे भगवान हमारे साथ है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे हुआ ही पड़ा है। जैसे बाबा के शब्द होते हैं, ये तो हुआ ही पड़ा है, कल्प कल्प तुमने किया है, तुम तो कल्प कल्प के विजयी रतन हो। इस तरह के अभ्यास से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो आज सारा दिन सबको आत्मा देखकर उन्हें करंट देना है, ये संकल्प कर लें। हम तो पवित्रता के अवतार हैं, सारा दिन पवित्रता की सकास देनी है। सवेरे बहुत अच्छा योग कर लें, अपने को इस स्वमान में स्थित रखें, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मेरे से तो सभी को शुभ भावनाएं ही जानी चाहिए, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। और फिर सारा दिन बस ये अभ्यास चालू रखेंगे, जिसको भी देखें ये आत्माएं हैं, और मुझ आत्मा से पवित्रता का एक फोकस पिचकारी की तरह इन सब के ऊपर पड़ रहा है। इससे अपनी पवित्रता भी बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरों को भी हमसे पवित्रता का निरंतर बल मिलता रहेगा। आत्मिक दृष्टि रखने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। जिनके मन बहुत भटकते हों, जो परेशान रहने लगे हों, वो इस अभ्यास को बढ़ाएं, आत्मा देखकर
पवित्र वाइब्रेशंस देना, उनके मन की भटकन दूर हो जाएगी, मन शांत और प्रसन्न रहने लगेगा। तो आज सारा दिन इस सुंदर अनुभूति का रसास्वादन करें। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। फ्लाइट पकड़ने के दो तरीके हैं। यदि आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो संभव है कि आप इस पहले वाले सामान्य वर्ग में आते हों। सुस्त ट्रैफिक पर तनावग्रस्त होते रहना, ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने के लिए टोकते रहना, लाल बत्ती को पार कर लेने की सोचना, बार बार घड़ी देखना और फिर दौड़ते हुए हवाई अड्डे में प्रवेश करना, सामान की जांच वाली कतार हो या चेक इन में सुरक्षा जांच वाली कतार, हर जगह कतार में आगे घुसने की कोशिश करना और हर एक को जताना कि आपको अपनी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है, तेज कदमों से चलना और कभी कभी तो दौड़ते हुए भी, चेहरा तनावग्रस्त होते हुए भी हर कर्मचारी और अधिकारी की ओर इस आशय से मुस्कुराते हुए देखना कि वह आपको आगे निकलने दे और इस तरह अपनी छूटती फ्लाइट को अंतिम पलों में पकड़ ही लेना। दूसरा तरीका है हवाई अड्डे के लिए 10 मिनट पहले निकलना। हर घर में शुरू होने वाली सुबह के दो तरीके हैं। पहला है तीसरे विश्व युद्ध का नाट्य रूपांतरण। हर कोई इधर उधर भाग रहा है, हर कोई किसी दूसरे को कोई काम सौंप दे रहा है, फोन की घंटी घनघना रही है और हर कोई इस उम्मीद में है कि कोई दूसरा उसे उठा लेगा। कोई बाहर दरवाजे पर आया है लेकिन हर कोई ऐसे जता रहा है जैसे दरवाजे की घंटी उसे सुनाई ही नहीं दी। स्कूल बस नुक्कड़ तक आ पहुंची है लेकिन अरे टिफिन कहाँ है, लो ये रहा, पानी की बोतल तो ले लो, स्कूल बैग ठीक से बंद नहीं हुआ है, अरे बस में बैठो और जूतों के फीते वहीं पर बांध लेना। लग रहा है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला हो। 10, 9, 8, ओह। दूसरा तरीका है 10 मिनट पहले उठ जाना। आपाधापी की आदत सबसे खतरनाक होती है। यह ऐसे ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है जो हम सामान्य स्थिति में लेना शायद ही पसंद करें। हमें यह विश्वास दिलाकर कि गलती परिस्थिति की है, हमारी नहीं, यह हमारे साथ बहुत छलावा करती है। आपाधापी हमारे फूहड़पन और बेतुके निर्णयों पर पर्दा डालने का अच्छा बहाना बनी रहती है। यह एक ऐसा माहौल बना देती है जिसमें हम जो भी कर रहे हैं उसे ही सही ठहराना हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। कतार में आगे घुसने से लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ने तक। कठिन निर्णय आम तौर पर अच्छे निर्णय होते हैं। शुरू करने के लिए 10 मिनट पहले वाला सूत्र अटपटा लग सकता है लेकिन आज के भागम भाग वाले पागलपन के लिए यह समझदारी भरा निर्णय है। तनाव से जुड़े जिन अधिकांश मुद्दों से आज का आदमी जूझ रहा है उसका एक बहुत अच्छा निदान है 10 मिनट पहले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको संकटकालीन स्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट पहले का अर्थ है कि मेरे हृदय को प्रति मिनट 10 बार कम धड़कना पड़ेगा, यानी मैं 10 वर्ष ज्यादा जी सकूंगा या जी सकूंगी।

हमें यह चीज स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपनी हर बात के लिए कोई न कोई दलील होती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह अपने निष्कर्ष पर अटल रहना चाहता है। नाथूराम गौड़से के पास महात्मा गांधी की हत्या करने की अपनी दलील थी। उसामा बिन लादेन के पास अपनी दलील है कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला क्यों कराया। फिल्मी अभिनेताओं के पास अपनी दलील है कि उनके विचार से स्क्रीन पर सिगरेट पीना गलत क्यों नहीं है। हर किसी के पास अपनी अपनी बात के लिए दलील होती है और वह खुद को ही सही मानता है। सच कहें तो यह समझ आ जाने पर कि अपनी हर बात के लिए अपनी दलीलें देते देते और अपने निष्कर्ष पर अड़े रहते रहते ही हमने अपना सारा जीवन बिता दिया, मन ही मन बड़ी ग्लानि अनुभव होती है। जीवन के महत्वहीन मुद्दों पर दूसरे व्यक्ति को हम उसके निष्कर्ष पर रहने दें। इस प्रकार हम अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा काफी हद तक बचा लेंगे और दबाव में आने से भी बचे रहेंगे। दलीलें देने की अपनी सहज वृत्ति को संक्षिप्त कर देने और दूसरे को उसके निष्कर्ष पर बने रहने देने से आप खुद को बहुत खुला खुला और स्वतंत्र अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा केवल महत्वहीन मुद्दों पर ही करना चाहिए, और बढ़िया बात यह है कि हमारे सारे मुद्दों में से 90% से भी अधिक मुद्दे महत्वहीन ही होते हैं। क्या इस बारे में आपकी राय कुछ और है? कोई बात नहीं, आप अपनी राय पर बने रह सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने निष्कर्ष पर

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है, और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

लूथर किंग जूनियर का वह ऐतिहासिक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र अपने इस सिद्धांत को सही अर्थ में जिएगा। हम इस तथ्य को मानते हैं कि ऊपर वाले ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों की संतानें और भूतपूर्व गुलाम मालिकों की संतानें भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठे होंगे। मेरा सपना है कि मेरे चारों छोटे छोटे बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे होंगे जहां उन्हें उनकी बाहरी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके भीतरी चरित्र से जाना जाएगा। आज मेरा यह सपना है, इसी विश्वास के साथ हम साथ साथ काम करने का, साथ साथ प्रार्थना करने का, साथ साथ संघर्ष करने का, साथ साथ जेल जाने का, स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम एक दिन कामयाब होंगे। और अमेरिका को यदि एक महान राष्ट्र बनना है तो इस सपने को सच होना होगा। इसके चार दशक बाद अमेरिका ने अपने प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा को चुनकर इतिहास रच दिया। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सामाजिक चेतना में यह स्वप्न तब नहीं बोया गया था जब इसके लिए समय बहुत अच्छा था, बल्कि यह उस समय बोया गया था जब समय बहुत बुरा चल रहा था, जबकि अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने भारत के डिजिटल होने का सपना देखा था, जहां आम आदमी सूचना और संचार के ऐसे सस्ते साधनों को हासिल कर सके जिससे वह अपनी अशिक्षा और जड़ता की समस्या सुलझा सके। भारत में यह सपना साकार हो चुका है। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि रिलायंस के प्रबुद्ध वर्ग के मन में सपने का यह पौधा सन 1999 में रोपा गया था, जब भारत में आधारभूत संचार माध्यम एक निराशापूर्ण अवस्था में थे। इसी तरह जब हर उत्पाद, सेवा और मद दिनों दिन महंगे होते जा रहे थे, तब रतन टाटा ने 1,00,000 रुपये की कार का सपना देखा था और नैनो को सामने लाकर उन्होंने इस सपने को साकार भी कर

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती, तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना तब देखा था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 3 शताब्दियों से विदेशी शासकों के चंगुल में फंसा हुआ था। भारत जब विश्व स्तरीय वायुयान बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तब भारत के मिसाइल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सपना देखा। अपने 3000 वर्षों के इतिहास में भारत पर गत 600 वर्षों से विदेशियों का शासन रहा है। आपको विकास चाहिए तो देश में शांति होनी चाहिए, और शांति को केवल शक्ति द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया गया। भारत ने अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमें सपने देखने चाहिए, यह तो हम सभी जानते हैं। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन सभी महान स्वप्न दृष्टाओं ने इन सपनों को सर्वोत्तम काल और परिस्थितियों में नहीं, बल्कि बड़े कठिन समय में, सच कहें तो सबसे कठिन समय में देखा। उस काल में भी जबकि सामूहिक सामाजिक चेतना आशावादी नहीं थी, उन्होंने सपना देखा और उनके सपने के बल पर ही तमाम संगठन, राष्ट्र और मानवता सभी उठ खड़े हुए। आप कठिन दिनों का सामना कर सकते हैं, आप कठिन दिनों से दो दो हाथ भी कर सकते हैं, लेकिन सपने जरूर देखें। जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है। क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं बन पाऊंगा, कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है। महान स्वप्न दृष्टाओं के महान सपने हमेशा पूरे होंगे। मानव मन जो कल्पना कर सकता है, वह जो विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। आपको कुछ करने की शक्ति दिए बिना ईश्वर आपको उसे करने का विचार भी नहीं देता। एक स्वप्न दृष्टा के लिए प्रश्न केवल इतना रहता है, मैं इसे कब तक कर लूंगा। जो काम पानी कर सकता है वह पेट्रोल नहीं कर सकता, जो काम तांबा कर सकता है वह सोना नहीं कर सकता। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है, वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों से जोड़े रखता है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझमें कुछ कमियां क्यों न हो, मैं अपने खुद के बजाय कुछ और कैसे हो सकती हूँ या कैसे हो सकता हूँ। भले ही किसी और की सशक्तता मुझे लुभाते क्यों न हो, मैं कुछ और बनने के लिए जूझता या जूझते क्यों रहूं। मैं यहाँ अपने ही स्वरूप में रहने के लिए हूँ। तो आप जो हैं, भाव यही है कि आप जो हैं जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने जीवन में हमेशा ऊंचे सपनों को देखते हुए उसे साकार करने का प्रयास कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रायः हम ये भूल जाते हैं कि हम जब भी धनोपार्जन या अपने किसी भी क्रियाकलाप में रहते हैं या पैसे कमाने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना आवश्यक है। कभी कभार हम अपनी तबीयत को दरकिनार करके पैसे कमाने में या धनोपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं।

0: रखते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि शरीर का ध्यान न रखने के कारण या स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को कमाने में लगाना पड़ता है। एक ऐसा कुचक्र बन जाता है कि अगर हम इसको सही अर्थों में न समझें तो फिर जिंदगी भर किसी बीमारी को अपना मेहमान बना के रखना पड़ता है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में सही जानकारी पहले से हो तो शायद हम ये गलतियां करने से बचें। सेहत स्वास्थ्य पर रेडियो मधुबन पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम सही मार्ग पर आप सबको ले चलें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये कहावत सुनते आए हैं कि भाई हम वेल्थ के लिए हेल्थ को खो देते हैं और फिर बाद में जब वेल्थ आ जाता है और देखते हैं हेल्थ हमने गवा दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ का, तो फिर उसी हेल्थ को रीगेन करने के लिए हम अपना वेल्थ लगाते हैं, यानी पैसे कमाने की होड़ में हम अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए हमें खर्चना पड़ता है। तो ये बड़ा कुचक्र जैसा लगता है कि हम एक के पीछे दूसरे को खो दे रहे हैं, फिर बाद में उसे पाने के लिए जो कमाया है उसे खोने की जरूरत पड़ रही है। आप क्या राय रखते हैं?
1: ये भैया आपने बोला ना कि सबसे पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी है और जब आदमी इस पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है तो वो भूल जाता है कि पैसा जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हम क्या करें और हम सुख, चैन, नींद, भोजन सब कुछ भूल कर पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा कमाना एक अंधी दौड़ है, क्योंकि हम अंधा व्यक्ति की तरह, पागलों की तरह उस पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं। और जब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। हमें क्या खाना है, क्या खाने से ज्यादा जरूरी चीज कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब चीजों को भी भूल जाते हैं। हम बहुत सारी जो कहते हैं ना सोशल जो गलतियां हैं, जैसे जिसमें अल्कोहल इनटेक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, इन सब की भी हम आदि बन जाते हैं। और जब मैं मरीजों से पूछता हूं कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं, आप क्यों अल्कोहल या आप शराब पीते हैं, तो यही बात बोलते हैं, अरे हम नहीं बट बिजनेस के लिए पीना पड़ता है। तो क्या आप बिजनेस के लिए अपने शरीर का किसी अंग को खराब करेंगे? ये बहुत गलत बात है। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति जो जीवन में कुछ अचीव किए हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, जो सक्सेसफुल हैं, उनमें सबसे कॉमन एक चीज है, वो है डिसिप्लिन। वो हमेशा अच्छा खाते हैं और अच्छा खाने का मतलब है हेल्दी खाते हैं। दूसरा, वो कोई भी वॉकिंग, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, इसको रेगुलरली करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू करें और वो अपने शरीर का, मन का और अपने रूटीन तीनों का ध्यान रखते हैं। मैं आप व्यापार करने के चलते आप अपने जीवन में भयंकर स्ट्रेस भर लीजिए, उस स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाए, आपकी गलत खान पान से, आपके नशा करने से आपकी लिवर खराब हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आपकी पैंक्रियास खराब हो जाए, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बात कही जाती है कि आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, आप एक भी क्षण एक्स्ट्रा अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते हैं। मगर ये हमेशा कहा जाता है कि यदि आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो आपको एक लंबा, स्वस्थ और मानसिक रूप से खुशहाल जीवन मिलेगा। प्लीज पैसा कमाने की होड़ में अपना शरीर मत थोप दीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आपको वही पैसा अपने शरीर को वापस कमाने के लिए खर्च करना पड़ेगा।
0: ये बात सुनकर समझ में आता है कि जो चीज हमारे पास है उसको वैल्यू देकर, उसकी कीमत को समझकर, उस कीमत के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हमें एक्स्ट्रा कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम जो चीज हमारे पास है उसे दाव पर लगाकर कुछ और हासिल करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये रिस्क लेना हमारे लिए हानिकारक तो है ही, मगर साथ साथ हमारे लिए कमाए हुए पैसे को वापस खोने के बराबर हो जाता है। आजकल एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं वो है बीमारियां जो ऐसी हैं जो उम्र के साथ हो रही हैं, या लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में इनको ये बीमारी थी तो हमको भी ये बीमारी हुई है। और बहुत आम रीति से जो चीज सुनने को मिलती है वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज की बीमारी। और डायबिटीज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, परिवार में है इसलिए हमें भी हो ही गया, हम क्या कर सकते हैं। प्रायः ये भी चीज समझा जाता है कि डायबिटीज में डाइट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो है ही, मगर खासकर डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार के प्रति सजग होने की जरूरत है। और अगर वो अपने खान पान, अपने आहार व्यवहार को और विहार को सही करते हैं तो ठीक हो सकता है, बहुत हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और कई जगहों पर तो डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स करने के बारे में भी बातें होती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज और डाइट का जो संबंध है उसके बारे में बताएं, क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई विशेष डाइट है, कोई डायबिटिक डाइट है, उसके बारे में बताएं।
1: डायबिटीज एक मतलब क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा ब्लड शुगर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर के जितने भी अंग काम कर रहे हैं उनको हमेशा शुगर चाहिए, और वो जो शुगर है या शक्करा है वो आपकी कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की वजह से ही अंदर जाती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो इसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाली जो ताकत है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी वजह से होने वाली परेशानी। तो यदि हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम अपने भोजन को ठीक कर लेंगे, यदि हम अपने रहन सहन को ठीक कर लेंगे, तो हमको हो सकता है जो डायबिटीज है उसके साइड इफेक्ट ना हो। आपने श्री भैया बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमारे परिवार में चली आ रही है, ये आपको अगर हमको हुई है, अगर मेरे पिताजी को है तो हमको भी होगी। मैं जो लोग भी ये बात बोलते हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। कल ही मैंने भैया अपने ओपीडी में एक 16 साल के बच्चे को देखा जिसको डायबिटीज है, उनके बड़े भाई को डायबिटीज नहीं है जो कि करीब 24 साल के थे, और उनके पिताजी को डायबिटीज है। बड़े भाई ने बोला कि जब मेरे पिताजी को मालूम चला कि डायबिटीज है, मैंने उसी दिन से शुगर खाना बंद कर दिया, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दिया और जंक फूड खाना बंद कर दिया, और मैं रेगुलर 45 मिनट्स तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करता हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसी के अवैध में देखिए, वो 16 साल का बच्चा, उन्होंने जो मेरे पास लेकर आए थे बड़े भाई, उन्होंने बोला कि इसने एकदम हमारी बात नहीं सुनी, इसके भोजन में सिर्फ 3 चीज थी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। इस बच्चे ने अपने भोजन में दिन में 2 टाइम यही खाया और इसने कोल्ड ड्रिंक को पानी की तरह पिया। और अब ये सब देखने के बाद 16 साल की उम्र में उस बच्चे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसको उसका यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो गया था और उसके त्वचा में अब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसेशंस, और जैसे चीटी चलना है, रगड़ झुनझुनाना है, कांपना है, ये सारे उसको सिम्टम्स लगने लगे थे। और उसका अपने यूरिनेशन मतलब पच जो पेशाब का रास है, पेशाब, उस पे कंट्रोल खत्म हो गया था। तो आप देखिए, डाइट, एक ही घर में दो भाई, दोनों के माता पिता सेम, एक ने अपने भोजन को कंट्रोल कर रखा है, एक्सरसाइज का सहारा ले रखा है, इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। और उनका छोटा भाई जिसने इसमें भरोसा, जिसने कोई भी कंट्रोल नहीं किया, वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अगर मैं कॉमन कहना चाहूं तो डायबिटीज अक्सर थोड़ा मोटे व्यक्तियों को होती है, और जो ओवरवेट और लेस एक्सरसाइज, मतलब ओबेसिटी विद लिथार्जी, मतलब मोटापा के साथ साथ आप आलसी भी हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो आपको हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का भोजन करना चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब आप जितने भी, और इसके साथ हाई फाइबर डाइट का आपको भोजन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी चाहिए वो है प्रोसेस्ड वाइट शुगर, जो हमें बाजार में चीनी मिलती है, सबसे पहले उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी सामान बाजार में पाम ऑयल से बना है, पामोलिव ऑयल से बना है, उसको हमको अपने भोजन में एकदम एकदम एकदम बंद कर देना चाहिए। हमको हाई फाइबर डाइट मतलब सारे फल, सारी सब्जियां, उसको सैलेड, सलाद, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। सलाद में भी ये बोला जाता है कि यदि आप टमाटर का सेवन बहुत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फलों में डायबिटीज का जो सबसे अच्छा फल माना जाता है वो है जामुन। जामुन में बहुत ज्यादा वो तत्व हैं जो आपके शुगर को नीचे लाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जो भी दाल आप खाते हैं अच्छे से खाइए, प्रोटीन जिन भी चीजों में आपको मिलता है उनका आप सेवन करिए। और आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी चीजें जिसमें, जो जैसे मैदा हुआ, आपको छना हुआ आटा हुआ, इन सब चीज की आपको कमी करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप ये मिक्स ग्रेन मतलब 4-5 तरह का आटा मिला के उसका भी सेवन ना करें। आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ सैलेड मतलब बहुत सारा सलाद, कोई भी एक दाल, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट मतलब, या कोई भी एक अनाज, कहने का मेरा मतलब है, इसको अपने भोजन में करना चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस डाइट करने से भी अगर आपकी डायबिटीज एकदम शुरुआती दौर में है तो आपका डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है।
0: डायबिटीज रिवर्सल की आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इस बात से अचंभित होंगे क्योंकि अक्सर ये चीजें लोग सुनते नहीं हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज मतलब अब जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हर दिन हमको ये दवाई शुगर की खानी है, या कई लोग जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे और उसके साथ ही उनको जीना है, ऐसा ही लोग सोच लेते हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में संभव है कि अगर हम अपने भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्या चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम सभी इस बात को ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हमारे पीढ़ियों में आया है, हमारे माता पिता से हमको मिला है, तो फिर हमें भी इसके साथ ही जीना पड़ता है, ऐसा सोच लेते हैं, क्या एक अवधारणा मात्र है?
1: ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स गवर्न, और माता और पिता दोनों को अगर डायबिटीज है तो बच्चों में 90% चांसेस हैं कि वो होंगी, और अगर माता या पिता में से किसी एक को है तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनका ब्लड शुगर गड़बड़ है और उन्होंने अपने को एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल पे रखा है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे आरोग्य मंदिर में बहुत सारे पेशेंट पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि ग्रैंड फादर जो थे और ग्रैंड मदर थे उनको कोई डायबिटीज नहीं थी, उनके चार बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था सिर्फ उसको डायबिटीज हुई, और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे जो जिस बेटे को डायबिटीज हुई उनके भी बच्चों में डायबिटीज नहीं थी। तो ये मैं ये मानता हूं कि अगर दोनों माता पिता को है तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, पर अगर दोनों में से किसी एक को नहीं है और जो उनका सिबलिंग है या जो बच्चा है या भाई बहन है वो बहुत अच्छे से अपना अगर ख्याल रखते हैं तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज को सिर्फ अपने भोजन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं।
0: अब ये बात समझ में आ रही है कि हाँ डायबिटीज को भोजन से ठीक किया जा सकता है। एक और प्रश्न जो डायबिटीज से जुड़ी हुई लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है, वो है फास्टिंग के बारे में। ये प्रश्न उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को फास्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जबकि हम प्रकृति चिकित्सा में देखते हैं कि फास्टिंग एक चिकित्सा के रूप में जो उपवास है वो रेकमेंड किया जाता है, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या एडवाइस देंगे?
1: अगर आपको सीवियर डायबिटीज है, मतलब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 250 से ऊपर है, आपका HbA1c जो है वो करीब 9-10-11 तक ऊंचा है, तो प्लीज फास्टिंग मत करिएगा। मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्लीज घर पे तो ये एकदम मत करिएगा, आप किसी डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी फास्टिंग मत करिएगा, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब हम खाते नहीं है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो मतलब जो शुगर है वो कम हो सकती है, और कम शुगर होने की वजह से हमको बेहोशी छा सकती है, कमजोरी छा सकती है, और हमारा जो शरीर है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये कहा जाता है कि आप इसको अगर मेडिकल सुपरविजन में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने शरीर के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर आपको हल्का मतलब बहुत लो डायबिटीज है, बहुत सब कुछ वेल अंडर कंट्रोल है, तो प्लीज फास्टिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है कि दिन में आप करीब 14 से 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, और उसके बाद जो हल्का आपके पास 8 घंटे बचे हैं उसमें आप हल्का भोजन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में लोगों को शहद नींबू पानी के साथ फास्टिंग कराई जाती है, जिसमें उनको कोई भी ठोस चीज है या ठोस अन्न है या फल है या सब्जियां हैं वो नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, शहद दिया जाता है और नींबू दिया जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम रहते हैं और इसमें जो आपका शरीर है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। पर मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए और किसी न किसी जानकार व्यक्ति के अंडर में सुपरविजन में ही करना चाहिए। आप अगर फुल 24 आवर्स फास्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरमिटेंट या मतलब थोड़ा लंबे समय तक बिना भोजन के रहिए और फिर आप हल्का भोजन करिए, ये भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके शरीर को बहुत फायदा होगा।
0: जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो एक सहज सा प्रश्न उठता है कि कितने लंबे देर तक हम उपवास कर सकते हैं एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में, कितना अंतराल एक व्यक्ति कम से कम रखे या ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए।

0: एक आइडिया रहे।
1: ये भैया कहीं भी ये कहा जाता है कि आप दिन में दो भोजन के बीच में 12 से 16 घंटे तक का गैप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में करते हैं कि वो रात में 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं और फिर अगले दिन जो करीब 9 बजे 9:30 बजे तक सवेरे तक खाली पेट रहते हैं, वो सिर्फ पानी पीते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में उनको थोड़ा बहुत फास्टिंग का भी बेनिफिट मिलता रहे। फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके शरीर को तरोताजा करने में बहुत बड़ा उसका रोल है, और ये जो भी हमारे खराब सेल्स हैं उनके डिप्लीशन में इसका बहुत, उनको हटाने में फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानता है कि जब हम फास्टिंग या उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है, हमारे लिवर को बहुत आराम मिलता है, और उसकी रीजनरेशन में, उसके ठीक होने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर 12 नहीं तो करीब 7-8 घंटे तक, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना आप अपने शरीर को बिना कष्ट दिए कर पाए वैसा फास्ट करिए, और प्लीज किसी डॉक्टर या चिकित्सक की निगरानी में करिए, उसकी सलाह के साथ करिए, और अपने शरीर की सुनिए। अगर आप नहीं रह पा रहे, आपको कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए।
0: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों के बारे में हमारी अवधारणा है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर दवाई ही या इंजेक्शन ही लेते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई और इलाज नहीं है, इस बीमारी के साथ ही जीना है, इन अवधारणाओं को तोड़ा गया है आज की इस चर्चा में। ये समझ में आ रहा है कि हम स्वास्थ्य को वापस हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है हमारे आहार पद्धति को चेंज करके, मुख्य रीति से अपने आहार को बदलने से हम ये चीजें कर सकते हैं। हम चीनी और प्रोसेस्ड फूड को त्याग दें और फिर अपने भोजन पर थोड़ा बहुत संयम लेके आए तो फिर बहुत कुछ संभव है। और साथ ही साथ फास्टिंग के बारे में भी जो चीजें हम सोचते आए हैं उस पर आज एक नया प्रकाश मिला है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की भी आवश्यकता है, जिससे हम स्वास्थ्य को वापस करने के लिए शरीर की मदद करें। आज समय को देखते हुए यही रुकते हैं, मगर आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें डायबिटीज, डायबिटिक डाइट और डायबिटीज को रिवर्स करने के बारे में और फास्टिंग से इसके संबंध के बारे में हमें जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने डायबिटीज के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी सुनी है कि डायबिटीज को हम पलट सकते हैं, इस बीमारी से हर व्यक्ति वापस लौट कर आ सकता है, स्वस्थ होने के लिए कोशिश कर सकता है। जितनी जल्दी हम ये प्रयास करेंगे उतनी जल्दी स्वास्थ्य हमारे लिए संभव है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सजगता या अवेयरनेस की इस जर्नी में कई पड़ाव हमने अब तक तय कर लिए हैं, बहुत कुछ जान लिया है अपने बारे में भी, लेकिन जो टेक्निक्स हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सचमुच मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी ये पता चल रहा है कि हाँ, ये संभव है। आप भी ज़रूर इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज फिर इसी पर कुछ और चर्चा करते हैं कि किस तरह से अवेयरनेस, सजगता और फिर वो जो थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, उन्हें कैच करना है, किस तरह से उन्हें अंडरलाइन करके समझना है कि ये है जो प्रॉब्लम की जड़ है, और उसके बाद स्टॉप करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देना है, उन्हें बदल देना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और इन टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत करते हैं।
3: ओम शांति।
1: डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए थे कि किस तरह से हमें कहना है कि भाई अब इसको हम या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर ये नेगेटिव थॉट हमें समझ में आ गया है, या फिर उसी से जुड़ा हुआ हो, उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई और थॉट आएगा या टोटली ऑपोजिट थॉट हम उसको लेकर आएंगे। अभी भी मुश्किल आ रही है, इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थॉट जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेता, आता ही है। दिस इज लाइक समथिंग, ऐसा कोई खेल ना करके प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे?
2: एक और विधि बताता हूँ कि लिखना शुरू कर दो। एक पेज लो, उसको दो भाग में डिवाइड करके, एक और जिसको कहते हैं कि इरेशनल थॉट्स, या तो ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं, कि ये जो नेगेटिव है ना ऑटोमेटिक आता है, और फिर उसके सामने रैशनल थॉट्स क्या है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको ये विचार आया कि आई विल फेल, अब उसके सामने रैशनल थॉट दो कि भी ठीक है, समटाइम आई फेल, समटाइम आई सक्सीड, पिछली बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी, पर संभव है दो बार फेल हुई थी, तीन बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी। फिर अगर दूसरा विचार आता है कि भी मेरे से नहीं होगा,
1: तो कभी कभी मुझसे हो जाएगा, कभी कभी मुझसे
2: नहीं, या तो ऐसा भी कि थोड़ा तो होगा ना। किसने कहा है कि पूरा एक ही बार में करो?
1: सिस्टर शिवानी, वही तर्क वितर्क की बात पे आ जाते हैं हम फाइनली, कि
3: प्यार से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इस प्रोसेस को प्यार से करना, जबरदस्ती से नहीं करना। जैसे एक बच्चे को मनाना है तो जबरदस्ती, अगर उसके हाथ में चाकू है, यू नो यू आर सीइंग द चाइल्ड कि वो चाकू से खेल रहा है या किसी तेज चीज से खेल रहा है, आप क्या करेंगे?
1: हम उसे हाँ प्यार से ही समझाएंगे कि भाई रुको रुको रुको,
3: वो शायद नहीं सुनेगा, आप क्या करेंगे?
1: हम उसके पास जाएंगे, आराम से प्यार से बैठेंगे और धीरे धीरे वेट करेंगे कि कब वो थोड़ा शांत।
3: लेकिन वो खेलना चाहता है उस चाकू से,
1: फिर हम उसे समझाएंगे कि इससे चोट लग सकती
3: है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, उसे उससे खेलना है।
1: हाँ, हम उसे एक अल्टरनेट खिलौना,
3: सी दैट्स द ओनली टाइम इट विल वर्क। जैसे आप कह रहे हो ना कि हम उस नेगेटिव थॉट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाता, बिकॉज हमने उसको पकड़ा हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है वो खिलौना, तो हमें उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव खिलौना जब हम अपने आप को देते हैं तो फिर हमें वो चाकू को छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक टाइम पे तो हाथ में एक ही खिलौना आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो खींचेंगे अगर वो चाकू को हाथ से तो चोट लगेगी, यू नो इट्स वेरी पेनफुल। अगर आप नेगेटिव थॉट को ज़बरदस्ती रोकें या सप्रेस करें या फोर्सफुली रोकें, इट विल कम इवन, यू नो इवन मोर, तो आप सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, यू नो एंड यू विल गिव अप। लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें, डोंट फाइट विद दैट नेगेटिव थॉट, आप पॉजिटिव दें और थोड़े दिन में आपको लगेगा, मतलब यू विल फॉरगेट वो, जैसे ना थोड़े टाइम के बाद लगेगा पता ही नहीं चला कि वो चाकू कहाँ गिरा पड़ा है वहाँ पे, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आप तो दूसरे खिलौने से खेल रहे हैं। यू विल नॉट डू इट वेरी कॉन्शियसली, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आप सिर्फ मन को वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए, फिर भी वो चाकू से खेल रहा है कोई बात नहीं, उसे खेलने दीजिए, लेकिन आप उसके पास वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट गिविंग इट द पॉजिटिव थॉट. थोड़े टाइम के बाद इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव थॉट एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव थॉट कहाँ चला गया.
1: बहुत सुंदर आपने बात की, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक SMS आया था कि एग्जिस्टेंस जब हमारे हाथ से कुछ ले लेती है इसका मतलब हमारा हाथ खाली है, क्योंकि उसने कुछ बेहतर देना होता है. तो ये एक जो बात ही पूरी उसी तरह से सामने
2: और
1: आती
2: है कि भी जैसे शिवानी बेन ने कहा वो भी ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी भी सोचो. ये बात उसमें छोटा सा भी ठीक है ना, तिनका ही चाहिए हमें, मन को एक छोटा सा भी सहारा मिल जाए
1: बाहर
2: तो उस पर वो सोचते सोचते नेगेटिव से मुक्त हो जाएगा, बड़े डिप्रेशन से भी वो मुक्त हो सकता.
1: कहते हैं ना कि दूसरा कांटा ही देगा पहले कांटे से निजात, तो एक दूसरा कांटा चाहिए ही, लेकिन हम वो कांटा ही क्यों माने, हम उसे फूल भी तो मान सकते कि क्या वो, लेकिन हमें कैसे एहसास हो कि ये जो कांटा है हमारे पास ये पहला कांटा है और जो दूसरा आ रहा है हमारे पास वो फूल है, और कहीं हम उसके ऊपर तो नहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे.
2: लेकिन वो पॉजिटिव ही है ना, अगर जो कांटा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है जो आप में कोई भी बुरी भावना लाने वाला है, आपको नीचे दिखाने
1: वाला. ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंसी हटा दें विचारों से भी या थॉट्स के ऊपर भी, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम डिपेंडेंट ना रहें, खिलौने पर डिपेंडेंट ना रहे, तो कहीं हम जो
3: थॉट्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कभी भी. थॉट्स हमारी अपनी क्रिएशन है, डिपेंडेंसी इज ऑन समथिंग एक्सटर्नल, थॉट्स इज मी.
1: The thoughts actually gives you feeling.
3: That's the sub-product, you know. That's the second stage of the process.
1: No, but what I just wanted to ask is that if there is one thought, even if it's negative, even if I know it's negative, it is able to give me some kind of a comfort, you know, Chicken. Some feeling, comfort.
2: No, if it is negative, it won't give comfort.
1: Okay.
2: Negative.
3: वो तो pain की feeling ही देगा.
2: Inferior
3: बताएगा. Comforting feeling नहीं देगा.
1: Okay.
2: Or no, maybe you are escaping. किन्हों में ठीक नहीं है.
1: हाँ.
2: होना तो राइट थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए. और आप जो आगे बात कर रहे थे थोड़ी और ऊंची बात है कि भाई वो हो ही नहीं, टू राइज अबाउ माइंड. वेल डिफिकल्ट है, लेकिन योग में भी वो चरम सीमा है. योग का भी अच्छे से अभ्यास करते जाए राजयोग में भी यही हमने अनुभव किया है कि एक स्थिति आती है कि जब आप सचमुच थॉटलेस हो जाते हैं, इनफैक्ट यू राइज अबाउ दैट. पहले अंत में आएगी, कुछ अभ्यास के बाद आएगी, परंतु वह बेस्ट स्टेज है.
3: मतलब स्टिलनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, यू नो, जो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइलेंस पीरियड बिटवीन थॉट्स, तो कोई थॉट नहीं होगा.
2: और इवन यू आर डिटैच्ड. कभी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है, जैसे ऊपर से प्लेन में से देखो मकान छोटे छोटे दिखाई देते हैं. If you are really in high meditative stage, you will find ये तो petty things, it's nothing.
1: छोटी-छोटी बातें हैं.
2: एकदम no means no, you will be really feel कि भी क्या मैं तो time waste कर रहा था इस पे सारा सोच करके. This is nothing. और meditation में दूसरा तो एक मैंने observe किया है, जो transformation सिखाते हैं CBT में वो automatic है. क्योंकि meditation में जैसे कोई भी चीज है ना, अभी exercise करने हम क्यों जाते हैं, क्योंकि मसल स्ट्रांग
1: फिट रहे
2: हैं. एक बार आपके मसल स्ट्रांग हो गए, फिर जहां भी वो स्ट्रेंथ को आपको चाहिए आप यूज कर सकेंगे. तो मेडिटेशन भी ऐसे ही है कि मेडिटेशन में हम बैठते हैं और जब ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कैसे मैं शरीर से परे दिव्य चेतना हूँ, मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, मैं कैसे मेडिटेशन और आगे तो भी परमात्मा से कम्युनियन करना है ना, तो भी परमात्मा से कैसे मेरा कम्युनियन है. जब ये थॉट्स हम करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर से देह से आत्मा की ओर.
3: दिस इज दैट अदर खिलौना, यू नो, ये वो दूसरा वाला, दीज गुड थॉट्स, दीज रियल थॉट्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट इवन गुड और बैड, दीज आर द रियल थॉट्स, क्योंकि ये मैं हूँ. ये सब मैंने एक यू नो इमेजिनेशन जैसे एक इमेज क्रिएट किया, बट दिस इज द ट्रू मी. तो ये वाला खिलौना जब मन खेलना शुरू कर देता है, वो चाकू अपने आप छूट जाएगा.
2: एक तो ये छूटना, दिस इज आल्सो बेनिफिट, लेकिन उससे हायर बेनिफिट है कि अगर आप रोज करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं, अगर डेली आप कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो मेंटल एक्सरसाइज. जैसे मैं रोज वेट लिफ्टिंग करता हूँ, 25 किलो उठाता हूँ, तो मेरे बाइसेप्स स्ट्रांग हो जाते हैं. तो ऐसे अगर रोज मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तब मेरा माइंड भी स्ट्रांग
1: और इंटरनली मैं स्ट्रांग होते जाऊंगे, फिर सिचुएशंस आएंगी या कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज आई एम इंटरनली वेरी स्ट्रांग, यू नो, कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा. वाओ,
3: वो अभी भी नहीं कर रहे, हम अपने आप को वो करना बंद कर देंगे. बिकॉज आई हैव बिकम स्ट्रांग, सी दे आर स्टिल द सेम. वो तो वो ही है, वो अभी भी वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे. लेकिन अभी भी हम कहते
1: हम अभी भी यही कह रहे हैं ना कि मुझे गुस्सा नहीं दिलवा पाएगा, मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा. मतलब मैं खुद जो हो रही हूँ, लेकिन मैं कारण वही मानती हूँ कि उनके कारण, किसी और की वजह से मैं हुई हूँ या हुआ.
3: इसको भी अगर आप बार बार अवेयरनेस में रख के बार बार चेंज कर दोगे ना अपनी वोकैबुलरी को, हाफ द पेन इज गॉन. बिकॉज अभी भी अगर हम ये कहे ना कि वो मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा, यू से इट देन स्टॉप एंड चेक, लेकिन वो तो वैसे भी नहीं दिलाता.
1: दिस इज व्हाट एक्चुअली आई स्टार्टेड डूइंग.
3: दिस इज व्हाट, सी दिस इज द जर्नी. तो वो तो वैसे भी नहीं दिलाता. हाँ, मैं अपने आप को तकलीफ देना अब बंद करती जाऊंगी. सो दिस इज दैट कांस्टेंट टॉक.
2: और एक जो बहुत बड़ी बात है राजयुग में कि हम परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं. मुझे भी कैसे क्लिक हुआ मैं आपको बता दे ना, मैं कहीं अपने लेक्चर्स में भी इस बात को एम्फसाइज करता हूँ. करीब 1981 की बात है कि जब मैं कटक में गया था और वहाँ पर एक बहन से मेरा परिचय कराया गया. जब उनको मिले तो आपकी तरह ही थे, उनके चेहरे पे कोई निराशा की निशानी नहीं थी, कुछ नहीं था. परंतु मुझे बताया गया कि इनके जीवन में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है. उनके पति बिजनेसमैन थे, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था. डॉक्टर ने तो कहा था कि भी ये नॉर्मल ऑपरेशन है, हम हमेशा करते हैं. परंतु किसी को पता नहीं कहाँ गलती हुई. जब उनको एनेस्थेशिया दिया गया तो वो उसी स्टेज में डीप में चले गए, एनेस्थेशिया से बाहर आए नहीं, कोमा में चले गए. बहुत कोशिश की, अच्छे पैसे तो थे, भारत में कई स्थानों पर ले गए, परंतु जब इम्प्रूव नहीं हुए तो एकदम डिप्रेशन में चले गए. उसने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई उनको बचा लेता था. जब मेरे से मिलना हुआ और जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, चेहरे से नहीं लगता है, तो मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ जब भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि मेडिटेशन ने कैसे आपको मदद की. यही कहना पर्याप्त नहीं है कि भी मैंने राजयोग किया तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया. तो बहन बता भी सकी. उसने कहा मुझे पहले बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मेरी सास ने कहा था चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो मैं गई. परंतु वहां वो बहन मेरी बात को सुन रही थी, मेरे प्रॉब्लम्स को सुन रही थी. मैं जाके रोती थी, उनको अपनी बात बताती थी. तो इसके लिए मैंने जाना कायम रखा. और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भी परमात्मा से डायरेक्ट संबंध कैसे जोड़ना है. उन्होंने कहा इससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला. पहले भी मैं पूजा पाठ आदि करती थी, उसे अच्छा लगता था, परंतु टोटली डिप्रेशन नहीं गया था. जब ये डायरेक्ट संबंध जोड़ना मैंने सीखा तो 100% मेरा डिप्रेशन चला गया. मैं समझता हूँ ये मोस्ट पावरफुल चीज है. जैसे कहा भी गया ना, व्हेन गॉड इज विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू.
1: बिल्कुल, एक करेज के साथ हम फेस कर सकते हैं. तो ये जो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ना है,
3: साइकोथेरेपिस्ट ही इज. खुद की मनोस्थिति भी उस समय कैसी है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह काउंसिल करेंगे. प्रॉब्लम्स है उनके पास भी, तो वो हमें किस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे. यू नो इट्स इजी टू टेल समबडी कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर मेरी क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या है. तो वो ट्रांसमिट अगर हम कर पाएं दूसरे को, तो दूसरे के अंदर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजीली आएगा. तो द साइकियाट्रिस्ट आल्सो इज गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी, लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी करवाने का वो फायदा है.
1: लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी कराना इज लाइक समथिंग, बट हाउ डू वी गो अबाउट इट, यू नो, लाइक

0: हम सब भगवान को मानते हैं, अपने अपने खुदा को, ईश्वर को मानते हैं।
1: हम भगवान को मानते हैं लेकिन पता नहीं कि उनको जानते हैं कि नहीं।
0: हाँ, so वो हम
1: See, it's a belief. You know, normally people say, I believe in God. आप ये कभी नहीं कहते कि I believe in my parents. You never say that. I believe in my parents. No, they are my parents. It's the truth. You know, हम कभी नहीं कहेंगे हम अपने पेरेंट्स में मानते हैं। हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं, हम अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं और हम अपने पेरेंट्स का अनुभव करते हैं हर क्षण। क्या उसी तरह हम परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं और हर क्षण वो अनुभव करते हैं कि हम वो हमारा माता पिता है। सवेरे उठकर सिर्फ मात्र कह देना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो काफ़ी नहीं है। क्या हर पल एक बच्चे को तो हमेशा ये अनुभव होना चाहिए ना कि मैं पेरेंट्स आर फॉर मी, तो क्या वो अनुभव हो रहा है?
0: That हम कर सकते हैं
1: क्या अभी वर्तमान समय हो रहा है? First that I have to ask myself.
0: I don't think so. For to me it's not. You know, because to me it is. क्योंकि कई बार वो एक किसी रूप में अगर हम उनको इमेजिन करते हैं, कई बार एक पावर के रूप में, कई बार एनर्जी के रूप में, कई अलग अलग रूपों में, मुझे लगता है कि हम इसे कई
1: अभी आपने कहा हम उनको इमेजिन करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कभी इमेजिन नहीं करते।
0: नाउ
1: दिस इज वेयर इट इज। हम इमेजिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम उनको जानते नहीं। अगर आप मुझे अभी कहें कि मिस्टर सो एंड सो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको नहीं जानती, तो मैं इमेजिन करना शुरू करूँगी। देन यू कैन स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। बट फॉर मी इट इज़ एन इमेजिनेशन। लेकिन फॉर यू आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप उनको जानते हैं, आप उनको अनुभव करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक इमेजिनेशन है। आई कीप इमेजिनिंग। अब जो चित्र मैं इमेजिन करके क्रिएट कर दूँ वो शायद रियलिटी नहीं होगा। और इमेजिन करने से वो चित्र बन जाएगा लेकिन उसके साथ वो
0: रिश्ता
1: नहीं बनेगा। तो अभी भी और मेजोरिटी हम यही कहेंगे आई इमेजिन गॉड टू बी लाइक दिस।
0: नहीं तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि मैं अगर जानना चाहती हूं परमात्मा को और आप मुझे बताएंगी, तो अगेन मैं भी तो एक इमेजिन ही करूंगी।
1: आई विल नो वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इमेजिन नहीं आप करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
0: अच्छा, अपने आप में
1: यू नो जैसे हम गिरीश भाई यहाँ आए तो हमने इंट्रोडक्शन किया। पहले एपिसोड में आपका परिचय बहुत ज्यादा नहीं था, एक इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन इतने दिन की इस यात्रा के दौरान नाउ
0: आई थिंक
1: यू डोंट नीड मी इन बिटवीन, सो इट्स लाइक दिस नाउ। तो फिर आगे का रिलेशनशिप
0: मेरा और उनके ऊपर डिपेंड करता
1: है, अपना।
2: तो गॉड का भी ऐसा ही है।
0: So, आप गॉड से कौन मिलवाएगा मुझे ये बताइए। हमारे सभी दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि हम परमात्मा से कौन मिलवाएगा।
2: सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, साइकोलॉजी की स्टडी की तो लोगों की साइकोलॉजी को देखता हूँ। मैंने एक तो ऑब्जर्व किया लोगों को भगवान से कोई रास्ता नहीं, कोई भगवान को मिलना नहीं चाहता है। मिलना चाहते
0: आप?
2: नहीं चाहते। क्यों बताता हूँ पता है? कोई भगवान लोगों को संबंध क्या पता, मेरा काम हो जाए लोगों को जो भी भगवान कर दे।
0: जैसे अभी आप किसको, उनको पता ही, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम भगवान से मिल सकते हैं एक्चुअली। तो हमने एक वही है कि भाई काम करने का एक वो है कि या कुछ कहने के लिए एक भगवान है, लेकिन अगर हम उनसे मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट क्या। आई वुड लाइक टू मीट, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर हु वुड लाइक टू मीट।
2: और रियल ना एक अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। आज जो वर्तमान हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई मेरा काम हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, जो भी भगवान करा दे। आज कोई एक देवी देवता को आप उसको इष्ट देव मान के पूज रहे हैं, कल दूसरा आपको बताएंगे ये नहीं, ये इसको करो ना तुम्हारे बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, उसको आप छोड़ देंगे। तो इसका मतलब आपका भगवान से संबंध नहीं है, आपका वो आपका स्वार्थ से संबंध। तो पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भी भगवान से मिलना है। भल थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े, सही समझ होनी चाहिए, परमात्मा से मिलना है। मेरे कई प्रवचन में ये भी पूछते हैं भगवान कितने हैं। हाँ, कई लोग हमने कई बार देखा है लोग सो रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे पूछो तो। लेकिन जब पूछो ना भगवान कितने को, तो एक है, सारे के सारे बोलेंगे। तो ये पक्का है कि भगवान एक है, पांच तो नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो करना ही है कि डेवलप वो जिज्ञासा डेवलप करो, कि वो भगवान जब एक है तो कहीं ना कहीं गलती है. जब इतना हम ज्यादा मान रहे हैं तो उस एक को ढूंढने का मुझे पुरुषार्थ करना. बस वो भी अगर हो जाए इस प्रोग्राम से तो धीरे धीरे आप सत्य के नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे.
0: मेरा तो हो चुका है. आई तो रियली वांट टू मीट, आई थिंक लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स, एक्चुअली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो जरूर मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. आज तक हमें अभी एहसास ही नहीं था कि हम मिल सकते हैं.
1: और ये भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मिलना क्यों है. यू नो फादर है,
0: आई वांट टू मीट माय फादर,
1: राइट. एंड फादर से एक बच्चे को क्या मिलता है? फादर से एक बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है. यू नो जो फादर का है वो सब कुछ बच्चे का ऑटोमेटिकली, जिस क्षण बच्चा पैदा होता है तो घर में कहते हैं वारिस आ गया. अभी वो बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसे टाइटल मिल जाता है कि इस परिवार का वारिस आ गया. जो पिता का है वो बच्चे का है. मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा पिता प्रेम का सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान है, वो प्रेम का सागर है, वो प्योरिटी का सागर है. ये मेरा पिता है और ये सब इसकी प्रॉपर्टी है.
0: ये मैं सब इनहेरिट करूंगा.
1: यू सी इट्स वेरी इजी देन. सो मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क जो अभी तक लग रहा था इतने दिन से कि कैसे अवेयरनेस, फिर कैसे पीस, कैसे हाउ टू रिमेम्बर, इट्स जस्ट कम्स जैसे अगर एक राजा का बच्चा है लेकिन वो बच्चा गुम गया, तो भले वो है राजा का बच्चा, वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वो सड़क पे शायद कहीं खड़ा हुआ है इस तरह मांगते हुए. जिस दिन वो फिर राजा से मिल जाएगा तब उसे ऐसे नहीं मांगना है. जिस क्षण याद आ गया कि मैं राजा का बच्चा हूँ, जो राजा का है उस दिन मैं राजकुमार बन गया. तो मैं, हम सब, हर आत्मा जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहती है, वो परमात्मा, मैं आत्मा, हम उसकी महिमा करते हैं कि आप शांति के सागर हो. तो परमात्मा हमें बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं शांति का सागर हूँ. इट्स लाइक इफ यू नो आई एम मिस्टर वर्मा, सो माय सन इज मास्टर वर्मा, सो इट इज आप बच्चे मास्टर शांति के सागर हो. सो दैट इट्सेल्फ, दैट रियलाइजेशन कि मैं परमात्मा का बच्चा, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग कि मुझे टेंशन हो रही है. तो वो प्रॉपर्टी, अब मैं हूँ ही मास्टर शांति का सागर, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, लेकिन मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं भूल गई थी कि मैं किसका बच्चा हूँ. तो मैं कहने लगी एक मिनट की शांति दे दो, एक क्षण शांति से बैठने दो. यू सी फ्रॉम वेयर टू वेयर वी रीच्ड. जिस क्षण वापस याद आया, बिस जिस क्षण वापस वो संबंध जुड़ गया, मैं हो ही शांत स्वरूप.
0: एक तो मुझे कोई माइथोलॉजिकल कहानी भी आ गई एकदम से कि जब हम याददाश्त खो गए, यू नो कहीं ना कहीं हमने अपनी याददाश्त खोई है कि और अब जैसे ही याददाश्त लौटेगी तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट वी आर, हु.
1: एंड वी मीट द फादर. सी इट्स नॉट इमेजिनेशन. अगर ये इमेजिनेशन से होगा तो ये कुछ क्षण एक टेम्पररी एक्साइटमेंट की तरह आएगा, ओ आई एम पीसफुल, यू वोंट फील एनीथिंग. थोड़ी देर के बाद फिर कोई परिस्थिति आएगी एंड आप फिर से वही,
0: यू नो. तो अगर मैं अपने पिता को याददाश्त भूल गई हूँ, मैं अपने पिता को तलाश रही हूँ, पिता भी तो तलाशेगा.
1: पिता ही आपको तलाश रहा है. एक्चुअली परमात्मा खुद ही अपना परिचय आकर बच्चों को देते हैं. हमारे में उतनी ताकत ही नहीं रही है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे. तो परमात्मा को हम ढूंढ लें. और इतने सालों से क्या, इतने जन्मों से हम ढूंढते आ रहे हैं. हमने कितना ना प्रयास किया है परमात्मा को ढूंढने का, मतलब सालों साल, सौ सौ वर्ष संन्यास, तपस्या, नंगे पाँव चलना, हमने सब कुछ किया कि एक क्षण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए. इतनी मेहनत की एक क्षण के साक्षात्कार के लिए कितना डिफिकल्ट था. और अब जब परमात्मा खुद आकर हमें ढूंढ लेता है तो वो एक क्षण के लिए नहीं, हर क्षण हमारे साथ होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है.
2: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्र पर यही कार्य हो रहा है कि कैसे आज परमात्मा हमको ढूंढ रहा है. और बस हमें एक आवश्यकता है कि उन्हें समझने की, पहचानने की, तो सचमुच हम उनसे भी रूबरू हो सकते हैं. और एक बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि संबंध जोड़ना. डिप्रेशन की हम चर्चा कर रहे थे कई समय से.
0: ऑफ कोर्स द मोमेंट एक्चुअली आई फील सो एलिवेटेड, यू नो द मोमेंट आई फील दैट मेरे तो वो पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ. सो आई एम ऑलरेडी यू नो लाइक अबव एवरीथिंग.

0: डिससेटिस्फेक्शन है, पिता और पुत्र के संबंध में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, पति पत्नी के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिल जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो थोड़ी गहरी बात है, मैंने तो सिर्फ एक आपको सजेशन दिया है, अभी इस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल, और ये एक एक्चुअली इट्स क्वाइट अ बिग रेवलेशन, क्योंकि एक पूरा एक ये खुलासा कि जिसे हम सोच रहे हैं कि हम तलाश रहे हैं वही हमें तलाश रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही तो मंजिल है। हम ये कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही सच्चा मिलन है, ये अभी तक सुनी सुनाई बातें थी। आत्मा से आत्मा का मिलन कोई मिलन नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट, ये शाश्वत नहीं होगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये एक हम अभी तक, मुझे ये लगता था कि ये हम सुनते आ रहे हैं कहीं ना कहीं होगा कुछ है सच है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि इट इज़ पॉसिबल,
2: इट्स अ रियलिटी अगेन। This is a reality जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, and we would like to tell everybody कि you know ये वो समय चल रहा है जिस समय का आज दिन तक हम गायन करते आए थे कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानी होगी तब परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ेगा। हमने हर धर्म शास्त्र में ये पढ़ा, और आज अगर हम चारों तरफ समाज में देखें तो वो धर्म ग्लानी के जो चिन्ह है वो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, और हर एक बच्चे को वो अपना वर्षा देने आए हैं। अब हमारे ऊपर सिर्फ वो एक कदम बचा है जो हम आगे बढ़े और वो सारा वर्षा अपने पिता से ले ले।
1: परमात्मा आ चुके हैं, हमें तलाश रहे हैं, कैसे हैं वो? अब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? किस मतलब, कैन वी सी हिम?
2: परमात्मा, परम आत्मा, जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, इट्स एनर्जी, इट्स कॉन्शियसनेस, सिमिलरली परम आत्मा, सोल एंड सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, दैट्स यू नो इनकॉर्पोरियल सुप्रीम सोल, कोई कॉर्प्स नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार, साकारी शरीर नहीं है, तो वो कोई देहधारी नहीं है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक शक्ति है। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, एक लाइट हैं, तो परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर रूप से इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कार्य शुरू करते हैं।
1: ओके,
0: गुरु नहीं,
2: कोई देहधारी नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूमन फिगर,
1: हाँ, किसी इंसान या किसी ऐसी प्रतिमूर्ति में नहीं है।
2: हम सब आत्माएं हैं, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब आत्माएं हैं, और वो परमात्मा है, तो वो भी निराकार, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है।
0: शिवानी बहन ने जो बात बताई बहुत अच्छी है, अगर गहराई से सोचा जाए तो हर धर्म में यह बात है कि परमात्मा निराकार है। जैसे जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, ऐसे नूरे इलाही, एक ओमकार निराकार, शिवलिंग की भी बात है भारत में, छोटे छोटे गांव में भी आप देखेंगे, तो सभी धर्म में यह है कि परमात्मा कोई साकारी स्वरूप नहीं, वह निराकार है। उस रूप से उनसे संबंध जोड़ेंगे तो डायरेक्ट शक्ति प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज एक्चुअली बाकी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं वो मायने ही नहीं रखती, बिकॉज दिस इज सो लॉजिकल। अगर हम धर्म की बात करते हैं, हम जो इतने वर्षों से जो चली आ रही है बात की सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है कि वो एक एनर्जी सोर्स है, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पावर हाउस है या एक ज्योति का एक पुंज है, तो वो कहीं ना कहीं है, ये आज लॉजिकली भी सही लगता है, लेकिन अब हमारा उनसे तारुफ कैसे होगा ये हम, क्योंकि सिस्टर शिवानी और डॉक्टर गिरीश पटेल, बहुत अच्छा लगा आज ये जो एक हमारे सामने सच सामने आया है कि परमात्मा आ चुके हैं, हमें खुद तलाश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सच का हमें सामना कराने के लिए, इस सच्चाई से हमारा, इस सच्चाई को हमारे सामने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, नहीं मिलना चाहेंगे अपने पिता से? मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्योंकि यही वो तलाश थी शायद जो अभी तक हम इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे थे। शायद ये जो कब के बिछड़े हैं हम अपने पिता से, अब जब हमारी उनसे मुलाकात होगी तो कैसा होगा वो रिश्ता, कैसा होगा वो वक्त, कैसा होगा वो समय, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि शायद आने वाली कड़ियों में हम मुलाकात कर पाएँ, वो जो तारुफ कराने की बात है हमारे अपने परम पिता से वो हो पाए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है, या आप भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी मुलाकात करनी है, तो आप फ़ोन पर हमसे संपर्क कीजिए या फिर ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल

0: जी है omshantistudio@gmail.com। तो आज इस सच के साथ आपसे विदा लेते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, हमसे मिलने को बेताब हैं। अब हमें अपना पहला कदम बढ़ाना है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।
1: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। 8:28 रेडियो मधुबन की घड़ी पर और आज है सोमवार। सोमवार के सुबह मैं हाजिर हूँ शुभा, और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हैं हमारे आरजे रमेश जी। रमेश जी कुछ दिनों के अंतराल में, यानी कि कुछ दिनों नहीं, एक दिन के अंतराल में आप सभी से मिलेंगे, यानी कि कल के दिन। तो कल का दिन आपका कैसा रहा आप हमें बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसके साथ साथ पंचांग के अनुसार आज के दिन विशेष के ऊपर भी नज़र डालेंगे। इस मोड पर एक श्रोता बंधु हमारे साथ बात करना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी।
1: सोमवार की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत
1: साथियों को मेरा प्रणाम हो
0: जी। तो जी,
1: शिव जी का एक भगवत, शिव जी भगवान का एक भजन है सर, आओ बाबा का, आओ बाबा का गुणगान गावे, सभी मिलकर के गुणगान गाए, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ये भजन में हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को भी मेरा प्यार वाला नमस्कार।
0: नमस्ते, थैंक यू फोन करने के लिए। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ये थे हमारे भूरी लाल जी। जी हाँ, तो दोस्तों ये नई सुबह, नया सप्ताह है और नई उम्मीदों के साथ नई किरण आया है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस खूबसूरत सोमवार की सुबह, जैसे भूरी लाल जी ने कहा कि शिव जी को समर्पित है, बिल्कुल, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी, ढेर सारी अच्छी बातें, खूबसूरत संगीत और एक ऐसा एहसास जो आपके पूरे दिन को बना देगा एकदम खुशनुमा। और कहते हैं कि मंडे एक नई शुरुआत है, तो इस सप्ताह की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि उम्मीद, उत्साह और सकारात्मकता के साथ अगर करें तो। चलिए एक गहरी सांस लेते हैं, धीरे से सांस बाहर छोड़ें और चेहरे पर मुस्कान लेते हुए खुद से कहे कि आज का दिन अच्छा है, अच्छा होगा। तो जुड़े रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियां और मनोरंजन, ये है नई किरण।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। और गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं, आप गुड मॉर्निंग आबू नहीं सुन रहे, आप नई किरण सुन रहे, क्षमा चाहूँगे इस बात के लिए। किसी श्रोता बंधु के मैसेज पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई। आइए चलते हैं पंचांग की ओर, जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंचांग शक संवत 1948 भाद्रपद कृष्ण तृतीया सोमवार विक्रम संवत 2083 है। आज अंग्रेजी तारीख है 31 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। तृतीय तिथि प्रातः 8:50 तक, उपरांत चतुर्थी तिथि का आरंभ है। रेवती नक्षत्र अगले दिन तड़के 3:23 यानी कि 1 सितंबर तक, उपरांत अश्विनी नक्षत्र का आरंभ है। गंड योग है अगले दिन तड़के 1:51 तक, उपरांत वृद्धि योग का आरंभ है। विष्टिकरण प्रातः 8:50 तक, उपरांत भवकरण का आरंभ है। चंद्रमा अगले दिन तड़के 3:23 तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:58 पर रहा। सूर्यास्त का समय है 6:44 पर। चंद्रोदय का समय 8:29 पर और चंद्रास्त का समय 1 सितंबर को 8:43 पर है। और आज इस्लामी हिस्ट्री के अनुसार 1448 रबीउल अव्वल पीर मुख अर है आज के दिन। संकष्टी चतुर्थी है आज। कजरी तीज की भी आज के दिन ही है और आज अमृता प्रीतम जी के जन्मदिवस भी है। कजरी तीज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस पर्व को हरियाली तीज, हरी ताली का तीज कहते हैं। और इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं और इसके दिन एक दिन पूर्व यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया को रत जगा किया जाता है और महिलाएं रात भर कजरी खेलती तथा गाती है। कजरी खेलना और कजरी गाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कजरी गीतों में जीवन के विविध पहलुओं को समावेश करता है और इसमें प्रेम, मिलन, विरह, सुख दुख, समाज की कुरीतियाँ ये सब लेकर के जन जागरण के स्वर गुंजित होते हैं। कजरी तीज से कुछ दिन पूर्व सुहागिन महिलाएं नदी तालाब आदि से मिट्टी लेकर के पिंड बनाती है और उसमें जौ के दाने बोती है। रोज उसमें पानी डालने से पौधे निकल आते हैं और इन पौधों को कजरी वाले दिन लड़कियां अपने भाई तथा बुजुर्गों के कान पर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो इस प्रक्रिया को जरई खोसना कहते हैं। कजरी का ये स्वरूप केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है और ये खेल गायन करते हुए किया जाता है जो देखने और सुनने में अत्यंत ही मनोरम लगता है। तो कजरी गायन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इस विषय पर आगे हम जानेंगे लेकिन इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता यहाँ पर बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुरेश भाई बोलता हूँ, जिताना से। कैसे हो दीदी?
0: गुड मॉर्निंग, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बात बहुत अच्छे है, आप आ गए तो हमें भी अच्छा लगा कि आज नई किरण में आप आए हैं।
0: धन्यवाद, धन्यवाद आपका जी।
1: बहुत अच्छा लगा दीदी। आज सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, आज के दिन की वही भोले बाबा की शुभकामना सभी पक्ष रहे
0: जी।
1: और हमारे यहाँ तीसरा सोमवार आया है, अब लास्ट सोमवार है।
0: हाँ जी, इससे पहले वाला सोमवार यहाँ पर लास्ट था गुजरात में, आज ना।
1: हाँ, आपको तो पूरा हो गया, आपको तो बादल चालू हो गया मेरे हिसाब से।
0: जी जी जी,
1: आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं दे दे। और बस सुनता रहे भोला बाबा का गाना, जरूर सुना देना कोई अच्छा आपके पसंद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपके वहाँ कजरी तीज वगैरह पालन किया जाता है या कैसे करते हैं?
1: हाँ वो तो दीदी महिलाएं, याद क्या है, हमारे दोनों तिथि साथ में तीज और चौथ दोनों है
0: जी।
1: तो आज सभी महिलाएं हमको यहाँ क्या दीदी, हमको हमारे यहाँ आज के दिन है जो महिलाएं हैं ना वो गेहूं नहीं खाती है, गेहूं का कोई चीज नहीं खाती है। आज वो बाजरे की रोटी और जो मूंग होता है, मूंग तो मूंग और बाजरे की रोटी ही खाएगी महिलाओं आज। हरगन जो गाय माता की पूजा करेगी, गौ माता को खिलाएगी, आज ऐसा हमारे यहाँ होता है
0: जी।
1: तो पूरा दिन उपवास ही करेगी और बस एक टाइम वो भोजन करेगी, तो बाजरे की रोटी और दोनों खा के बस पूरा दिन निकालेंगे
0: जी, बाजरे की रोटी खाते जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और भोले ने बुलाया है, ये गाना मैं आपके लिए डेडिकेट कर रही हूँ, ठीक है?
1: कोई बात नहीं, सुना देना
0: जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। तो आइए ये गाना हम सुनते हैं, क्योंकि गुजरात में आज लास्ट सोमवार है, श्रावण महीने के लास्ट सोमवार गुजरात में आज पालन किया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य पर ये गाना।

आप सभी ने अपने दिन की शुरुआत गर्मजोशी के साथ की है, तो आइए जान लेते हैं कि मौसम का भी क्या हाल चाल है। राजधानी जयपुर में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। और वहीं पर उदयपुर में 31 डिग्री अधिकतम 23 न्यूनतम तापमान, बारिश होने की संभावना नहीं है। आबू रोड में बारिश होने की संभावना सुबह के समय है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री। माउंट आबू में 18 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 21 डिग्री तक जा सकता है। थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है माउंट में आज सुबह के समय। पाली में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री, बारिश होने की संभावना नहीं है। सूरत में 26 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है। सुबह 60% तक बारिश होने की संभावना है और 40% तक रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है। मेहसाणा में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ पर 50-50% तक चांसेस है बारिश होने की। राजकोट में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गांधीनगर और अहमदाबाद में 25 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम 33 डिग्री, बारिश होने की संभावना फिलहाल बहुत ही कम है। राजधानी दिल्ली में बारिश होने की संभावना भी कम है, 35 डिग्री अधिकतम न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता में 31 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में 31 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 20 डिग्री तक, और यहाँ पर भी 25% तक संभावना है बारिश होने की। मुंबई में 32 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री, यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। चेन्नई में 35 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक, और यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। जिला सिरोही में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि

0: और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
5: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
6: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
7: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
8: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
2: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदवंत हीन सी आशा हूं जो सबसे सुंदर काव्य रचे। मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण। अब समय है सुबह के एक और ज़रूरी सेगमेंट का, रेलवे अपडेट। अगर आज आप ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नंबर, डिपार्चर टाइम और रनिंग स्टेटस एक बार ज़रूर चेक करें। साथ ही स्टेशन के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकले ताकि जल्दीबाजी से बचा जा सके और आपका सफ़र आरामदायक रहे। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सफ़र आपका हो सुहाना और सुरक्षित और आपकी मंजिल तक का हर कदम आसान हो। चलते हैं रेलवे इंफॉर्मेशन की ओर। गाड़ी संख्या है 19224। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 9:48 पर 3 मिनट मामूली देरी से चलती हुई संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली है। और वहीं पर गाड़ी संख्या है 16531 अजमेर बेंगलुरु गरीब नवाज एक्सप्रेस 10:10 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली है। गाड़ी संख्या है 20496 जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 10:30 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है। तिरुवनंतपुरम से श्री गंगानगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 16312 11:05 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। पुणे से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 11090 11:30 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 11:30 पर पहुँचने वाली है। और वहीं पर गाड़ी संख्या 14822 गांधी ग्राम से जोधपुर तक जाने वाली ये एक्सप्रेस 11:40 पर पहुंचने वाली है आबूरोड रेलवे स्टेशन पर। योगा एक्सप्रेस 19032 57 लगभग 1 देरी से चलती हुई 11:47 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है आबूरोड रेलवे स्टेशन पर। गांधीनगर से दौलतपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19411 12:55 पर पहुंचेगी। और साबरमती लखनऊ एक्सप्रेस 19401 दोपहर बाद 1:30 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या 19223 साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस दोपहर बाद 2:10 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19031 साबरमती से योगनगर ऋषिकेश तक जाने वाली ये गाड़ी दोपहर बाद 3 आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जोधपुर गांधीग्राम एक्सप्रेस 14821 शाम को 4:05 पर पहुंचने वाली है। और बीकानेर से मिराज तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20475 शाम 4:20 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। आरावली एक्सप्रेस शाम को 5:10 पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 14701। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियां, अभी से 8 घंटे तक आबूरोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां हमने जाना। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर देती थी नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है मामा पेड इन फुल बट इन डेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण। आइए जानते हैं शेयर बाजार के कुछ बातों के बारे में। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की शुरुआती कारोबार में गिरावट का सामना करना पड़ा है और प्री ओपनिंग सत्र में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 100 से अधिक अंक लुढ़क गया है। निफ्टी भी 24,150 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और ब्रेंट कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। सेंसेक्स 77,130.73 अंक पर कारोबार करता दिखा। वहीं पर निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो 24,117.55 अंक पर रहा है। और इसके साथ साथ ताज़ा जानकारी के मुताबिक सेंसेक्स 76,950.77 के अंक पर है, -0.41% गिरावट दर के साथ। निफ्टी वर्तमान समय 24,048.45 पर है, -0.53% गिरावट दर के साथ। सोने और चांदी के बारे में बात करें तो सोना 24 कैरेट है 1,81,023 रुपये। और वहीं पर बात करें अगर 22 कैरेट के बारे में 1,65,945 रुपये है, 18 कैरेट है 1,36,125 रुपये। चांदी के दामों के ऊपर नज़र डालते हैं। चांदी है पर किलोग्राम 2,55,000। प्लैटिनम प्राइसेस 55,900 रुपये है 10 ग्राम के हिसाब से।

राजधानी जयपुर में पेट्रोल प्राइसेस से 113.51 रुपये और 68 पैसे की गिरावट दर के साथ, यानी कि 68 पैसे कम हुआ है। वहीं पर डीजल है राजधानी जयपुर में 98.54 रुपये प्रति लीटर, 67 पैसे कम हुआ है। एलपीजी है 945.50 रुपये, घरेलू एलपीजी 14.2 किलो वाले और 19 किलो वाले हैं 192 रुपये कम होकर के 2,765.50 रुपये। वहीं पर सीएनजी है 96.50 रुपये पर केजी राजधानी जयपुर में और पीएनजी है 49.50 रुपये। तो ये हमने जाना सोने चांदी के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में, एलपीजी के बारे में और सीएनजी पीएनजी के बारे में। अभी चलते हैं मुद्रा जगत की ओर, जानते हैं यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसीज का क्या कुछ हाल चाल है। 95.40 रुपये इंडियन करेंसी वर्तमान समय एक यूएसडी के मुकाबले, यूरो के मुकाबले 110.61 रुपये लगभग 111 रुपये है और वहीं पर एक जीबीवी के हिसाब से 129 रुपीज़ है और एक एईडी के हिसाब से 26 रुपये, रियाल के हिसाब से भी लगभग 25.41 रुपये तक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से 67.38 रुपये तक है। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मुद्रा जगत के साथ भी। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना।

वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण। अंतिम छोर पर पहुंच गए हम। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे सिरही आबू रोड भास्कर के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। बात करें माउंट आबू के बारे में। बादल, धुंध और हरियाली बना सैलानियों के पसंद। 28 से 30 अगस्त तक 5,486 वाहनों ने 27,000 से ज़्यादा पर्यटक भी पहुँचे। और इसके साथ साथ बात करें NFC में अप्रेंटिस के लिए 431 पदों पर होगा भर्ती। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC ने ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर तक किया जा सकेगा। अभ्यर्थी का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये सूचना हम आपको आबू रोड भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। वहीं पर 5 बीघा में ऑक्सीजन बाग 25 फीट तक के 5,000 पेड़ पंचायत की नर्सरी में तैयार हो रहे हैं 2,000 पौधे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पिंडवाड़ा पंचायत समिति के घरट ग्राम पंचायत ने अनूठी पहल की है। पंचायत भवन के पीछे 5 बीघा क्षेत्र में ऑक्सीजन बाग विकसित किया गया है। मनरेगा और SFC की मदद से तैयार इस बाग में अब करीब 5,000 पेड़ हैं। इनमें फलदार और छायादार दोनों प्रजातियां शामिल हैं। पेड़ों की ऊंचाई करीब 25 फीट तक पहुंच गई है। धनाराम गरासिया जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि पेड़ों की सिंचाई के लिए बोरवेल की सुविधा है और सुबह शाम पानी दिया जा रहा है। घरड़ पंचायत में 5 बीघा में ऑक्सीजन बाग लगाया गया है। पंचायत में ही तैयार होती है नर्सरी। 2,000 पौधे तैयार किए हैं। 2020 में शुरू हुआ बगीचे का विकास। पंचायत में पहले पोषण वाटिका स्थापित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में बगीचे को विकसित करने का काम शुरू किया गया।

वहीं बराबुरुड में रिको थाना पुलिस ने मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात की ओर जा रही एक कार से 17 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। दीक्षा के 19 वर्ष पूरे हुए साध्वी जी ने 65वीं ओली का पारणा किया। जैन शासन में त्याग और तपस्या की अलग पहचान है। ये तप आत्मकल्याण के लिए किया जाता है। दीक्षा के 19 वर्ष पूर्ण कर 20वें वर्ष में प्रवेश पर साध्वी रुजू अभिनिधि जी ने अपनी 65वीं ओली का पारणा कालिंद्री के एक फार्म हाउस में किया। वहीं पर बाईपास रोड पर बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से 20वें राम रसोड़े का शुभारंभ रेवानाथ महाराज जी के सानिध्य में हुआ। बात करें पिंडवाड़ा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बे के पास सर्विस रोड की सफाई को लेकर ग्राम पंचायत और फोर लेन कंपनी एक दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं। दोनों के बीच सफाई व्यवस्था अटकी होने से नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा राहगीरों और अन्य स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार करीब 6 महीने से फोरलेन कंपनी की ओर से नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है। सफाई के दौरान नालियों के ऊपर लगे फेरो कवर भी हटाकर छोड़ दिए गए हैं और कचरा भी पूरी तरह नहीं निकाला गया है। बारिश के दौरान नालियां कचरे से भरकर उफान पर आ गई है और गंदगी सड़क पर फैल गई है। फोरलेन के ओवरब्रिज के दोनों तरफ लगी रोड लाइटों में आधे से ज़्यादा बंद है और इससे रात में हाईवे के दोनों ओर बनी सर्विस रोड पर अंधेरा रहता है। वहीं पर किवरली में पुराने टोल नाके पर सार्वजनिक बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वावधान में 26वें राम रसोड़े का विधिवत शुभारंभ हुआ है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत सिरोही जिले के 227 वरिष्ठ नागरिकों का दल रविवार को तीर्थ यात्रा पूरी करके लौट आया है। पिंडवाड़ा में शैक्षिक महासंघ की नई टीम बनी, मगनलाल जी अध्यक्ष बने। रेवदर खंड महासंघ की बैठक, 11 जिला सदस्य मनोनीत हैं। भारत को जानो परीक्षा आज और 5 लाख छात्र होंगे शामिल। भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भारत को जानो अखिल भारतीय लिखित परीक्षा 31 अगस्त को देश भर में एक साथ होगी। राजस्थान में इस बार 3,500 से अधिक विद्यालयों के करीब 5 लाख विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सिरोही में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले भर की विभिन्न टीमों से करीब 3,050 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रेवदर में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर रेवदर पुलिस ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला कार्यक्रम है आशियाना, उषा जी के साथ लाइव प्रोग्राम सुनेंगे आप। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।

ना वामे तो होमे तो होमे तो पैयरिया में जाओ सतुड़ी तीज मनावा। तीज आई सावण री हरियाली छाई रे, तीज आई सावण री हरियाली छाई रे। सखिया झूला झूले मन में खुशिया लाई रे। होमे तो होमे तो होमे तो पैयरिया में जाओ सतुड़ी तीज मनावा। तो आज बड़ी तीज जिसको हम सातुड़ी तीज कहते हैं, तो सातुड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जो महिला इस दिन श्रद्धा और प्रेम से व्रत रखे, सातुड़ी तीज की कथा सुने, तो कहते हैं कि उनके मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाया हुआ वह सातु। हाँ, आगे डिस्टेंस छोड़ती हूँ, क्या है क्या नहीं, क्यों सातुड़ी तीज मनाई जाती है आज के दिन, तो ये जरूर आप जानेंगे। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय भी देने वाली हूँ। तो आज हम तीज की ही बात करेंगे। आज तीज का त्यौहार है राजस्थान में। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष करके हमारी बहनें। तो इसी पर हम बात करेंगे, कैसे मनाया जाता है, क्या किया जाता है, और रेसिपी में भी आज मैं आपको सातु ही सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुंदर है।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: आई आई पेल सावन की तीज ओ रसिया, तीज ओ रसिया, जयपुरिया थे ले चालो, ले चालो माने जयपुरिया थे ले चालो, जयपुरिया।

चालो जी माने जयपुर ये थेले चालो। तो पुनः आपको बड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का फिर से स्वागत है आशियाना कार्यक्रम में। आज का विचार है बहुत ही सुंदर कि त्योहार की सुंदरता धन दौलत में नहीं बल्कि प्रेम श्रद्धा परिवार और रिश्तों की मिठास में होती है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ, एक कहानी के साथ करना चाहूँगी। एक समय की बात है, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जहाँ एक साहूकार रहते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, एक ही इकलौती बेटी थी जिसकी शादी कर दी गई। धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी और साल भर में तो व्यापार बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। उधर पहली तीज आई, सातुड़ी तीज, तो ससुराल में बेटी सोच रही थी कि माँ का फोन आएगा, माँ बुलाएगी, सातुड़ी तीज आ रही है। बड़े वो कहते ना, मन ही मन में खुशियाँ छा रही थी कि बस अब पियर जाने के दिन आ रहे। देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कहते हैं ना ससुराल में कितना भी सुख हो लेकिन मायके की याद तो आती ही है सभी को। ठीक है, तो वो भी यही सोच रही थी, उसको सावन के झूले याद आ रहे थे, खेतों में हरे हरे अनाज याद आ रहे थे कि कैसे खेतों में हरियाली छाई रहती है, कैसे घर घर में झूले पड़े रहते हैं, नीम के डाल पर झूला झूलते हैं, और कैसे हम सखियाँ मिल करके मंगल गाती है, कैसे इस त्यौहार का आनंद लेती है। तो वो सारी चीज़ें उसको याद आने लगी और सोच रही थी कि माँ पिताजी ज़रूर बुलाएंगे। इधर माँ भी चिंता कर रही थी कि बेटी की पहली तीज है और घर में कुछ है नहीं, क्या करे, कुछ तो रखना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, बेटी को भी बुलाना चाहिए। पहली तीज पर तो बेटी जमाई भी आते हैं लेकिन आएंगे तो उनको बहुत सारा नेक देना पड़ेगा, घर में कुछ है नहीं, क्या करे। बहुत चिंता कर रही थी तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ सेठानी जी, क्यों चिंतित हो, आजकल तो बहुत ही परेशान दिख रही हो। तो फिर सेठानी ने कहा कि सेठ जी बात ही चिंता जैसी है कि भाई ऐसा क्या हो गया। सेठानी ने कहा, देखो घर में कुछ है नहीं, बेटी की पहली तीज आ रही है, नहीं बुलाएंगे तो ससुराल वाले ताने मारेंगे कि शादी तो धूमधाम से करवा दी, अब क्या हो गया जो बेटी को लिवाने ही नहीं आए, और सातू भी नहीं भेजा तो कम से कम सातू तो भेजे, बेटी को नहीं लेके आएंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि बहुत सारा देना पड़ेगा नेक चार्ज, लेकिन सातू तो भेजना ही चाहिए, पहली तीज अच्छा नहीं लगता। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है सेठानी जी, क्यों चिंता करते हो, देख लो घर में आटा पीटा जो भी है सबका बना दो, अपना देखा जाएगा। तो बोले ठीक है। तो जितना आटा था सेठानी जी ने तो सातू बना दिया, सातू बना करके पिंडा भेज दिया उसके ससुराल। बेटी को पता चला कि सातू आ गया, माँ ने सातू भिजवा दिया, लेकिन देखा कि पोटली तो छोटी सी है, तो बेटी को जैसे ही पता चला सातू आया वो चुपचाप उसने लेके अपने कमरे में रख दिया। बोले कि इतना बड़ा परिवार, इतना पैसा वाला घर, और अगर ये सातू बताऊंगी तो इन लोगों को पता नहीं क्या विचार आएंगे, क्या मुझे कहेंगे, कहीं ताना मारेंगे कि देखो इतना सा सातू भेजा। तो वो उसने किसी को कुछ कहा नहीं कि होगा सो देखा जाएगा, और वो माता पार्वती जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। इधर माँ भी बहुत ही चिंतित थी कि इतना सा सातू भेजा है, बेटी को तो लिवाने का बोला ही नहीं है, बेटी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में कुछ है ही नहीं, मैं कैसे बेटी को घर में लाऊँ, बहुत चिंता कर रही थी। उधर बेटी चिंता कर रही थी कि माँ ने सातू भेजा वो भी इतना सा, और मेरे को तो लिवाने का कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या मुझे मायके नहीं बुलाएगी मेरी माँ। तो आंसू आ गए माता पार्वती जी की याद में, रोते रोते सो गई। सुबह देखा तो पिंडा तो बहुत सारा हो गया सातू, और सारा जो विधि विधान से भेजा जाता है इतना सातू हो गया। तब फिर उसने अपने सासू माँ को बुलाया कि सासू माँ कल आप नहीं थे और ये पियर से सातू आया है। तो सासू माँ ने देखा सातू तो बहुत आया है, तो सातुड़ी तीज के दिन बहू को घोरत दिलवा दिया और बांट दिया अड़ोस पड़ोस में मेहमानों को, बहुत मेहमानों को, अपने बहन बेटियों को बुलाया। कहते ना कि बार त्यौहार आते हैं तो बहन बेटियों को सबसे पहले बुलाया जाता है,
क्योंकि देखे किसको किसके भाग्य का खाने का मिलता है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसलिए अपनी बहन बेटी को कभी भी अपने घर से वंचित मत करिए। हर त्यौहार पर आप उनको याद करिए, जो विशेष करके बहन बेटियों का होता है। तो घर की बहन बेटियों को बुलाया, उनको भी पिंडा भर भर के दिया। लेकिन सास सोच रही थी कि क्या बात है, इस बार तो बहू को बुलाया नहीं मायके। लेकिन न सास ने कुछ कहा, न बहू ने कुछ कहा, और बेटी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि ज़रूर मेरे माता पिता पर तकलीफ आई होगी, तभी उन्होंने सातु भी इतना सा भेजा और मुझे बुलाया नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो ईश्वर से हमेशा दुआ करने लगी। इधर धीरे धीरे माता पिता के वापस ठीक होने लगा, व्यापार चलने लगा और घर में फिर से वही रौनक आ गई जो पहले थी। फिर माँ ने दूसरी सातुड़ी तीज आई, तब तक सब कुछ अच्छा हो गया था। तो राखी पर, राखी के एक दिन पहले ही बुला लिया था बेटी को। तो बेटी ने कहा कि माँ, पहले सातुड़ी तीज पर तो मायके बुलाया जाता है, आपने बुलाया ही नहीं, दूसरी पर थोड़े ना इसकी वैल्यू होती है। हर वैसे तो हर तीज पर बेटियाँ मायके ही जाती है। तो बोले, पहली पर क्यों नहीं बुलाया माँ? तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बेटा, ये परिस्थिति थी, लेकिन माता रानी ने सब ठीक कर दिया। तो बेटी भी खुश हो गई कि कोई बात नहीं माँ, परिस्थिति तो आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी आपने भेजा है। और वो पिंडा इतना ज़्यादा हो गया था कि सभी ने बहुत सराहना की, तब से ये परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि सबने देखा कि अरे, इनके तो इस तरह पिंडे का रिवाज है। और फिर बाद में पता चल गया, आया तो थोड़ा था लेकिन माता रानी की कृपा से ज़्यादा हो गया। तब से सातुड़ी तीज शुरू हो गई और सभी ने मनाना शुरू कर दिया। तीज पर जरूर सातु का पिंडा बना करके पासते ही है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। इसीलिए कहते हैं कि त्यौहार की सुंदरता धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा, परिवार और रिश्तों की मिठास में होती है। इसलिए किसी के भी कम ज़्यादा आए, वो अपने पियर के परिस्थिति को आके नहीं और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें, यही सच्चा संदेश देता है आज का विचार। तो आइए फिर से सुन लेते हैं कि तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुरा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का सुंदर से घरेलू नुस्खे आपको देना चाहूंगी। दांत निकलते हो तो क्या करना चाहिए? भाई दांत बच्चों के आसानी से निकले इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ न कुछ करते रहना। डॉक्टर की सलाह तो आपको लेनी ही है, साथ ही साथ आप छोटे बच्चों को रोज छाछ पिलाइएगा, इससे दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है, ठीक है, और दांत का रोग भी नहीं होता है। तो छोटे बच्चों को रोज छाछ पिलाने से दांत आसानी से आते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगला उपाय है दांत निकलने वाले बच्चों के मसूड़ों पर शहद रगड़िए, इससे दांत बिना कष्ट के निकलेंगे। छोटे बच्चों के मसूड़ों पर आप शहद थोड़ा सा घिसिए हल्के हल्के उंगली से, तो इससे भी दांत सहजता से निकलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगला उपाय भी सुन लीजिए, तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला करके मसूड़ों पर लगाइए, इससे थोड़ा सा चटाने से भी दांत बिना कष्ट के निकल आते हैं। तुलसी के पत्तों का चूर्ण अनार के शरबत के साथ देने से भी बच्चों के दांत सरलता से निकलते हैं। तो देखिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, उस नुस्खे को आजमाइएगा। सारे के सारे नहीं आजमा देना है कि उषा दीदी ने इतने सारे सुनाए तो चलो सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सिर्फ एक नुस्खे को फॉलो करना है। तो तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर मसूड़ों पर लगाइए, इससे भी थोड़ा सा मतलब इससे भी सहजता से दांत निकलते हैं। अगर आप चटाएंगे तो भी दांत सहजता से निकलेंगे, ठीक है, और तुलसी के पत्तों का चूर्ण अनार के शरबत के साथ देंगे तो भी बच्चों के दांत सरलता से निकलेंगे। और लास्ट उपाय है दांत निकलने के समय अंगूर का रस 2 चम्मच रोज पिलाते रहिए, इससे दांत शीघ्र निकल आते हैं, बच्चा सुडोल रहता है। स्वाद के लिए चाहे तो आप शहद मिला सकते हैं इसमें, ठीक है, तो अंगूर का रस तो आपको पिलाना ही है बच्चे को, तो इससे क्या है कि दांत सहजता से निकलेंगे और बच्चा भी सुडोल रहेगा। और अगर स्वाद चाहिए तो फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। तो ये हुआ आज के घरेलू उपाय, तो आप आजमा सकते हैं। बच्चों के दांत निकलते हैं, दाढ़े आती है तब काफ़ी समस्या होती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को बुखार आ जाता है, बच्चे रोते रहते हैं, बहुत सारी समस्या आती है। तो इस तरह आप इन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं और सहजता से बच्चों के दांत आ सकते हैं, तकलीफ नहीं होगी उनको। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आज की तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, ठीक है, सातुड़ी तीज के अलावा भी इसके क्या क्या नाम है जो आपको बताना है। सातुड़ी तीज तो है ही है आज, अब इसके और भी क्या क्या नाम है वो आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यही पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे हैं दीदी?
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे काम कर रहे हैं, आप आ गए तो अच्छा हो रहा है। बस कि हम हर रोज रेडियो सुनते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बातें भी अच्छी सुनने का मौका मिलती है और कोई दिक्कत भी नहीं रहती और बस रेडियो सुने काम करे अच्छा है।
0: जी जी जी बिल्कुल। मारी धरती रो रंग निरालो, मारी बोली मीठी गणी, पग पग पे संस्कारारी खुशबू, मारी पहचान ही सबसु गणी। तो राजस्थान री पहचान सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ की त्योहार आज कुछ अलग ही है। ये तीज है जो सिर्फ मेरे ख्याल से राजस्थान में ही मनाई जाते हैं, फिर शायद मध्य प्रदेश में भी मनाई जाते हैं, लेकिन राजस्थान में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे अगर आपको नॉलेज हो तो कि ऐसे मनाते क्या किया जाता है, नहीं तो आप गुजरात का बताइए।
1: हमारे तो दीदी ऐसा है नहीं, गुजरात में तो तीज, लेकिन आज क्या दीदी हमारे यहाँ तीज चौथ दोनों साथ में किया है
0: जी,
1: तो महिलाएं तो ज्यादातर चौथ ही कर दिया है क्योंकि तीज कल सिद्धा नाग पंचमी हो रही है और महिलाओं का दिन आज के दिन दीदी वो बाजरे के रोटे और मूंगी खाते है आज, और कुछ नहीं खाते है।
0: अच्छा।
1: आज कोई हाँ कोई जो गेहूं के आते हैं, गेहूं के कोई चीज नहीं खाते आज,
0: आज के
1: और
0: दिन
1: कोई सब्जी भी नहीं खाते आज के दिन, और कोई सब्जी बस मग और रोटला, बाजरे का रोटला ही खाता है।
0: और व्रत रखती है महिलाएं?
1: हाँ व्रत तो रखती है, आज वो जो जो जो उसकी जो वार्ता आती है वो बुक में आती है तो वो सुनेगी और इस हिसाब से आज व्रत भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: आज बोर चौथ भी हमारे इधर बोला जाता है, उसको बोर चौथ बोलते हैं।
0: बोर चौथ कहते हैं गुजरात में।
1: हाँ,
0: ओके।
1: तो हाँ बोर चौथ बोलते हैं, तो आज हमारे तीज नहीं मनाई जाती, सती चौथ ही मनाई गई है आज।
0: जी जी जी।
1: और कल हमारे यहाँ नाग पंचमी है।
0: अच्छा।
1: तो कल भी नाग देवता की पूजा होगी और नाग देवता का व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे।
0: जी जी जी। नाग पंचमी तो सब तरफ मनाई जाती, राजस्थान में भी मनाई जाती है, लेकिन बोर चौथ राजस्थान में नहीं मनाते।
1: लेकिन हमारे तीज का तो हमको कोई नॉलेज नहीं है आपके राजस्थान का, लेकिन आप बता रहे हैं तो हम सुनते रहते हैं क्योंकि हमारे तो तीज का तो महत्व नहीं होता है, चौथ का महत्व से शुरू होता है हमारे तक।
0: जी जी जी। वो कहते हैं ना चार कोस में पानी बदले आठ कोस में वाणी, तो एक से दूसरे स्टेट, अगर हम एक से दूसरे गाँव जाते तो भी थोड़े से रीति रिवाज में भिन्नता नजर आती है, तो फिर पूरा स्टेट ही चेंज हो गया।
1: लेकिन आपका राजस्थान का त्यौहार तो दीदी बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि हमको पता है कि हमारे कई सारे मित्र राजस्थान के हैं।
0: जी जी।
1: तो
0: जी
1: वो भी बताते हैं कि भी हमारा तो हम भी कभी कभी राजस्थान में आते हैं, गांव जाते हैं तो बहुत एक खुशियां रहती है राजस्थान की महिलाओं को त्यौहारों की।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका,
1: मैंने आपको दे दिया है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और आज राजस्थान में तीज जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं, इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं और हमारी महिलाओं का तो पूछे मत। और आज तो भाई शादी के बाद जिनकी पहली तीज है वो तो फिर पूरे ससुराल वालों के चांदी चांदी है। जैसा कि विचार में भी कहा था कि बेटी के यहाँ बहुत कुछ भेजा जाता है, सातु का पिंडा भेजा जाता है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा शुरुआत से आपको बताती हूँ ताकि आप अच्छी तरह इस त्यौहार को समझ पाएंगे। तो राजस्थान में क्या ये तीज मनाई जाती है, रक्षाबंधन के बाद आने वाली तीज जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार जी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम अच्छे, और आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब अभी दे सकता हूँ?
0: अच्छा ठीक है, दे दीजिए, नहीं तो वो फेर देंगे तो अच्छी बात है।
2: अच्छा,
0: क्योंकि सरल प्रश्न है फिर भी लोगों को पता नहीं आवे नहीं आवे, तो उनको भी तो थोड़े से माइंड का एक्सरसाइज उनका भी होना चाहिए। हाँ और इस त्योहार, हाँ आप अगर कोई त्योहार मनाते हो आज के दिन तो बता सकते हो।
2: आज के दिन तो हमने त्योहार अभी तो कोई बनाया नहीं है, लेकिन आज तो ऐसे तो आप कजरी वो चीज बोलते हैं ना, अपने सातुड़ी थी।
0: हाँ जी।
2: तो उसमें मेरे को तो मालूम है।
0: जी जी जी, तो आप बताइए थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: क्या है कि वो हमें ये चीज को कई कई लोग हैं ना, ये अपने जो रामा पीर का भी व्रत रखते हैं, जो तो अपने जो झाड़ पौधे जो जो भी होते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं आज के दिन।
0: जी जी
2: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी सुन रही हो सुन रही हो।
2: हाँ तो जो पेड़ पौधे भी रहते हैं उसकी भी से ये पूजा पूजा आज के दिन करते हैं। और वही है फिर बाद में मैं वो लेता हूँ नाम उसका।
0: अच्छा ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। तो आप भी प्रश्न का जवाब तो दे सकते हैं। मैं फिर से आज के प्रश्न को दोहरा रही हूँ कि आज के तीज को सातुड़ी तीज तो कहते ही है, इसके अलावा और भी किस किस नाम से जानी जाती है आज की तीज, वो आपको बताना है। और देखिए बात चल रही थी तीज मनाने की, तो ये रक्षाबंधन के बाद जो तीज आती है इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। सातुड़ी तीज क्यों मनाई जाती है वो तो आपने जान ही लिया कि कैसे सेठ जी की परिस्थिति नहीं होती है, फिर भी वो थोड़ा सा पिंडा भी भेजते हैं, लेकिन ज़रूर भेजते हैं। तो आज भी ये परंपरा राजस्थान में पूरी तरह इसको मनाई जा रही है। अभी भी इस परंपरा को जीवित रख रखा है सभी ने, चाहे परिस्थिति कितनी भी हो लेकिन बेटी के कम से कम 1.25 किलो का पिंडा तो भेजते ही है। तो इसमें क्या होता है, सातु बनाया जाता है। सातु 4 प्रकार के होते हैं, मूंग की दाल का बनाया जाता है, मूंग की दाल के मोगर का, चावल का, मैदे का और बेसन का। हेलो
3: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। दयाराम जी बोल रहे
3: मधुबन प्रोग्राम में। मैडम जी अतर सिंह यादव बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा कहाँ से बोल रहे आप?
3: जयपुर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। जी बहुत बहुत स्वागत आपका यादव जी, पहली बार जुड़े हैं आप रेडियो से।
3: रोचक प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने सवाल किया कि सातुड़ी तीज का और दूसरा नाम क्या है
0: जी,
3: और आज किस नाम से आज तीज को बोलते हैं, ये सवाल है। तो इसके उपलक्ष में मैंने फोन किया मैडम जी।
0: हाँ जी तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। आप सुनते हैं रेडियो मधुबन सुनते हैं आप?
3: मैं बहुत सुनता हूँ मैडम जी, लेकिन कभी कभी सवाल का जवाब के लिए कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद आंसर कोई नहीं दे रहा तो मैं दे देता हूँ।
0: क्या बात है, मेरे को तो लग रहा है कि आप पहली बार जुड़े हैं अचानक कार्यक्रम।
3: हाँ मैडम जी, लेकिन मैं श्रोता बहुत पहले से हूँ आपका।
0: अच्छा अरे वाह।
3: मधुबन का मैं श्रोता बहुत पहले से हूँ मैडम जी, लगातार सुनता रहता हूँ।
0: अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो बीच बीच में कभी अपनी आवाज सुना दीजिए जुड़ते रहिए।
3: आपका जो प्रोग्राम है आपकी जैसे मधुर आवाज नहीं है ना मैडम जी हमारी।
0: अरे क्या बात करते हैं आप, इतना मीठा बोल रहे फिर भी बहुत अच्छी आवाज है आपकी।
3: आगे तो आपकी आवाज के आगे तो हमारा क्या है कि बात करने का मन ही नहीं कर रहा। आपको स्टूडियो में लिया है, सिलेक्शन किया किसी ने तो बहुत सोच के ही किया है। आप अनुपम जादू खेल देती हो प्रोग्राम में।
0: ये देखिए आपका बड़प्पन है भाई साहब, बाकी हम तो नॉर्मल है आपकी तरह ही है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं जुड़ सकते। आप जुड़िए, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है, मीठी है जी। तो बता दीजिए आप जवाब देना चाहते दे दीजिए प्रश्न का।
3: कजली तीज भी बोलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा ठीक है
3: जी,
0: बहुत बहुत आभार, जुड़ते रहिएगा आप।
3: और साथ ही आपके एक कार्यक्रम की जो बड़ी प्रशंसा है वो बहुत बड़ी, तो वो मुझे आप जो ये स्वास्थ्य के जो नुक्से टिप्स जो आप बताते हो ये आपके बहुत ही रोचक और फायदेमंद चीज है।
0: अच्छा।
3: इन चीजों को क्या है हमारे पूर्वजों से सुनते थे और लोग अभी भूल गए हैं, आप पुनरावृत्ति कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। आप इन चीजों को हमारे ध्यान से निकल जाती हैं तो इनका बहुत बहुत बड़ा लाभ है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जो मतलब बहुत जरूरी भी है आज के समय।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार। आपको घरेलू नुस्खे अच्छे लगते हैं, कभी आजमाया है क्या आपने कोई नुस्खा?
3: मैडम जी, ये जो आप बताते हैं ये नुस्खे, कभी कभी क्या है घर में प्रॉब्लम, शरीर में बच्चे से प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो पड़ोस में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो पड़ोस तक भी इन नुस्खों का बहुत महत्व है मैडम जी, बताने पे तुरंत फायदा होता है।
0: अच्छा, क्या बात है।
3: और सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब आज के टाइम तो साधन है, पहले साधन नहीं थे
0: जी।
3: और रात के समय बहुत परेशानी का कारण बन जाता था, ऐसे परेशान होता था पेशेंट
0: जी।
3: और आज के समय मतलब उन नुस्खों का फायदा उठा के याद करते हैं, तो अब आपने मधुबन में जो सुनाया तो उसके बाद में हमने देखा मैडम जी, तो बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे नुस्खे और बहुत अच्छे ढंग से बताते हो, मतलब पहले की भूल गए हम, ये पुनरावृत्ति होती है तो बहुत बहुत अच्छा मतलब याद हो जाता है।
0: जी जी जी, यादव जी आप क्या काम करते हैं?
3: मैं मैडम जी पहले आर्मी में था, फिर आर्मी से सेवानिवृत्त होकर के और मैं जयपुर में सिक्योरिटी का काम किया, फिर सिक्योरिटी के बाद में मुझे ठाकुर जी ने, राधा किशन जी ने मुझे अपनी सेवा में ले लिया, तो इन्होंने मुझे सेवा में 50 साल और एक दिन पे मेरी राजस्थान सरकार की तरफ से नियुक्ति आ गई।
0: अच्छा,
3: तो
0: क्या बात है।
3: मैं राधा किशन जी का अभी गुजारी हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर
3: जी।
0: जी, अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े हैं इसके लिए।
3: और आप जो धार्मिक गाने पेश करते रहते हैं उनमें तो बहुत ही रंग भर जाता है।
0: थैंक यू
3: जी मैडम
0: जी,
3: बहुत ही रोचक प्रोग्राम लगता है मुझे
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम पसंद आता है, हमें भी खुशी हुई, बहुत बहुत आभार
3: मैडम जी।
0: हाँ जी, तो ये थे यादव जी जयपुर से, और बात चल रही थी सातुड़ी तीज की। सातुड़ी तीज को धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसमें आपको बता रही थी कि इस तरह 4 प्रकार के सातु बनाया जाता है, वो भी कब बनाया जाता है, जब बेटी की शादी के बाद पहली तीज आती है तब। बाद में तो 2 प्रकार के ज़्यादा बनता है, मैदे का और बेसन का, लेकिन बेटी की शादी होती है, शादी के बाद पहली तीज आती है, तब ये 4 प्रकार के सातु बनाया जाता है, जिसमें मूंग की दाल का सातु जमाई राज के लिए बनाया जाता है, उनके लिए डिब्बे में अलग से भरा जाता है। फिर चावल का सातु बनाया जाता है, चावल के लोट का, वो सासू माँ के लिए बनाया जाता है, वो अलग डिब्बे में भरा जाता है, ठीक है। मैदे का सातु बनाया जाता है, वो आप कोई भी खा सकते हैं। और चने का सातु, ये तो पिंडा इसका ही बनाया जाता है, चने के सातु का, और 21 पिंडा, इसके 21 पिंडे बांधे जाते हैं, 21वां बड़ा होता है जो स्टील का बड़े कोठी होती है उसमें भरा जाता है, भले बड़ा डिब्बा होता है उसमें भरा जाता है, बाकी छोटे छोटे डिब्बे लाते हैं 20, और उसके अंदर सातू बना करके सातू के लड्डू रखेंगे। एक लड्डू का वजन कम से कम 250-300 ग्राम का होता है, तब उसको परफेक्ट सातू कहा जाता है। और उसके अंदर चांदी की घुघरी या कुछ भी चांदी का, आपका कोई भी चीज़ टूट गई हो उसमें से थोड़ा तोड़ तोड़ के भी आप रख सकते हो, छोटे छोटे से पीस, तो वो रखा जाता है। पहले के समय में 1-1 का सिक्का रखते थे, अभी 5-5 का सिक्का लड्डू के ऊपर ही चिपका दिया जाता है, ठीक है। और साबुत मूंग अंदर रखा जाता है, सोपारी रखी जाती है, और एक जो माता रानी की चुनरिया होती है छोटी छोटी, उससे उस डिब्बे को बांधा जाता है, उस डिब्बे को पैक किया जाता है, और वो 20 सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। 21वां खुद बेटी के लिए भेजा जाता है, जो वो बेटी उसको 21वां पिंडा जो होता है सबसे बड़ा, उसको फिर सातुड़ी तीज जो आज है, आज के दिन चंद्र दर्शन के समय उसको काटते हैं, पहले चाकू से कट लगाते हैं, उसके बाद पतिदेव अपनी पत्नी को खिलाते हैं, उसके बाद फिर वो सत्तू कोई भी खा सकता है। तो इस तरह सत्तू का रिवाज है, और पहली तीज है तो सभी के कपड़े वगैरह, परिवार में जितने भी सदस्य है सभी के कपड़े रखे जाते हैं। कहते हैं ना कि पहली सातुड़ी तीज आती है बहुत खर्चा हो जाता है मायके वालों का, लेकिन दिल से करते प्यार से करते, जैसे पहले ही बताया था आपको इंट्रो में विचार में, कि श्रद्धा और प्रेम से जो रखा जाए तो सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, कम होता है तो कम भी रखते हैं, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा भी रखते हैं। लेकिन आजकल तो क्या है, पहले थोड़े से ताने वगैरह बहुओं को दिया जाता था, देखो क्या आया तुम्हारे पियर से, आजकल ये ताने बाने बंद हो गए, जानते हैं कि भाई परिस्थिति नहीं है पियर वालों की, तो थोड़ा आया है लेकिन रखते ज़रूर है। परिस्थिति ज़्यादा है तो मांड चुन करके बहुत कुछ रखा जाता है। और भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनने के बाद सातुड़ी तीज की और भी आपको जानकारी दूंगी। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: सुप्रभात।
1: बहुत अच्छे हैं, दुकान पे है आप तो सुन रहे हैं आशियाना कार्यक्रम।
0: जी जी जी।
1: और बात कर रहे थे त्योहारों की, आज सातुड़ी तीज की बात।
0: हाँ जी
1: है, तो हमारे गुजरात में तो बहन जी ये नहीं मनाते सातुड़ी तीज तो, लेकिन सुबह में मेरे घर से और सुबह की बहू बोलते थे कि भाई बोर्ड चौथ आज है
0: जी,
1: चौथ मनाते हैं
0: जी,
1: तो ये बोलते थे कोई ये करना पड़ेगा ये सब विधि की बात कर रहे थे
0: जी।
1: मैंने बोला कि जो कुछ लाना हो तो बोलो तो ला दे
0: जी।
1: तो हमारा गुजरात में बोर्ड चौथ का महत्व है, कोई कोई मनाते होंगे, लेकिन हमें हमारे गांव में तो ये आज मनाते हैं बोर्ड चौथ बोलते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: ठीक है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: कल नागपंचमी, आज चौथ मनाएंगे तो कल नागपंचमी।
0: जी जी जी, तीज चौथ इकट्ठी है।
1: राधन सप्तम आठम ये सब हमारे श्रावण मास में आएंगे अब अभी।
0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, नमस्कार। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। कहते हैं मारी धरती रो रंग निरालो। चलिए हमारे श्रोता बंधु से पहले बात करेंगे, जिनका फोन कट रहा है वो फिर से लगा सकते हैं। माथे बोरला हाथा में चूड़ा लाल चुनरिया लहराए, मारी राजस्थान री छोरी देखे तो चांद भी शरमाए। आप सभी को पुनः बड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में हम सातुड़ी तीज मना रहे हैं। सातुड़ी तीज कैसे मनाई जाती है वो आप सभी जान रहे हैं, किस तरह की परंपरा है, कैसे रस्म रिवाज निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो इसमें आपको बता रहे थे कि इस तरह सत्तू चार प्रकार के बना करके रखा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बनाया जाता है चने का। कोई 21 किलो का पिंडा रखते हैं, कोई 11 किलो का, कोई 5 किलो का, कोई 51 किलो का। अभी कल किसी का फ़ोन आया तो बोले 51 किलो का पिंडा रख रहे हैं, मतलब पिंडा जो बड़ी, आपको बताया ना 21 पिंडे बनाए जाते हैं। इस तरह कैसे बनाया जाता है वो भी आपने जाना है। तो क्वांटिटी में बेसन का ही सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, बाकी मूंग की दाल का ठीक है, किसी को पसंद हो तो थोड़े से दो चार लड्डू ज़्यादा बना दिया जाता है, बाकी सवा किलो का बनाया जाता है, सवा किलो का ही चावल का बनाया जाता है। मैदे का ठीक है 2-3 किलो का 4 किलो का बनाया जाता है, और बाकी जो क्वांटिटी होती है वो टोटल सातू इसका बेसन का बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उषा दीदी बार बार सातू का नाम ले रहे, लेकिन कैसा होता है वो मैं आपको रेसिपी में सिखाऊंगी, ठीक है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, ओम शांति हमारी प्यारी बहन उषा जी।
0: हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है। सभी मेरे प्यारे मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो फोन करके अपनी जो बात रख रही है, इन सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। और दीदी आप आए स्टूडियो में तो और भी अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। वैसे तो मैं किसान हूँ, तो अभी बाजरे में पानी भी लगा रहा हूँ।
0: अच्छा, दोनों ही काम कर रहे हैं। साथ
2: इसके साथ साथ रेडियो मधुबन एप्लीकेशन के माध्यम से रेडियो भी सुन रहा हूँ, मेरी जेब में, लेकिन फुहारे भी लगा रहा हूँ, पानी घुमा रहा हूँ।
0: जी जी जी।
2: और तन मन से रेडियो भी सुन रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और आज का दीदी विषय
0: जी, आज सातुड़ी तीज मना रहे हैं, तो कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है, आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, बताएंगे?
2: जी जी, मनाते थे, लेकिन पहले तो बहुत सारे जो हमारे जो माताएं थी, हमारे जो सासू माँ थी, तो वो इस सातुड़ी तीज को अपनी बहू को इकट्ठी करके बिठा के फिर सातुड़ी तीज की जो कहानी आती थी वो सुनाती थी, बहुत अच्छी कहानी। और फिर जो सात पेंडे बनाती है तो उसका गणपति भगवान को भोग लगाती है और भगवान शिव को भोग लगाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और आजकल तो नए जमाने की नई दूल्हे नई नई जमाने की जनरेशन है, तो इसमें ज्यादा विश्वास नहीं रख रही है दीदी
0: जी।
2: और जो पुराने वाली है महिला, जो हमारी दादी है, हमारे सासू माँ है, हमारी बहन है, बुआ है, वो भी अभी तक अपना ये जो कहानियां उनको भी आती है वो सुना

0: के और नाम है कजली तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज और भाद्रपद तीज। नमस्कार ओम शांति।
1: ठीक है, बहुत बहुत आभार दयाराम जी आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से। और तीज की बात चल रही थी, देखिए तीज आती है उसके एक दिन पहले बीज होती है। बीज के दिन दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है,

तो नींबू लिया जाता है और फिर जो दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है वो थोड़ा सा खाया जाता है। उसके बाद पान खा करके महिलाएं, मतलब पहले ऐसा रिवाज था, आज तो महिलाएं उठती भी नहीं है, कहीं कहीं पर उठती है, कहीं कहीं पर नहीं उठती है, उठ करके खा पी के वापस सो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, सभी महिलाएं अगर नहीं उठते थे तो एक दूसरे को उठाने जाते थे कि भाई उठो उठो, अधरते का टाइम हो गया, तो 2:30-3 बजे सभी उठ जाते थे। उठ करके एक बार तो फटाफट अपने अपने घर में थोड़ा बहुत खा लेते थे, पूछ लेते थे अड़ोस पड़ोस में, भाई आपके दाल बाटी चूरमा बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा तो हमारे रखा है, हम आपको दे देवे। ऐसे हिल मिल करके एक दूसरे का सहयोग दे करके चलते थे। और फिर उसके बाद झूला झूलने चली जाती थी महिलाएं, नीम के ढाल पर झूले हर मोहल्ले में होते थे और हर मोहल्ले में नीम का पेड़ तो होता ही था, तो झूले का आनंद लेते। फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके महिलाएं भजन कीर्तन करते थे। अब आज तो ये थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, आजकल महिलाएं क्या है, समिति, जो अपने अपने समाज के समिति होती है वहाँ महिलाएं जाकर के आनंद पूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। और महिलाएं जैसे झूला, तो भाई आजकल तो झूला तो बढ़ ही गए, हर गार्डन में झूला होता है ना, तो गार्डन में जाती है महिलाएं, घरों में भी झूले होते हैं आजकल, तो वो गुजराती झूला जिसको कहते हैं ना, वो पाटिया लगा करके आजू बाजू वो साकले बंधी हुई होती है, रस्सी वाले झूले देखने को कम मिलते हैं अभी, वो झूले ज़्यादा है। खैर फिर भी झूला झूलती है महिलाएं, ठीक है, और सुबह जल्दी उठ जाती है। उसके बाद सुबह जो 3 बजे 2:30 बजे खाया वो खाया, उसके बाद पूरे दिन उपवास रखेगी महिलाएं, ठीक है, भले देव दर्शन जाएगी, अच्छा पहन ओढ़ करके मंदिर, बड़ों के पाँव छूने आशीर्वाद लेने जाएंगे, लेकिन खाएगी कुछ नहीं। बहुत सारी महिला आज के दिन पानी भी नहीं पीती है, लेकिन देखिए समय के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही है, जितने साधन बढ़ रहे उतनी बीमारियां बढ़ रही है, किसके क्या तकलीफ, इसके क्या तकलीफ है। तो मैं तो कहती हूँ कि हट योग नहीं करना है, जिद नहीं करनी है कि मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, डायबिटीज़ है कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए जैसा शरीर माने वैसे रहिए, मन अच्छा रखिए, निर्मल रखिए, स्वच्छ रखिए, ठीक है। तो इस तरह उपवास किया जाता है पूरे दिन। फिर शाम के समय, संध्या के समय में पूजा होती है, महिलाएं सब अच्छे जूते, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गहने घाटे पहन करके महिलाएं इकट्ठी होती है, फिर शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। इसमें माता रानी की पूजा ज़्यादा होती है, खाली कहानी में शिव जी का नाम आता है, बाकी माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद देखे फिर एक दिन पहले सब मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, राजस्थान में ये अच्छा रिवाज है, कोई भी त्यौहार आता है उसके 1-2 दिन पहले मेहंदी ज़रूर लगाएंगे सभी, दोनों हाथ दोनों पैरों के, छोटी बच्चियाँ होगी तो उनके भी मेहंदी लगाएंगे, ये भी बहुत अच्छी परंपरा है। तो संध्या समय में सभी पूजा करेंगे, पूजा करके फिर कहानी कहेंगे, कहानी कह करके चंद्रमा को अर्घ देंगे, ठीक है, चंद्र की भी पूजा होती है। और अर्घ देने के बाद फिर जब चंद्र दर्शन कहते हैं ना कि उस समय अर्घ तो दे दिया जाता है, चंद्र दर्शन होता है, तब महिलाएं चंद्र दर्शन करती है, फिर से चंद्र को धूप दी जाती है, उसके बाद भोजन किया जाता है, उस समय पिंडा को पासते हैं, ठीक है। तो पिंडा को पासते बोले तो सबसे पहले पिंडा खोलते हैं, पिंडा खोल करके दूध, कच्चा दूध लेके आते हैं, गर्म किया हुआ नहीं, कच्चा दूध होता है और ये सत्तू होता है बेसन का, ठीक है। तो ये हर एक के अलग अलग डिब्बों में पैक होता है, तो अपना अपना पिंडा हस्बैंड खोलेंगे और खोल करके वो चम्मच से या चाकू से उसको बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे बोले तो उसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे लड्डू को, फिर वो अपने

से अपने पत्नी को खिलाते हैं, और संयुक्त परिवार है तो अपने हाथ से भी नहीं खिलाते। पहले तो बहुत मर्यादा रहती थी, खाली वो बड़ा करके चले जाते थे, फिर महिला खुद ही खा लेती थी। एकल परिवार बड़े हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पति खिला रहा है अच्छी बात है। मैं तो कहूँ सभी के अंदर प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे और सभी प्यार से रहे, तो उसके बाद फिर भोजन करते हैं। पतिदेव को तो पहले ही खाना खिला दिया जाता है, इसमें व्रत नहीं करते पतिदेव, सिर्फ महिलाएं व्रत करती है। तो फिर वो अगर देना होता है तो सास को जेठानी को सग दी जाती है। सग बोले तो एक बड़ा सा लड्डू एक अलग डिब्बे में रखा जाता है, ऊपर ब्लाउज पीस और 101 रुपये 51 रुपये सामर्थ्य अनुसार रख करके संकल्प ले करके फिर बड़ों को दिया जाता है। उसके बाद वो पिंडा पास करके खाते हैं, ठीक है। और बहुत जने तो खाली बस कच्चा दूध और सत्तू ही खाते हैं। और समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, पहले ऐसा तो होता था, अभी तो महिलाएं पहले मुंह सत्तू ले लेती उसके बाद भोजन करती है। जो भोजन में खाना हो खाओ, फिर आप नमकीन पकोड़े गुलाब जामुन वगैरह वगैरह जो भी आप बनाना चाहो बना करके खा सकते हो, तो सब बना करके रख दिया जाता है, क्योंकि भाई पूरे दिन के भूखे प्यासे है तो अब रात को तो नहीं बनाएंगे ना, इसलिए शाम को ही बना दिया जाता है। जब पुरुष लोग बच्चे लोग खाना खा लेते हैं फिर उनका ढक के रख देते हैं, फिर इस तरह चंद्र दर्शन करने के बाद सभी भोजन करते हैं। और ये त्यौहार भी पाँचम तक चलता है, पाँचम को फिर बेटी को विदा किया जाता है। और यथा योग्य जो भी माता पिता, देखो बच्चों को कभी बेटियों को खाली हाथ तो भेजते नहीं रक्षाबंधन पर, पहले तो महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना बेटियां रहती थी, लेकिन अब तो समय का अभाव है सभी के पास, इसलिए कम से कम अगर रुकने का टाइम नहीं है लेकिन शादी के बाद जो फर्स्ट तीज आती है तो कम से कम रक्षाबंधन पर आती है बेटियां, तो पांचम के दिन ही उनको भेजते हैं। इतने से दिन तो उनको रुकना ही पड़ता है क्योंकि पहली तीज है और माता पिता की भी चाहना रहती है, और ऐसा रिवाज भी है राजस्थान में। नहीं तो ससुराल वाले भी कहेंगे बहुत जल्दी आ गई, भले जॉब करती हो उस समय छुट्टियां दिलाते हैं कि भाई 5 दिन 8 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ेगी, और इस तरह इसी बहाने चलो बेटियां थोड़े मायके में रुक जाती है, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब तो इसका विस्तार तो करो उतना ही कम है, शॉर्ट रूप में आपको बताया है कि इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है। फिर महिलाएं तो देखे जैसे सुबह के समय भजन कीर्तन गाती है, अब ये शाम को फिर महिलाएं जैसे एक दूसरे के या आना जाना गीत जो तीज त्योहार के गीत है, पुरानी महिलाएं गाती थी, आज की जनरेशन चेंज हो चुकी है तो वो समिति में सब इकट्ठे हो जाते, फिर वहाँ पर संगीत और डांस का प्रोग्राम रखते हैं, तो वो अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि घर पर मनाएंगे, घर पर हम गाएंगे तो कितनी मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठी होगी, लेकिन समाज में होंगे तो आप पूरे समाज की महिला इकट्ठी हो जाती है तो और भी रौनक आ जाती है, और भी त्योहारों पर चार चांद लग जाते हैं जब सब मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस तरह सातुड़ी तीज मनाई जाती है। पुनः आप सभी को सातुड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का प्रश्न है, सातुड़ी तीज के अलावा आज की तीज को और किस किस नाम से जाना जाता है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज आपको सिखा देते हैं सातू बनाना। वैसे सातू पहले भी सिखाया था, फिर भी देखिए नए नए श्रोता भी जुड़ते हैं और कोई लिखते नहीं है तो भूल भी जाते हैं, तो चलिए फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। और अच्छी तरह याद करिएगा और ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है सातू। तो बेसन का सातू सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको यही सिखा रही हूँ। बेसन ले लीजिए, ठीक है, बहुत बारीक वाला नहीं लेना है, बहुत मोटा वाला भी नहीं, बहुत बारीक वाला भी नहीं, मीडियम बेसन लेना है आपको, ठीक है। और बेसन को छान लीजिए, छानने के बाद अब आप दूध और घी गरम करिएगा, ठीक है। दूध गरम करिए क्वांटिटी के अनुसार, कितना आपने लिया है आटा उस अनुसार आप ले लीजिए। ज़्यादा भी हो गया गरम तो कोई बात नहीं, उस पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं। तो दूध में थोड़ा सा घी डाल करके गरम कर दीजिए। और अब ये जो आपने सातू के लिए आटा छाना है, बेसन छाना है, उसमें ये दूध की धार चारों तरफ डाल दीजिए और दोनों हाथों से ऐसे आप ऊपर नीचे करिए कि सभी में ये दूध और घी लग जाना चाहिए। और ज़्यादा भी नहीं डालना है, रखना है आपको थोड़ा सा सूखा सूखा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है और बिल्कुल गीला भी नहीं करना है। दोनों हाथों से आप ऊपर नीचे करके फिर इनको दबा करके 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब आप गेहूं का छलना लीजिए, दूसरे बड़े बर्तन में, दो चौड़े बर्तन में अब ये बेसन ले करके आप छानिए, छानना है, क्योंकि अब ये जो आपने दूध और घी का मकरोवा दिया ना, तो ये थोड़े से डगले की तरह हो जाएंगे, घाटे बन जाएगी इनकी, तो आप छानिएगा, दबा के भी आप छान सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं के छलने से छानना है, उसके बाद आप धीमी आंच पर कढ़ाई में इसको सेकिए। सेकने का ही टाइम लगता है, मेहनत इसी में है, सातू ऐसे नहीं बनता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत इसमें सेकने की मेहनत करनी पड़ती है। तो आप धीमी आँच पर इसको सेकिए, जब सोनी सोनी खुशबू आने लगे, वो देखिए कच्चापन होगा उसकी खुशबू अलग होगी, जब सिकते है चीज़ तो उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। तो अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि सातू आपका सिक गया। फिर भी देखिए पहले के लोग कैसे टेस्ट करते थे, थोड़ा सा सातू ले लेते थे, उसमें घी शक्कर डाल करके थोड़ा सा टेस्ट करते थे, फिर बोलते थे फूफा जी मान लो वो उड़ा, मुँह से उड़ा सातू, तो कहते कि अरे भाई घी कम है, हल्का सा कच्चापन है। तो इस तरह टेस्ट करते थे, मज़ा आता था, एक एंजॉय वाली बात कही है, बाकी तो आप कच्चेपन और सिक जाता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है, खुशबू चेंज हो जाती है, वो पता चल जाता है, ठीक है। सेक लीजिए, सेकने के बाद फिर आप चावल वाले छलने से इसको छानिए, पहले गेहूं के छलने से छाना, अब चावल के छलने से इसको छानिए। छानने के बाद जो ऊपर वो डगले डगले होते हैं उनको आप मिक्सर में पीस करके फिर से इसको सेकिएगा। सेक करके अब इस जो सभी आपने छाना है उसमें डाल सकते हैं, फिर शक्कर पीसिएगा, पीसी हुई शक्कर डालिए और घी डाल दीजिए, घी इसमें अच्छा चाहिए, अच्छी तरह डाल करके फिर इसको हिला करके आप लड्डू बनाना चाहे तो लड्डू बनाइए, डिब्बे में ऐसे कैसे जमाना चाहे तो डिब्बा लीजिए, डिब्बे में आप डालिए ये बेसन सिका हुआ पूरा सत्तू डाल करके अच्छी तरह हाथ से दबा दीजिए, थोड़ा सा थप थप करेंगे एक जैसा सेप हो जाएगा, फिर हाथ से या कटोरी से पीछे से आप दबा दीजिए। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करना हो तो आप ड्राई फ्रूट में बादाम काजू ले लीजिए और इससे ऊपर हल्का हल्का सा चिपका दीजिए, डेकोरेट हो जाएगा, जो डिजाइन डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो इस तरह सत्तू बनाया जाता है, लड्डू पसंद करते तो लड्डू बनाइएगा, ठीक है। बस ये कहने में टाइम नहीं लगता है, बताने में रेसिपी, लेकिन बनाते तब उस समय बहुत टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। तो अच्छा सेक करके खाइएगा, टेस्टी भी लगेगा और इस तरह सातू बनाया जाता है। तो जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, भोग लगाने के बाद ही भोजन को करना है, ठीक है। तो ये बन गया सातू और आइए फिर से ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम था, आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं बच्चों के दांत आने के, कि कैसे दांत आए तो आप पहले से क्या करेंगे कि सहजता से बच्चों के दांत निकले। फिर आज सातुड़ी तीज भी हमने धूमधाम से मनाया है, जानकारी आप सभी को मिली है, और सातू बनाना भी आपको सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। अगर आपसे कहीं भूल हो जाए या आपको और भी कुछ जानना होता है, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि आज को सातुड़ी तीज तो कहते ही है, इसके अलावा इस तीज का और क्या क्या नाम है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, उन्होंने नाम बताया है। पहले मैं सुनाना चाहूँगी, आज के सातुड़ी तीज के अलग अलग नाम है, कजरी तीज, बड़ी तीज और निमड़ी तीज। कजरी तीज अलग है, फिर कजली तीज, ठीक है, और बुढ़ी तीज भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अलग अलग नाम है, तो थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देती हूँ। कजरी तीज, इसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसमें कजली गीतों का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसको कजरी तीज कहते हैं। बड़ी तीज, राजस्थान और अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज की तुलना में बड़ी तीज कहा जाता है, तो हरियाली तीज भी कहते हैं। आज के दिन को भादुड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज, ये नाम बरसात और कजली वन की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कजली तीज कहते हैं। बुढ़ी तीज क्या है, कई जगहों पर बुजुर्ग इसे बुढ़ी तीज के नाम से भी याद करते हैं। और निमड़ी तीज का मतलब है, इस दिन माता पार्वती के प्रतीक रूप में नीम की टहनी की भी पूजा की जाती है, इसलिए इसे निमड़ी तीज भी कहते हैं। तो जिन्होंने ये सारे नाम बताए हैं, उन सब के लिए पहले तो ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी।

तो जुड़े हैं हमारे श्रोता बंधुओं में सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपका सही जवाब है, सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी सही जवाब दिया है, फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी सही जवाब दिया, किसी ने एक नाम बताया, किसी ने दो नाम बताया, किसी ने पूरा भी बताया, यादव जी जयपुर से, आपका भी सही जवाब है, कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी रामपुरा से, शुभा जी चित्तौड़गढ़ से, हेमा जी कप्पासन से, प्रेम जी प्रेम घोड़ उदयपुर से, राधेश्याम जी चित्तौड़गढ़ से, अलका जी कप्पासन से, आप सभी का सही जवाब है। इसके लिए पुनः आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी विषय में भी जुड़े हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और आज का मीठा मोती है, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अब मैं आपको आज एक सौगात देना चाहूँगी, फिर से आज बहुत ही सुंदर तीज पर गीत बनाया है, तो हमारे भाइयों को और विशेष करके सभी बहनों के लिए आज की सौगात गीत के रूप में, तो आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। घूमर घूमे ढोल नगाड़ा बाजे तीजरी आई बहार, घूमर घूमे ढोल नगाड़ा बाजे तीजरी आई बहार, मारी राजस्थान री आन मान पे, मारी राजस्थान री आन मान पे, सो बार करूं मैं प्रणाम, सो बार करूं मैं प्रणाम। सातुड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे, सातुड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात

लेरिया ओड चली रे सातूड़ी तीज आई रे सातूड़ी तीज आई रे खुशियों की सौगात लाई रे।

हरियाली ओढ़ी झूला पड़ा नीम की डाल, सातुड़ी तीज आई रे, सातुड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे।

दूजा मन में श्रद्धा भाव अनोखा सखिया के संग चली रे सातूड़ी तीज आई रे सातूड़ी तीज आई रे खुशियों की सो

हमारी हर मन खुशिया सुछल के सातूड़ी तीज आई रे सातूड़ी तीज आई रे खुशियों की सौगात लाई रे।

0: जाए, पिया संग झूला झूले, सातूड़ी तीज आई रे, सातूड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे, सातूड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे।
1: ये ले बहू, इसे पी जा।
2: ये क्या है माँ जी?
1: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
2: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
1: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
1: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
2: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
2: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।

0: ये आजादी के सुनहरे सवेरे से पहले गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी के बजाय एक कानूनी अंधेरा लेकर आती थी। धरती की मांग स्वार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, फसल जवान होती, मगर इस पर किसान का कोई हक ना होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई जालिम सरकार की। ऐसा होने से भूख और त्राहिमान बढ़ने लगा। हुकूमत चाहती भी यही थी कि किसानों के देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया जाए। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा में आज आप सुनेंगे देश के इतिहास का एक और अध्याय जो जुड़ा हुआ है मातृभूमि की नींव से। आज हम सुनेंगे उस शख्स की कहानी जो देश पे जान लुटाने वाला और देश का सच्चा भक्त है, भगत सिंह की कहानी, जिनके पास बन्नो भी पहुंच चुकी है। तो आइए सुनते हैं देश के युवा क्रांतिकारी की कहानी।
1: चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगत सिंह जी कहाँ मिलेंगे?
2: बेटा, भगत जी तो अभी अपने साथी सुखदेव के घर पर रुके हुए हैं। तुम आगे आ गई हो, इसके पहले वाली गली में है उनका घर।
1: अच्छा चाचा, धन्यवाद।
2: हाँ, ठीक है।
1: कोई है?
3: हाँ जी, कौन?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे भगत सिंह जी से मिलना है।
3: आप कौन जी, और मुझसे क्यों मिलना?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे सब प्यार से पुचकी बुलाते हैं। मुझे गांधी दादू ने भेजा है आपके पास कहानी सुनने के लिए।
3: कहानी? कैसी कहानी?
1: अरे बाबा, आपकी कहानी, देश के स्वाधीनता की कहानी।
3: अच्छा, ठीक है, पहले तुम अंदर आओ। एक बात बताओ बन्नो, तुम इस सदी की तो नहीं लगती, फिर कहां से आई हो?
1: मैं 21वीं सदी से आई हूँ और स्वाधीनता की कहानी सुनना चाहती हूँ आपसे।
3: अच्छा ठीक है, चलो। तुमको उस दौर में ले चलता हूँ जहाँ इंकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये हमारे दिल की धड़कन थी। 8 अप्रैल 1929 का दिन, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके भारतीय समर्थक एक के बाद एक दमनकारी कानूनों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये कानून हमारी आवाज को कुचलने और मजदूरों के संघर्ष को रोकने के लिए लाए गए थे।
1: फिर आपने क्या किया? कैसे आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई?
3: हमारा संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम जानते थे कि यह सरकार जनता की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, उसे केवल अपनी सत्ता की भूख और दमनकारी नीतियों से मतलब है। हमने बहुत सोचा और फिर तय किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इन बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचा सके।
1: वो कैसे किया? बम फेंक कर? उनके कान के ताले तोड़े थे क्या?
3: हाँ, बम।
1: लेकिन उससे तो लोग जख्मी हो जाएंगे ना?
3: नहीं, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना था जो जानबूझकर बहरे बने हुए थे। हमने बमों को इस तरह से बनाया था कि उनसे जान का खतरा कम से कम हो। वो धुआं और शोर पैदा करने वाले थे ताकि पूरा सदन हमारे मकसद को नजरअंदाज ना कर सके।
1: बाप रे, ये सब आपने अकेले किया?
3: अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा साथी बटुकेश्वर दत्त था। हम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। हमने सोच लिया था कि हम भागेंगे नहीं बल्कि गिरफ्तार होंगे ताकि अपनी बात को अदालत के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके। असेंबली में उस वक्त अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, हमने योजना के मुताबिक कार्यवाही शुरू कर दी। पहले बम का धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर भागने लगे। कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी मच गई। फिर बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। बम फेंकने के बाद हमने अपनी जगह से खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया,
4: इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
3: इसके बाद हमने हवा में लाल रंग के पर्चे फेंके।
1: क्या लिखा था उस पर्चे पे?
3: उन पर्चों पर हमने लिखा था, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। हमने साफ साफ लिखा था कि हमारा मकसद किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है। जब पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई तो हमने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने वो संदेश दे दिया था जिसे यह बहरी सरकार कभी सुनना नहीं चाहती थी। हम जानते थे कि हमें सजा मिलेगी, लेकिन यह सजा हमारे लिए गर्व की बात होगी।
1: लेकिन आप दुनिया को क्या बताना चाहते थे?
3: हम दुनिया को बताना चाहते थे कि क्रांतिकारी सिर्फ गोली नहीं चलाते, बल्कि वो विचारों की क्रांति भी करते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति के प्रतीक मात्र हैं। असली क्रांति तो विचारों की दुनिया में होती है, और हमारी क्रांति की आवाज दिल्ली की उस असेंबली से निकलकर पूरे देश में गूंज चुकी थी।
4: इंकलाब जिंदाबाद!
1: वाह, क्या बात है, आपने तो असंभव को संभव कर दिया।
3: चल बन्नो, तुझे मैं एक और कहानी सुनाता हूँ।
1: एक और कहानी?
3: हाँ, सुनोगे?
1: क्यों नहीं, जरूर सुनाइए सुनाइए।
3: ये कहानी है हमारे लाला जी की, लाला लाजपत राय की। लाला जी, हम उन्हें पंजाब केसरी कहते थे। उनकी एक आवाज पर पंजाब का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता था। 30 अक्टूबर 1928 का दिन, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हम लाहौर में इकट्ठे हुए थे। उस दिन सड़कों पर एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी। हम सभी अपनी आवाजों को एक साथ बुलंद कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। उनका एक अधिकारी स्कॉट, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, और उस लाठी चार्ज में लाला जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने देखा नहीं था कि कौन मार रहा था, बस इतना कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उनका यह बयान उनकी अंतिम इच्छा बन गया। एक महीने बाद 17 नवंबर को लाला जी हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय अपमान था, एक चुनौती थी जिसे हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया।
1: फिर क्या किया आपने?
3: मेरे खून में उबाल था। हमारी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथी भी खामोश नहीं बैठ सकते थे। हमने तय किया कि इस अपमान का बदला लेना होगा। जिस अधिकारी ने हमारे लाला जी की हत्या करवाई थी ना, उसे सजा देनी होगी। हमारा प्लान बना।
1: कैसा प्लान?
3: सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और मैं। 17 दिसंबर का दिन तय हुआ। हमें जानकारी मिली कि अधिकारी पुलिस मुख्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर आएगा। हम इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त जय गोपाल ने इशारा किया, स्कॉट आ गया है। राजगुरु ने निशाना साधा, मैं भी तैयार था। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार पास आया, राजगुरु ने गोली चलाई, वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागा और पास जाकर अपनी पिस्तौल की 3 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। फिर हम वहां से निकल गए। अगले दिन पूरे लाहौर में दीवारों पर एक पर्चा चिपका दिया गया था, जिस पर लिखा था, जेपी सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। हम जानते थे कि हमने स्कॉट की बजाय एक दूसरे अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया था। ये गलती थी, पर हमारा मकसद साफ था। हमने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, हमने तो उस ब्रिटिश सरकार के अहंकार को मारा था जिसने लाला जी जैसे महान नेता की जान ली थी। सैंडर्स तो बस उस क्रूरता का प्रतीक था।
1: तो आपने ऐसे बदला लिया?
3: ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था बन्नो, ये उन लाखों भारतीयों के लिए एक आवाज थी जो मानते थे कि अहिंसा की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये क्रांति की ज्वाला को और भी तेज से जलाने का एक कदम था। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी युवक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना थी पर इसका असर बहुत बड़ा था। इसने भारत के नौजवानों में एक नई आग भर दी थी और मुझे पता था कि यही आग एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य को राख कर देगी। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम। कितनी रोमांच से भरी घटना थी। मन कर रहा है और भी कई किस्से सुनूं, मगर अभी मुझे जाना होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे।
3: हाँ जी, ध्यान से जाना। हाँ।

0: अरे बन्नू, किधर चल दी?
1: अरे दीदी आप, मैं तो भगत सिंह जी से मिलने आई थी, आप ही के टाइम मशीन से।
0: अच्छा, क्या कहा उन्होंने?
1: उन्होंने बहुत सारी रोमांचक कहानियां सुनाई। और पता है दीदी, उनकी कहानियों को सुनकर मुझे भारत माँ के लिए की गई संघर्षों के बारे में जानने का और भी उत्साह बढ़ गया है। मगर मुझे उनसे उनके बारे में और भी चीजें पूछनी थी, मगर भूल गई।
0: बन्नो, तुमको पता है भगत सिंह देश के ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिनसे ब्रिटिश भी डरते थे, इसीलिए तो चालाकी से और छल से उन्होंने उनको फांसी का दंड दे दिया।
1: फांसी? पूरी कहानी बताओ ना दीदी।
0: पहले चलो 21वीं सदी में वापस चलते हैं, जाते जाते मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगी।
1: हाँ दीदी चलो।
2: और यही रुकती है आज की कहानी। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नारे में बदल जाती हैं। आज आपने भगत सिंह और उनके साथियों की गाथा सुनी, हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लेने का साहस और मौत से पहले होठों पर वही एक पुकार, वंदे मातरम। सोचिए, जिस क्षण किसी माँ ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा होगा, उसके दिल में आंसू नहीं, यही नारा गूंजा होगा। जिस पल किसी युवक ने जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी आखिरी सांस ली होगी, उस सांस में डर नहीं, मातृभूमि का नाम होगा। वंदे मातरम एक गीत नहीं था, ये वो सहारा था जिससे टूटते हुए लोग खड़े हो गए। ये वो शब्द था जिसे बोलते हुए किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस एक नारे में पूरा भारत साथ खड़ा था। जब भगत सिंह ने इसे पुकारा तो वो फांसी की ओर नहीं बढ़े, वो अमरता की ओर चले गए। और उस दिन से हर पीढ़ी के सीने में ये नारा धड़कन बनकर बस गया। आज भी अगर हम आजाद हैं तो इसलिए नहीं कि जंजीरें टूट गई थी, बल्कि इसलिए कि वंदे मातरम कभी टूटने नहीं दिया गया। और अब सवाल ये नहीं कि कहानी खत्म हुई या नहीं, सवाल ये है जब अगली बार ये नारा गूंजे तो क्या हम उसके अर्थ को उतनी ही ईमानदारी से महसूस कर पाएंगे। जाने के लिए बने रहिए एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के साथ। सुनते रहिए, खामोशी में भी सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक नारा पूरी सभ्यता को जिंदा रखता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन, वंदे मातरम, जय हिंद।
3: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, जिन्होंने उसे नई पहचान दी, नई उड़ान दी। तो आज हमारे समक्ष ऐसे ही एक अतिथि हैं जिन्होंने संगीत को सच में जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी की, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, शोध निर्देशक है, गुरु हैं। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने 42 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने MA किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
0: जी
1: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
0: जी।
1: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी GN गुणे
0: जी
1: ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है, फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं, मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: तो
1: शिष्याओं के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया, कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी, सन 19,
0: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ।
1: हाँ,
0: ये
1: 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था, फिरोजाबाद में
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते

0: थे। इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया, प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ ताल लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
1: क्या बात है, आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें।
0: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो तो मैं साधना करी थी। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
1: मिला,
0: ससुराल में भी मिला।
1: क्या बात है।
0: तो मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है।
1: क्या बात।
0: मेरे ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान,
1: अच्छा,
0: डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, जिनको की पढ़ाया जाता है।
1: वाह।
0: एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में
1: जी,
0: पिताजी की किताब, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है। जब आप देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है उसमें जो पुस्तक लिए हैं संस्कृत की, उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ
1: जी,
0: तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे। तो मैं अपनी शिक्षक जो हमारी यूनियन होती थी उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है, उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहें
1: जी।
0: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संगीत से के अनुशासन से जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
1: क्या बात है। अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हों या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये।
0: जी जरूर, कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है, और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी
1: जी।

0: अमिता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहे और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिक तूना कत्ता धागे त्रिक धीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशा सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में, बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँ,
1: जरूर,
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताए?
1: जी जरूर बताऊँ। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्रों, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहां मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें, उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में को भी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, हाँ, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की। तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे, हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहां भी चर्चा चली थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही, हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, पैसे को नहीं देखना है। मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरुजी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, और 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माता जी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: जब मैं एमए पास किया तुरंत ही मेरे पास नौकरी एक जगह लोग थी, उस समय एमए पास करके लग जाती थी एक तो। फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहाँ मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए लड़की ये, तो हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू प्रारंभ की।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाएं हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
1: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको, राम

0: सीधा सीधा है इस तरह से, ज्यादा उसको टेक्निकल ना, शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्त संगीत है और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको और सरंगम के माध्यम, जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है
1: जी।
0: श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता है, सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है, तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं। क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: ये बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर हाँ। आप सीखते हैं गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी है जीवन में।
0: उसमें कई कई राग, उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है,
1: प्रेरणा बन जाती
0: कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खो के ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: संगीत से जुड़े
0: अनंत।
1: तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी, मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी, जैसे आपने अभी जो राग सुनाया, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है। मान जा, दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त प्रमुखारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से, ईदगाह से अंशुना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ, जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बने रहे, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए हैं आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम है उनकी, सा रे गा मा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के, सा रे गा मा इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में। घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा।
1: प्रैक्टिस जब भी करनी चाहिए जब आपका गुरु कहते हैं कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब

0: आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दें, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु है जो भी है, क्लास में पढ़े या अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाए। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप
1: जी,
0: क्लासिक। बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी।
0: एन एम राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरीला निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्यों गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है। तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से, जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया। मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं, फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी, लोग गदगद हो जाते थे। तो हमें संगीत में, गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए, ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है। वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाथ अंदर का जगाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
1: आवश्यकता नहीं है
0: जी।
1: अमिता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
0: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी है
1: जी।
0: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी, बहुत अच्छी। किशोरी मुनजिन के क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
1: आपको गजल का भी शौक है?
0: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
1: क्या बात है।
0: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाचीज हूँ, तिनका मात्र हूँ।
1: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही आपको शौक है, क्या तो वो पंक्तियाँ आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
0: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने
1: जी।

0: आपने श्रद्धांजलि दी और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की।
0: अच्छा,
1: ये तो मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी, जी
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से गीत थी। वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगी तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी। उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी

0: चैन से हमको कभी। ये आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है और इसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना, कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संगीत को सीखा बहुत जी, जी, अपने जी, को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी उस सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने। माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया और पिता ने मुझे आगे, मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। अच्छा। तो कितने ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है।
1: जी। ऐसे पिता, ऐसे माता पिता, ऐसे घर मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा, आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी चाहिए।
0: बहुत प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए।
1: जी, जैसे कि अमिता जी आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं, अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक PhD भी करवाई है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे या क्या अनुभव था आपका?
0: जी, बहुत अच्छा। शोध कराने में जब मैं 96 में मेरी PhD अवार्ड हुई तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है। ये देखिए, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे PhD, तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास, अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए। मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार, एक ITC से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक
1: जी,
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, पर कहती है नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरुजी के योगदान के ऊपर, जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उम्दा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मक भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया, लताफत हुसैन खां का संगीत में योगदान। मीडियम उनका इंग्लिश था तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो टिनी टार्ड में चली गई थी जैसे। अच्छा। अवार्ड हुई और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी, आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने, उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले उन्होंने, उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी। तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया,
1: क्या अपने
0: गुरु जी की गायकी के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका काम हुआ। आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रेनी टार में सेटल हो गई।
1: क्या बात है,
0: अब तो रिटायर हो गई है, आ गई है। दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर ने आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार है, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो।
1: अच्छा। तो
0: जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी।
0: संगीत के प्रचार प्रसार में उस लड़की ने बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले, जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी, उसको कहने में, उसका प्रचार प्रसार करने में एक सशक्त माध्यम था
1: जी। बिल्कुल।
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको 5 विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिन्होंने नेट क्वालिफाइड थे।
1: अच्छा।
0: उनको JRF मिलती थी
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया है, नियुक्ति हुई है
1: जी।
0: एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय है, उनका भी आगरा में कुंडों में जगह वहाँ उनका हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो, और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी है, विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: जी,
0: तो काफी ओल्ड है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाओ।
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ कि इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे मुझे लगा शायद मेरा इस मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह है तो मैं उससे धन्य हुई और मैंने उनको फिर ग्रहण किया। रातों रात हम लोगों ने मिलकर सिनॉप्सिस बनाई और दीदी का काम किया उन्होंने लोक पंजाब के लोक संगीत पर, उन्होंने कथक में
1: जी
0: कथक की थी वो
1: जी
0: डॉक्टर शोभा कौशर
1: जी।
0: हाँ तो कथक की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर मॉरिशस वियतनाम सब जगह जाती थी प्रोग्राम देने और बहुत अच्छा मुकाम है उनका कथक क्षेत्र में
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया। तो तीन चार विद्यार्थी तो ऐसे लगे जिनको मुझे देख के ये लगता था ये तो खुद ही इतने अभीष्ट कलाकार हैं, इनको मैं क्या गाइडेंस दूंगी, लेकिन उनको लगा कि नहीं आपके साथ ही करना है। तो एक रिसर्च करते समय एक टॉपिक होता है शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने। अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं संगीत में, खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोई कराता नहीं था, होते थे आप देखें
1: बहुत गिने चुने,
0: हाँ गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या है, उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है मतलब रिसर्च जो सर्चेज हुई है उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है,
1: गाइड की बहुत मेहनत होती है। ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही है, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे कि अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई भी अपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए। तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी एक सशक्त माध्यम, दिव्यांग है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: उसने संगीत सीखा है
1: जी, जी,
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। नहीं तो कोई कहता अरे ये ऐसे है वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि संगीत के माध्यम से क्या उनकी भागीदारी कितनी निश्चित है, कितना उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है समाज में।
1: पीएचडी की
0: टॉपिक है जी जी,
1: क्या बात,
0: रेयर टॉपिक, बड़े अच्छे अनुभव हुए इसमें। जितने भी आर्टिस्ट मंच पे आते थे तो हम ढूंढते थे दिव्यांग है उनके अनुभव लेना, उनकी फिर डाटा निकाला वहां से जो एक सूरकुटी है आगरा में
1: जी जी,
0: वहां से डाटा निकाल के फिर काम किया इस तरह।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और बच्ची ने भी बहुत मन से किया, हालांकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है कि उतना हर छात्रा उतनी लगनशील नहीं होती है, तो मैं उतना उसको अच्छे से गाइड करूँ क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको। अब देखते हैं आगे एक और वाइवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग, अलग है। और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी सीख रहा हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं। तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें ऊपर गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, गौ कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग हैं, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया
0: जी? मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक मीराबाई थी, भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई, तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना, और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की, इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्यकाल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही, तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया, तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है, उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था
1: जी। समर्पण की बात आती है तो मेरा भाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता
0: जी।
1: थैंक यू जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे हम भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीरा बाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को?
0: जी जरूर, थैंक यू मैम।

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट हर रिश्ते में, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगी और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहाँ भी सीख के आई हूँ, यही और ज़्यादा प्रबल हो गई और तो मुझे वहाँ इसीलिए बहुत अच्छा लगा। जी, आनंद, आनंद मतलब पराकाष्ठा आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरक। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहाँ सुनकर, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी, ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई, आपके सामने मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ, वहाँ ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींच कर बाहर निकाल लेता है, और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: श्रोतागणों, आज का मारवाड़ी कार्यक्रम लखारा समाज के एक वरिष्ठ सदस्य जीवराज जी लखारा की स्मृति में प्रसारित किया जा रहा है। उनके परिवार के दुख में रेडियो मधुबन समस्त परिवार के साथ शरीक है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: आवाज री दुनिया रा हम सफर दोस्तों, अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा गणा गणा राम राम गणिक हम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं, अन कार्यक्रम रे मायने अपो समाज रे माय फैली उड़ी कुरुतियों वे है वन्ने बारे में बात करो हो, और अन्य अलावा अपने भारत देश में जितनी भी जातियों वे है उनोरा रीति रिवाज है वे रेडियो मधुबन रे मार्फत प्रसारित करवारी अपनी कोशिश है, और अपो हर बार एक नई जाति रे बारे में वना रीति रिवाज का वे संस्कृति का वे है वना बारे में बात करो हूँ। तो आज आपो एक जाति है वे लखारा जाति, तो लखारा जाति रा का रीति रिवाज है वना बारे में आपो बात करी हूँ। तो आज आपो केसरगंज एरिया में आयोड़ा हूँ, और केसरगंज में एक पूरा परिवार है लखारा समाज रो, जो उन्होंने आज अति खुशी है कि पूरा परिवार भेड़ो हुआ है और वे इंटरव्यू देने वास्ते लालाई थे। तो सबसे पहला अपो उन्होंने जितना भी समाज रा बंधु है और परिचय लियो, और वन्ने बाद में उन्होंने रीति रिवाज प्रसारित करियो। तो सबसे पहला जितना भी मेहमान है अपने वनोरो रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो। तो जीवराज जी, आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
2: राम राम था।
1: जीवराज जी, आप सबने रोम रोम किया है। बीजा मेहमान अपने है गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
3: राम राम सा।
1: गौरी शंकर जी भी रोम रोम किया है आप सबने। हमें मोतीलाल जी ने कहूँ आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
4: राम राम सा।
1: देखो मोतीलाल जी भी रोम रोम किया है, और खूब खुशी अनोर परिवार में वेरी है कि आज अनोर समाज रो रीति रिवाज रो इंटरव्यू वेरियो है, तो उन्होंने खूब खुशी वेरी है। तो अपने बीजा मेहमान भी है योगेश कुमार जी। योगेश कुमार जी, आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत।
5: राम राम सा।
1: देखो भाई, योगेश कुमार जी भी अपने रोम रोम किया है। हमें बीजा मेहमान एक वरे है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
5: राम राम सा।
1: देखो ओम प्रकाश जी भी रोम रोम किया है। तो सब समाज बंधु लखारा समाज रा आज सब ने रोम रोम किया है, और अपने तरफ से भी उन्होंने रोम रोम है, और रेडियो मधुबन ने सुनने वाला जतरा भी सोता है उन्होंने भी अनोरे तरफ से भी रोम रोम है, और मारा तरफ से भी रोम रोम है। तो श्रोता बंधुओं, हमें अनोरे समाज के बारे में आपो बातचीत कर रही हूँ। श्रोता बंधुओं, हमें अपने लखारा समाज रा सबसे बुजुर्ग बंधु है जीवराज जी लखारा है, तो उन्होंने पूछो हो कि आप अबरूड में कतरा साल ती अटे रेव रिया हो।
2: 60 साल ती रे रिया हो।
1: 60 साल ती रेव रिया हो अटे, पर पहला कटे रहता आप?
2: पहला अटे अबरूड में रहता, हाथपुर रहता।
1: हाथपुर में?
2: हाथपुर में रहता।
1: तो आपने पिताजी भी अटे रहता पहला?
2: हाँ, मारा पिताजी अटे रहता था, अबरूड में रहता था।
1: आपने पिताजी का नाम? तो
2: पिताजी नाम तो पूरण मलजी।
1: पूरण मलजी लखारा। वनोर का धंधो? तो
2: वो नौकरी करता था रेलवे में।
1: कटे नौकरी करता है?
2: मार्जिंग सर में नौकरी करता था।
1: कण में?
2: रेलवे में।
1: रेलवे में?
2: हाँ, रेलवे।
1: ठीक है, तो आप हमें क्या करो?
2: हमें, मैं आजकल रिटायरमेंट में हूँ।
1: रिटायर हो रहा हूँ। गरीश, आप कन्नी नौकरी करता?
2: मैं रोडेज में नौकरी करता था।
1: आप रोडेज नौकरी करता? हमें गरीज हूँ। चलो ठीक है, अपने मेहमान जीवराज जी रो परिचय वो है। हमें अपने बीजा मेहमान है गौरी शंकर जी है, उन्होंने पूछो हो के आप अबरूड में कतरा साल ती अटे रेवरिया हो।
6: अबरूड में जन्म ती रे रिया। मैं तो
1: आप अटे अबरूड में जन्म ती रेवरिया, तो आपरे पिताजी बैठे रहता?
6: मारा पिताजी अटे अबरूड में कई साल ती रहता था।
1: कई साल ती रहता था? तो आप रो बचपन भी अटेज बीती तो के?
6: अटेज बीती तो।
1: अटेज बने की थी आप?
6: अटेज बनाई की थी।
1: चलो ठीक है, तो हमें आप हमें क्या करो?
6: हमें पुलिस ती रिटायरमेंट हो, अटेज हो घरे जो।
1: पुलिस में सेवा दी थी आप? कतरा साल सेवा दी थी पुलिस में?
6: 36 साल।
1: 36 साल रिटायरमेंट हुआ आप रो?
6: हाँ, रिटायरमेंट होगी अब।
1: अच्छा, हमें आप क्या करो बेटा? बेटा
6: हम वो घरे जो ना गीता

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहें, सुनाते रहें, जन जन तक प्यार बरसाते रहें।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है। अने अपने मेहमान जितना भी लखारा समाज रा बंधु है वणोरो भी स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, हमें आपो लखारा समाज रे बारे में जानकारी लेता था तो हमें जीवराज जी लखारा ने पूछो हाँ कि आपरे समाज रे माए कोई बच्ची रो रिश्तो करो तो क्या रिवाज करो।
2: माँ बच्ची रो रिश्तो करा तो बच्ची से ससुराल वाला ने बुलावा, वे कपड़ा अपना लावे और कपड़ा लाना आमने सामने माँ बैठ न पसे बच्ची ने कपड़ा पहरावा और अंगूठी अंगूठी वेद अंगूठी पहरावा, ऐसा अंतर थी वह रिवाज माँ करा।
1: ठीक है, पर मैं यूँ कहूँ के रिश्तो तो करो, मैं गणित ठोकोड़े मांग करे कि मार तो छोरो बनियोड़ो है एंड मोर तो तिलक जोजे, तो आपने रिवाज है एरा?
2: नहीं, माने एरा रिवाज नहीं है, तिलक लगा नहीं है, श्रद्धा अनुसार जो देना चाहे वह दे सके और ले सके,
1: कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने समाज रहा अच्छा रिवाज है। तो हमें आपने पूछूं कि आप बतावता था भाई के कोई तरह की बंदिश नहीं है, ठीक है, तो रिश्तो करवा जाओ तो आप वटीन जाओ या बच्ची वाला आटे आवे?
2: रिश्तो करवा जाओ लड़का वाला लड़की के ना आवे।
1: ठीक है, चलो आप बात भी सही है आपरी। तो हमें रिश्तो की दो, तो रिश्ता में कोई लेन देन करो?
2: लेन देन ससुराल वाला जो गेना गाबा लावे वे लेवा।
1: गणित समाज में मु देखू के छोरी रिश्तो करना हुए तो वे माँ बाप कुछ पिया लिए, तो आपरे समाज में तो रिवाज नहीं है?
2: हाँ, मान सम्मान पिया ये नहीं लेता, उन्हें गेना बच्ची रा जो लावे वह चीज लाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है,
1: तो कोई केस पेमेंट मतलब नहीं लेता। गणित समाज में देखवान मले है कि भाई के बच्ची रा माँ बाप बनो तो पिया ली दो टाल हगे नहीं करता,
2: ना माने ऐडो रिवाज नहीं है माने। तो
1: आपरे समाज में हाटा वाटा तो नहीं बेता?
2: हाटा भी वे पर दूसरी जगह जालोर में जैसलमेर बाड़मेर जाहिर में हाटा वे।
1: आपरे आबरोड में एरिया में अन परगना में नहीं बेता?
2: माने आबरोड एरिया में अटिन नहीं बेता,
1: अटा परगनो कतरा गोम लागे। चलो मतलब आपरे कोई अटा कोई एरो परगनो नहीं है, पर जत्रो भी एरियो है मारवाड़ रो वो आपरे सब रिश्तेदारी
2: है, जिस रिश्तेदारी है उन्होंने चिट्ठी लिखा।
1: ठीक है, चलो ठीक, अच्छी बात है। आपरे चलो सगाई की दी सब हुआ, हमें कोई बच्चा री शादी करो आपो तो क्या रिवाज करो?
2: शादी करा तो बच्चे आरू गेना कपड़ा लेन जावा और उन्होंने उठे पहरावा, पसे तोरण माते जावा, ऐसा तोरण माते थी पसे बीन ने टीको दे, सासू टीको करे और टीको करने पसे मान पहरा।
1: पर आप बारात लेन गया तो गणित कोने तो पैदल जाना पड़े और गणित कोने घोड़ा माते जाए, तो आप घोड़ा माते बहन जाए?
2: हाँ माने घोड़ा माते जाए, जटे घोड़ा रिवाज उठे घोड़ा माते जाए, जटे पैदल रिवाज है घोड़ो उपलब्ध नहीं हुए तो उठे पैदल जाए।
1: तो मतलब आपने समाज में भी मतलब पैदल जाए भी बंदोली ले जाए?
2: पैदल जाए।
1: गणित कोने आज भी गाँव में घोड़ा मतलब नहीं है तो बटे आप घोड़ा माते बहन नहीं जाए?
2: नहीं जा सकता उठे, क्यों घोड़ा उपलब्ध नहीं हुआ तो नहीं जा सकता, नहीं तो घोड़ा माते बहन नहीं जा सकता।
1: हाँ ठीक है, अच्छा रिवाज है आपका। चलो आपने हमें पूछूं कि शादी करवा गया तो आपने बेटा दहेज वेज कोई दिए?
2: शादी करवा गया तो बेटे दहेज वेज तो नहीं दे, बच्ची रहे जो माँ बाप है वो इच्छा अनुसार जो देना चाहे वो दे सके।
1: आपने समाज में कोई बंदिश नहीं है कि भाई दाइसो देना जरूरी
2: है? बंदिश नहीं है, माने समाज में कोई बंदिश नहीं है कि दाइसो देना जरूरी है, पर बेटी और बाप जो इच्छा अनुसार उन्हें बेटी ने दे।
1: आप कहवा मतलब बेटी रे माँ बाप है वरने मर्जी थी जो दे वो हाल है प्रो, पर कोई आपरी मांग नहीं वेती?
2: माने मांग नहीं वेती।
1: ठीक है, चलो ठीक है। हमें गणित ठिकाणा वे बच्ची और बच्चा बनियोड़ा वे, कोई बच्ची कम बनियोड़ी वे और बच्चों ज्यादा बनियोड़ो वे, तो वटे कोई समस्या उत्पन्न हुए आप?
2: नहीं उठे कोई समस्या नहीं उत्पन्न नहीं हुआ।
1: ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो शादी करन घरे लेना आया तो पछे घरे आप कोई राती जोगा दियो?
2: हाँ पछे लान घरे लान राती जोगा दा, मान देवता कुल देवता जो है भेरू जी है मंडोरा उन्हें हमें पछे रात जगावा।
1: राती जोगा मतलब क्यों करो, अनो कारण का है?
2: राती जोगा तो रीति रिवाज है अन हिसाब से करा। अच्छा। बाप दादा करता आया जी जी हूँ कर।
1: ठीक है, तो राती जोगा हम कोई गीत वीत तो गाओ?
2: हाँ राती जो हम गीत गावे।
1: केरा गीत गावे? देखो मोरे यार रेडियो माता कोई होबड़ावे तो श्रोता बंधुओं लखारा समाज रा कुछ महिला वर्ग है जो जो कर दिए है तो उनमें कोई गीत गावे है तो आज अनोती एक छोटो सा गीत भी होबलो हो। तो सबसे पहला एक माता जी है वनौरो परिचय लो। आप नाम का है?
3: पानी भाई।
1: पानी भाई ठीक है। बीजा माता जी आप नाम का है? बीजा एक बहन जी है उन्होंने पूछो हो वनौरो नाम का है?
4: सरस्वती।
1: सरस्वती बहन ठीक। एक बार बहन जी बेटा है उन्होंने नाम पूछो हो आप का नाम है?
5: विमला लखारा।
1: विमला बहन ठीक है। और बीजा बे बहन जी मेरे बेटा है पुटे उन्होंने पूछो भाई वनौरो का नाम है? आप का नाम है?
6: रेखा।
1: रेखा बहन आप?
6: संगीता।
1: संगीता बहन चलो आज चार पांच माता बहनों है लकारा समाज री। आज उन्होंने राती चुका हम केरा गीत हुए आज एक गावेन बतावेला।

0: माँ।
1: श्रोता बंधुओं, माता जी चार पांच माता बहनों है गीत गाए है और महादेव जी रो, तो माता बहनों पूछू हूँ कि अपने राति जोगो क्यों दो, आप बताओ।
2: अबर बच्चा रवास्ते दो झड़ोलियो उतारा
1: नहीं, जो आप राति जोगो विवाह करना हो तो आप क्यों दो राति जोगो का मान्यता।
2: मान्यता तो आ है कि भगवान रे पगे लगाओ जरा रात जगाओ ने सुबह है जो प्रसाद बनाने सड़ाने है सब आने जीवा में समाज वाला।
1: मतलब रात रात आप आखिर रात गीत गाओ सुबह उठे बचे आप प्रसादी
2: करो। प्रसादी करो लापसी बनाओ
1: लापसी रो भोग लगाओ
2: पचास समाज वाला
1: भगवान ने मनो ने बच्चों ने पगे लगाना।
2: चलो
1: पेड़ा पगे लगाओ जायारा पन्नियारा
2: बच्चों तो राति जोगो लगाओ।
1: चलो विवाह करो तो राति जोगो करो और कोई टाबर वे तो राति जोगो दियो। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें अपने पौनी भाई ने पूछू हूँ। चलो भाई के महादेव जी रो तो गीत गायो, हमें एक आधो माता जी रो गीत भेजा तो ठीक लागे।

0: नमस्ते दोस्तों, आपको अपनी कविता सुनाता हूँ। मैंने एक पतंग उड़ाई, रंग था उसका लाल, सबकी पतंगे काटी मैंने, किया ना खूब कमाल। कैसी लगी आपको मेरी नई कविता? चलो अब मीना से मिलने चलते हैं उसके स्कूल में।
1: तुम देखना मीना, पहला इनाम तो अपनी रोशनी ही जीतेगी।
2: वो तो ठीक है सुनील, लेकिन रोशनी है कहाँ?
3: मीना,
2: अरे रोशनी कहाँ रह गई थी इतनी देर से हम लोग?
3: तुम्हें तो पता ही है मीना, मुझे अपनी छोटी बहन चंदा को खाना खिला के आना पड़ता है। सुबह सुबह माँ को और भी बहुत से काम होते हैं, तो
4: वो सब छोड़ो रोशनी। पता है भूगोल के प्रश्नोत्तर की एक प्रतियोगिता होने वाली है 18 तारीख को 2 बजे।
3: प्रतियोगिता?
4: हाँ रोशनी, सरपंच जी करवा रहे हैं ये प्रतियोगिता, और पता है पहला इनाम है 1 बस्ता।
2: रोशनी तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी ना?
4: हाँ मीना, रोशनी से अच्छा भूगोल भला किसे आता है? हाँ काश मैं भी रोशनी की तरह भूगोल में होशियार होता तो पहला इनाम, मेरा मतलब वो बस्ता, मुझे ही मिलता।
3: और क्या क्या इनाम है सुनील?
4: पहला इनाम हो गया बस्ता, दूसरा इनाम है कमीज का कपड़ा, और तीसरा इनाम है एक कहानी की किताब।
3: मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी।
5: जरूर हिस्सा लूंगी, सबको हरा दूंगी।
0: उस दिन शाम को रोशनी सुनील से मिली।
3: सुनील, तुम वो बस्ता जीतना चाहते हो ना?
4: हाँ रोशनी, लेकिन मैं भला?
3: मैं तुम्हें भूगोल पढ़ाऊंगी, अभी प्रतियोगिता में पूरा 1 हफ्ता बाकी है, देखना 1 हफ्ते में मैं तुम्हें भूगोल के पाठ अच्छी तरह सिखा दूंगी, फिर पहला इनाम तुम्हारा।
4: अरे वाह, लेकिन तुम ये क्यों चाहती हो कि पहला इनाम मैं ही जीतूं?
3: क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो सुनील।
4: लेकिन तुम,
3: चलो अब ज्यादा मत सोचो, कल स्कूल खत्म होने के बाद हम साथ मिलके भूगोल के पाठ याद करेंगे।
0: और जब सुनील ने ये बात मीना को बताई तो मीना ने कहा,
2: सुनील रोशनी भला तुम्हें क्यों जिताना चाहती है?
4: क्योंकि वो मेरी दोस्त है।
2: वो तो ठीक है सुनील, लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और है। चल मिट्टू रोशनी के घर।
5: रोशनी के घर लेते हैं पूरी खबर।
0: और जब मीना और मिट्टू रोशनी के घर पहुँचे तो मीना ने देखा कि रोशनी अपनी 1 साल की छोटी सी बहन चंदा के साथ खेल रही थी।
3: चंदा, पता है तेरी रोशनी दीदी तेरे लिए कमीज का कपड़ा लाएगी इनाम में जीत कर, फिर माँ तेरी प्यारी सी कमीज सिलेंगी और मेरी चंदा सबसे सुंदर लगेगी।
6: ओ मेरी बहन को भूख लगी है। अच्छा अच्छा, मैं अभी साबुन से हाथ धोकर आती हूँ और अपनी प्यारी चंदा को खाना खिलाती हूँ।
3: अरे मीना तुम?
2: मैंने सब सुन लिया है रोशनी, तुम वो कमीज का कपड़ा यानी दूसरा इनाम ही जीतना चाहती हो, है ना?
3: हाँ मीना, पता है क्यों? आओ ये देखो, देख रही हो चंदा की ये फटी कमीज? माँ ने अपने सारे पैसे तो मेरे कपड़ों पर ही खर्च कर दिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं चंदा के लिए वो कमीज का कपड़ा जीत के लाऊं।
2: लेकिन रोशनी, अगर सुनील तुम्हारे भूगोल सिखाने के बाद भी पहले नंबर पे नहीं आया तो?
3: तो फिर वो दूसरे नंबर पे आएगा, तब मैं उसे बस्ता देकर उससे कमीज का कपड़ा ले लूंगी, उसे तो वैसे भी बस्ता ही चाहिए ना।
2: रोशनी, लेकिन तुम्हें ये बात सुनील को भी बतानी चाहिए।
3: तुम ठीक कह रही हो मीना, मैं कल सुबह ही सुनील को सब बता दूंगी।
0: अगले दिन रोशनी ने सुनील को पूरी बात बताई और फिर अगले 6 दिन तक रोशनी और सुनील भूगोल के पाठ पढ़ते रहे। मीना भी उनके साथ ही बैठा करती थी। और फिर प्रतियोगिता के दिन,
2: सुनील

0: क्या हुआ रोशनी को? और वो अभी तक क्यों नहीं आई?
1: रोशनी नहीं आएगी सुनील।
0: क्यों मीना?
1: क्योंकि उसकी छोटी बहन चंदा की तबीयत ठीक नहीं है।
0: अब क्या करें?
1: वही मैं भी सोच रही हूँ।
0: एक काम हो सकता है मीना, तुम अगर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो तो हम पहले दो इनाम जीत सकते हैं।
2: और जब प्रतियोगिता का नतीजा आया,
3: बच्चों इस प्रतियोगिता में पहला नंबर आया है सुनील का। दूसरे नंबर पे है मीना। और तीसरे नंबर पे है अपना कृष्णा।
2: सुनील और मीना भागे भागे रोशनी के घर पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि नर्स बहनजी रोशनी की माँ को कुछ बता रही थी।
4: दीदी, चंदा के पेट में दर्द है, इसे खाना खिलाने से पहले आप अपने हाथ साबुन से तो धोती है ना?
5: अच्छी तरह नर्स बहन जी, मैं भी और रोशनी भी, क्योंकि सुबह और दोपहर को रोशनी ही तो खाना खिलाती है चंदा को।
1: माँ वो
5: क्या हुआ रोशनी?
1: माँ मैं पिछले कुछ दिनों से चंदा को बिना साबुन से हाथ धोए ही खाना खिला रही थी।
5: क्या, बिना साबुन से हाथ धोए? लेकिन क्यों रोशनी?
1: माँ वो प्रतियोगिता की तैयारी में कुछ याद ही नहीं रहा।
4: रोशनी, तुम चंदा से प्यार करती हो ना?
1: बहुत प्यार करती हूँ नरस बहन जी।
4: तो फिर आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना बेटे। छोटे बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं और उनका पेट भी, समझी? यूँ तो कीटाणु हम सबको अस्वस्थ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कीटाणु बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं, क्योंकि उनमें कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम होती है, समझी?
1: जी नरस बहन जी।
4: अब तो चंदा को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोना नहीं भूलोगी ना?
1: कभी नहीं भूलूंगी नरस बहन जी।
6: रोशनी, तुमने आज प्रतियोगिता में हिस्सा न लेकर भी चंदा को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है।
1: मैं समझी नहीं मीना।
6: तुमने अभी नर्स बहन जी से हमेशा साबुन से हाथ धोने का जो वादा किया है ना, वही है चंदा के लिए सबसे बड़ा तोहफा।
4: बिल्कुल ठीक कहा मीना, बड़े भाई बहन छोटे बच्चों को इससे अच्छा तोहफा दे भी नहीं सकते।
6: रोशनी ये लो कमीज का कपड़ा, मैं प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे आई हूँ।
1: नहीं मीना, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये तुम्हारा इनाम है।
6: लेकिन मेहनत तो तुम्हारी है ना, अगर तुम मुझे और सुनील को भूगोल के पाठ याद न कराती तो ना वो बस्ता जीतता और ना ही मैं ये कमीज का कपड़ा।
1: ओह मीना, तुम कितनी अच्छी हो, अब माँ चंदा के लिए बहुत प्यारी कमीज सिलेंगी।
2: भाई वाह, मजा आ गया मीना से मिलकर। चलो अब देखते हैं कि अपने कवि और कवियत्री यानी मीना और मिठू आज कौन सी नई कविता बना रहे हैं।
6: छोटे भाई या छोटी बहन को खाना जब भी खिलाना,
7: अपने दोनों हाथों को साबुन से धोकर आना।
2: क्या कविता लिखी है मीना और मिठू ने, भाई वाह मजा आ गया। चलो अब सुनते हैं एक गाना।

0: उनको हम खूब घुमाते,
1: उन्हें खिलाना हो खाना तो सबसे पहले हाथों को साबुन से धो चम चम चम काते।
2: अरमा

0: गाना तो सुन लिया, अब सुनो मेरी एक और कविता। गाना तो था कमाल, चलो अब करें थोड़ा सा धमाल। पानी डाल के गिलास में, चलो खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है हलचल।
3: बहन जी, हलचल का पहला अक्षर है ह, और ह से होता है हाथी।
1: शाबाश सुनील। और हाथी की नाक को क्या कहते हैं?
2: सून।
1: हाँ, चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
4: बहन जी, ह के बाद हलचल में आता है ल, और ल से होती है लाठी।
1: शाबाश रोशनी। और लाठी शब्द से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
5: जिसकी लाठी उसकी भैंस।
1: बिल्कुल सही मीना। बच्चों वैसे तो इस मुहावरे का मतलब है जिसके पास बल है वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान सिर्फ अपनी मेहनत और सच्ची लगन से ही कुछ हासिल कर सकता है।
6: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ सुमी, बताओ।
6: ह और ल के बाद हलचल में आता है च, और च से होता है चांद।
1: शाबाश सुमी। मैंने तुम्हें चांद से जुड़ा एक मुहावरा भी सिखाया था, याद है?
6: जी बहन जी, चार चांद लगाना।
1: शाबाश सुमी। और इस मुहावरे का मतलब होता है
7: किसी काम की शोभा बढ़ाना।
1: बिल्कुल सही कृष्णा। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
8: ह, ल और च के बाद हलचल में आखिरी अक्षर आता है ल, और ल से होता है लड्डू।
1: शाबाश मीना। और दिल में लड्डू फूटने का मतलब होता है
8: बहुत खुश होना।
1: बिल्कुल सही। तो बच्चों तुम भी खुश हो ना?
2: जी बहन जी।
0: पत्ते पेड़ से टूटते हैं, मीना से मिलके मन में लड्डू फूटते हैं। ये है ओखली और ये रहा मूसल, इसमें हम मसाले कूटते हैं। क्या कहा, मेरी ये कविता भी बेकार है। चलो अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। तब तक आप अपने सुझाव, विचार और अनुभव लिखना मत भूलना। अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखोगे ना?
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, आठवां पाठ, गाड़ियां और पहिए, पृष्ठ 81। इस पृष्ठ पर बहुत सारे कार्य होते हुए दिखाए गए हैं, जैसे लड़की का रोटियां बनाना, ठेले पर बोरियों का लादकर जाना, साइकिल चलाना, लड़के का पहिए को ढकेलना और पतंग उड़ाना, कुम्हार का बर्तन बनाना, ट्रैक्टर पर जाना, बस का जाना और सब्जी वाले का सब्जी बेचते हुए चित्र और साथ में एक लड़के का अपनी मां के साथ चित्र। लड़का बोला,
1: अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं, मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे।
0: तुमने ऐसी गोल गोल चीजें अपने आसपास जरूर देखी होंगी। तुम अपनी कॉपी में इस तरह की गोल गोल चीजों की एक सूची बनाओ। पृष्ठ 82। चूड़ी से गोला बनाओ। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? यहां पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ तीन चूड़ियों के चित्र हैं और बाईं तरफ भी चूड़ियों के चित्र हैं, जिस पर लिखा है कांच की चूड़ियां, और साथ ही एक महिला का चित्र भी है। महिला कहती है,
2: मैं ये चूड़ियां नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं।
0: इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाजा लगाओ। एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। क्या तुम्हारी मैडम या मां ये चूड़ी पहन पाएगी? रिक्त स्थान। चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीजों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने में किया जा सकता है। यहां पर दिए गए खाली स्थानों में उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनका इस्तेमाल तुम गोला बनाने में कर सकते हो। अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीजों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है। किस चीज की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। और किस चीज की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 83। गोल घेरे के खेल। बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। यहां पर खेलों के दो चित्र हैं, चित्र खेल एक और चित्र खेल दो। खेल एक में बच्चे गोला बनाकर रुमाल उठाने का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेल दो में दो बच्चे गोले में रुमाल को रखकर उठाते हुए दिख रहे हैं और बाकी बच्चे उनके पीछे खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो? अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो। इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाते तो क्या होता? चर्चा करो। कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हों। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक लड़की को कमर में रिंग से खेलते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 84। गोला बनाना। नैना, चिंपू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। वो मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इसे बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है। चिंपू और नैना कहते हैं,
3: ये तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है।
0: अरीबा कहती है,
4: अच्छा तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो।
0: चिंपू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं और तीनों में बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है? क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो? कोशिश करो। अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो, किसने सबसे अच्छा गोला बनाया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र को मुक्त हस्त से वृत्त बनाने का अवसर देना है। फर्श के अलावा छात्र मैदान में किसी नुकीली चीज से वृत्त बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। विभिन्न चित्रों की तुलना से उन्हें वृत्त के आकार का एहसास होगा। पृष्ठ 85। रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरिबा ने तय किया कि वो धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। यहां पर दो बच्चों को रस्सी और कील की मदद से गोला बनाते हुए दिखाया गया है और उसके सामने एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
5: क्या तुम भी अरिबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो?
0: छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीलें ले। हर एक समूह अरिबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया? रिक्त स्थान। उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। क्या ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बनता है? रिक्त स्थान। क्या तुम बता सकते हो क्यों? रिक्त स्थान। यहां पर एक गोले का चित्र है जिस पर अर्धव्यास को दर्शाया गया है और साथ ही एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
5: जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास यानी आधा व्यास है।
0: सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, इस अभ्यास का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न आकार के वृत्त बनाएं, उनके अर्धव्यास यानी त्रिज्या की लंबाई मापें तथा ये देखें कि अर्धव्यास की लंबाई बदलने से वृत्त का आकार कैसे बदलता है। पृष्ठ 86। स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ, इसकी लंबाई भी नापो। यहां पर एक चूड़ी का चित्र है। अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है। चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? यहां दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ। अब अंदाजा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। रिक्त स्थान। यहां पर दो गोले दिखाए गए हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा। दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। नीले रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। पता करो, साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? रिक्त स्थान। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? रिक्त स्थान। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? रिक्त स्थान। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्तों की त्रिज्या बनाने और उन्हें नापने के अनेक रोचक अभ्यास जरूरी हैं। वो पहिए और गाड़ी भी बना सकते हैं। पृष्ठ 87। लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई हैं। काली की रस्सी ज्यादा लंबी है। दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र में दो बकरियों का चित्र बना है जिनके नाम हैं काली और लाली। उन्हें रस्सी से बंधे हुए दिखाया गया है और साथ ही रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं। दलजीत के डिजाइन। दलजीत ने परकार की सहायता से ये डिजाइन बनाए हैं। यहां पर तीन चित्र हैं। पहले चित्र में एक पौधा दिखाया गया है, दूसरे में एक वृत्त है और तीसरे चित्र में एक बच्चे को परकार की सहायता से गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और डिजाइन बनाने लगी। यहां पर एक दूसरे चित्र में एक लड़की को परकार की मदद से वृत्तों के विभिन्न डिजाइन बनाते हुए दिखाया गया है। क्या तुम ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें परकार की जरूरत है। पृष्ठ 88। परकार का इस्तेमाल। क्या तुमने पहले कभी परकार देखी है? तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? अपनी परकार को खोलो। परकार के नुकेले सिरे को कागज पर रखो। परकार को ऊपर से पकड़ो। नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। क्या तुम गोला बना पाए? यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। ऊपर वाले चित्र में एक प्रकार को दिखाया गया है जिसके अंदर पेंसिल है, और दूसरे चित्र में लड़की को प्रकार की मदद से एक कागज पर गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उस निशान को ढूंढो जहां तुमने प्रकार के नुकेले सिरे को रखा था। यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। क्या ये गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो। अब तुम दलजीत की तरह अपने डिजाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने कितने डिजाइन बनाए? अंदाजा लगाओ कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया। प्रकार की मदद से ऐसा ही डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। इस पृष्ठ के सबसे नीचे वाले हिस्से में दो चित्र हैं। बाईं ओर एक वृत्त बना है, उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा खींची है, और दूसरा खाली बॉक्स है। शिक्षकों के लिए निर्देश: बच्चों को प्रकार की सहायता से अपने डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से उन्हें प्रकार की सहायता से वृत्त बनाने का रोचक अभ्यास भी होगा। पृष्ठ 89। क्या ये एक वृत्त है? नैना एक गोला बना रही थी। यहां पर नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। रवि ने उससे रबर मांगा, उसने अपनी प्रकार रख दी और रबर दे दी। अब वो फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना। यहां पर फिर एक दूसरे चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। सोचो, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी? चर्चा करो। क्या एक गोले के एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं? दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया। यहां पर एक चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है, किंतु ये टेढ़ा गोला बन रहा है। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? यहां पर सबसे नीचे नैना को पेंसिल और प्रकार के साथ दिखाया गया है। नैना कहती है,
2: अरे मेरी प्रकार का पेंच ढीला है, मुझे उसे कसने दो। अब मेरी प्रकार फिसलेगी नहीं।
0: पृष्ठ 90। केंद्र को खोजो। सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। यहां पर दो बच्चों के चित्र बने हैं, एक है सादिक और दूसरी है समीना। सादिक कहता है,
2: मैं प्रकार की मदद से बनाऊंगा।
0: और समीना कहती है,
2: नहीं, मैं तो चूड़ी से छाप कर बनाऊंगी।
0: इसी के नीचे एक दूसरे चित्र में दो बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। फिर उन्होंने अपने गोले काटे। यहां पर फिर सादिक और समीना का चित्र है। सादिक ने कहा,
2: देखो मेरे गोले का केंद्र है, लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र कहां है?
0: समीना ने कहा,
2: चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूं।
0: उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया। यहां पर एक गोले को मोड़कर दिखाया गया है। गोले के बीचों बीच सीधी खड़ी उसके केंद्र से जाती हुई रेखा है, और साथ ही आधे गोले को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। पृष्ठ 91। फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया। यहां पर एक आधे गोले का चित्र बना है, जिसमें ऊपर वाले आधे भाग को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। उसने मुड़ा हुआ गोला खोला। यहां पर सादिक और समीना का चित्र है। समीना कहती है,
2: क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो?
0: सादिक ने कहा,
2: हां।
0: इसके नीचे समीना का चित्र बना है, जो कहती है,
2: मैंने वहां एक बिंदु लगा दिया जहां से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थीं। ये इस गोले का केंद्र बिंदु है।
0: अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और समीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। हम पृष्ठ 88 पर दिए गए डिजाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं। तुमने कैसे बनाया? इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में दो गोले दिखाए गए हैं। बड़े गोले के अंदर दो गोले दिखाए गए हैं। दोनों गोलों के आधे आधे भाग बिंदुओं की मदद से दर्शाए गए हैं। अब इस गोले को देखते हुए तुम दूसरे गोले में बिंदुओं की मदद से दो छोटे गोले बनाओ। पृष्ठ 92, संतुलन करना। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो? यहां पर एक बंदर के दो चित्र हैं जो अपनी उंगली पर प्लेट को टिकाने की कोशिश करता दिख रहा है। बंदर ने कहा,
6: मैं करके देखूंगा। गिर गई। मैं फिर कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है।
0: तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो। देखो उंगली पर कहां टिकेगी। लट्टू को घुमाओ। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। यहां पर एक घर का दृश्य है जिसमें चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अचानक गप्पू के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा,
7: चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं।
0: उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी। पृष्ठ 93, यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं जिनमें चारों बच्चे अपने अपने लट्टू बनाते हुए दिख रहे हैं। अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्साहित थे। उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे। यहां पर चारों बच्चों के लट्टुओं का चित्र है। पहला चित्र जाकिर के लट्टू का है। जाकिर के लट्टू में तीली बिल्कुल दाईं तरफ है। अप्पू के लट्टू में तीली बिल्कुल बीचों बीच है। नैना के लट्टू में तीली बिल्कुल बाईं तरफ है और गुड्डू के लट्टू में तीली दाईं तरफ है। अब तुम इन चारों लट्टुओं को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। सोचो, किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा, रिक्त स्थान, किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा, रिक्त स्थान, किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा, रिक्त स्थान, और किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है, रिक्त स्थान। अपना लट्टू खुद बनाओ। तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो। लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहां करना होगा। और इसी के साथ आठवां पाठ गाड़ियां और पहिए यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रोहानी, तुझे पता है मुझे खाना बनाना और खाना भी पसंद है।
2: मुझे खाना बनाना तो बहुत ज्यादा पसंद है, खाना खाना थोड़ा थोड़ा पसंद है। और शिवांशी, तुझे?
3: मुझे तो बस खाना खाना पसंद है, बनाने में तो आलस आता है।
1: हम बनाएंगे और आप खाओगे।
3: हाँ, तुम बनाओ, मैं खाऊंगी।
4: क्या खाने पीने की बातें हो रही है आज? तो लग रहा है सबको भूख लगी है यहाँ पे।
5: हाँ दीदी।
4: अच्छा, तो यानी कि सबको, मुझे लगता है, बहुत सारी वैरायटी पसंद है खाने की।
5: हाँ दीदी।
4: गर्मी की छुट्टी में तो और याद आता है ना, ये खाना है वो खाना है।
6: हाँ। दीदी गर्मियों में तो और ज्यादा याद आता है,
4: क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं ना।
3: हाँ। बर्फ का गोला,
6: आइसक्रीम।
4: हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज खाने पीने के बारे में ही बात करते हैं।
5: हाँ।
4: इतना धीरे, हाँ, खाना नहीं खाया क्या किसी ने?
5: हाँ।
4: हाँ, अब लगा कि नाश्ता करके आए हैं सब लोग। तो कौन कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में?
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
6: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
8: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
9: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
10: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
4: ओके, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत सारे बच्चे, अब 5th क्लास में भी हैं, 6th में भी हैं, 10th तक है। तो खाना खाना तो सबको पसंद है, खाना बनाना किस किस को आता है?
2: दीदी मेरे को।
6: दीदी मेरे को।
3: दीदी आता तो है, बस बनाने में थोड़ा वो लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा। खाना खाना पसंद है बस हमें,
4: पसंद ज्यादा खाना खाना है, है ना?
6: दीदी सोचोगे नहीं, जब हम खाना बनाने जाते हैं ना, ऐसे करते हैं।
4: हाँ, पसीना आ जाता है
6: क्योंकि गैस एकदम गैसी भवकरी होती है, उसमें खाना बनाने
4: तो। और कुछ कहना चाह रहे हमारे साथ रूहानी भी बोलिए।
9: दीदी मुझे तो खाना बना के दूसरों को खुश करना बहुत पसंद है।
4: ओके, वेरी गुड। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हो शिवांशी?
3: दीदी हम तो बस खा के खुश होते हैं, बना के नहीं होते।
4: अच्छा,
1: हम बना के खुश होते हैं।
8: दीदी मैं भी बना के ही खुश होती हूँ।
4: अरे वाह। और शिक्षा?
7: मुझे तो खाना खाना पसंद है, क्योंकि जब भी कुछ बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो कुछ बन जाता है।
4: हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ बनाने जाते हैं कुछ और बन जाते हैं, वो एक नई डिश का निर्माण हो जाता है ना।
6: पर दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, नई डिश का निर्माण हुआ है ना, पर वो घर वालों को सबसे ज्यादा पसंद आई है।
4: हाँ, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो भाई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं खाने में, कुछ नया बनाते हैं, कुछ पहले से जो बना रहे होते हैं वही बनाते हैं।
9: दीदी मैं तो एक बार केक बनाया था, बहुत मस्त बना था केक, लेकिन बर्तन खराब हो गए, तो दादी जी ने किचन में घुसना ही बंद कर दिया मेरा।
4: हाँ भाई, बर्तन को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आगे भी तो बताना है।
1: और फिर वो लोग बोलते हैं, चल बर्तन तो खराब कर दिया पर खाना अच्छा बनाया है।
9: ये भी नहीं बोलती मेरी दादी, तो बोलती है तू खा ले खुद, मेरे को नहीं खाना।
4: हाँ, कई बार बड़ों को और बच्चों को जो पसंद होता है उसमें भी तो अंतर होता है ना। है ना, बड़ों को क्या पसंद होता है जो वो खाते आ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल खाना, और कई बार हम बच्चों को क्या लगता है, अच्छा कुछ नया नया बनाना, केक बनाना, ये बनाना है,
9: फास्ट फूड
4: पसंद होता है। अच्छा, आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है?
3: दीदी खाना खाना तो पसंद है, पर कई बार जब मूड होता है ना कि हाँ चलो आज बना लेते हैं, तब बनाते हैं। वो मुहूर्त कभी कभी ही आता है,
4: कभी कभी आता है वो मुहूर्त, जब घर वाले इतने लकी हो कि उनको कुछ बना के खिलाया जाए, है ना?
3: जी हाँ।
4: ओहो,
9: एक बार तो मैं घर पे अकेली थी, तो मैं रोज एक घंटे के बाद मैं डिशेज बनाती जाती थी और खुद खा लेती थी। क्योंकि जब घर में होते हैं तब कोई किचन में जाने नहीं देता मेरे को ज्यादा।
4: क्योंकि अभी हमें खाना बनाना तो आता है, लेकिन और कायदे से बर्तन रखना और चीजें रखना वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
9: वो मैं कर देती हूँ तब भी दादी जी कमियां निकालती रहती है, ये देख काला हो गया बर्तन, अब से पकाना मत इसमें,
4: काला हो गया होगा ना।
9: हाँ।
3: पर दीदी डांटते जरूर है, पर वो अंदर से खुश होते हैं, बस बताते नहीं है। अगर ऐसे डांट मारेंगे ना, कमियां बताएंगे, तो ही तो आगे उनको ऐसे सुधारेंगे।
4: को कमियां धीरे धीरे सुधर भी जाती हैं, है ना? अभी तो हम बच्चे हैं, है ना, धीरे धीरे करते करते। अभी से आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो बाद में तो कितना ही अच्छा करोगे। अच्छा, सबको क्या क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा, कौन बताएगा पहले? शिवांशी?
3: दीदी आलू के परांठे।
4: ओके।
6: दीदी मुझे छोले भटूरे।
4: शिक्षा को?
8: पाव भाजी, आलू के पराठे।
9: मेरे को पनीर की सब्जी।
4: ओके।
1: मुझे सब कुछ पसंद है।
4: कुछ फेवरेट नहीं है?
1: फेवरेट है क्या? पाव भाजी फेवरेट है।
4: तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, दो लोगों को आलू के पराठे, दो लोगों को पाव भाजी। हाँ
6: दीदी, आपको पता है भाजी मुझे पसंद है, पर पाव से मैं दूर भागती हूँ।
4: क्यों?
6: पसंद नहीं जो ब्रेड का होता है, और ब्रेड मुझे पसंद नहीं।
4: तो फिर रोटी से खा लो।
6: घर में मिला अलग रोटी बनती है।
7: पाव तो घर में भी बनते हैं, मेरी बड़ी दीदी बनाती है।
4: हाँ, बना सकते हैं घर में भी। अनुष्का कुछ कहना चाह रहे?
8: दीदी मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी मौसी ने बनाया था पाव भाजी।
4: बहुत अच्छा बना था। ओके, सबसे अच्छा खाना अभी तक, मतलब खाना तो हमेशा ही अच्छा खाते हो, पर आपके घर में जो बनता है वो आपको क्या पसंद है, जो आपके घर वाले बनाते हैं बहुत टेस्टी जो लगता है? अमीक्षा से शुरू करते हैं।
1: मुझे मेरे नानी यहाँ के हाथ की आलू की सब्जी बहुत पसंद है।
4: ओके।
9: मेरे को दो चीज पसंद है, एक कटहल की सब्जी, दूसरी पनीर की।
4: कौन बनाता है?
9: दादी जी।
4: अरे वाह।
8: मेरे को पराठे।
4: कौन बनाता है घर पे?
8: नानी।
4: अरे वाह, कितने लकी हो आप लोग।
7: मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है।
6: दीदी मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए मुझे कटहल की सब्जी अच्छी लगती है, मेरे बहन के हाथ के बनाए हुए मोमोज अच्छा लगते हैं।
4: ओके, शिवांशी।
3: दीदी मेरी मम्मी तो सब कुछ ही अच्छा बनाती है, जो बनाती है बस हम खा लेते हैं।
4: सबसे अच्छा लेकिन क्या लगता है?
3: मशरूम की सब्जी।
4: तो कभी मम्मी लोग को थैंक यू बोला नानी को दादी को कि आपने बड़ा अच्छा बनाया आज, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
9: हाँ, हमेशा ही बोलती हूँ मैं।
3: दीदी बोलते तो है, फिर कहते मक्खन मत लगा, पता है कुछ और बनाने की बात होगी।
4: कुछ और बनवाना होगा।
6: दीदी आपको पता है मम्मी के हाथ का हर एक खाना अच्छा लगता है,
4: जो बनाते सब अच्छा लगता है।
6: और अब बहने बना दे दूर भागते खाना नहीं बनता था।
4: अमीक्षा।
1: दीदी ये सब खाना सुन के मुँह में पानी आ गया
4: है ना। अभी तो एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है।
6: दीदी सही बोला।
4: अब लेकिन बात शुरू हुई है तो आगे तो जाएगी, है ना। खाने के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं।
9: जब मैं दादी को बोलती हूँ ना, दादी मेरी फेवरेट सब्जी बना दो, तो दादी जी बोलती है इसलिए तंग करती है मेरे को, नहीं बनाना जा। फिर मैं घर पे आती हूँ ना तब बनाई हुई रहती हूँ।
4: देखो दादी कितना प्यार करती है आपसे, है ना।
3: दीदी हमने तो अपनी फेवरेट डिश बता दी, आप तो बताओ।
4: मेरी फेवरेट डिश, मुझे भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, एकदम फेवरेट, है ना, आलू का पराठा।

0: का मिलता है वो भी, मम्मी पापा का मिलता है वो भी, और बहनों का जो मिलता है वो भी।
1: वो तो दीदी बहुत अलग है।
0: भाई बहनों से लड़ाई भले होती है लेकिन देखो आपकी बहनें आपको बना के खिलाती है कि नहीं।
1: उनको मैं भी बनाती हूँ, बना के खिलाती हूँ, मेरे को बना के खिलाती है।
2: हाँ। दीदी एक बार है ना मैंने ना आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को नहीं खानी, तूने बनाई है तो कड़वी बनाई होगी। मैंने बोला आलू की सब्जी कौन कड़वी बनाता है, तो बोले मैंने बोला नहीं खानी, तो बोला नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा वो तो नहीं खा रहा, मैं शाम को खा लूंगी। फिर मैं सो गई, फिर जब उठी ना तब देखा मेरा भाई किचन के जो वो होता है ना खाना बनाने का उस पे चढ़ के खा रहा था। बोले इतना बुरा तो नहीं बनाया।
0: भाई बहनों की तारीफ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना।
3: दीदी ऐसे लगता है अगर तारीफ कर दी ना इज्जत कम हो जाएगी,
0: तो फिर तारीफ नहीं कर सकते ना पूरा। और फिर कुछ अच्छा काम किया उसने तो क्या करेंगे फिर,
3: बस ऐसी कर दिया बस, और क्या बाद में चाहे सोचेगी हाँ अच्छा काम कर, उसके सामने नहीं बोलेंगे।
2: और दीदी बोलते हैं बस लगा लिया मक्खन और थोड़ा लगा ले,
4: अगली बार और बेहतर करता।
1: दीदी अगर हमने खाना चखा अच्छा लगा तो अगर पूछती अच्छा लगा, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ले जाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा होता है तब भी।
1: हाँ बोलती मेरे खाने की हमेशा ऐसी तारीफ करती है। मैंने बोला इज्जत नहीं कम करनी मेरे को।
0: फिर खाने को मिलता है कि नहीं
1: मिलता है ना दीदी,
0: मिलता है ना।
1: वो जाती है कहीं और मैं उसको प्लेट को लेके बैठती हूँ खाना खाने।
0: शिक्षा
5: मेरी दीदी तो मुझे घर में बहुत सारी चीजें बना के खिलाती है, बस मुझसे कहती है तुम कब खिलाओगे।
0: क्या बनाती है दीदी?
5: दीदी फोन पे से देखती है तरीके तरीके की चीजें, मोमोज बनाती है घर पे, उन्हें पाव भाजी बनाई, पास्ता के नए रेसिपी ट्राई करते हैं।
0: अरे वाह।
5: और मैं कभी कुछ बनाऊं गंदा बनता है ना तो अभी दीदी है ना बुरा नहीं बताते। और पापा तो अगर मैंने पराठा कच्चा भी सेका हो ना वो भी खुशी से खा लेते हैं क्योंकि उसने ट्राई किया। और दीदी भी है ना कभी कुछ बनाती है मुझसे ही पूछती है क्योंकि मैं ही उनका परफेक्ट बताती हूँ कि हाँ अच्छा है या इसमें नमक कम है ज़्यादा है। बाकी मम्मी पापा तो कभी कोई कमी नहीं निकालते,
0: उनको लगता है कि बनाया तो अच्छा, इतना बनाया वो बहुत अच्छा ना, घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ, ट्राई तो किया है,
0: ट्राई तो किया, बड़ी बात है बिल्कुल, और अच्छा बनता भी है।
5: हाँ।
0: कभी थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है।
4: दीदी ऐसा हो तो हमारा घर ही स्वर्ग ना बन जाए।
0: तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना स्वर्ग घर को, है ना।
4: लेकिन कोई इतना सपोर्ट करे घर में
0: तो सपोर्ट आप करो सबको।
4: हाँ वो तो मैं करती हूँ,
0: है ना। बहुत अच्छी बात है। और बड़ों की तो डांट में भी प्यार होता है ना।
5: हाँ,
0: उसको तो सिखाने के लिए वो डांटते हैं, हमको असल में थोड़ी डांटते हैं। वो हमारा बुरा सोच सकते हैं क्या कभी, बताओ सच्ची में बुरा सोच सकते हैं कभी हमारा?
4: नहीं,
0: कभी भी नहीं। हाँ। और कितना प्यार करते हैं, जो फेवरेट फेवरेट चीजें बना के खिलाते हैं।
1: हाँ। और दीदी अगर मान लो गुस्सा हो गए ना फिर आके बोलते हैं ये तो मेरा प्यार था तू क्यों गुस्सा हो गई।
3: ऐसे ही बोलते हैं क्या?
1: नहीं नहीं ऐसे नहीं, पर मेरी आवाज ऐसी है, ऐसे आएंगे मारेंगे फिर बोलेंगे ये तो मेरा प्यार था गुस्सा क्यों हो गई।
0: हाँ असल में तो प्यार ही होता है वो।
1: दीदी आपको एक और बात बताऊं, देखो जो खाना बनाते हैं घर का वो मेरी मम्मी बनाती है, वो वैसे बनाती है। और जो बाहर की चीजें जैसे मोमोज चाउमीन पाव भाजी ये सब ये मेरी बहना बनाती है, उसको हमारे घर का मास्टर शेफ बोलते हैं।
0: हाँ कुछ नई नई डिशेस देख के ट्राई करते हैं ना यूट्यूब से।
1: यूट्यूब से नहीं, उसको पहले से बनानी है,
0: उनको पहले से आती है। अरे वाह ये भी बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना तो बहुत बड़ी आर्ट है।
3: मेरी मम्मी तो ना जब भी उनका मन करेगा कभी मोमोज बना देंगे कभी कुछ बना देंगे, बस उनकी मर्जी की बात है, हमारी मर्जी का कुछ बस नहीं चलेगा। जब उनकी मर्जी होगी हाँ आज अमृतचरी बड़े बनाना है तो अमृतचरी बड़े ही बनाना है, कुछ और नहीं बनेगा घर में।
0: उनको तो रोज सोचना पड़ता होगा ना आज क्या बनाना है आज क्या बनाना है, है ना। घर में तीन टाइम बनाना और फिर प्लानिंग करना उसकी थोड़ी मुश्किल है।
2: और दीदी पूछते कुछ और है और बनाते कुछ और है।
0: ऐसा तो होता है,
3: एक बार ऐसा ही हुआ था, मम्मी ने पूछा था मोमोज खाएगी, मैं कहा हाँ हाँ बना लेते हैं बना लेते हैं। मैं जब शाम को फिर घर आकर देखती हूँ ना मैंने क्या देखा, मम्मी ने नूडल्स बना रखे हैं, मैं कहा अब तो मोमोज बना रहे, कहते नहीं मेरा मन बदल गया था।
0: हाँ।
3: मैंने इतने मूड बना रखा था कि हाँ आज तो मोमोज खाएंगे, सारा मूड खराब।
0: नूडल्स कैसे लगे फिर?
3: नूडल्स तो टेस्टी थे
0: ना।
4: कभी कभी दादी जी पूछती है भिंडी खाएगी आलू, मैंने बोला भिंडी, तो उन्होंने बोला नहीं आलू ही बना लेती हूँ, मैं बोलती हूँ फिर पूछा क्यों।
2: पूछते कुछ और बनाते किचन में जाके कुछ और है, बोलते हैं मैं तो भूल गई।
0: और भी काम होते हैं ना बहुत सारे।
2: हाँ।
0: लेकिन वो लगता कैसे, लगता तो टेस्टी है ना।
1: हाँ। दीदी मम्मी के दादी के हर हाथ का खाना अच्छा ही लगता
0: है, सब अच्छा लगता है। अच्छा चलो अब अपने हाथ की बात करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मुझे ये बताओ।

0: अब तक घर पे? दो शिवांशी
1: दीदी, बना तो सब कुछ रखा है, बस वो कभी कभी बनता है।
0: क्या क्या बनाया? अच्छा, एक आध चीज बताओ।
1: आलू के परांठे हो गए, केक हो गया, पिज्जा हो गया।
0: अरे वाह,
1: होता नहीं तो बताने लगूंगी तो रात आ जाएगी ना।
0: सब कुछ बनाया है आपने खुद?
1: हाँ जी, सब कुछ बनाया, बस वो कभी कभी बनता है कोई स्पेशल डे पे।
0: ओके, वेरी गुड।
2: दीदी मैंने केक बना रखा है घर में, चावल बना रखे, चावल को छौंक भी रखा है, दस पराठे बना रखे और रोटी बना रखी है और चाय बना रखी है।
0: वेरी गुड।
2: और शरबत बना रखे है।
0: शिक्षा, आपने क्या क्या बनाया?
3: मैं तो घर पे ज्यादा ज्यादा मम्मी मुझसे सेव भाजी बनवाती है, बोलती है तुम वही अच्छा बनाते हो। जब भी घर पे है ना सब्जी नहीं होगी कुछ, तो मम्मी मार्केट से है ना सेव वाले नमकीन मंगाएंगे और मुझसे बोलेंगे तुम बनाओ जा। और जैसे कि भिंडी वगैरह हुआ, ये चीज बनाते हैं ना, तो ये चीज तो मैं ही बनाती हूँ घर पे, क्योंकि बोलते हैं तुम्हारे हाथ से ही अच्छा लगता है ये टेस्ट।
0: भिंडी?
3: हाँ।
0: अरे वाह, सेव भाजी भी बहुत अच्छी डिश है ना।
3: हाँ।
0: बहुत अच्छी लगती है। और अनुष्का, कुछ आपने ट्राई किया? अभी तो आप छोटे हो है ना।
4: हाँ, मैंने तो केक, मेरे को ज्यादा बनाना आता है।
0: केक आता है आपको बनाना? बाप रे, अच्छा किससे सीखा आपने?
4: नहीं, मैं खुद ही फोन में रील्स आती है ना, उसमें देख के बना सकती हूँ, उसमें बहुत सिंपल दिखा।
0: अच्छा, तो आपने बनाया है कभी केक या नहीं?
4: हाँ, एक दिन तो मेरे भाई के बर्थडे पे मैं बना रही थी, मेरा भाई ना बोला चल इतना भी अच्छा नहीं बनाएगी, नहीं बनाना। वैसे कि वो बुराई निकालते, लेकिन जब खाते तब अच्छा लगता है उनको।
0: ऐसे करते हैं ना भाई बहने, पहले तो ऐसे बोलते हैं और फिर खा लेते हैं चुपके से, कभी कभी तो सामने ही।
4: हाँ, चुपके से खाते हैं।
0: सब भाई बहन जैसे होते हैं,
2: फिर बोलते इतना बुरा तो नहीं बना।
0: इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ऐसा नहीं बोलते ना।
2: हाँ। अगर दीदी ऐसा बोल दिया, जिस दिन हमने बोल दिया वाह ऐसा बोला, बोलते इज्जत कम हो गई, नहीं बोलना था मुझे।
0: हाँ, ये भाई बहनों का प्यार दिखाने का तरीका है।
1: जिस दिन ऐसे बोल दिया ना, उस दिन तो धरती में स्वर्ग आ जाएगा।
0: और रानी ने क्या क्या बनाया?
5: मैंने केक बनाया, पिज्जा बनाया, पोटैटो नगेट्स बनाए, फ्राइज बनाए और शरबत भी बनाए बहुत सारे। और घर की चीजें तो आती है, दाल चावल सब्जी रोटी, मैं तो नई चीजें ट्राई।
0: हाँ, शरबत तो आपने यहाँ भी सबको पिलाया था, बहुत अच्छा आमपना बनाया था रूहानी ने।
5: हाँ।
0: है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अमीक्षा?
6: दीदी मैंने नूडल्स बनाए, चाउमीन बनाया है और घर की चीजें तो मैंने सब्जी रोटी सब कुछ बनाया है। मैं नए नए फोन में से देख देख के बनाती हूँ, और चाउमीन और नूडल्स तो मेरे मासी ने सिखाए थे मुझे।
0: अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग तो बड़ी सारी चीजें बना लेते हो अभी से।
5: दीदी जब मैं छोटी थी ना, मैं सोचती थी दादी जी को देख के कि इतने सारे मसाले दादी जी याद कैसे रखती है, कब कौन सा डालना है, मुझे तो समझ भी नहीं आता मसाले का नाम क्या होता है। फिर अब जाके पता चला सब एक साथ ही डालना है।
0: हाँ, लेकिन फिर भी कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी, मम्मी लोगों को, दादी नानी को कितनी प्रैक्टिस होती है, बहुत एक्यूरेट डालते हैं कि नमक भी ठीक पड़ेगा, हल्दी भी ठीक पड़ेगी, है ना। एक्यूरेसी कितनी होती है। हाँ मीक्षा।
6: और दीदी एक बार तो मेरी नानी ने बोला गरम मसाला ले, मैं कोई और ही मसाला लेके आ गई। तो नानी ने बोला कि तुझे मसाले में अंतर नहीं दिखता, मैंने बोला नहीं मुझे सारे मसाले एक जैसे लगते।
0: एक जैसे लगते हैं। हाँ
1: दीदी जब मैं छोटी थी ना, मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में, तो मम्मी ने मेरे को बोला था गरम मसाला ले बाजार से। मैं बाजार में गई तो सिर्फ मसाला कल नहीं, मैं अंकल मसाला तो गरम ही नहीं है, गरम मसाला तो घर आके मम्मी को बताया। हाँ। कहते पागल गरम मसाला ना, मैं गरम नहीं होता
0: असल में, गरम नहीं होता। हाँ, जब छोटे होते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कि क्या मतलब है ना
1: उस बात पे। अभी मेरे भाई बहन मेरे को चिढ़ाते, कहते गरम मसाला लेके आती नहीं है तू,
0: ठंडा मसाला ले आई। तो अब आप लोगों को सब दालों के नाम पता है, सब मसालों के नाम पता है सबको?
2: दीदी मेरे को पता है नमक, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, राई, जीरा,
6: ये तो हमें याद है, हमें वो दाल होती है ना उसके नाम याद।
0: दाल तो कोई भी अच्छा पहचान में आ जाती है कौन सी दाल बनी है।
1: दीदी दालों के नाम तो याद नहीं रहते, कलर से याद करते हैं, ऑरेंज वाली दाल, येलो वाली दाल, ब्लैक वाली दाल,
5: यही होता है।
0: तो
5: बस
0: इस बार
5: खाने में टेस्टी होती है उतना बहुत है मेरे।
0: इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सारी दाल के नाम पता करके आना, कौन सी दाल होती है, अरहर की है कि मसूर की है ना, कौन सी दाल।
2: आपको पता है मेरे को दालों के नाम कैसे पता है? क्योंकि घर की दाल मैं ही लेके आती हूँ।
0: हाँ, जो लेके आता है उसको तो पता ही है, लेकिन नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता करके आना इस बार, ठीक है सब लोग। हाँ बताओ
4: दीदी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है।
0: मेरी फेवरेट डिश जैसा मैंने बताया था वो भी पसंद है मुझे, और अभी के अगर डिशेस की बात करें तो अभी भी अच्छे लगते हैं, नूडल्स भी अच्छे लगते हैं, पिज्जा भी अच्छा लगता है, बहुत सही फेवरेट डिश है ना।
5: दीदी आपने कभी ट्राई किया है क्या कोई डिश बनाने की?
0: हाँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो काफी समय से अलग भी रहती थी, जैसे बाहर पढ़ाई करने गए तो हम खुद खाना बनाते थे अपना, तो समय दाल रोटी सब्जी ये सब तो बनता ही था। कचौड़ी, तहरी, नूडल्स वगैरह भी बनाते थे. आपने दाल की कचौड़ी खाई है?
1: हाँ जी दीदी.
0: है वो बनाते थे
6: दीदी, बहुत अच्छी लगती है.
0: है बहुत अच्छी लगती है ना
1: दीदी. इतने वैरायटी के खाने सुन के ना सही में भूख लग रही है
0: अब. हाँ नाश्ता किया है थोड़ी देर पहले पर फिर भी भूख लगने लगी है ना.
6: दीदी मुँह में पानी आ रहा है.
5: पानी में मुँह आ रहा है.
7: तो पानी में मुँह कैसे आएगा?
5: हीरा पानी.
0: तो चलो इस बार यानी समर्स में आप लोग कुछ और भी हेल्दी, इस बार एक काम करते हैं, एक थीम रखते हैं कि आप लोग जो हेल्दी डिशेस होती है ना जिसमें बहुत फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें ऐसे यूज करके कोई हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी डिश क्या बना सकते हो, वो कोई नई जो अब तक नहीं आती, जो अब तक सीखी नहीं है, वो सोच के या देख के आना. ठीक है, तो दालों के नाम याद करने हैं इस बार, और कोई हेल्दी डिश या ड्रिंक क्या बना सकते हैं और क्या खिलाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, वो तैयार करके आना है. ठीक है?
7: ठीक है.
0: तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ वो रेसिपीज शेयर करेंगे. ठीक है, तो हेल्दी डिश की रेसिपीज और हेल्दी ड्रिंक्स की रेसिपीज भी अगर आपको जाननी है तो बच्चों की दुनिया में बने रहिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको बताएंगे बहुत नई नई इंटरेस्टिंग डिशेस, और उनकी दुनिया में भी हम सफर करेंगे और जानेंगे कैसी होती है बच्चों की दुनिया, क्योंकि भाई बड़े भी तो कभी ना कभी बच्चे थे, तो वो दुनिया तो हमारे अंदर भी हमेशा ही रहेगी. फिलहाल वक्त हो गया है लेने का इजाजत. तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सभी आपको करते हैं गुड बाय.

0: हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बाल संसार में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पर, सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता। मुख्य भाग आज के इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे रचनात्मक सोच और नवीनता हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नए और अनूठे तरीकों से हल करना। यह कौशल हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। रचनात्मक सोच के कई प्रकार होते हैं।

0: जैसे कि पार्श्व सोच, आलोचनात्मक सोच और कल्पनाशील सोच। इन सभी प्रकारों का उपयोग करके हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोग आ गए हैं आपके साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड में हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर हमने बातें की और इस दृष्टिकोण के साथ ही कुछ प्रश्न रह गए थे और सार्थक नवीनता की परिभाषा की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। तो आइए, मैं चाहूँगा कि सार्थक परिभाषा क्या है और ये सामान्य नवीनता से कैसे भिन्न है, ये बात बताइए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न भी है और बाल जगत के लिए हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बाल संसार को एक नई दिशा देने में सहायक होगा। और जब हम बात करते हैं सकारात्मकता की तो शुरू में इस शब्द को सुनते ही थोड़ी सी बोझिलता मालूम पड़ती है और बच्चों को ऐसा लगता है कि ये विषय जो है वो बड़ों तक सीमित है या बड़ों के लिए बना हुआ है। लेकिन जब वो इसकी गहराई में जाते हैं या बड़े कई बार उनको छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करते हैं कि आप बेटा जो भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को मेंशन करना। और जय कई बार आप नॉलेज के बेस पर देखते हैं, स्किल के बेस पे देखते हैं और एटीट्यूड के बेस पे देखते हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि ज्ञान तो हमको है और जिस स्तर का ज्ञान है उससे हम अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन ज्ञान के परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य में जब कोई नई बात हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये ज्ञान हमको कहीं ना कहीं अपने जो नॉलेज है उसमें वैल्यूएशन करना चाहिए। और कुछ कुशलता की बात भी आएगी, स्किल की बात आएगी तो वहाँ भी बच्चे कहीं ना कहीं जागृति का भाव महसूस करते हैं। लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि ज्ञान और कुशलता दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होगा, हमारा एक ओवरऑल थिंकिंग निकल के आएगी जिसको हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं कि एक सोच हमारे पास में थी, एक चिंतन हमारे पास में था, एक नए चिंतन के प्रति हम जागृत हुए हैं और इस जागृति को जब हमने स्वीकार किया है तो वहाँ से अपने ओवरऑल एटीट्यूड में हम चेंज ला सकते हैं और पॉजिटिविटी को एक नए तरीके से समझ सकते हैं। जी
1: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अजय जी। और जैसे कि हमने यहाँ भिन्न कैसे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न ये भी आता है कि जो सार्थक नवीनता में उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को पूरा करने का क्या महत्व है।
2: बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब उपयोग की बात आती है तो मैंने एक बात और कही थी कि कोई भी इंसान अच्छा है, वो बहुत अच्छा हो सकता है और उसकी अच्छाई उस तक सीमित है। लेकिन जब वो अच्छाई सोसाइटी में कम्युनिकेट होती है या कन्वर्ट होती है या डेडिकेट होती है तो मेरे साथ साथ में कुछ और लोगों को भी खुशी मिलती है। मैंने कोई कर्म किया या उदाहरण के लिए मैंने मन से कोई काम किया तो मुझे लग रहा है या कुछ मन से अनुकूल या प्रतिकूल होने पर माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करेक्शन कर लो, तो हम थोड़ा सा एक रोष व्यक्त करते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगता है कि क्या हम ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई दृष्टि ही नहीं है। तो वो वहाँ पर माता पिता ये समझाते हैं कि एक मन जो आपका है जिससे आप सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन इस मन से हजारों मन दुखी हैं, ये बहुत सारे मन को तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें माइनर अमेंडमेंट कर लिया जाए, अकॉर्डिंग टू मर्यादा हो जाए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के एक्सेप्टेंस हो जाए, परिवार उसको स्वीकार करे तो इतनी सारी जो सामाजिक स्वीकृति एक्सेप्टेंस है अगर वो बढ़ती है तो इसका मन है कि एक मन जो कुछ सोच रहा है, करना चाह रहा है, उस पर कोई बैन नहीं है लेकिन उसको एक दिशा दी जा रही है कि उससे बहुत सारे मन को सुख शांति आनंद प्राप्त हो सके। तो वो जो माइनर हम चेंज करते हैं वो हमारी दृष्टिकोण को इस बात के लिए तैयार करता है कि केवल हम सकारात्मक नहीं हैं बल्कि सार्थक भी हैं। माने मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं उपयोगी भी हूँ, मैं समाज के किसी काम में आता हूँ, मुझे समाज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार बड़े उदाहरण भी देते हैं कि ठीक है बेटा एक काम करो, ये तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुमको अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये एक ग्लास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो तुम बताओ कि क्या स्थिति है। लेकिन जब बच्चा बोलता है कि ये आधा खाली है, तो वहीं उसे समझाने का प्रयास किया जाता है कि अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर होती तो बेटा आप क्या देखते, आप देखते कि आधा गिलास भरा हुआ है। अब आधा गिलास भरा हुआ है और बाकी आपने नहीं बोला तो अंडरस्टूड है वो, लेकिन आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, आप जिस लेवल पर अपने ब्रेन को, अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को, दोनों तीनों को मिला के देख रहे हो, इससे पता चलता है कि हमारी दृष्टि में ये आधा गिलास भरा हुआ है। अब इसमें जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है, और वो हो सकता है उसका ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन एक कॉमन सेंस हमारी सोच को बताता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, हम खाली की ओर नहीं देख रहे हैं। और जब वैज्ञानिक दृष्टि उसमें वैल्यूडेशन के रूप में होती है तो वहाँ ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि बाकी में एयर है। अब आधे ग्लास में पानी है और आधे में हवा है, वो खाली नहीं है। इसका मतलब है कि भरपूरता को देखने की दृष्टि हमने विकसित कर ली है। और ये दृष्टि इस छोटे से उदाहरण से क्यों आपको समझाई जा रही है, उसके पीछे कारण है कि जब भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि वो उसका जो चिंतन होता है वो अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता है। अब ऊंचाई की ओर जाना थोड़ा सा हमको श्रम लगेगा, हाथ पैर चढ़ना पड़ेगा, तैरने में भी आप देखें पानी की विपरीत दिशा में जाना तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट कर रहा है, पसीना बह रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जिस दिशा में पानी बह रहा है, संसार जहाँ जा रहा है, आप बिल्कुल सहज भी हो जाओ और बिल्कुल सांसों को हल्का सा रोक लो तो भी आप बहते जाओगे, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जहाँ प्रयास है वहाँ सकारात्मकता है, और सकारात्मकता आपको एक नई दिशा देती है कि आप एक काम करिए कि जिस चिंतन को आप फलीभूत करना चाह रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी को आप व्यक्त करें। लॉयल्टी इन द सेंस कि वो जो सकारात्मक चिंतन है वो आपको एक जिम्मेदारी महसूस करा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में जब जवाबदेही की बात आती है तो वहाँ हमारे मन में सार्थकता के प्रति जो दृष्टिकोण था वो फलीभूत होता है, परिणाम में आता है। और जब सकारात्मकता के साथ सार्थकता की बात हो और परिणाम आपको प्राप्त हो रहा हो तो आपके एफर्ट, आपका पुरुषार्थ, आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म सभी को आपने एक नई दिशा दी है, एक प्लान किया है, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, और उसी का परिणाम है कि वहाँ आपको चीज़ें रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रही है, और वो भी रिजल्ट सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। और ऐसी भरपूरता को जब हम महसूस करते हैं या क्रियात्मक रूप से लेके आते हैं समाज के सामने तो वो उसको एक्सेप्टेंस में जाने में देर नहीं लगती और उसका फीडबैक भी पॉजिटिव आता है। और फीडबैक आने में भी जो वैल्यू एडिशन होता है, अगेन आप नवीनता के लिए प्रयास करते हैं कि अभी जो फीडबैक आया है नेक्स्ट टाइम में अपनी जो थिंकिंग है इसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा जिससे कि वो व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हितकारी हो, और कुल मिला के उन तमाम चीज़ों से परोपकार या मंगलकारी कार्य की सुनिश्चितता बढ़ जाए। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है, और सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आपने जो बातें बताई बहुत ही उपयोगी बताई आपने। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को अगर हम लोग गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन जाता है। तो इस पर मैं अभी आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा अगर काम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और माता पिता बच्चे सब जो है एक साथ रहते हैं, एक रूटीन बन जाता है, और एक जो है रूटीन में क्या हो जाता है, मोनोटोनस आ जाता है, और उसके वजह से हमारे जीवन में हम कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जब ये मोनोटोनसनेस आ जाता है तो हम चाहकर भी कोई नवीनता उसमें ला नहीं सकते, और ऐसे में हमें जो है थोड़ा सा विचार मंथन करने की ज़रूरत है। जब हम विचार मंथन करेंगे और किसी थर्ड पर्सन को, यानी जो आपके फैमिली से नहीं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं या उनको पूछ लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर दे देगा, ताकि आपकी क्रिएटिविटी भी मिल जाएगी और आपको नवीनता भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से किसी थर्ड पर्सन को, मेंटर को बताने की कोशिश करते हैं या कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें विदेश में बहुत ज़्यादा जो है कंसल्टेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मेंटर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और वो उनको सिखाया भी जाता है और उनको ख़ास पेमेंट देकर उनको बुलाया जाता है या उनके साथ जाके मिलते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण दे, अगर कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हैंग होने पर हम रिसाइकल बिन में जाके कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जितनी हमारी जानकारी है, उसके बाद भी काम नहीं करता, तो हमें किसी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है और वो बंदा आता है और दो मिनट में समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और वो अपने कमांड्स देकर उसको क्लीन कर देता है और आपका कंप्यूटर साफ़ सुथरा और स्पीडली चलने लगता है। तो यही बात है कि हम भी जब मुश्किल में आ जाए तो बेझिझक, एक बीमारी में जैसे कुछ बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, वैसे आप एक कंसल्टेंट या मेंटोर के पास ज़रूर अपने इस सिचुएशन को लेकर उनसे बात कीजिए, बात करने से आपको जवाब मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को, और बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही डॉक्टर अजय शुक्ला जी से। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि आपने जो बातें हमें सुनाई हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में, इसके साथ ही मैं ये चीज़ें जरूर जोड़ना चाहूँगा कि इसके विभिन्न तरीके क्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी आँखों को खोलता हूँ और मुझे संसार में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि गूगल देवता मेरी बड़ी मदद करेंगे। और मैंने उसमें एक शब्द बोल दिया, एआई। अब एआई बोल दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने क्लैरिटी से आ जाएगा। पूरा का पूरा यूथ चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कैच कर लूँ। अब एक बच्चा मेरे पास में आता है और कहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम करते हैं कि आपको पास में मेट्रो सिटी है, इंदौर एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ चलते हैं। और वहाँ एक प्रोग्राम है, बम्बई से एक टीम आई है, मुंबई से वो लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो उसमें एक सीनियर प्रोफेसर वहाँ से आ रहे हैं, प्रोफेसर रत्नाकर अहिरे जी। तो क्यों नहीं हम उनसे मिलवाएंगे आपको और कुछ संवाद होगा। और इट मे बी पॉसिबल कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल नोन है और इस फील्ड में काम करते हैं और आपकी मदद करेंगे। अब इसी बीच में उनको मऊ से इंदौर आने में टाइम हो जाता है और एक और प्रोफेसर जो मेरे मित्र हैं और इंदौर में ही हैं, उनका आगमन हो जाता है। और मैंने कहा कि संयोग से ये पूरा प्रोग्राम 7 बजे के बजाय 10 बजे अब हो पाएगा। अब यहाँ पर बच्चे से मैं बात कर रहा था कि अब आप बताओ, 3 घंटे का डिले है, हम बिफोर टाइम आ गए हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या मदद कर सकता है, क्या हमें इस 3 घंटे की रिकवरी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। तो बच्चे ने अलग अलग उदाहरण बताया, फॉर एग्जांपल कि म्यूजिक हम सुन लें, अभी कोई थिएटर में चल के फिल्म देख लें, ये सारी बातें। उसी समय एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अभय गुप्ता जी वहाँ पर आए और उनसे मैंने परिचय कराया और मैंने कहा कि ये बच्चा ये जानना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इससे पहले कि इस बच्चे को आप गाइड करें, तो उन्होंने संयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने की बात कही और ये भी कहा कि जो इंसान आपसे मेरा परिचय करा रहे हैं, ये हम लोगों को पढ़ाते हैं, ये प्रिंसिपल को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर को पढ़ाते हैं, और इनकी सहजता और देखो आपकी, ये आपका रिलेशन मेरे से जोड़ रहे हैं और मेरे से बातचीत करा रहे हैं। सारी बातचीत होती रही, बच्चे ने 1-1.5 घंटे काफ़ी सवाल किए। लास्ट में जब उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, चूँकि प्रोग्राम लेट होगा और आप चूँकि वहाँ स्पीकर हैं, तो एज ए स्पीकर आपको रुकना पड़ रहा है, तो इस सारी प्रक्रिया में बच्चे से मैंने लगभग रिमेनिंग टाइम में 1 आवर और बात की और कार्यक्रम में वो बच्चा भी शामिल था। तो उसने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है और इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है और जो आप सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचा कैसे जाए, कौन करेगा, हु इज क्रिएटर, भाई आखिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं कि मैं सबसे पहले आपके माथे पर हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं कि यहां से सेल्फ इंटेलिजेंस क्रिएट होता है, ये सेल्फ इंटेलिजेंस की मशीन है और ये आपको बताएगी कि आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल क्या है, इसको आप ढूंढो, मैं आगे मदद करूंगा आपकी। फिर मैंने कहा कि इसी माथे में से एक और बात आती है सोशल इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस का वैल्यूएशन तो मैं कर सकता हूँ और मेरे पास जो क्षमताएं हैं, मैं स्वयं के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, आप भी ढूंढ सकते हो, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति तय करता है कि सामने वाले का जो ब्रेन है वो सोसाइटी में किस लेवल पर कंट्रीब्यूट हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसे भी हम देखेंगे। और इसी शरीर में नीचे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हार्ट है हमारा, साइंटिफिक लेवल पर वो केवल पंप करता है, लेकिन इमोशंस को के क्रिएशन की बात हम यहाँ से करते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम बात कर रहे हैं, किसी बॉडी के पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जो भावनाएं हैं, अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ क्रिएट हुआ और इसी के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट होता है क्योंकि जितनी भी भावनात्मक या रागात्मक स्थितियाँ आई हैं वो दिल से आई हैं। और ये कहा गया है कि आज मेरे हृदय में या कोई कोई किसी बात को कोई हर्ट होता है तो क्या बोलता है कि भाई तुमने आज ऐसी बात बोली कि मैं बिल्कुल, मेरे को हृदय में वो चुभ गई। तो चुभना भी होता है और दिल में कोई बात लग भी जाती है, लेकिन आप प्रफुल्लित हो गए, आप आनंदित हो गए और आज दिल गदगद हो गया, ये भी सिचुएशन है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्रेन है इसमें सेल्फ इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और हार्ट में इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एक और इंटेलिजेंस है और वो है सोल इंटेलिजेंस, जो दोनों ब्रेकुटी के बीच में जहाँ आत्मा का निवास है। अब ये आत्मा का निवास और आत्मा के बारे में जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो वो आपका सोल इंटेलिजेंस हो गया। अब दो और दो चार और एक पाँच इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद एक ह्यूमन बींग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता है। तो बच्चा मेरे से कहता है कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, तो मैं आराम से लिखूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो से बड़ा ह्यूमन बीइंग है और ये जब कुछ करेगा तब तो वहाँ परिणाम आने वाला है ना। वो रोबोटिक कल्चर में हम जा रहे हैं, रोबोट को सब कुछ दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में रोबोट जाके पेशेंट को बोतल दे देगा, मेडिसिन दे देगा, लेकिन वो मेडिसिन को यूज कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे देगा, लेकिन वो यूज कौन करेगा? वो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा ना। तो लास्टली डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेस की सेवाओं को हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग एक रोबोट जाके उस इंसान से हालचाल ले लेगा, वहाँ वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी, लेकिन एक नर्स जाके जब एक पेशेंट का हाथ पकड़ के पूछती है कि आपकी तबीयत भाई जी कैसी है, तो उस समय जो पेशेंट की मुस्कुराहट होती है वो उसको रिकवर करती है, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन उसकी उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर सकते। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए एक और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, जहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की और ह्यूमन नेचर की बात की, ह्यूमन नेचर से कैसे जो है हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये एक जब मनुष्य की बात करते हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं या मानवता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है मानवीय मूल्य भी बड़ा काम करता है। तो इसमें कृतज्ञता का अभ्यास करने से सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, सकारात्मक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए।
1: बहुत संवेदनशील प्रश्न है और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ जब भाव जगत होता है तो वो एवरी टाइम इंसान को मनुष्य बनाए रखने में मददगार साबित होता है। और जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं, आभार की बात करते हैं, तो एक नियम भी है कि जितना भी हमने अचीव किया है, एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, या कुल मिला के हमें जितनी भी प्राप्ति, कुल मिला के मैं अगर इसको प्रत्यक्ष रूप से कहूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान सोसाइटी में अच्छी स्थिति में है, तो इसके बैकग्राउंड में एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक राष्ट्र का योगदान है। वो बच्चा अचानक पैदा हुआ और सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया और वो एक्नॉलेज नहीं करे, तो उसका मन जब भावों से भरा होगा तो वो इंसानियत के मार्ग पर चल सकता है। तो इसलिए किसी भी किताब को हम लिखते हैं या कोई भी ज्ञान को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमारे आसपास के समाज से मिला। कुल मिला के मैं कहूँ कि एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा है, इसके पीछे भी पूरा समाज का योगदान है, और अगर कोई इंसान बुरा है तो वो अकेले बुरा नहीं हुआ है, वो सारी परिस्थितियाँ उसके परिवार और समाज में घटित हुई हैं, इसका परिणाम है कि वो बुरा है। तो अच्छा और बुरा कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, इसी समाज और इसी सोसाइटी से कर रहे हैं, और जो भी आपने प्राप्त किया है अगर इसको एक्नॉलेज करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो हमारे मन में कभी अभिमान की स्थिति क्रिएट नहीं होगी। और जब अभिमान से मुक्त हम रहेंगे तो उस स्थिति में हमारी जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक और सार्थकता से भरी हुई भी होगी, और हम मन से, अंतर मन से इस कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए जो भी एक्वायर कर रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम सहजता से निमित्त निर्माण और निर्मल स्वरूप में समाज को पुनः सौंप सकते हैं, आभार और धन्यवाद के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, कृतज्ञता किस तरह से हमारे जीवन को या सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है, और बहुत सारे ऐसे

0: क्लेश को मिटा देता है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय तक बीमार भी हो जाते हैं, लंबे समय तक वो जो दुश्मनी कह सकते हैं या कला क्लेश को लेके जीवन को तनाव डिप्रेशन से लेकर चलते हैं। कृतज्ञता भाव अपने आप ही सब कुछ कर देता है, शून्य कर देता है, लेने वाले को देने वाले को सबके लिए समान भाव से उसको शून्य कर देता है, और उसके प्रति भी आभार, दूसरे जो नहीं कर रहे हैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बड़ा अच्छा आपने बताया। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष जो कार्यक्रम है बाल संसार, जिसमें हम सार्थक नवीनता की बातें कर रहे थे और एक मूल्य के साथ हम कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक को लेकर। आशा करूंगा कि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको नई सीख मिल जाती है, तो आप सीखते रहें और जानते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे, और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: समापन। तो बच्चों, आज हमने जाना कि रचनात्मक सोच और नवीनता कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।

0: पसंद आई थी यही इत्तेफाक था, तुम पसंद आए थे यही इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए यह इश्क है।
1: मेरा नाम अमृता प्रीतम है और ये मेरी इश्क की तलाश है। यूं तो दिल लगाने का हुनर सबको आता है, पर खुश नसीब है वो जिन्हें इश्क मिल पाता है। दुनिया के लिए प्यार की तलाश शायद शादी के साथ खत्म हो जाती है, पर मेरे हाथ

0: यहाँ एक पली मोहब्बत की अधूरी दास्तान, जहाँ बातें बहुत कम होती थी मगर भावनाओं को बहुत शिद्दत से जिया जाता था। जहाँ उनके बारे में लिखा तो शायद बहुत गया मगर उनको जानता सारा जहाँ है। उनकी प्रेम कहानी न जाने कितनी अनोखी और जाने किस दुनिया जहान की लगती है, मगर ये सच है कि दोनों मिलते थे कॉफी हाउस में, अदबी मुशायरों में। तो अमृता को लगता था कि साहिर उनको बहुत चाहते हैं पर वो उनसे बोल नहीं पाते हैं। तो जी दोस्तों, आज हम आप सभी को बोल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसको शायद आप सभी जानते हैं, उनका नाम है अमृता प्रीतम।
1: जी हाँ वंदना जी, सही कहा आपने, अमृता प्रीतम।
0: जी हाँ, तो अमृता प्रीतम वो बेबाकी से अपनी हर बात को, हर ख्याल को कागज पर उतार कर सामाजिक कर दिया करती थी। वही हम में से न जाने कितनी ही लड़कियां और औरतें अपनी जिंदगी के उस हिस्से को ताउम्र से छुपाने नहीं लगा करती हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है। और वह उस गुस्से को दोहराती हैं तो सिर्फ अकेले में, अपने मन में, क्योंकि शायद उनमें से कितनी शादीशुदा होती हैं और वो जो उनकी जिंदगी का अनमोल हिस्सा सिर्फ उनको ख्यालों में ही सुकून से भरता है। तो जहाँ तक अपनी जिंदगी जीने और चुनने का सवाल है, तो अमृत कौर ने कुछ ऐसा ही किया।
1: जी हाँ साथियों, जिंदगी का जो उन्होंने रास्ता चुना तो उसके लिए उस समय भी ना तो उन्होंने समाज का मुंह ताका और ना ही उन्होंने रिश्तों की परवाह की, बल्कि अपनी पसंदीदा जिंदगी को जीते जीते वो पंजाबी साहित्य को बहुत बेहतरीन चीज दे गई। चाहे वो उपन्यास हो या कविता, उनकी हर चीज में पंजाबी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया। तो आज अमृता प्रीतम का जन्मदिन है, आज हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी जीने का चुनाव किया।
0: जी हाँ, इस किस्से की शुरुआत हुई 1939 में कॉलेज में, जहाँ साहिर ने शेर शायरी को लिखना शुरू ही कर दिया था और अमृता उनके शेर शायरी की बहुत दीवानी थी और मन ही मन उसे बेहद प्यार करती थी, मगर उनके घर वालों को रिश्ता मंजूर ही नहीं था, क्योंकि एक तो अमृता उस समय शादीशुदा थी और दूसरा साहिर मुस्लिम थे और उनकी माली हालत बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। तो बाद में अमृता के पिता ने साहिर को कॉलेज से निकल दिया और लगा कि लव स्टोरी शायद नहीं खत्म हुई, लेकिन शायद वक्त कुछ और ही मंजूर था।
1: जी हाँ वंदना जी, लेकिन 5 साल बाद दोनों लाहौर के एक मशहरे में फिर मिले। अमृता के ही शब्दों में पता नहीं या उसके लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश निगाहों का मैं उससे बंद कर रह गई थी। अमृता ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बहुत ही करीब से देखा था। विभाजन के बाद अमृता दिल्ली आ गई और शायद मुंबई में बस गए। सुकून इतना ही काफी है, फासलों में रहकर भी तुम दिल के सबसे करीब रहते। अलग अलग जगह पर आने के बाद भी उनके बीच की दूरियां जो आ गई थी उसमें भी उनका एहसास से
0: तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, जो होता नशा।

0: एक दिन में उतर नहीं जाता। जी हाँ, अमृता साहिर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो उनको ताउम्र नहीं भूल पाई। साहिर से मिलने व दिल्ली आने के बाद अमृता का शादीशुदा रिश्ता अपने पति से बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया और उनका रिश्ता अपने उनके पति से ख़त्म हो गया। इसके बाद वो बताती हैं कि जब साहिर मेरे कमरे में आता था तो वो लगातार खामोशी से सिगरेट पिया करता था और फिर खामोशी से ही उठकर चला जाता था। उसके जाने के बाद मैं उसके सिगरेट की बटों को उठाकर इकट्ठा करती थी और उनको फिर से सुलगाकर पिया करती थी। और जब मैं अपनी उंगलियों में सिगरेट की उन बटों को पकड़ती थी तो लगता था कि साहिर की उंगलियों को छू रही हूँ। यह लाइन साहिर के प्रति उनके इश्क को बयान करती है।
1: साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर अमृता प्रीतम की खूबसूरत कहानी। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारी सी बातें आप सुन रहे हैं, एक साहित्यकार की प्रेम कहानी। जी हाँ, अमृता से कोई रिश्ता निभाने का वादा न दुनिया के सामने किया और न ही उनसे कोई कमिटमेंट किया, मगर फिर वह भी अमृता के बेहद दीवाने थे, साहिर भी, और उनके गीतों में उनकी भावनाएं हमेशा महसूस की जाती थी। अमृता के लिए साहिर उनका भी इजहार उनके सामने नहीं कर पाते थे, तो वो सारा इश्क उनके गीतों में समा गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया को बेहद दिल को छू लेने वाले गीतों से समृद्ध किया। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मशहूर थे और साहिर उर्दू में लिखते थे तो अमृता पंजाबी में लिखती थी। जी हाँ, लेकिन उनके प्यार के बीच मजहब या भाषा की कोई भी नहीं दीवार, ये अमृता बताती है। वैसे अमृता देखने में बहुत खूबसूरत थी और साहिर देखने में औसत दर्जे से भी कम, मगर जनाब ये इश्क सब कहाँ देखता है।
1: दिल तो बस एक ही जुबान समझता है, मोहब्बत मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत।

ना कहीं खालीपन तो इंसान को सताता ही है, क्योंकि 24/7 ना तो लिखा जा सकता है और ना ही सोचा जा सकता है। ऐसे कितने ही लम्हे, कितने ही मौसम अमृता ने साहिर के बगैर गुजारे होंगे। शायद कहीं ना कहीं उनके मन की स्थिति में बातें जरूर आती रही होंगी, तो जो बातें इनके मन की स्थिति में आती होंगी कोशिश की है, चलिए उसी से रिलेटेड हम आपको एक गाना सुनवाते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ये सारी खुशियों के साथ। अमृता प्रीतम और साहिब की बात हम जब करते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों ने मोहब्बत की एक अनूठी दास्तान लिखी है। ऐसे ही न जाने कितने बरस गुजर गए तो श्रोताओं, जिंदगी में वो लम्हे जो खट्टे मीठे कुछ कड़वे होते हैं, जो हमें जिंदगी के तजुर्बे से मिलते हैं, तो उन्हीं से कोई शायर और कोई लेखक बन जाता है। लेकिन ये सब हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही चुनिंदा होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं।
1: ऐसे ही एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो साहिर को फोन करके पूछते हैं, क्योंकि वह हमेशा के लिए साहिर के साथ एक हो जाना चाहती थी कि चलो अब मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है। तो उसके बाद जब वो घर से निकली और फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ की तरफ जाती है तो वहाँ एक शॉप पर उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में साहिर और सुधा मल्होत्रा के इश्क की चर्चा है। जब फ्रंट पेज पर उनकी नज़र पड़ती है तो बहुत टूटे दिल से और भरी आंखों से वो घर वापस आ गए। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत गज़ल।

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनी। इमरोज अमृता की जिंदगी में बहुत तेज से आया। अमृता को अपनी किताब आखिरी खत के कवर पेज के डिजाइन के लिए एक चित्रकार की जरूरत थी। वो चित्रकार सेठी से मिली और कहा कि आप ये मेरा कवर डिजाइन कर दीजिए। चित्रकार सेठी ने कहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है। और उन्होंने अमृता से इमरोज को मिलवाया। उस जमाने में इमरोज क्षमा पत्रिका में जो उर्दू की निकलती थी उसमें काम किया करते थे। इमरोज ने उनके कहने पर किताब का कवर डिजाइन किया। अमृता को डिजाइन भी पसंद आ गया और आर्टिस्ट भी।
1: तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। अमृता इमरोज से उम्र में बड़ी थी और इमरोज उनके साथ, जब उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मर्जी बताई, तो बोली कि अरे पहले दुनिया तो घुमाओ, अच्छी तरह से देख लो, अगर फिर भी तुम्हारा इरादा मेरे साथ रहने का है तो मैं तुम्हें इसी जगह पर ही लूंगी। उनकी ये बात सुनने के साथ ही इमरोज ने उनके कमरे के साथ चक्कर लगाए और बोले इस तरीके से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। उस समय अमृता रेडियो में काम किया करती थी और वो बस से सफर किया करती थी। इमरोज जब उनको बस से जाता देखती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने उनके लिए पैसे जोड़ जोड़ कर एक स्कूटर खरीदा और बोले अब आप स्कूटर पर जाया करें। इमरोज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अमृता के लिए इतना कुछ किया कि शायद हम और आप लोगों की सोचे से भी परे की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने जब स्कूटर पर जाना शुरू कर दिया तो अमृता स्कूटर पर इमरोज के साथ पीछे बैठती थी और उनकी उंगलियाँ इमरोज की पीठ पर साहिल और सहेली रखती थी। तो इमरोज को अमृता की इस बात से कोई गिला ही नहीं होता था, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ अमृता के लिए ही बने थे और उनको किसी परेशानी में कभी देख ही नहीं सकते थे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत दिल को छूने वाली।

0: जी हाँ साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी गजल सुनी।
1: आइए बात कर रहे थे हम लोग अमृता प्रीतम की जीवन कहानी के कुछ हिस्से आपको सुना। अमृता को रात के सन्नाटे में लिखने की आदत थी, ताकि रात में उनका कोई फोन या कोई शोर डिस्टर्ब ना कर सके। तो इमरोज ने रात को 1 बजे उठना शुरू कर दिया। वह उनके लिए चाय बनाते और वे बेआवाज उनके पास रख कर वापस आ जाते थे। अमृता लिखने में इतनी मशगूल होती थी कि देखती भी नहीं थी। तो ये सिलसिला 40-50 वर्षों तक लगातार चला, जहां शायर उनकी चाहत को कोई नाम न दे सके, वहीं इमरोज ने हर पल, चाहे समाज हो या कोई और, इश्क के हर इम्तिहान को 100% पास किया। जब वह संसद में मनोनीत की गई तो वह उनको छोड़ने जाते थे और घंटों बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहते थे। तो लोग उनको अमृता का ड्राइवर समझते थे। पार्टीज होती थी तो भी वो गाड़ी लेकर उनको छोड़ने जाते थे। जब लोगों को मालूम चला कि अमृता का बॉयफ्रेंड है तो उनको भी इनवाइट करना शुरू कर दिया।
2: अमृता ने एक ही वाक्य में साहिर और इमरोज को बयां कर दिया। वो बोलती थी कि साहिर मेरा आसमान है और इमरोज मेरी छत। हालांकि छत तो आसमान में ही खुलती है। उफ, मगर क्या कमाल इश्क था इमरोज का, कि उनके लिए इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ अमृता को ही चाहते थे और चाहते ही चले गए।

क्योंकि इमरोज बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, तो एक बार गुरुदत्त जी ने उनको उनकी ही शर्तों पर काम करने के लिए मनाया था। जब इमरोज ने अमृता को ये बताया तो अमृता सत्ते में आ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि इमरोज उनको छोड़कर नौकरी करने मुंबई जा सकते हैं। तो बोले इमरोज, मेरे पास जिंदगी के 3 ही दिन बाकी हैं और मैं इन 3 दिनों को जी भर कर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो दोनों बहुत घूमे फिरे, वह सब कुछ किया जो अमृता के दिल ने चाहा। जब वो मुंबई चले गए तो अमृता को बहुत तेज बुखार हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वे इतनी तन्हा हो जाएंगी और अकेले जिंदगी बिताने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वह अकेलेपन और बेचैनी उनसे सही नहीं जा रही थी।

0: और जब इमरोज को ये मालूम चला कि अमृता बहुत बीमार है तो वो तीसरे दिन ही अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर दिल्ली वापस आने लगी। उन्होंने अमृता को तार दे दिया कि वो वापस आ रहे हैं, तो अमृता उन्हें लेने रेलवे स्टेशन गई और इमरोज को देखते ही उनका सारा बुखार उतर गया और उसके बाद इमरोज फिर कहीं नहीं गए, हमेशा के लिए अमृता के साथ ही रहे। और आखिर में जब अमृता के कुल्ले की हड्डी टूटी तो वो बहुत दर्द में रही, मगर इमरोज ने उनके लिए वो सब कुछ किया जिसकी शायद कभी अमृता ने उनसे उम्मीद भी नहीं की।
1: और वह अंतिम सांस तक उनका सहारा बनकर आए। तो रमेश जी, यहाँ मैं अपनी तरफ से इमरोज के लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ, जानते हैं वो क्या है?
0: नहीं।
1: वो है पानी। पानी जिसे रंग में मिलाने से और रंग हो जाता है, इसी तरीके से क्योंकि इमरोज वैसे भी आर्टिस्ट थे, वो अमृता के साथ इतने इस तरीके से हर सांचे में ढल गए कि ये उनके प्यार का कमाल ही बन गया। उन्होंने किसी तरह से कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कोई सिर्फ उनके साथ उनकी मर्जी के साथ वो जीते चले गए। तो है ना श्रोताओं, इस प्रेम कहानी का कमाल।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वंदना जी, आशा करूंगा अमृता और इमरोज की कहानी, जैसे आपने कहा पानी का उदाहरण देते हो, पानी जहाँ जिस रंग में मिला दो वैसा रंग पानी में होता है, तो अमृता के लिए उन्होंने जैसा लगा अमृता को जहाँ जरूरत है वो वैसे ढल गए। तो श्रोताओं, ये प्रेम कहानी आपको पसंद आया होगी और कहते हैं आपको भी कहीं ना कहीं दिल को जरूर छुआ होगा इन दोनों की कहानी। जी हाँ, और है भी इसी दुनिया की और बहुत पुरानी कहानी नहीं है।
1: हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत रही थी इमरोज अपने में और बहुत अमृता से ज्यादा उस समय अर्न किया करते थे, लेकिन कहीं भी उनके अंदर कोई मैल नहीं था। भी हमने हालांकि उनकी लाइफ की बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी शेयर करी है, आप समझ सकते हैं इतने सालों तक दोनों साथ रहे, लेकिन कहीं उनके अंदर मैं था ही नहीं। उनकी लाइफ में थी तो सिर्फ अमृता और एंड तक भी वही उनकी जिंदगी में रही। तो है ना चाहती कितनी खूबसूरत और अनोखी कहानी।
0: बहुत ही अनोखी कहानी आपने बताया और ट्रायंगल लव स्टोरी की वो सुंदर प्रेम कहानी अमृता शायद फिर इम्प्रूव। तो बहुत ही अच्छा एक प्रेम कहानी यहाँ बयां होती है। और वंदना जी, जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूँगा अमृता प्रीतम की ये कहानी साहिब और अमृता जी की प्रेम कहानी ने
2: इन दोनों को अलग करती है,
0: लेकिन उन दोनों का मिलना या प्रेम दुनिया को समृद्ध कर, एक तरफ अमृता प्रीतम की जो लेखक है वो पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया, दूसरी तरफ साहिब की जो प्रेम कहानी लिखा हुई उन्होंने हिंदी गीतों में उनका प्रेम का जिक्र करके हिंदी फिल्मों की दुनिया में गीतों का एक समृद्ध गाने हैं गीत है वो देखा, तो फिल्मी दुनिया को और साहित्य दुनिया को जो है दोनों का प्रेम का एक हिस्सा जो है समृद्ध कर गया, ये बहुत बड़ी बात।
1: और दूसरी बात, अमृता हमेशा इमरोज को बोला करती थी, इमरोज तुम मेरी जिंदगी की शाम में तुम मुझे क्यों मिले, मिलते तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। ये बहुत प्यारी सी उनकी पोएम है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि समय हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहा है हम आपको पढ़कर बताएं, तो आप ये पढ़ सकते हैं इसमें उनके बारे में। और उनके जाने के बाद इमरोज बोलते थे अमृता कहीं नहीं रही है, वो यही है मेरी पेंटिंग में, मेरी यादों में। और इस तरीके से जो अमृता की एक बहुत मशहूर पोएम है जो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज जरूर, मैं तेनू फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी ने आपके दिलों में ना जाने कितने चाहत के रंग बिखेरे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपको छोड़ जाते हैं बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।
0: चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओ अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओ एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

उठो जागो, अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो हेलो हेलो, एक बार आप नाम बोलो।
1: हेलो राधिका।
0: ठीक है, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ख्याल होता है जो युवाओं के मन में भी होता है, जब बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चों के मन में भी होता है और पेरेंट्स के मन में भी होता ही है कि क्या होगा भविष्य का, जॉब क्या करनी है और अगर जॉब अच्छी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई या एग्ज़ाम कौन सा देना है। यानी एक सवाल और न जाने कितने सारे सवाल उसके साथ जुड़े चले आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात कराएं अलग अलग फील्ड में जो कार्यरत हैं उन सभी से, ताकि आप उस फील्ड को बेहतर जानें और उसकी तैयारी कैसे करनी है उसको भी पहचानें और सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमारे साथ राधिका है स्टूडियो में और राधिका डेवॉप्स इंजीनियर है, HSC नोएडा से वो आए हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है वो जानेंगे, सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें और आसान हो जाएं हम सभी के लिए। राधिका, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो राधिका, सबसे पहले तो ये जो शब्द है डेवॉप्स, आई थिंक मेरे लिए भी नया है, तो ये होता क्या है थोड़ा आप बताओ।
1: तो इंजीनियरिंग में ही एक स्ट्रीम है डेवॉप्स, जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस इन दोनों के बीच में सो डेवॉप्स इज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में हम लोग कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसके लिए डेवॉप्स इंजीनियर मैं बनी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपर्स ने कुछ कोड लिखा है, जैसे हमारी फेसबुक एप्लीकेशन है जैसे हम सब लोग यूज़ करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को किसी ने लिखा होगा किसी कोडिंग में, तो उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ऑपरेशंस होगा जब वो फेसबुक, जब आप उसको लॉगिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं, तो वो लाइव है एप्लीकेशन। इसके बीच में कोड जो है वो बिल्ड होता है, उसको कहीं सर्वर पे डाला जाता है।
0: ओके,
1: है ना। उसके बाद उसमें थोड़ा टेस्टिंग होता है, आप लोग जो चलाते हैं उससे पहले टेस्टिंग होता होगा। तो सर्वर पे डालने का काम, टेस्टिंग का काम, स्टेबल है कि नहीं, इतनी सारी जनता उसको यूज़ कर पा रही है कि नहीं, उसके अलग अलग टेस्ट्स, वो सारा काम डेवॉप्स इंजीनियर करता है। तो फेसबुक फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरा दूसरा एप्लीकेशंस पे काम है, तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया जिसे सब लोग समझ पाएँ।
0: ओके, तो जैसा कि आपने बताया एक बैलेंस है, और जब डेवलप किया जाता है उसकी टेस्टिंग भी होती है, उसका कोऑर्डिनेशन होता है ताकि वो फीजिबल हो लोगों के लिए, आसानी से वो यूज़ कर सके और बार बार यूज़ कर सके।
1: हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई ग्लिचेस नहीं आए चलाते हुए।
0: ओके, सो राधिका, शुरू से अगर शुरू करें तो इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है, मतलब स्ट्रीम्स तो हैं ही, इलेक्ट्रिकल हम जानते हैं, कंप्यूटर साइंस है, अभी हम और नई नई काइंड ऑफ इंजीनियरिंग्स भी देख रहे हैं कि पता चलती है। आपने कौन सी इंजीनियरिंग की और वो कैसे चूज़ किया, उस बारे में आप कुछ बताओ।
1: बिल्कुल, अभी बहुत सारे टाइप की इंजीनियरिंग आ गई हैं, एंड आई थिंक मेरे टाइम पे भी थी। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे टाइप्स की थी, बट अवेयरनेस नहीं थी जो कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं मिली। तो मुझे लकीली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली एंड मैं उसी में ही आगे बढ़ी। मेन मोटिव बस ये था कि अच्छे नंबर लाने हैं। बाय चांस फिर जॉब जो लगी वो कंप्यूटर साइंस वाली बैकग्राउंड से लगी। तो यूजुअली जो मैंने अपने टाइम पे देखा, अब तो चीज़ें बदल भी रही होंगी, अपने टाइम पे जो मैंने देखा उसमें ये था कि मोस्टली मेरे कॉलेज में जो कंपनीज आई थी वो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइड पे आई थी, और वहीं मेरा भी हो गया एडमिशन और मैंने उसी में कंटिन्यू किया। थोड़ा सा मेरे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था कि इलेक्ट्रिकल लेना है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल लिया। बट इलेक्ट्रिकल जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जितने भी फील्ड्स के हैं, तो उसमें मैंने अपने अंदर ये पाया कि मुझे कंप्यूटर्स की तरफ थोड़ा झुकाव है ज़्यादा। अच्छा लगा मुझे। तो जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे या कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगी कि जो भी आपको पसंद है उसको अच्छे से कीजिए, उसमें मन लगा के कीजिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ चाहते हैं दिल से, जो आपको मज़ा आ रहा है करने में, उसमें आप कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर ही रहेंगे दूसरों से, क्योंकि आपके दिल से आ रहा है वो करने का ना।
0: राइट।
1: तो मैंने कंप्यूटर्स में करा और मुझे बाय चांस कंप्यूटर्स में ही नौकरी मिल गई, तो मैं थोड़ा आगे उसी में बढ़ गई।
0: दैट्स वंडरफुल। और जैसा हमने कहा, जो करें अच्छे से करें. एक चीज़ है राधिका, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि शुरू से कि इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत कंपटीशन है, तो कई बार लोगों को लगता है कि यार जॉब्स हैं इस फील्ड में या हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब इंजीनियरिंग तो कर ली मगर अब आगे क्या. तो पढ़ाई करके जो ट्रांजिशन होता है जॉब के जाने के लिए वो कैसा होता है?
1: वो बहुत ड्रास्टिक होता है.
0: okay.
1: बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के आंचल में तो होते ही हैं. है ना, जो हमें नहीं पता लगता है कॉलेज में. बट अब जब जॉब करने लगते हैं सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, खुद का खाना, रहना, ऑफिस जाना, तबीयत खराब होती है वो मैनेज करना, और फिर ऊपर से काम करना. क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपने से पढ़ाई करनी थी कॉलेज में, जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपको कुछ काम दिया है तो उसका रिजल्ट आप दें अपने मैनेजर्स को या अपने बड़ों को, जो भी आपको काम दे रहे हैं. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. बट मुझे लगता है कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी जब हम मन लगा के कोई भी चीज़ काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो हम खाते हैं उसको, है ना. कुछ भी हमें चाहिए तो हम वो कर लेते हैं. तो वैसे ही अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मतलब हमें कोई पैसे भी दे रहा है, कहीं हम अर्निंग भी कर रहे हैं अपनी ना, तो उसके लिए आई थिंक पूरी श्रद्धा से अगर हम काम करें तो हो जाता है वो बैलेंस, धीरे धीरे हो जाता है.
0: ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि पूरा डेडिकेशन से करना. कभी कभी क्या होता है, हम स्मार्ट वर्क को समझते हैं कि हम कर भी लें, थोड़ा कम में भी कर लें और किसी को पता भी ना चले. ना स्मार्टनेस की डेफिनेशन कई बार हम गलत समझ लेते हैं, पर जैसे हमने कहा कि डेडिकेशन से करें.
1: बिल्कुल,
0: है ना. और जब पढ़ रहे थे, मतलब थोड़ा सा आपने बताया कि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर अगर हमें बनना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
1: अच्छा इंजीनियर बनने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी करो वो मन से करो.
0: okay.
1: जितना भी करो वो बस उसमें अच्छे से करिए वो सब चीज़ें, है ना. एंड थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, सिर्फ अच्छे की डेफिनेशन से तो नहीं होता है. बट हाँ, जैसे जब मेरा जॉब लेने का टाइम था, तो अब जब हम जॉब ले, पढ़ाई में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सब पढ़ा समझा, ठीक है, अब चार साल में जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें आप एक दिन में तो नहीं बता सकते हैं इंटरव्यूअर को ना. तो बेसिकली जब मैंने पढ़ाई की थी तो एप्टीट्यूड टेस्ट्स की एक बुक आती थी, वो पढ़ लेते थे, लॉजिकल रीजनिंग होती थी, इंग्लिश या वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में जो होती थी. तो आई थिंक थोड़े से टेस्ट्स जब हम अपने प्रॉपर रखेंगे इंटरव्यू से पहले तो हम क्लियर कर जाएंगे. और बेसिकली इंटरव्यूअर हमारे में भी ना वो डेडिकेशन ही देखता है कि जो काम इनको दिया जाएगा क्या वो डेडिकेटेड हैं. तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी कि जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं. मानो कि अगर मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है तो मैं क्या वो डेडिकेटेडली कर रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं ना,
0: कभी किया कभी नहीं किया.
1: हाँ, तो रोज उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम और अच्छे ही होते जाएंगे. या जिस भी फील्ड में, जिसको भी पेंटिंग है तो पेंटिंग रोज अलग अलग, अब और कितने टाइप की पेंटिंग्स आ गई हैं, तो सब उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आई थिंक और अच्छा होता जाएगा. तो वैसे ही आपके अंदर भी आपकी बेसिक स्किल्स देखी जाती हैं कि आप कमिटेड हैं अपने काम के लिए, डेडिकेटेड हैं, और आप करना चाहते हैं या बस हम ऐसे ही कर रहे हैं, किसी का जोर है तो बस हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए बस.
0: और उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए.
1: इंटरेस्ट आना चाहिए
0: जैसे, क्योंकि पहले कहा था ना, पसंद भी होना बहुत जरूरी है व्हाट आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को. अच्छा, लेकिन अगर तैयारी की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग में पेपर्स होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, पहले ईयर में आपने बोला कि सब कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाद और थोड़ा आप जो जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है वो होता जाता है, लेकिन उसके जो प्रिपरेशंस है या एंट्रेंस देते हो आप, तो भी होती है कि भाई स्कूल की पढ़ाई करें कि भाई अब इतने सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी की जाए?
1: इसके लिए अभी कल ही मैं बाई चांस अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर रही थी, और उन्होंने फिर मैंने रिकॉल करा, सिंस मेरे को अभी 10 ईयर्स तो आई थिंक हो गए हैं
0: 10 साल हो चुके
1: स्कूल छोड़े हुए. तो मैंने यही वापस उसको रिकॉल करा कि जैसे मैंने ये गलती करी थी कि 12th भी करा, दूसरा भी प्रिपेयर करने, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम लगाया, और दोनों ही जगह कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया. अगर अब मैं वापस देखती हूँ तब तो अच्छा लग रहा था सब कुछ, बट अब वापस देखो तो लगता है कि हाँ और बेहतर कर सकते थे. तो आई थिंक आज के जनरेशन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो 100% अपना दोनों जगह दीजिए. वरना मेरे टाइम में, एंड आई होप अभी भी ऐसा होता है कि 12th के मार्क्स पर भी काफ़ी कॉलेजेस के फॉर्म्स निकलते हैं, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के 96, 97, 98% थे तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा वेर रहेंगे कि एग्जाम्स के अलावा भी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे 12th को ही डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं कोई और एग्ज़ाम्स, तो ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा रिसर्च रखें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं.
2: पहले तो नहीं मिलती थी.
1: कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन्स होती हैं जो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे. और अगर सच में करना चाहते हैं तो आप 10 लोगों से बात भी करेंगे तो किसी न किसी एक जने से आपको कोई ऐसी बात पता ज़रूर लगेगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी. तो वो करते रहें,
2: पता करते रहें, नॉलेज अपनी बढ़ाते रहें.
1: बिल्कुल,
2: अवेयर होना बहुत ज़रूरी है.
1: yes.
2: ना कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन फॉर्म निकला है उसी दिन वो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी. पहले से अपनी जानकारी आप रखिए और पता करते रहिए. सोर्सेज आज बहुत हैं. अच्छा, अगर राधिका बात करें जॉब की इंटरव्यू की, तो वो बहुत नर्वस होते हैं लोग, पहली बार दे रहे हैं खास तौर से. बाद में तो चलो फिर भी एक बार एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देते हैं तो लगता है हमने पता नहीं कैसे कपड़े पहने हैं या क्या पूछेंगे. अच्छा, अगर वो हमें नहीं आता हो तो बोल दे नहीं आता है या कुछ और ट्राई करके बता दें, या क्या होना चाहिए? और एक इंजीनियरिंग का इंटरव्यू कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसा होता है?
1: या आपने बिल्कुल सही बोला कि इंटरव्यू जब नया नया देते हैं तो डर बहुत होता है ना. लेकिन हमने सुना है ये डर के आगे जीत है.
2: बिल्कुल.
1: है ना, तो अगर आप में सच में श्रद्धा है, डेडिकेशन है ना कुछ कर गुजरने की, तो आप ना अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंटरव्यू से पहले. अगर आपको कहीं भी लगता है कॉन्फिडेंस में, मेरे पहनाव में कमी है, मेरे दिखने में कमी है, तो थोड़ा पहले आप उसकी तैयारी कीजिए. शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात कीजिए. और वैसे तो मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कीजिए, कम्युनिकेशन करेंगे तो और अच्छा होगा. बट फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा मजाक ही होता है, है ना, वो सब नहीं हो पाता है. बट मैंने अपने करियर में ये देखा कि अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़. बोलिए, सोचिए कि आपके सामने इंटरव्यू बैठा है, खाली रूम में बैठिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है और वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए, व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट डू यू डू, है ना. तो आप अपने आप बोलेंगे, आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ या कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ. तो उसी पे थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को हम ऐसे ही पॉलिश कर सकते हैं. और इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपने अभी तक जॉब नहीं करी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं है आपसे.
2: अच्छा,
1: एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है. बस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यूअर को आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता.
2: ये बहुत बड़ी बात है. अगर खुद को कॉन्फिडेंट हम अपने में नहीं रखते हैं तो दूसरा कैसे करेगा हमारे ऊपर विश्वास. विश्वास कैसे लाएं ये बताया आपने कि किस तरीके से तैयारी करें. और अगर बात करें पढ़ाई की, तो अभी तक हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, बुक्स पढ़े थे, उनको लिखा था. अब कोई सवाल पूछ रहा है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है, मतलब आपको करके दिखाना है, तो अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो वो नहीं वैसे करा के देखते हैं जो मेरे टाइम में था. बट हाँ, ऑनलाइन आप हमेशा सर्च कर सकते हैं. आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए. चैट जीपीटी पे आप लिखेंगे, बिल्कुल उस पर आप लिखेंगे कि इनिशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सो एंड सो ब्रांच फ्रॉम बीटेक या व्हाटएवर, आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस देगा. है ना, आप उससे इंटरेक्ट कीजिए. जो आपके मन में सवाल है वो उससे बात कीजिए, क्योंकि वो सारा इंटरनेट सर्च करके आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाएगा. है ना, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की फील्ड है तो कुछ कुछ टॉपिक्स मोटर्स के, ट्रांसफार्मर्स के, कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सब चाहते हैं कि पता होना चाहिए. है ना, अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरे को नहीं पता कि कोर्स में क्या होगा, बट उस टाइम पे सी लैंग्वेज बहुत पढ़ा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तो अगर आपने सी पढ़ी है ना, तो अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्राम लिख पा रहे हैं कि नहीं, कुछ लूप्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कुछ कुछ होते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस जो आई थिंक आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी से भी पूछेंगे, तो वो उनको बोलो कि बेस्ट फाइव बेस्ट एडवांस क्वेश्चंस विच आई कैन यू नो प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू। वो सब आप चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। और अगर आप इंटरव्यूअर के सामने 10 क्वेश्चंस में से 5 भी बता पाए हैं और कॉन्फिडेंस से बता पाए हैं, दिखा पाए हैं कि मेरे अंदर विल है और पढ़ने की,
2: अच्छा
1: अभी हम इतना ही पढ़ पाए हैं तो बताया है, बट आगे हमारे अंदर विल है तो बिल्कुल हो जाएगा।
2: ओके अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार हमें लगता है एक भी रॉन्ग किया तो मतलब मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं ना कैसे भी उसको बोल दें, थोड़ा घुमा दें और थोड़ा इधर से बोल दें कुछ, है ना, तो वो नहीं करना है मतलब ऑनेस्टी।
1: हाँ थोड़े बहुत आई थिंक जो भी है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रे करके जाइए कि जो आपके लिए अच्छा है ना वो हो आपके लिए। कभी कभी हमें इंटरव्यूज ऐसे भी मिल जाते हैं जो शायद सुनना चाहते हैं कि कुछ भी बता दो, है ना, तो थोड़ा बहुत बता दीजिए। बट अगर आप नहीं बता पा रहे ना तो होपलेस नहीं होना है कि नेक्स्ट आंसर हमें आता भी हो तो हम डर के मारे ना बता पाए।
2: राइट
1: ना, थोड़ा सा प्ले अलोंग करना पड़ता है जो आई थिंक विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। बट अभी जब एकदम शुरू शुरू में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके मन से जो आ रहा है वो कीजिए, बस कॉन्फिडेंस से कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको,
2: मेन चीज कॉन्फिडेंस है।
1: हाँ
2: ना, नहीं तो आता हुआ भी भूल जाता है,
1: भूल जाता है।
2: और जैसा एक और पॉइंट आपने बोला था कि विल सीखने की पढ़ने की वो डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए,
1: बिल्कुल,
2: है ना, कि हम कर लेंगे।
1: यस
2: ओके, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल टिप्स हैं, बिकॉज चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर एग्ज़ाम प्रेशर इंटरव्यू प्रेशर दिमाग में आ जाता है तो वो उस मोमेंट में वो पढ़ाई हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं, है ना।
1: एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे पेरेंट्स के प्रेशर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि एक जॉब हो बच्चे के पास, एक इनकम हो तो वो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। बट आपका मन हो सिंगिंग का, डांसिंग का, या कहीं म्यूज़िक का, जहाँ पे इनिशियल लेवल पे नहीं हम पैसे कमा पाते हैं, तो उन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको चाह रहे हैं करना और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 50% अपना इनिशिएटिव ले सकते हो उनका मन रखने का, तो आप वो कीजिए। और उस जिस डोमेन में आप घुसे हैं, जो भी जॉब में घुसे हैं, उसमें काबिल इतना बनिए कि आपका जो पर्सनल आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना, वो अपने मन से साथ साथ रह के कर लीजिए।
2: ओके
1: जिससे आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने जो कहा है वो भी और जो मैं चाहता हूँ वो भी।
2: वो भी
1: नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मन का कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम खुद होपलेस हो जाते हैं। पेरेंट्स तो पहले से ही होपलेस थे हमारे लिए और हम भी हो गए, तो वो बहुत खराब हो जाता है।
2: कहते देखो बोला था ना तुम्हें फिर सुनना भी पड़ता है।
1: बिल्कुल, सबसे इजी होता है वो, सब कोई भी एकदम से बोल देता है कि हमने तो पहले ही कहा था,
2: पहले ही कहा था। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, और सही मायने में देखा जाए राधिका, हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो जो रिसर्च होती है कि यूथ में डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत कारण है, डेफिनेटली एक कारण नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। टू मच प्रेशर, और जैसा अपने वहाँ पेरेंट्स का भी सुने, अपना भी करें, अपना मन मार के जीने में भी थोड़ा मुश्किल है, और पेरेंट्स के अनुभव को भी हम एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल,
2: तो एक बैलेंस, पीच का रास्ता। ओके ठीक है, आई थिंक रास्ते सबके अपने अपने हैं, बढ़ते जाइए आगे करते जाइए। राधिका जब जॉब करने लगते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उसको यू नो आपने कैसे क्रॉस किया?
1: जॉब हम जब करने लगते हैं तो हमारी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न हो जाती है।
2: ओके
1: क्योंकि हम सच में आई थिंक उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स के शेल में ही थे, अब आपको सब कुछ देखना है। शुरू शुरू में आई थिंक जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए कंपनीज़ भी सपोर्टिव होती हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि बच्चे नए आए हैं। बट डिफरेंस होता है बिहेवियर में, आप कॉलेज में होते हो तो आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, बट ऑफिस में रह के आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है. एंड आई थिंक अगर आप ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप नया नया जॉब कर रहे हैं तो आप से सीनियर्स जो हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हैं, उनसे शुरू में ही सीख लीजिए. क्योंकि जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना तो लोग ज़्यादा चाहते नहीं है कि ये सीखे कुछ. आसपास ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है कि लोग नहीं प्रोग्रेस करने देते हैं. तो शुरू में आपके पास
2: कंपटीशन अगली हो जाता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सबको लगता है ना कि आप ज़्यादा अगर ग्रो कर जाएंगे तो उनकी भी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में हो सकती है. तो शुरू में आप जितना सीख सकते हैं और जितना ग्राउंडेड रह के सीख सकते हैं, जितना हम्बल रह के सीख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस से सामने वाले को भी भला ही हो, आपसे अच्छा ही हो, है ना, उस तरीके ये एटीट्यूड लेके सीखें. थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, बट आई थिंक आपकी सराउंडिंग आपको सिखा देती है. थोड़ा डिफिकल्ट भी किसी किसी के लिए हो जाता है, बट अल्टीमेटली आई थिंक सराउंडिंग्स हमें आगे बढ़ा देती हैं. बस ग्रास्प करते चलिए जिससे आप जो भी सीख सकते हैं, मतलब वेल बन जाओ एक ना, कि कोई भी कहाँ से कुछ भी लेके वेल में ड्रॉप करते चलें कि आगे हम उसको यूज़ कर सकें.
2: सीखते जाना है हर तरफ से.
1: बिल्कुल.
2: ओके. और जैसा आपने कहा हम्बल होके सीखते जाना है. ओके. तो अगर सस्टेन करने की बात करें एक जॉब को या ग्रो करने की बात करें, तो कई बार हमें लगता है हम बहुत फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग्स भी होती हैं 1 साल 2 साल 3 साल की, अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है. तो वो एम्बिशन जो है वो कितना ठीक है, मतलब वो ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए या उसका पेस जो हमारे माइंड में होता है वो अलग होता है और रियलिटी में अलग होता है?
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है कि हमारे माइंड हमारा बहुत ना फिकल है या बहुत बचकाना है. आज कुछ सोचेगा कल कुछ सोचेगा ना. तो मुझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि आपको जो भी मन करता है ना सीखने का, बनने का, उसको लिखिए रोज़.
2: ओके.
1: है ना, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लिखिए कि ये बनना है, ये सीखना है. क्योंकि करना बहुत कुछ है पर सोच हम बहुत रहे हैं, क्या हम एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए?
2: ओके, राइट.
1: थोड़ा
2: प्लानिंग है.
1: बिल्कुल, वही मन का वही रहता है कि प्लान हम बहुत करते हैं, एक्ट हम कुछ नहीं करते हैं. इमोशनल होके हम प्लानिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कि उसको देखा हमने कि वो ये कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे. फिर हम किसी और को देख लेते हैं तो हमें लगता है नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये कर लेते हैं. तो लिखिए, अपने आप से बात कीजिए. जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना कि रिकॉर्डिंग करके सुन रहे हैं अपने आप को, तो वैसे शीशे में बात कीजिए अपने आप से. समझिए कि क्या जो मैं ये बोल रहा हूँ वो मेरे दिल से रेजोनेट कर रहा है, जो मैं दिल में सोचना चाह रहा हूँ उससे आ रहा है. और कहीं ना कहीं अगर सच में आ रहा है तो आप फिर एक्शन आइटम्स अपनी लिखिए कि इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. धीरे धीरे बढ़िए, किसी और को देख के मत बढ़िए कि वो इतने आगे पहुंच गए. क्योंकि इस दुनिया में सबका अलग अलग मिशन है, अलग अलग मोटिव है, अलग अलग पेस है, अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे. तो कंपेयर करके परेशान नहीं होना है, बस जितना हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो करना है. तो कितना भी टाइम लीजिए, बट अगर हम एक महीने में एक स्टेप भी ले पा रहे हैं तो हमने एक स्टेप तो लिया ना, वो ग्रोथ ही है हमारी.
2: मतलब अपनी ग्रोथ को किसी और की ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं करना है. वो भी कई बार डिमोटिवेट कर देता है. नहीं तो लाइफ में सबकी अपनी पेस है, सबकी अपनी जगह, सबका अपना मोटिव है. आगे बढ़ते रहिए, खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए.
1: yes.
2: ओके. और अगर मान लीजिए जैसे हम सीखते हैं, तो एक और सवाल ये आता है कि कितना टाइम हमें देना चाहिए. मतलब क्या हमारी पूरी लाइफ हमारा जॉब होता है या वो एक बैलेंस रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? कितना समय दें?
1: देखिए, जॉब हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा बॉडी हेल्दी है. है ना, तो अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए भी वक्त निकालिए रोज़. चाहे हम सब बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने का तो टाइम नहीं है, मेडिटेट करने का तो टाइम नहीं है, बट अगर हम किसी से रैंडमली भी बात करने लगते हैं तो 10-15 मिनट, आधा घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता है. तो रोज़ सुबह उठ के अगर आप 1 मिनट 2 मिनट नहीं तो 20 सेकेंड ही मेडिटेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा वो कीजिए. आधा घंटा कोशिश कीजिए एक्सरसाइज करने का, और नहीं भी हो पाता है, 1 दिन नहीं हो पाया, 2 दिन नहीं हो पाया, तो 3रे दिन फिर से खड़े होके कीजिए. वो अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से बनाइए कि आपका पर्सनल टाइम भी रहे और आपका जॉब का टाइम भी रहे. आजकल जैसे कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम होने लगा है तो कहीं ना लीनियंसी आ गई है कि ज़्यादा देर हम लोग ऑफिस का काम करें, और कहीं ना कहीं इजी भी होता है कि बेड पे लेट के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के बाद काम कर लिया. तो काम को भी एक लिमिट दीजिए कि अगर मेरा टाइम 9 से 6 का है तो मैं 9 से 6 में कंप्लीट कर लूँगी अपना काम, और नहीं हो पाता है तो उस टाइम में मैं कुछ और करके रात को बैठ जाऊँगी थोड़ी देर. बट अगर हम पूरे ही दिन काम करते रहेंगे या पूरे ही दिन घूमते रहेंगे तो वो गलत है. अपने हिसाब से बैलेंस कीजिए. बट जो चीज़ आपकी कोई हॉबीज़ होती हैं या पर्सनल हेल्थ के कुछ चैलेंजेस हैं, उन सबको टाइम दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जॉब इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी कर पाएँ, और वो अच्छी नहीं है तो फिर जॉब करने का क्या फ़ायदा है.
2: मतलब कई बार तो ये सोचते ही नहीं, एक लूप की तरह हम चलते रहते हैं उसमें, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं और वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अच्छा राधिका, एक और क्वेश्चन ये था कि जब आपने इंजीनियरिंग करी तो जॉब के लिए क्या अलग, मतलब उस समय जो चूज़ करना है, जैसे आपने एक चॉइस तो करी जब आपने इंजीनियरिंग चूज़ की, तो उसमें कौन सी आपको करनी है, उसके बाद जॉब के समय भी क्या चॉइसेस होती हैं कि उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं?
1: दोनों टाइम पे चॉइसेस होती हैं. एंड आई थिंक अगर मैं पहले बताऊं, जब आपने बीटेक करा या कुछ भी इंजीनियरिंग में आपने चूज़ करा और आपको आपने आसपास पूछा, आपको जो समझ आया आपने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली,
2: राइट,
1: आप कॉलेज चले गए, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, जैसे मेरे कॉलेज में था कि अगर आपके 80% प्लस परसेंटाइल आई है फर्स्ट ईयर में, तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच योर ब्रांच.
2: अच्छा,
1: जो आपने ब्रांच लेके आप गए थे उसके अलावा आप दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रहते रहते समझ आ जाता है कि किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई होगी,
2: एक बेहतर आउटलुक मिलता है.
1: बिल्कुल, तो आप स्टार्टिंग में जॉब सॉरी कॉलेज जाने से पहले आपको जो समझ आ रहा है वो चूज़ कीजिए, जो आपके मन से आ रहा है या जो आपके आसपास के लोग समझा रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है वो लीजिए. अंदर जाके एक साल पढ़िए, आपको नहीं समझ आता तो अच्छे नंबर से ऐसे पढ़िए कि आप चूज़ कर पाएँ उसके आगे, है ना. और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, फिर उसमें जो भी आपकी जॉब लगती है, अगर अब दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं जो वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं, जैसे MNCs हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या स्टार्टअप्स होती हैं, है ना. तो यूजुअली मैंने जो देखा है, स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा कोडिंग की जाती है. तो अगर आपको अपने कंपनी में पता लग गया, जैसे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको पता लग गया है कि मुझे जावा करनी है, तो उसमें आपको जावा करनी है या सी में आपको करना है, और आपको उसी टाइप की कंपनी भी मिल जाती है, है ना, तो आप उसमें आगे बढ़ के और वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा लेवल पे कोडिंग अपना एनहांस करने का. ये स्टार्टअप्स की बात हो गई. और अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो आपके पास फिर से ऑप्शन होता है कोई भी डोमेन अपनी सिलेक्ट करने का. फॉर एग्ज़ाम्पल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो मैंने देखा है उसमें हमेशा 4 महीने 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फिर से, जो जो रिक्वायर्ड होंगे एक आईटी कंपनी में या किसी भी बैकग्राउंड में. तो आपको जब पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपको क्या पसंद है. तो जैसे एक डेवलपमेंट, जैसे मैं डेवऑप्स में हूँ ना, तो डेवलपमेंट आपको करनी है, तो डेवलपमेंट यूजुअली जावा में होती है या पाइथन में होती है, तो ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो आपको इसमें कंटिन्यू करना है तो आप इसमें जा सकते हैं. टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग के भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें जा सकते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें जा सकते हैं. कंपनीज आपको ऑप्शंस देती हैं कि आपको इसमें वैकेंसी आई है तो आप इसमें आ जाइए. शुरू सिंस हम नए होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बार रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. एक आध बार हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना, तो वो कर सकते हैं. और अगर नहीं मिलती है तो मेरा तो फंडा यही है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें इतना अच्छा कीजिए कि अगर आपको चेंज भी करना है तो सामने वाला आपको रोक नहीं पाए.
2: मतलब उनको आपकी ये पता चल जाए कि इनकी ये क्वालिटी है या कैपेसिटी, ये कर सकते हैं.
1: बिल्कुल,
2: दिल डू इट.
1: बिल्कुल,
2: वो विश्वास हो जाता है लोगों को. ओके, मतलब जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कहे वो निकल के आ रही है बात, कि जो करो अच्छे से करना है.
1: उसको
2: पूरा बेस्ट देना है,
1: बिल्कुल बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के करना
2: है। ओके, तो ये हमें पढ़ाई में भी काम आ रहा है, जॉब में भी काम आ रहा है और लाइफ में भी काम आ रहा है। ओके, तो जाते जाते अगर मैं आपसे बोलूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th में हैं, 12th में हैं या फिर अभी आगे की पढ़ाई, यू नो कभी हम ड्रॉप भी करते हैं कुछ साल, आप और प्रिपरेशन करना चाहते हो। अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि क्या हमें और कोर्सेज करने चाहिए? मतलब एक तो बीटेक कर रहे हैं लेकिन आज हम देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो लैंग्वेजेस की बात करी है, तो क्या और चीज़ें सीखनी चाहिए या पढ़ना चाहिए या उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए?
1: आई थिंक सबके इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन ही करो जस्ट टू शो कि हाँ मैंने सर्टिफिकेशन किया है।
2: Okay.
1: अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आप कीजिए सर्टिफिकेशन। आप नहीं भी करेंगे शुरू के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ आगे जाके आपको करना पड़ता है। थोड़ा सा सर्टिफिकेशन में होता है कि एडवांस नॉलेज आपको गेन होती है, तो इफ़ यू आर रियली विलिंग टू लर्न, आई थिंक हमेशा पॉजिटिव पॉइंट तो रहता ही है सर्टिफिकेशन का। बट स्ट्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। जो हम सर्टिफिकेशंस में सीखेंगे वो अगर हम प्रैक्टिकली खुद से भी सीख लें, अब जैसे हम जावा पे काम कर रहे हैं तो खुद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स होते हैं जो हम डाउनलोड करके और उसको कंपाइल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, रैंडम सिनेरियो हम गूगल पे से उठा सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टू क्रिएट आवर ओन स्क्रिप्ट,
2: अच्छा
1: उसको रन कर सकते हैं। तो अगर आप में सच में वो विल पावर, अगेन आई एम यूजिंग द सेम वर्ड, अगर आप में सच में है यू विलिंग टू लर्न, तो आप कैसे भी अट्रैक्ट कर लोगे उसको, है ना। खुद से भी आप मेहनत कर, मैं यही कहूँगी कि खुद से पहले मेहनत करना सीखिए, खुद से कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे करना है, उसके बाद सर्टिफिकेशंस भी हो ही जाएंगे। बट स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ किसी ने किया है या ऐसा बोला जाता है तो करना है, नहीं आपके दिल से जो आ रहा है वो कीजिए। अब तक
2: लर्निंग होनी चाहिए, मतलब
1: हाँ
2: कोर्स से हो या अपने आप हो,
1: बिल्कुल
2: है ना, वो एंड नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं लगना चाहिए मैंने सीख लिया अब कर लिया, सीखते रहना है।
1: यस
2: ओके, लड़का कई बार लड़कियों को भी ये कहा जाता है कि ना इंजीनियरिंग शायद आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक तो पहले साइंस चूज करने में ही कई बार होता है कि हाँ रे तुम लड़की हो, मतलब ठीक है आर्ट्स ले लो या फिर कॉमर्स भी चलो ठीक है, बट साइंस टेक्निकल है और फिर आगे उस तरह के जॉब्स हैं, तो कई बार लड़कियों को इतना इंकरेज नहीं किया जाता है। और अगर किया भी जाता है तो वो मेडिकल लाइन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको आगे भेजना। तो इंजीनियरिंग और गर्ल्स, क्या आपको लगता है क्या ये कॉम्बिनेशन अभी कुछ चेंजेस हैं या क्या है इस समय सिनेरियो?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि कोई इंजीनियर हो गर्ल। मेरे घर में भी ऐसा था कि डॉक्टर बनने से मना किया था क्योंकि ज़्यादा एज हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, फिर शादी नहीं हो पाएगी। तो इस चक्कर में आपको आसपास आई थिंक सराउंडिंग से और आपके पेरेंट्स से या इंस्टेंट सराउंडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको अचीव करने के लिए रोकेंगी। बट आप क्या करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको क्या करना है। इंजीनियरिंग भी अगर गर्ल्स कर रही हैं तो आजकल कंपनीज इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि अगर नाइट शिफ्ट है तो आपको कैब्स में स्पेशली गार्ड होगा फॉर द लेडी कि उसको ड्रॉप करेंगे एंड लास्ट ड्रॉप नहीं होगा। कोई और अगर बॉयज़ भी होंगे तो लास्ट ड्रॉप किसी भी गर्ल का नहीं रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ है ऐसी कंपनीज जो गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए रखती हैं। तो आई थिंक अब काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है जहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि अनसेफ है लड़कियों का इंजीनियर बनना, बहुत सेफ है। बस ये है कि आप खुद से स्ट्रांग रहिए, दूसरों की बात तो सुनिए सबकी, बट करिए अपने मन की,
2: अपना डिसीजन लीजिए,
1: अपना डिसीजन खुद लीजिए और स्ट्रांगली लीजिए। ये नहीं कि आज हमने किया, जो आपने चूज कर लिया है फिर उस पर रहिए, चाहे उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपके ऊपर हैं। तो वो आपको इतना इनिशिएटिव आपको लेना है ऐसे कि आप कॉन्सिक्वेंसेस उसके बियर कर पाएं।
2: ये बहुत बड़ी बात है. कई बार हम छोड़ देते हैं या फिर कुछ ठीक नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने सोचा था नहीं हुआ, तो उसको वहीं पे जाने देते हैं, सोचते हैं हमने ये डिसीजन क्यों लिया, ये किया, गलत किया, और फिर पैनिक भी हो जाते हैं. लेकिन कॉन्सिक्वेंस को झेलना भी है और आगे बढ़ना भी है सीख के.
1: बिल्कुल.
2: तभी वो प्रोग्रेस हो पाती है किसी भी फील्ड में.
1: बिल्कुल.
2: तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, या कुछ टिप्स हैं आपके पास कि वो एग्जाम्स बेहतर कैसे दें या अच्छे इंजीनियर कैसे बने या आगे बेटर कैसे करें, कोई भी टिप्स?
1: आई थिंक इन्जॉय करो लाइफ को. अपनी हॉबीज फॉलो करो. एंड आई थिंक जो भी आपका

0: लगता है कि बिल्कुल कहाँ छुपा हुआ है. ओके, तो इंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, ऊपर नीचे होगा भी तो भी सीखिए और आगे बढ़िए. और हमेशा एक वो कहते हैं ना कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है, तो सीखने की उत्कंठा कहते होनी चाहिए, मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे. और कॉन्फिडेंस जैसा मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं.
1: यस,
0: थैंक यू सो मच राधिका हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
0: थैंक यू. और दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कोई भी बात है जो आप रेडियो मधुबन से शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपके पास कोई मैसेजेस भी आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम एक बार फिर से बता दें कि हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो सच्चा नहीं होता. अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं कुछ, तो भी आप रेडियो मधुबन को मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इस नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415. फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगली कड़ी में. जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए मुस्कुराते.

गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते सोमवार की शाम बिताने आ चुके हैं और आप दोस्तों के लिए लेकर आई हूं कई ऐसी चीजें जो अनोखी भी है, अमेजिंग भी है और मस्ती भरी भी है। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां धीरे धीरे देती रहूंगी। सबसे पहले शुरू होगा इस ब्रेक के बाद अमेजिंग जानकारी और साथ ही साथ आज का सवाल भी, जिसका जवाब देंगे आप 9414151415 भी। इसके साथ साथ यदि किसी भी तरीके से आप नेपाल में आए इस भी

क्षण बाढ़ की वजह से मदद करना चाहते तो ज़रूर करिए, आपका मदद बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में भी यदि किसी प्रकार की आप मदद भेजना चाहते तो भेज सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी हम आपको रिलीज़ कर दे सकते हैं, जिसमें जिसके माध्यम से आप उनको सेवा दे सकते हैं, 6376767376। इस प्रकार के सेवा केंद्रों में मदद करके आप वहाँ के लोगों से, क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्र अलग अलग जगह पर जाकर सभी लोगों की, आम जनता की भी मदद कर रहे हैं, और जिससे पुनः उनको स्थापित किया जा सके, जान बचाई जा सके और साथ ही साथ चीज़ों को बचाया जा सके। चलिए दोस्तों, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं अमेजिंग जानकारी के साथ। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बड़े अच्छे लगते हैं, ये नदी, ये रहना। आगे बढ़ते हैं और अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों के बीच आ जाते हैं। कई बार हमने गर्मियों के वक्त खास तौर पर हमारे आसपास की इस अरावली की पहाड़ियों में मौजूद जंगलों में आग लगे हुए देखा है और इन आग की वजह से बहुत हानि पहुंच चुकी रहती है। सारे वाइल्ड लाइफ जो इधर मौजूद रहते हैं, पंछियां, उनका घर तबाह हो चुका रहता है। छोटे छोटे और जीव जानवर जो इन जंगलों के मध्य रहते हैं, उनको भी जान गवा देना पड़ता है। जंगल में आग जो लगती है, उसका कारण क्या है, कैसे उसे वाइल्ड फायर कहा जाता है? चलिए, बर्फ से ढके पहाड़, वैसे हमारे पास बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है, हरे भरे जंगल है, रंग बिरंगे फूलों के खेत और नीला आसमान भी। ऐसे ही सिर्फ भारत देश की ये अरावली पर्वत की ही बात नहीं, लेकिन यूरोप में मौजूद ऐसे जगह है, पर दिनों दिन भीषण जंगल में आग की चपेट में आ जाने की वजह से अब वो हरे भरे नहीं बल्कि नारंगी दिखाई देने लगे। आग से उठते धुएं के विशाल बादल अंतरिक्ष से भी नजर आने लगे। आखिर ये क्यों होता है, आखिर ये वाइल्ड जो फायर है वो क्यों होता है, इस विषय पर थोड़ी जानकारी जरूर देते हैं।

जंगल में ये आग अनियंत्रित रूप से मौजूद हो जाती है। अचानक लगने वाली आग जो है जंगलों में, घास के मैदानों में या झाड़ियों में फैलती रहती है। इसके कई कारण हैं, प्राकृतिक कारण भी है। गरज चमक के साथ गिरने वाली बिजली कई बार सूखे पेड़ों या जंगलों पर गिरती है, जिससे वहां पर चिंगारी सुलग उठती है और आग लग जाती है। वहीं पर गर्मी के मौसम में तापमान बहुत बढ़ जाता है, सूरज की तेज किरणें सूखे पत्तों और टहनियों को और ज़्यादा सुखा देती है, जिससे वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। वहीं पर तेज़ हवा चलने पर जब सूखे पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, तो उससे पैदा होने वाली चिंगारी भी आग का रूप ले लेती है। वहीं पर कई बार ये मानवीय कारण भी हो जाते हैं। लापरवाही मानवीय कारण का मुख्य कारक है। पिकनिक कैंपिंग के दौरान लोग जंगल में जलते हुए चूल्हा, कैंप फायर या सुलगती सिगरेट ही छोड़ देते बिना बुझाए, जिससे धीरे धीरे पूरा जंगल सुलगने लगता है। खेतों या कचड़े को जलाने के दौरान भी उड़ी चिंगारी जब आसपास के जंगलों में पहुंचती है तो भी वो विकराल रूप धारण कर सकती है और कई बार शरारती तत्व भी भूमि पर कब्जा करने के लिए भी गलत नियत के साथ भी जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं। और जलवायु परिवर्तन भी जंगल में आग लगने का एक और कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और बारिश कम हो रही है। इसके चलते जंगल लंबे समय तक सूखे और जरा सी चिंगारी भी भयानक वाइल्ड फायर बन जाती है। तो दोस्तों, इसके विषय जानकारी आप तक पहुंचाई। अब आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल जरूर आप तक लेकर आते हैं।

0: वेल दोस्तों, आज का सवाल है, हमारे सौर्यमंडल में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? हमारे सौर्यमंडल में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? जुपिटर, टाइटन या अल्फा सेंटोरी? हमारे सौर्यमंडल की बात कर रही हूँ। तो झटपट जवाब दीजिए, 9414151415 पर दीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
0: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
1: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाद दाद।

0: असुर में, पाताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
1: फिर क्या हुआ?

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। और भाई की वफादारी की ये कहानी आज सोमवार की खूबसूरत शाम में लेकर आई हूँ आपके लिए उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: कुछ लोग नदी में मछली पकड़ रहे होते हैं और एक तरफ गांव का मुखिया रामाधीन अपने खेतों में गांव के कुछ लोगों से काम करवा रहा था।
5: चलो चलो शाबाश, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, दूसरे खेत में भी काम करना है, जल्दी हाथ बढ़ाओ जल्दी।
6: मालिक इस खेत में काम करने के बाद इन लोगों को दोपहर का खाना दे देंगे, उसके बाद ये दूसरे खेत में काम कर लेंगे। सुबह से बेचारे सब के सब भूखे हैं।
5: अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, खाना सीधा शाम को, सुबह से भूखे हैं तो क्या हुआ, शर्त के हिसाब से यही तो तय हुआ था।
4: खेत में काम कर रहे सारे किसान मुखिया से शर्त हारने के कारण ये सजा भुगत रहे थे। दरअसल मुखिया गांव के गरीब किसानों को खेत गिरवी पर देता था और उसके बदले खेत का आधा अनाज ले लेता था। अनाज ना मिलने की शर्त पर या तो वो किसान से पैसे लेता या अपने खेतों में उनसे काम करवाता था।
5: अब शर्त के हिसाब से ही तो मैं इन लोगों से काम करवा रहा हूँ, ये तो मेरी ईमानदारी ही समझो कि जैसा सौदा हुआ है मैं वैसा ही काम करवा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं।
4: इधर गांव का गरीब किसान हरिराम घर के खर्चों से परेशान नए काम की तलाश में बैठा हुआ सोच रहा था,
6: कैसे चलेगा इस घर का खर्चा। हाँ, नए फसल का समय आने वाला है, एक काम करता हूँ, मुखिया जी के पास तो वैसे ही कई खेत हैं, एक खेत गिरवी पर ले, उसमें खेती कर पैसे कमाए जा सकते हैं, एक बार उनसे बात करके देखता हूँ।
4: अगली सुबह हरिराम मुखिया के पास खेत गिरवी लेने के लिए पहुँच जाता है।
6: राम राम मुखिया जी।
5: हाँ राम राम, बता क्या हुआ है।
6: मुखिया जी, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नए फसल के लिए आपके खेत में मैं काम कर लूँ, उससे आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। मेरे पास अगर अपना खेत होता तो मुझे आपके यहाँ आना ही नहीं पड़ता, आप अगर मदद कर देंगे तो मैं कुछ पैसे कमा लूँगा।
5: ठीक है, मुझे क्या दिक्कत, मेरा तो यही काम ही है, ले जा खेत गिरवी पर। हाँ लेकिन ध्यान रखना, खेती हो जाने के बाद उसकी आधी फसल मेरी और आधी तेरी, अगर ये शर्त मंजूर है तो जा ले जा खेत।
6: ठीक है मुखिया जी, मुझे मंजूर है।
4: हरिराम को मुखिया ने शर्त के अनुसार अपना खेत फसल उगाने के लिए दे दिया था। अब हरिराम जी जान से मेहनत कर गेहूं की खेती कर देता है। 3 महीने बाद गेहूं पककर काटने लायक हो चुके थे। मुखिया और हरिराम खेत के बाहर खड़े थे। आज दोनों के बीच आधे आधे फसल का बंटवारा होना था।
5: देख हरिराम, मेरे कहे अनुसार फसल का बंटवारा करने का समय आ गया है, लेकिन एक दिक्कत है।
6: क्या दिक्कत हो गई मालिक?
5: गेहूं की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लगता है कि तूने जान के मेहनत नहीं की है, इसीलिए मैं तुझसे 70% हिस्सा लूंगा, तू 30% रख ले।
6: मुखिया जी, गेहूं देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा कि इसकी क्वालिटी खराब है, और वैसे भी पहले तो आधे आधे की बात हुई थी।
5: हाँ हुई थी, लेकिन तूने खराब गेहूं उगा, मुझे धोखा दिया, तो अब तू ही बता मेरे पास क्या उपाय है। वैसे भी ये खेत मेरी है ना, तो मैं अपने हिसाब से जितने गेहूं चाहूं ले सकता हूं। पुरानी बातें भूल जाए कि मैंने क्या बोला था।
6: मुखिया जी, इससे तो मेरा पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा, मैंने सोचा था गेहूं बेचकर गांव के लोगों की उधारी खत्म करूंगा।
5: मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुझे 70% गेहूं देना ही पड़ेगा।
4: एक तरफ हरिराम तो दूसरी तरफ मुखिया का चेला गेहूं लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हरिराम मुंह लटकाए घर पहुँचता है और घर पर आज कई सालों बाद उसका छोटा भाई गंगाराम शहर से आया हुआ था।
6: क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुंह लटकाए कहां से आ रहे हो? अरे छोटे, तू इतने सालों बाद शहर से आया और आज मेरे लिए तो ऐसा दिन है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे आने की वजह से खुश हूँ या खेती में नुकसान की वजह से दुखी रहूं। क्या हुआ है भैया, आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तू कुछ नहीं कर सकता छोटे, गांव का मुखिया बहुत पैसे वाला है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, हम गरीब कहाँ तक उससे लड़ते रहेंगे। अच्छा, तो मुखिया ने आपको कुछ कहा है इसीलिए आप परेशान दिख रहे हो? नहीं, उसने कहा नहीं, उसने किया है। बात यह है कि मुझे गांव के कई लोगों को उधारी का पैसा लौटाना है। मैंने सोचा कि मुखिया के खेत में गेहूं उपजा, आधा गेहूं मैं उसे दे दूं और आधा मैं ले लूंगा। उस आधे गेहूं को बेचकर मैं लोगों को उधार चुका देता, लेकिन फसल पकने के बाद मुखिया अपनी बातों से मुकर गया। उसने मुझे गेहूं का 30% हिस्सा ही दिया और अपने पास 70% रखा। चिंता मत करो भैया, अब इस मुखिया को मैं वही भाषा समझाऊंगा जो भाषा ये समझता है।
4: अगले दिन गंगाराम मुखिया के पास जाकर अपने बड़े भाई की तरह ही खेती करने के लिए उधारी पर खेत मांगता है।
6: मुखिया जी, मुझे इस बार खेती के लिए आपकी जमीन चाहिए थी, अगर आप मुझे कोई भी खेत दे देते तो मैं उसमें खेती कर अपनी कुछ उधारी के पैसे जो मैंने गांव वालों से लिए थे उसको चुका देता।
5: अच्छा, तो तुझे भी यही दिक्कत है, तेरे भाई ने भी यही बोला था और मैंने उसकी मदद की थी, तो मैं तेरी भी मदद करूंगा ही। जा, मैंने तुझे वही खेत गिरवी पर दिया जो तेरे भाई को दिया था।
6: ठीक है मुखिया जी, अब ये बता दीजिए कि खेती के बाद उसमें से आप कितना हिस्सा लेंगे और मुझे कितना हिस्सा मिलेगा।
4: मुखिया सोचते हुए बोला,
5: हो न हो, ये अपने भाई का बदला लेने ही मेरे पास आया होगा, इस बार मुझे कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इस बार मेरी एक नई शर्त रहेगी, तुम जिस भी फसल की खेती करोगे उस फसल के जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा और जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा।
6: ठीक है, मुझे मंजूर है।
4: गंगाराम खेत मिलने के बाद वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। इधर मुखिया भी ये सोचकर काफी खुश था कि उसने गंगाराम को भी उसके बड़े भाई की तरह अपने जाल में फंसा लिया। दिन बीतते गए, गंगाराम खेती में मेहनत करने लगा। 3 महीने बाद जब फसल बड़े हो गए तब गंगाराम मुखिया के साथ खेत पर,
6: आज गाजर निकालने का समय आ गया है।
5: क्या, तुमने गाजर लगाया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया, अब इस खेत के गाजर का आधा हिस्सा मैं लूंगा।
6: नहीं मुखिया जी, अब तो वही होगा जो पहले बोला गया था, जमीन के नीचे वाले फसल का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा आपका। मैं आपकी बातों को नहीं टाल सकता, मैं गाजर ले जाता हूँ, आप उसके ऊपर का हिस्सा ले जाइए।
5: अरे लेकिन मैं ये घास फूस का क्या करूँगा,
6: ये तो आप जानिए मुखिया जी, आप तो इतने समझदार हैं, कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेंगे।
4: गंगाराम गाजर से भरा हुआ बोरा सिर पर रख कर वहाँ से चला जाता है। मुखिया उसे गुस्से में देखता रह जाता है।
5: मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बेवकूफ बनाया, आज तक कोई भी मुझे चूना नहीं लगा पाया, लेकिन इस गंगाराम ने मुझे पहली बार में ही पटखनी दे दी, इसका हिसाब जरूर होगा।
4: इधर गंगाराम अपने घर पर पैसे लेकर आता है और अपने बड़े भाई को देते हुए कहता है,
6: भैया ये लो, ये पैसे मैंने गाजर बेचकर कमाए हैं, आपको गेहूं से जितना नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई इस पैसे से हो जाएगी और आप अपना कर्जा भी चुका पाओगे।
4: अगली सुबह मुखिया अपने घर पर चिंता में डूबा अपने चेले से बात कर रहा था।
5: अगर दुश्मन से बदला लेना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मालिक, उसका सफाया कर देना चाहिए।
5: कर देना अनपढ़ों वाली बात, इससे दिमाग से हराना होता है दुश्मनों को। चलो गंगाराम के घर, दिमाग चलाने का समय आ चुका है।
4: मुखिया अपने चेले के साथ गंगाराम के घर जाता है और गंगाराम से कहता है,
5: गंगाराम अब मेरा खेत खाली है, मैं चाहूंगा कि तुम फिर से उसमें खेती करो, पर इस बार तुम्हारे लिए एक नई शर्त है, इस बार जो फसल तुम उगाओगे उसके जमीन के नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा होगा।
6: ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, आप मेरे घर तक आए तो मैं आपको खाली हाथ नहीं भेज सकता हूँ।
4: मुखिया चला जाता है। इधर हरिराम अपने छोटे भाई से,
6: छोटे जब हमारा बदला पूरा हो चुका है तो उसके बाद तुमने दोबारा खेती करने के लिए हामी क्यों भरी?
5: भैया पहले मैंने आपके नुकसान की भरपाई की
6: और मैं दूसरी खेती के पैसों से गांव वालों की मदद करूंगा। मुखिया ने गांव के जिस भी आदमी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाए हैं, मैं मुखिया से कमाए पैसे उन्हें लौटा दूंगा।
4: गंगाराम इस बार नए फसल को उपजाने का काम शुरू कर देता है। 3 महीने बाद फसल पककर तैयार हो जाता है। इस बार
5: तुमने तो फिर से चूना लगा दिया। इस बार तुमने गेहूं की खेती कर ली।
6: हाँ मुखिया जी, इसका ऊपरी हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे का हिस्सा आपका, जैसा कि आपने कहा था।
5: पर मुझे लगा कि इस बार भी तुम गाजर की खेती करने वाले हो, यानी कि आप मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए।
6: आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं गांव के गरीब किसानों जैसा नहीं। अब एक ही उपाय है, आप अपना नुकसान फिर से नहीं चाहते तो गेहूं का आधा आधा हिस्सा करने के लिए मैं तैयार हूं। पर शर्त यह है कि आपकी चालाकी की वजह से गांव के गरीब किसानों का पहले जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी।
4: मुखिया को ये सौदा पसंद आता है। उसे बार बार नुकसान से अपनी गलती का एहसास होता है और वो गांव के गरीब किसानों के साथ की गई बेईमानी का पैसा लौटा देता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। हमारे सौर मंडल की में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? ए जुपिटर, बी टाइटन, सी अल्फा सेंटोरी। सही जवाब थोड़ी देर में जरूर मिलेगा, लेकिन प्रियम भारतम ये गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं उड़ान में।

प्रियं भारतम तत् सदा वंदनीयम। हमारे सौर्यमंडल में सबसे बड़ी वस्तु न तो टाइटन है न अल्फा सेंटोरी है, बिकॉज ये एक्चुअली सौर्यमंडल के नहीं है, ये हमारे स्पेस में ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमारे सौर्यमंडल में चंद्रमाएं और साथ साथ ये प्लैनेट्स ग्रह हैं और जुपिटर इनमें से सबसे बड़ा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिते ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुँचाने के लिए एक मंच देते हैं, जिसका चलते सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना भाव और भावना को रखते हैं और कार्यक्रम सुंदर बन जाता है। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास का जो गतिविधि है हमारा अंचल में हमारा गांव में जो गतिविधि हो रही है, क्यों सीमित रहे अपना गांव और अंचल में, जन जन तक पहुंचे, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रेडियो मधुबन शाखा और राजकीय विद्यालय के मिली सहयोग से आज का कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुति होगा। तो आज हम आबरोड ब्लॉक से सीधा चलते हैं रेवदर ब्लॉक में, जो रेवदर तहसील के बांट ग्राम पंचायत है, उसके अंदर में हमारा इस प्रोग्राम आज आपके पास रखने जा रहे हैं। क्योंकि बांट एक दूरस्थ गाँव है आबरोड से, तो आज बच्चों का आवाज़, विद्यार्थियों का आवाज़, भाव और भावना लेकर पहुँचेंगे। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति सुनेंगे। हमारा होवनहार छात्राएं उपस्थित है, एकता, रिया कुमारी और मंजुलता शिवानी इस कार्यक्रम को सजाएंगे, तो उनको स्वागत करते हैं। तो शुरू हो जाए, एक प्रार्थना के रूप में माँ सरस्वती को याद करते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते तो प्रभु याद में, माँ सरस्वती का याद में, अपना कुल देवी कुल देवता, जिसको हम भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी नाम से हम पुकारते, हमारे भगवान कहे अल्लाह कहे खुदा कहे जो भी नाम से आप पुकारते उनको स्मरण करते हैं, जिसका चलते कार्यक्रम व कोई भी कार्य अच्छा हो जाता है। तो आज विद्यालय में जब पहुँचे तो प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रार्थना के रूप में अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। तो एक प्रार्थना सुनते हैं बच्चों से।
1: मेरा नाम एकता कुमारी है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इतने दूरस्थ जगह में जब आए तो दूरस्थ बच्चों को तंदुरुस्त होकर अपना बात को रखें, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, जो इससे पता चलता बच्चे किस तरह कार्यक्रम को सजाते हैं, और धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए आप सब सुन पा रहे खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रैबदर तहसील में आते हैं मंडर का आसपास है, तो बहुत दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुनाने के लिए पहुंचे, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब मन का बात सच्चे दिल से गाते हैं समूह रूप में। तो आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी सजा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे पास उपस्थित है आरती और रिंकू, है ना। तो अपना अपना नाम और क्लास और कहाँ से वो चीज़ बताएंगे और हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे भाई, एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा हो, जो भी अपना अंदर में आता है अचानक में जब आए अचानक में ही एवर रेडी जो है, ना ज़्यादा ना कम वो दे रहे हैं, तो हम बोल भाई ठीक है।

0: जितना आपका पास है वो विशेषता गीत का माध्यम से, संगीत का माध्यम से, भाव का माध्यम से प्रकट करिए। तो शुरू।
1: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
3: मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
4: मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रहे।

0: बांध ओढ़िया बांध रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। चाहे मैंने पहले भी बताया था भाई, एक अंतरा हो चाहे एक मुकड़ा हो, जो है तो हमारा उससे पता चलता बच्चों का स्वर और लय। तो इस कड़ी को ही और साथ देने के लिए और कुछ छात्रा है तो उनको भी स्वागत करते हैं। तो रेडी बच्चे, ओके शुरू करिए आप भी।
2: लक

0: छोड़ दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ चाहे रिंकू हो चाहे आरती हो चाहे सभी जो नाम बताए अपना अपना, तो उन सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट की आवाज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमारा साथ बहुत सारा छात्राएं उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और सजबाज होकर अपना स्वर लय को सेट होते हुए आए हैं अपना प्रस्तुति देने के लिए। तो देर किस बात की, एक देशभक्ति गीत हो, क्योंकि भारत देश महान है। जिस गांव जिस अंचल में रहते हैं वो गांव और अंचल भारत में आता है, तो भारत को समर्पित, देश को समर्पित एक भक्ति भरा देशभक्ति सुनेंगे बच्चों से, है ना। बच्चे रेडी, सभी अपना अपना भाव को प्रकट करेंगे देश हित में, जन हित में, लोक हित में। तो सुनते हैं

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आज तो बच्चे विद्यार्थियों का आवाज बच्चे के रूप में दे रहे हैं और बच्चे सच्चे होते हैं, चाहे उनका अंदर में जो भी भाव और भावना है देश का प्रति हो, चाहे खुद का प्रति हो, चाहे राज्य के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, चाहे विश्व के प्रति हो, सब में तत्पर रहते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद आप सब सुन पा रहे, खासकर रेडियो मधुबन जो कि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। आज हम दूरस्थ जगह में पहुंचे तो दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुना रहे हैं, तो खुशी लग रहा है क्योंकि कोई उल्लाना न दे जे हमारा पास रेडियो मधुबन पहुंचा नहीं, हमें मंच नहीं दिया, कोई नहीं कहे जे हमें रेडियो मधुबन चांस नहीं दिया, तो कम से कम एक बार तो चांस मिलना चाहिए, उल्लाना नहीं देंगे, है ना बच्चे? आपको मिल रहा है इसलिए आप उल्लाना नहीं देंगे जे हमें रेडियो मधुबन का साथ रूबरू नहीं हुए हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

चलिए एक का बाद एक प्रस्तुति है सुनने को मिल रही है और हमारा विद्यार्थियों में खासकर बालिका विद्यार्थी कम नहीं है, हर प्रोग्राम में भाग लेते हैं क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में बालक से बालिकाएं ज़्यादा भाग ले रहे हैं क्योंकि उनका अंदर में ना कोई झिझक ना कोई डर ना कोई भय, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई सजबज नहीं। अचानक में जब पहुँचे अचानक में एवरेडी का पाठ पक्का करते हैं तो सुंदर प्रस्तुति के लिए तैयार है एक सीख भरी गीत जिसमें पूरा साहस उद्यम उमंग उल्लास को लेकर पहुँचेंगे। तो सभी को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजाने के लिए, शुरू होंगे 1 2 3 शुरू।

क्या बात क्या बात, बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए। और देखिए बच्चों के अंदर में जो विशेषता है, आज रेडियो मधुबन जो मौका दिया वो मौका का फायदा ले रहे हैं और हमें भी खुशी है, बच्चों को एक मंच मिल रहा है और इसका माध्यम से अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब अभिभावक माता पिता बंधुगण और दोस्त लोग सुनेंगे तो विद्यालय का नामांकन में भी वृद्धि होगा और बच्चों को ओपन राउंड में उनको कोई पूछने के लिए भी, उनका बारे में जानकारी के लिए भी पहुंचते हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है। सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद, क्योंकि समय को देखते हुए बच्चों का जो भाव और भावना को, चाहे एक मुखड़ा हो चाहे एक अंतरा हो, उससे पता चलता है कैसे और किस तरह प्रस्तुतिकरण करता है, तो उससे पता चल जाता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और विद्यार्थियों से हम भी विद्यार्थी बन के उनका विद्या का अर्जन का साथ साथ उनका अंदर में जो भाव है, भावना है, संगीत में जो रुचि है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, इस तरह मंच का माध्यम से निखारते हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए बच्चिया उपस्थित है, तो सभी विद्यार्थियों को स्वागत करते हैं। इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, एक को देकर दूसरे भी, सर मैं भी मतलब क्यों नहीं भाई, आज तो चौका छक्का लगाना है, मौका मिला है, मौका का फायदा लेना चाहिए। कभी कभी मिलता है इस तरह मौका, तो आज जब रेडियो मधुबन का टीम पहुंचे हैं तो हमारा अलेक जी जो कि एडिटर भी आए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनको भी सुनने को मिलता है, सुनाने को भी मौका मिल जाता है। तो सभी को लेकर संगठित रूप में किस तरह बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर रुकना है और किस तरह स्वर और लय के साथ करना है वो भी बताते हैं, जिसका चलते उनको एडिटिंग में दिक्कत नहीं होता है। सभी को एक साथ करके संगठित रूप में एक के बाद एक रिकॉर्डिंग कराए। तो लेते हैं बच्चों से आवाज़ सुनने के लिए, सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनिए अगला प्रस्तुति।

बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए एक सिख भरी पूरा त्रिरंगा जो कि देश का झंडा है, तो उनको सलाम करते हुए और देश भक्ति में ओत प्रेत होकर सभी ने अपने प्रस्तुति दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रेबदर तहसील के एरिया में आता है। तो बच्चे बारी बारी अपना आवाज़ को बुलंद से दे रहे एक सीख भरी गीत के लिए उपस्थित है। तो जैसे कि नाम है झलक और जयश्री, है ना, झलक और जयश्री को स्वागत करते हैं, जो कि अपना अपना परिचय कौन सा क्लास और कहाँ से वो चीज़ रखेंगे, है ना। तो रेडी हो जाए, शुरू करें, चलिए देर किस बात की, शुरू करिए।
1: मेरा नाम झलक कुमारी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
2: मेरा नाम जयश्री कुमारी, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट, जिला सिरोही है। जी।

मैं ही ताली बजा दिया आप लोग के लिए, क्योंकि आप तो है ही महान और हमें खुशी है इस तरह प्रेरणादायी सीख भरी गीत का माध्यम से अपना भाव को प्रकट किया। हमारा श्रोता मित्र लिसनर सुन रहे ध्यान से, अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए वो भी एक सीख लेकर सुनते हैं। और आप लोग इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, हर विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिकता पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज बांट राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सुन पा रहे हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

चलिए अच्छा गीत सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन के द्वारा भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणादायी और भक्ति भावना में ओतप्रेत होकर गीत सुनाते हैं हमारा शेड्यूलर बीके शुभश्री बहन, उनको भी स्वागत करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से। हम तो रिकॉर्डिंग बाहर से लाते हैं।

0: और वो स्टूडियो में रहकर सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, जैसे अभी ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए साथ दे रहे हैं मंजुल। ये शायद अंतिम प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति में अंतिम आवाज आपके पास हम रख रहे हैं, तो शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
1: मेरा नाम मंजुला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से स्कूल आती हूँ। अब

ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, हो टूटी यारिया, मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में, होने वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होने वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार।

0: यारिया मिला दे ओए।
1: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इस कड़ी को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम। चलिए इस कड़ी में ही और एक जोड़ देते हैं, जिसको सजाने के लिए मंजुलता और खुशी भी हाथ उठा रहे, तो उनको भी चांस देते, भले एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा हो, प्रिपरेशन होकर आए तो उनको भी कैसे भूलेंगे। तो आ जाइए, आप भी अपना प्रस्तुति दीजिए।
0: मेरा नाम मंजिला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से आती हूँ।
2: मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
0: मारिया।

0: चांद बड़ी पाई मने, श्याम श्याम राखू तो चांदी के लगाई मने, तेरी याद खड़ी माई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रस्तुति में अंतिम रूप में सुंदर लग रहा है, चार चांद लगा दे, 20 लाखों लगाकर आपने स्वर और लय का साथ सुंदर प्रस्तुति दिए। चाहे सिख भरी गीत हो, चाहे भाव विभोर होकर अपना बात को रख पड़े उमंग उल्लास का साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो ये था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो की रेबदर तहसील से आपका पास हम रखे हैं। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर को आज आपका पास रखें। सुनते रहिए, सभी को पुनः नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

0: पसंद आई थी यही इत्तेफाक था, तुम पसंद आए थे यही इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए यह इश्क है।
1: मेरा नाम अमृता प्रीतम है और ये मेरी इश्क की तलाश है। यूं तो दिल लगाने का हुनर सबको आता है, पर खुश नसीब है वो जिन्हें इश्क मिल पाता है। दुनिया के लिए प्यार की तलाश शायद शादी के साथ खत्म हो जाती है, पर मेरे हाथ की लकीरें कुछ उल्टी थी। मेरी शादी 16 की उम्र में हो गई, जिस उम्र में खुद को समझने की समझ नहीं थी, उस उम्र में मुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। पर किस्मत की चादर कुछ अलग ही मसक जा रही थी।

एक पली मोहब्बत की अधूरी दास्तान, जहां बातें बहुत कम होती थी मगर भावनाओं को बहुत शिद्दत से जिया जाता था। जहां उनके बारे में लिखा तो शायद बहुत गया मगर उनको जानता सारा जहां है। उनकी प्रेम कहानी न जाने कितनी अनोखी और जाने किस दुनिया जहान की लगती है, मगर ये सच है कि दोनों मिलते थे कॉफी हाउस में, अदबी मुशायरों में। तो अमृता को लगता था कि साहिर उनको बहुत चाहते हैं पर वो उनसे बोल नहीं पाते हैं। तो जी दोस्तों, आज हम आप सभी को बोल रहे हैं।

0: शायद उनमें से कितनी शादीशुदा होती हैं, और वो जो उनकी जिंदगी का अनमोल हिस्सा सिर्फ उनको ख्यालों में ही सुकून से मिलता है। तो जहां तक अपनी जिंदगी जीने और चुनने का सवाल है, तो अमृत कौर ने कुछ ऐसा ही किया।
1: जी हाँ साथियों, जिंदगी का जो उन्होंने रास्ता चुना तो उसके लिए उस समय भी ना तो उन्होंने समाज का मुंह ताका और ना ही उन्होंने रिश्तों की परवाह की, बल्कि अपनी पसंदीदा जिंदगी को जीते जीते वो पंजाबी साहित्य को बहुत बेहतरीन चीज दे गई। चाहे वो उपन्यास हो या कविता, उनकी हर चीज में पंजाबी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया। तो आज अमृता प्रीतम का जन्मदिन है, आज हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी जीने का चुनाव किया।
0: जी हाँ, इस किस्से की शुरुआत हुई 1939 में, कॉलेज में, जहाँ साहिर ने शेर शायरी को लिखना शुरू ही कर दिया था और अमृता उनके शेर शायरी की बहुत दीवानी थी और मन ही मन उसे बेहद प्यार करती थी। मगर उनके घर वालों को रिश्ता मंजूर ही नहीं था, क्योंकि एक तो अमृता उस समय शादीशुदा थी और दूसरा साहिर मुस्लिम थे और उनकी माली हालत बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। तो बाद में अमृता के पिता ने साहिर को कॉलेज से निकल दिया और लगा कि लव स्टोरी शायद नहीं खत्म हो गई, लेकिन शायद वक्त कुछ और ही मंजूर था।
1: जी हाँ वंदना जी, लेकिन 5 साल बाद दोनों लाहौर के एक मशहरे में फिर मिले। अमृता के ही शब्दों में पता नहीं, या उसके लफ्जों का जादू था, या उसकी खामोश निगाहों का मैं उससे बंद कर रह गई थी। अमृता ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बहुत ही करीब से देखा था। विभाजन के बाद अमृता दिल्ली आ गई और शायद मुंबई में बस गए। सुकून इतना ही काफी है, फासलों में रहकर भी तुम दिल के सबसे करीब रहते हो। अलग अलग जगह पर आने के बाद भी उनके बीच की दूरियां जो आ गई थी, उसमें भी उनका एहसास से
0: तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, जो होता नशा तो एक दिन में उतर नहीं जाता। जी हाँ, अमृता साहिर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो उनको ताउम्र नहीं भूल पाई। साहिर से मिलने व दिल्ली आने के बाद अमृता का शादीशुदा रिश्ता अपने पति से बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया और उनका रिश्ता अपने उनके पति से ख़त्म हो गया। इसके बाद वो बताती हैं कि जब साहिर मेरे कमरे में आता था तो वो लगातार खामोशी से सिगरेट पिया करता था और फिर खामोशी से ही उठकर चला जाता था। उसके जाने के बाद मैं उसके सिगरेट की बटों को उठाकर इकट्ठा करती थी और उनको फिर से सुलगाकर पिया करती थी, और जब मैं अपनी उंगलियों में सिगरेट की उन बटों को पकड़ती थी तो लगता था कि साहिर की उंगलियों को छू रही हूँ। यह लाइन साहिर के प्रति उनके इश्क को बयान करती है।
1: साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर अमृता प्रीतम की खूबसूरत कहानी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारी सी बातें आप सुन रहे हैं, एक साहित्यकार की प्रेम कहानी। जी हाँ, अमृता से कोई रिश्ता निभाने का वादा न दुनिया के सामने किया और न ही उनसे कोई कमिटमेंट किया, मगर फिर वह भी अमृता के बेहद दीवाने थे साहिर जी, और उनके गीतों में उनकी भावनाएं हमेशा महसूस की जाती थी। अमृता के लिए साहिर उनका भी इजहार उनके सामने नहीं कर पाते थे, तो वो सारा इश्क उनके गीतों में समा गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया को बेहद दिल को छू लेने वाले गीतों से समृद्ध किया। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मशहूर थे और साहिर उर्दू में लिखते थे तो अमृता पंजाबी में लिखती थी। जी हाँ, लेकिन उनके प्यार के बीच मजहब या भाषा की कोई भी नहीं दीवार, ये अमृता बताती है। वैसे अमृता देखने में बहुत खूबसूरत थी और साहिर देखने में औसत दर्जे से भी कम, मगर जनाब ये इश्क सब कहाँ देखता है।
1: दिल तो बस एक ही जुबान समझता है, मोहब्बत मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत।

और वह यह है कि कहीं ना कहीं खालीपन तो इंसान को सताता ही है, क्योंकि 24/7 ना तो लिखा जा सकता है और ना ही सोचा जा सकता है। ऐसे कितने ही लम्हे, कितने ही मौसम अमृता ने साहिर के बगैर गुजारे होंगे। शायद कहीं ना कहीं उनके मन की स्थिति में उनकी जरूर आती नहीं होंगी, तो जो बातें उनके मन की स्थिति में आती होंगी कोशिश की है। चलिए उसी से रिलेटेड हम आपको एक गाना सुनवाते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ये सारी खुशियों के साथ। अमृता प्रीतम और साहिब की बात हम जब करते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों ने मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान लिखी है। ऐसे ही न जाने कितने बरस गुजर गए तो श्रोताओं, जिंदगी में वो लम्हे जो खट्टे मीठे कुछ कड़वे होते हैं, जो हमें जिंदगी के तजुर्बे से मिलते हैं, तो उन्हीं से कोई शायर और कोई लेखक बन जाता है। लेकिन ये सब हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही चुनिंदा होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं।
1: ऐसे ही एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो साहिर को फोन करके पूछती हूँ, क्योंकि वो हमेशा के लिए साहिर के साथ एक हो जाना चाहती थी कि चलो अब मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है। तो उसके बाद जब वो घर से निकली और फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ की तरफ जाती है तो वहाँ एक शॉप पर उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में साहिर और सुधा मल्होत्रा के इश्क की चर्चा है। जब फ्रंट पेज पर उनकी नज़र पड़ती है तो बहुत टूटे दिल से और भरी आंखों से वो घर वापस आ गई। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत गजल।

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनी। इमरोज अमृता की जिंदगी में बहुत तेज से आया। अमृता को अपनी किताब आखिरी खत के कवर पेज के डिजाइन के लिए एक चित्रकार की जरूरत थी। वो चित्रकार सेठी से मिली और कहा कि आप ये मेरा कवर डिजाइन कर दीजिए। चित्रकार सेठी ने कहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है। और उन्होंने अमृता से इमरोज को मिलवाया। उस जमाने में इमरोज क्षमा पत्रिका में जो उर्दू की निकलती थी उसमें काम किया करते थे। इमरोज ने उनके कहने पर किताब का कवर डिजाइन किया। अमृता को डिजाइन भी पसंद आ गया और आर्टिस्ट भी।
1: तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। अमृता इमरोज से उम्र में बड़ी थी और इमरोज उनके साथ, जब उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मर्जी बताई, तो बोली कि अरे पहले दुनिया तो घूमो, अच्छी तरह से देख लो, अगर फिर भी तुम्हारा इरादा मेरे साथ रहने का है तो मैं तुम्हें इसी जगह पर ही दूंगी। उनकी ये बात सुनने के साथ ही इमरोज ने उनके कमरे के साथ चक्कर लगाए और बोले इस तरीके से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। उस समय अमृता रेडियो में काम किया करती थी और वो बस से सफर किया करती थी। इमरोज जब उनको बस से जाता देखते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने उनके लिए पैसे जोड़ जोड़ कर एक स्कूटर खरीदा और बोले अब आप स्कूटर पर जाया करो। इमरोज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अमृता के लिए इतना कुछ किया कि शायद हम और आप लोगों की सोचों से भी परे की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने जब स्कूटर पर जाना शुरू कर दिया तो अमृता स्कूटर पर इमरोज के साथ पीछे बैठती थी और उनकी उंगलियां इमरोज की पीठ पर साहिल और सहेली रखती थी। तो इमरोज को अमृता की इस बात से कोई गिला ही नहीं होता था, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ अमृता के लिए ही बने थे और उनको किसी परेशानी में कभी देख ही नहीं सकते थे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत दिल को छूने वाली।

0: जी हाँ साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी गजल सुनी। आइए बात कर रहे थे हम लोग अमृता प्रीतम की जीवन कहानी के कुछ हिस्से आपको सुना। अमृता को रात के सन्नाटे में लिखने की आदत थी, ताकि रात में उनका कोई फोन या कोई शोर डिस्टर्ब ना कर सके। तो इमरोद ने रात को 1 बजे उठना शुरू कर दिया। वह उनके लिए चाय बनाते और वे बेआवाज उनके पास रख कर वापस आ जाते थे। अमृता लिखने में इतनी मशगूल होती थी कि देखती भी नहीं थी। तो ये सिलसिला 40-50 वर्षों तक लगातार चला, जहाँ शायर उनकी चाहत को कोई नाम न दे सके, वही इमरोद ने हर पल, चाहे समाज हो या कोई और, इश्क के हर इम्तिहान को 100% पास किया। जब वह संसद में मनोनीत की गई तो वह उनको छोड़ने जाते थे और घंटों बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहते थे। तो लोग उनको अमृता का ड्राइवर समझते थे। पार्टीज होती थी तो भी वो गाड़ी लेकर उनको छोड़ने जाते थे। जब लोगों को मालूम चला कि अमृता का बॉयफ्रेंड है तो उनको भी इनवाइट करना शुरू कर दिया।
1: अमृता ने एक ही वाक्य में साहिर और इमरोज को बयां कर दिया। वो बोलती थी कि साहिर मेरा आसमान है और इमरोज मेरी छत। हालांकि छत तो आसमान में ही खुलती है, मगर क्या कमाल इश्क था इमरोज का कि उनके लिए इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ अमृता को ही चाहते थे और चाहते ही चले गए।

क्योंकि इमरोज बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, तो एक बार गुरुदत्त जी ने उनको उनकी ही शर्तों पर काम करने के लिए मनाई थी। जब इमरोज ने अमृता को ये बताया तो अमृता सत्ते में आ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि इमरोज उनको छोड़कर नौकरी करने मुंबई जा सकते हैं। तो बोली इमरोज, मेरे पास जिंदगी के 3 ही दिन बाकी हैं और मैं इन 3 दिनों को जी भर कर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो दोनों बहुत घूमे फिरे, वह सब कुछ किया जो अमृता के दिल ने चाहा। जब वो मुंबई चले गए तो अमृता को बहुत तेज बुखार हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी तन्हा हो जाएंगी और अकेले जिंदगी बिताने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वह अकेलेपन और बेचैनी उनसे सही नहीं जा रही थी।

0: और जब इमरोज को ये मालूम चला कि अमृता बहुत बीमार है तो वो तीसरे दिन ही अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर दिल्ली वापस आने लगी। उन्होंने अमृता को तार दे दिया कि वो वापस आ रहे हैं, तो अमृता उन्हें लेने रेलवे स्टेशन गई और इमरोज को देखते ही उनका सारा बुखार उतर गया और उसके बाद इमरोज फिर कहीं नहीं गए, हमेशा के लिए अमृता के साथ ही रहे। और आखिर में जब अमृता के कुल्ले की हड्डी टूटी तो वो बहुत दर्द में रही, मगर इमरोज ने उनके लिए वो सब कुछ किया जिसकी शायद कभी अमृता ने उनसे उम्मीद भी नहीं की।
1: और वह अंतिम सांस तक उनका सहारा बनकर रहे। तो रमेश जी, यहाँ मैं अपनी तरफ से इमरोज के लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ, जानते हैं वो क्या है?
0: नहीं।
1: वो है पानी। पानी जैसे रंग में मिलाने से और रंग हो जाता है, इसी तरीके से क्योंकि इमरोज वैसे भी आर्टिस्ट थे, वो अमृता के साथ इतने इस तरीके से हर सांचे में ढल गए कि ये उनके प्यार का कमाल ही बन गया है। उन्हें किसी तरह से कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कोई सिर्फ उनके साथ उनकी मर्जी के साथ वो जीते चले गए। तो है ना श्रोताओं, इस प्रेम कहानी का कमाल।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वंदना जी। आशा करूंगा अमृता और इमरोज की कहानी, जैसे आपने कहा पानी का उदाहरण देते हो, पानी जहाँ जिस रंग में मिला दो वैसा रंग पानी में होता है। तो अमृता के लिए उन्होंने जैसा लगा अमृता को जहाँ जरूरत है वो वैसे ढल गए। तो श्रोताओं, ये प्रेम कहानी आपको पसंद आया होगी और कहते हैं आपको भी कहीं ना कहीं दिल को जरूर छुआ होगा इन दोनों की कहानी। जी हाँ, और है भी इसी दुनिया की और बहुत पुरानी कहानी नहीं है।
1: हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत रहे थे इमरोज अपने में और बहुत अमृता से ज़्यादा उस समय अर्न किया करते थे, लेकिन कहीं भी उनके अंदर कोई मैं नहीं था। थोड़ी भी हमने हालांकि उनकी लाइफ की बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी शेयर करी है, आप समझ सकते हैं इतने सालों तक दोनों साथ रहे, लेकिन कहीं उनके अंदर मैं था ही नहीं। उनकी लाइफ में थी तो सिर्फ अमृता और एंड तक भी वही उनकी ज़िंदगी में रही। तो है ना चाहती कितनी खूबसूरत और अनोखी कहानी।
0: बहुत ही अनोखी कहानी आपने बताया और ट्रायंगल लव स्टोरी की वो सुंदर प्रेम कहानी अमृता शायद फिर इमरोज, तो बहुत ही अच्छा एक प्रेम कहानी यहाँ बयां होती है। और वंदना जी, जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अमृता प्रीतम की ये कहानी साहिब और अमृता जी की प्रेम कहानी ने
2: इन दोनों को अलग कर दी है,
0: लेकिन उन दोनों का मिलना या प्रेम दुनिया को समृद्ध कर, एक तरफ अमृता प्रीतम की जो लिखत है वो पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया, दूसरी तरफ साहिब की जो प्रेम कहानी उन्होंने हिंदी गीतों में उनका प्रेम का जिक्र करके हिंदी फिल्मों की दुनिया में गीतों का एक समृद्ध गाने है, गीत है वो देखा,
1: वो फिल्मी दुनिया को।
0: तो फिल्मी दुनिया को और साहित्य दुनिया को जो है दोनों का प्रेम का एक हिस्सा जो है समृद्ध कर गया, ये बहुत बड़ी बात।
1: और दूसरी बात, अमृता हमेशा इमरोज को बोला करती थी, इमरोज तुम मेरी जिंदगी की शाम में तुम मुझे क्यों मिले, मिलते तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। ये बहुत प्यारी सी उनकी पोएम है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि समय हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहा है आपको पढ़कर बताएं, तो आप ये पढ़ सकते हैं इसमें उनके बारे में। और उनके जाने के बाद इमरोज बोलते थे अमृता कहीं नहीं रही है, वो यही है मेरी पेंटिंग में, मेरी यादों में। और इस तरीके से जो अमृता की एक बहुत मशहूर पोएम है जो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज जरूर, मैं तेनू फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी ने आपके दिलों में ना जाने कितने चाहत के रंग बिखेरे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपको छोड़ जाते हैं बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।
0: चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मस्कराते।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदारी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रायः हम ये भूल जाते हैं कि हम जब भी धनोपार्जन या अपने किसी भी क्रियाकलाप में रहते हैं या पैसे कमाने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना आवश्यक है। कभी कभार हम अपनी तबीयत को दरकिनार करके पैसे कमाने में या धनोपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि शरीर का ध्यान न रखने के कारण या स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को कमाने में लगाना पड़ता है। एक ऐसा कुचक्र बन जाता है कि अगर हम इसको सही अर्थों में न समझें तो फिर जिंदगी भर किसी बीमारी को अपना मेहमान बना के रखना पड़ता है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में सही जानकारी पहले से हो तो शायद हम ये गलतियां करने से बचें। सेहत स्वास्थ्य पर रेडियो मधुबन पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम सही मार्ग पर आप सबको ले चलें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये कहावत सुनते आए हैं कि भाई हम वेल्थ के लिए हेल्थ को खो देते हैं और फिर बाद में जब वेल्थ आ जाता है और देखते हैं हेल्थ हमने गंवा दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ का, तो फिर उसी हेल्थ को रीगेन करने के लिए हम अपना वेल्थ लगाते हैं। यानी पैसे कमाने की होड़ में हम अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए हमें खर्चना पड़ता है। तो ये बड़ा कुचक्र जैसा लगता है कि हम एक के पीछे दूसरे को खो दे रहे हैं, फिर बाद में उसे पाने के लिए जो कमाया है उसे खोने की जरूरत पड़ रही है। आप क्या राय रखते हैं?
1: ये भैया आपने बोला ना कि सबसे पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी है और जब आदमी इस पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है तो वो भूल जाता है कि पैसा जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हम क्या करें और हम सुख, चैन, नींद, भोजन सब कुछ भूल कर पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा कमाना एक अंधी दौड़ है, क्योंकि हम अंधा व्यक्ति की तरह, पागलों की तरह उस पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं। और जब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। हमें क्या खाना है, क्या खाने से ज्यादा जरूरी चीज कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब चीजों को भी भूल जाते हैं। हम बहुत सारी जो कहते हैं ना सोशल जो गलतियां हैं, जैसे जिसमें अल्कोहल इनटेक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, इन सब की भी हम आदि बन जाते हैं। और जब मैं मरीजों से पूछता हूं कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं, आप क्यों अल्कोहल या आप शराब पीते हैं, तो यही बात बोलते हैं, अरे हम नहीं बट बिजनेस के लिए पीना पड़ता है। तो क्या आप बिजनेस के लिए अपने शरीर का किसी अंग को खराब करेंगे? ये बहुत गलत बात है। मैं एक बात

0: वो अपने शरीर का, मन का और अपने रूटीन तीनों का ध्यान रखते हैं। मैं आप व्यापार करने के चलते आप अपने जीवन में भयंकर स्ट्रेस भर लीजिए, उसी स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाए, आपकी गलत खान पान से, आपके नशा करने से आपकी लिवर खराब हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आपकी पैंक्रियास खराब हो जाए, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बात कही जाती है कि आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, आप एक भी क्षण एक्स्ट्रा अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते हैं। मगर यह हमेशा कहा जाता है कि यदि आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो आपको एक लंबा, स्वस्थ और मानसिक रूप से खुशहाल जीवन मिलेगा। प्लीज पैसा कमाने की होड़ में अपना शरीर मत थोप दीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आपको वही पैसा अपने शरीर को वापस कमाने के लिए खर्च करना पड़ेगा।
1: ये बात सुनकर समझ में आता है कि जो चीज हमारे पास है उसको वैल्यू देकर, उसकी कीमत को समझकर, उस कीमत के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हमें एक्स्ट्रा कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम जो चीज हमारे पास है उसे दांव पर लगाकर कुछ और हासिल करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये रिस्क लेना हमारे लिए हानिकारक तो है ही, मगर साथ साथ हमारे लिए कमाए हुए पैसे वो वापस खोने के बराबर हो जाता है। आजकल एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं वो है बीमारियां जो ऐसी हैं जो उम्र के साथ हो रही हैं, या लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में इनको ये बीमारी थी तो हमको भी ये बीमारी हुई है। और बहुत आम रीति से जो चीज सुनने को मिलती है वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज की बीमारी। और डायबिटीज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, परिवार में है इसलिए हमें भी हो ही गया, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रायः ये भी चीज समझा जाता है कि डायबिटीज में डाइट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो है ही, मगर खासकर डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार के प्रति सजग होने की जरूरत है। और अगर वो अपने खान पान, अपने आहार व्यवहार को और विहार को सही करते हैं तो ठीक हो सकता है, बहुत हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और कई जगहों पर तो डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स करने के बारे में भी बातें होती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज और डाइट का जो संबंध है उसके बारे में बताएं, क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई विशेष डाइट है, कोई डायबिटिक डाइट है, उसके बारे में बताएं।
0: डायबिटीज एक मतलब क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा ब्लड शुगर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर के जितने भी अंग काम कर रहे हैं उनको हमेशा शुगर चाहिए, और वो जो शुगर है या शकरा है वो आपकी कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की वजह से ही अंदर जाती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो इसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाली जो ताकत है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी वजह से होने वाली परेशानी। तो यदि हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम अपने भोजन को ठीक कर लेंगे, यदि हम अपने रहन-सहन को ठीक कर लेंगे, तो हमको हो सकता है जो डायबिटीज है उसके साइड इफेक्ट ना हो। आपने श्री भैया बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमारे परिवार में चली आ रही है, ये आपको अगर हमको हुई है, अगर मेरे पिताजी को है तो हमको भी होगी। मैं जो लोग भी ये बात बोलते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। कल ही मैंने भैया अपने ओपीडी में एक 16 साल के बच्चे को देखा जिसको डायबिटीज है। उनके बड़े भाई को डायबिटीज नहीं है, जो कि करीब 24 साल के थे,

0: और उनके पिताजी को डायबिटीज है। बड़े भाई ने बोला कि जब मेरे पिताजी को मालूम चला कि डायबिटीज है, मैंने उसी दिन से शुगर खाना बंद कर दिया, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दिया और जंक फूड खाना बंद कर दिया, और मैं रेगुलर 45 मिनट्स तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करता हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसी के अवैध में देखिए, वो 16 साल का बच्चा, उन्होंने जो मेरे पास लेकर आए थे बड़े भाई, उन्होंने बोला कि इसने एकदम हमारी बात नहीं सुनी। इसके भोजन में सिर्फ 3 चीज थी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। इस बच्चे ने अपने भोजन में दिन में 2 टाइम यही खाया और इसने कोल्ड ड्रिंक को पानी की तरह पिया। और अब ये सब देखने के बाद 16 साल की उम्र में उस बच्चे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसको उसका यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो गया था और उसके त्वचा में अब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसेशंस, और जैसे चीटी चलना है, रगड़ झुनझुनाना है, कांपना है, ये सारे उसको सिम्टम्स लगने लगे थे। और उसका अपने यूरिनेशन, मतलब पच, जो पेशाब का रास है, पेशाब, उस पर कंट्रोल खत्म हो गया था। तो आप देखिए, डाइट, एक ही घर में 2 भाई, दोनों के माता पिता सेम, एक ने अपने भोजन को कंट्रोल कर रखा है, एक्सरसाइज का सहारा ले रखा है, इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। और उनका छोटा भाई, जिसने इसमें भरोसा, जिसने कोई भी कंट्रोल नहीं किया, वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अगर मैं कॉमन कहना चाहूं तो डायबिटीज अक्सर थोड़ा मोटे व्यक्तियों को होती है, और जो ओवरवेट और लेस एक्सरसाइज, मतलब ओबेसिटी विद लिथार्जी, मतलब मोटापा के साथ साथ आप आलसी भी हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो आपको हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का भोजन करना चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब आप जितने भी, और इसके साथ हाई फाइबर डाइट का आपको भोजन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी चाहिए वो है प्रोसेस्ड वाइट शुगर, जो हमें बाजार में चीनी मिलती है, सबसे पहले उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी सामान बाजार में पाम ऑयल से बना है, पामोलिव ऑयल से बना है, उसको हमको अपने भोजन में एकदम एकदम एकदम बंद कर देना चाहिए। हमको हाई फाइबर डाइट, मतलब सारे फल, सारी सब्जियां, उसको सैलेड, सलाद, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। सलाद में भी ये बोला जाता है कि यदि आप टमाटर का सेवन बहुत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फलों में डायबिटीज का जो सबसे अच्छा फल माना जाता है वो है जामुन। जामुन में बहुत ज्यादा वो तत्व हैं जो आपके शुगर को नीचे लाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जो भी दाल आप खाते हैं अच्छे से खाइए, प्रोटीन जिन भी चीजों में आपको मिलता है उनका आप सेवन करिए। और आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी चीजें जिसमें, जो जैसे मैदा हुआ, आपको छना हुआ आटा हुआ, इन सब चीज की आपको कमी करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप ये मिक्स ग्रेन, मतलब 4-5 तरह का आटा मिला के उसका भी सेवन न करें। आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ सैलेड, मतलब बहुत सारा सलाद, कोई भी एक दाल, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट, मतलब या कोई भी एक अनाज, कहने का मेरा मतलब है, इसको अपने भोजन में करना चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस डाइट करने से भी अगर आपकी डायबिटीज एकदम शुरुआती दौर में है तो आपका डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है।
1: डायबिटीज रिवर्सल की आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इस बात से अचंभित होंगे क्योंकि अक्सर ये चीजें लोग सुनते नहीं हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज मतलब अब जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हर दिन हमको ये दवाई शुगर की खानी है, या कई लोग जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे और उसके साथ ही उनको जीना है, ऐसा ही लोग सोच लेते हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में संभव है कि अगर हम अपने भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्या चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम सभी इस बात को ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हमारे पीढ़ियों में आया है, हमारे माता पिता से हमको मिला है, तो फिर हमें भी इसके साथ ही जीना पड़ता है, ऐसा सोच लेते हैं। क्या एक अवधारणा मात्र है?
0: ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स गवर्न, और माता और पिता दोनों को अगर डायबिटीज है तो बच्चों में 90% चांसेस हैं कि वो होंगी, और अगर माता या पिता में से किसी एक को है तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनका ब्लड शुगर गड़बड़ है और उन्होंने अपने को एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल पे रखा है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे आरोग्य मंदिर में बहुत सारे पेशेंट पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि ग्रैंडफादर जो थे और ग्रैंड मदर थे, उनको कोई डायबिटीज नहीं थी। उनके चार बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था, सिर्फ उसको डायबिटीज हुई, और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जो जिस बेटे को डायबिटीज हुई, उनके भी बच्चों में डायबिटीज नहीं थी। तो ये मैं ये मानता हूं कि अगर दोनों माता पिता को है तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, पर अगर दोनों में से किसी एक को नहीं है और जो उनका सिबलिंग है या जो बच्चा है या भाई बहन है वो बहुत अच्छे से अपना अगर ख्याल रखते हैं तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज को सिर्फ अपने भोजन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं।
1: अब ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, डायबिटीज को भोजन से ठीक किया जा सकता है। एक और प्रश्न जो डायबिटीज से जुड़ी हुई लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है, वो है फास्टिंग के बारे में। ये प्रश्न उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जबकि हम प्रकृति चिकित्सा में देखते हैं कि फास्टिंग एक चिकित्सा के रूप में जो उपवास है वो रेकमेंड किया जाता है। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या एडवाइस देंगे?
0: अगर आपको सीवियर डायबिटीज है, मतलब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 250 से ऊपर है, आपका HbA1c जो है वो करीब 9, 10, 11 तक ऊंचा है, तो प्लीज फास्टिंग मत करिएगा। मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्लीज घर पे तो ये एकदम मत करिएगा, आप किसी डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी फास्टिंग मत करिएगा, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब हम खाते नहीं है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो मतलब जो शुगर है वो कम हो सकती है, और कम शुगर होने की वजह से हमको बेहोशी छा सकती है, कमजोरी छा सकती है, और हमारा जो शरीर है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये कहा जाता है कि आप इसको अगर मेडिकल सुपरविजन में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने शरीर के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर आपको हल्का मतलब बहुत लो डायबिटीज है, बहुत सब कुछ वेल अंडर कंट्रोल है, तो प्लीज फास्टिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है कि दिन में आप करीब 14 से 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, और उसके बाद जो हल्का आपके पास 8 घंटे बचे हैं उसमें आप हल्का भोजन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में लोगों को शहद, नींबू, पानी के साथ फास्टिंग कराई जाती है। जिसमें उनको कोई भी ठोस चीज है या ठोस अन्न है या फल है या सब्जियां हैं वो नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, शहद दिया जाता है और नींबू दिया जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम रहते हैं और इसमें जो आपका शरीर है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। पर मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए और किसी न किसी जानकार व्यक्ति के अंडर में, सुपरविजन में ही करना चाहिए। आप अगर फुल 24 आवर्स फास्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरमिटेंट या मतलब थोड़ा लंबे समय तक बिना भोजन के रहिए और फिर आप हल्का भोजन करिए, ये भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके शरीर को बहुत फायदा होगा।
1: जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो एक सहज सा प्रश्न उठता है कि कितने लंबे देर तक हम उपवास कर सकते हैं एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में, कितना अंतराल एक व्यक्ति कम से कम रखे या ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, एक आइडिया रहे?
0: ये भैया कहीं भी ये कहा जाता है कि आप दिन में दो भोजन के बीच में 12 से 16 घंटे तक का गैप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में करते हैं कि वो रात में 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं और फिर अगले दिन जो करीब 9 बजे 9:30 बजे तक सुबेरे तक खाली पेट रहते हैं, वो सिर्फ पानी पीते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में उनको थोड़ा बहुत फास्टिंग का भी बेनिफिट मिलता रहे। फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके शरीर को तरोताजा करने में बहुत बड़ा उसका रोल है और ये जो भी हमारे खराब सेल्स हैं उनके डिप्लीशन में इसका बहुत, उनको हटाने में फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानता है कि जब हम फास्टिंग या उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है, हमारे लिवर को बहुत आराम मिलता है और उसकी रीजनरेशन में, उसके ठीक होने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर 12 नहीं तो करीब 7-8 घंटे तक, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना आप अपने शरीर को बिना कष्ट दिए कर पाए वैसा फास्ट करिए और प्लीज किसी डॉक्टर या चिकित्सक की निगरानी में करिए, उसकी सलाह के साथ करिए और अपने शरीर की सुनिए। अगर आप नहीं रह पा रहे, आपको कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए।
1: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों के बारे में हमारी अवधारणा है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर दवाई ही या इंजेक्शन ही लेते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई और इलाज नहीं है, इस बीमारी के साथ ही जीना है, इन अवधारणाओं को तोड़ा गया है आज की इस चर्चा में। ये समझ में आ रहा है कि हम स्वास्थ्य को वापस हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है हमारे आहार पद्धति को चेंज करके, मुख्य रीति से अपने आहार को बदलने से हम ये चीजें कर सकते हैं। हम चीनी और प्रोसेस्ड फूड को त्याग दें और फिर अपने भोजन पर थोड़ा बहुत संयम लेके आए तो फिर बहुत कुछ संभव है। और साथ ही साथ फास्टिंग के बारे में भी जो चीजें हम सोचते आए हैं उस पर आज एक नया प्रकाश मिला है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की भी आवश्यकता है, जिससे हम स्वास्थ्य को वापस करने के लिए शरीर की मदद करें। आज समय को देखते हुए यही रुकते हैं, मगर आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें डायबिटीज, डायबिटिक डाइट और डायबिटीज को रिवर्स करने के बारे में और फास्टिंग से इसके संबंध के बारे में हमें जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने डायबिटीज के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी सुनी है कि डायबिटीज को हम पलट सकते हैं, इस बीमारी से हर व्यक्ति वापस लौट कर आ सकता है, स्वस्थ होने के लिए कोशिश कर सकता है। जितनी जल्दी हम ये प्रयास करेंगे उतनी जल्दी स्वास्थ्य हमारे लिए संभव है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और परी और मनी दीदी आ गए हैं।
1: हाँ, आपसे ढेर सारी बातें करने। और सपनों की सैर कार्यक्रम में तो अभी बहुत सारे हम अगस्त मास में आने वाले त्योहारों की बातें कर रहे हैं। पहले हमने 15 अगस्त के बारे में बातें की, फिर रक्षाबंधन के बारे में, और अब रक्षाबंधन के बाद आने वाला है हमारा बहुत ही पसंद का त्योहार।
0: हाँ, हमारा श्री कृष्ण लल्ला।
1: हाँ, और हम मनाएंगे उनका बर्थडे, वो भी जन्माष्टमी के दिन, वो भी बड़े धूमधाम से।
0: हाँ, तो बच्चों आज अगस्त मास का अंतिम दिन है, हम बातें करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में।
1: हाँ, क्योंकि इसकी तैयारियां भी तो शुरू कर दी होंगी, और इसमें तो दही हंडी का खास महत्व होता है ना परी?
0: बिल्कुल मनी दीदी, और वो देखने का बड़ा रोमांचक नजारा होता है।
1: हाँ, और खास बात तो ये है कि स्कूल की छुट्टी होती है।
0: बिल्कुल मनी दीदी, तो बच्चों पहले ये तो पता हो कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है।
1: हाँ हाँ, जरूर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व है, और इसे भारत के अनेक भागों में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
0: और बच्चों पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। और उनके माता पिता कौन थे पता है ना? देवकी और वसुदेव।
1: हाँ, और उस समय पता है मथुरा का राजा कंस था, उसे आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का आठवां पुत्र उसका अंत करेगा, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया।
0: बच्चों जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, तब वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल गए और उनके पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा के घर में हुआ।
1: हाँ, और वहाँ पर उनकी कई नटखट लीलाएं देखने को भी मिली, और हम सुनते भी रहते हैं, है ना परी?
0: बिल्कुल मनी दीदी, तो चलो बच्चों ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बातें।
1: हाँ, और अभी लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आओ बच्चों, बैठो रेडियो के पास। अब शुरू हो रही है आज की कहानी। आज आपको एक कंजूस करोड़ी मल की कहानी सुनाएंगे। करोड़ी मल नाम का एक कंजूस आदमी था। एक दिन वो नारियल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी, 4 रुपए का एक। नारियल वाले ने कहा, 4 रुपए, ये तो बहुत महंगा है, मैं तो 3 रुपए दूंगा। करोड़ी मल ने ऐसे नारियल वाले को जवाब दिया। बच्चों, नारियल वाले ने पता है क्या कहा, यहाँ तो नहीं, यहाँ से 1 मील की दूरी पर आपको जरूर 3 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। करोड़ी मल ने विचार किया, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने पर कम से कम 1 रुपए की तो बचत हो ही जाएगी। वे पैदल चलते चलते 1 मील तक गया तो वहाँ उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। उन्होंने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी तो बच्चों, दुकानदार ने कहा 3 रुपए का एक। तो करोड़ी मल ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अधिक से अधिक 2 रुपए दूंगा। उसने कहा, अगर 1 मील आगे चले जाओ तो वहाँ तुम्हें 2 रुपए का मिल जाएगा। करोड़ी मल फिर 1 रुपया बचाने के लिए वापस 1 मील चलने लग गया। तो फिर चलते चलते बच्चों, नारियल की एक दुकान दिखाई दी। उन्होंने नारियल वाले से फिर कीमत पूछी तो 2 रुपए का एक नारियल वाले ने जवाब दिया। करोड़ी मल ने कहा, 1 नारियल के 2 रुपए, ये तो बहुत अधिक है, मैं तो 1 ही रुपया दूंगा। फिर तो दुकान वाले ने कहा, किनारे किनारे 1 मील तक चलते जाओ, वहाँ नारियल की कई दुकानें हैं, वहाँ तुम्हें 1 रुपए में नारियल मिल जाएगा। बच्चों सोचो, करोड़ी मल ने क्या किया, वो 1 रुपया बचाने के लिए फिर से इतना चलने लग गया। और वहाँ देखा तो कई नारियल वालों की दुकानें थी। करोड़ी मल ने एक दुकानदार से कीमत पूछी तो कहा, 1 नारियल 1 रुपए का। तो बच्चों, करोड़ी मल ने सोचा, 1 रुपया, मैं तो इसके 50 पैसे दूंगा। तो नारियल वाले ने कहा, सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और तोड़ लो, जितना चाहिए उतना, तुम्हारे 1 पैसे भी खर्च नहीं होगा। तो बच्चों सोचो, करोड़ी मल ने क्या किया, उसने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। और देखते देखते बच्चों, वो तो एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने दोनों हाथों से 1 नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। बच्चों नारियल तो टूट गया, लेकिन हुआ क्या सोचो, साथ ही साथ उसके पैर की पकड़ भी छूट गई। बच्चों फिर क्या था, इमेजिन करो, करोड़ी मल नारियल के सहित समुद्र की रेत पर आ गिरा। उनके पैर की हड्डी टूट गई और शरीर पर भी कई जगह खरोच आ गई। 1 नारियल के लिए बच्चों, करोड़ी मल को सिर्फ इतनी कीमत अदा करनी पड़ी। देखा बच्चों, ये कहानी क्या समझाती है, लालच बुरी बला है, ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए वरना हमें ही नुकसान होता है। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: इतना तो
3: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी मृदु भाषिता, जिसमें श्री कृष्ण देव राय अपने बेटी और दामाद को बहुत बड़े महोत्सव में अपने राज्य में आमंत्रित किया है और पुत्री से उसके दुखी रहने का कारण भी पूछा है। तो उसने कारण बताया कि उनके जो दामाद है व्यवहार तो अच्छा है मगर वो कड़वा सच बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका मन आहत हो जाता है और महाराज ने भी उनसे बातें करके यही जाना और अचरज में भी पड़ गए और उन्हें विश्वास भी हो गया कि उनकी पुत्री ठीक कह रही है। फिर आगे क्या हुआ चलो बच्चों मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मन ही मन चिंतित रहते हुए उन्होंने दामाद से थोड़ी देर तक सामान्य औपचारिकता की बातें की और फिर उसे विश्राम करने को कहकर स्वयं अपने कक्ष में चले गए। उनकी व्याकुलता बढ़ चली थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी पुत्री की समस्या का समाधान करें तो कैसे करें। वे अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे इसलिए उसकी परेशानी से और भी परेशान हो उठे थे। महाराज का मन कहीं भी नहीं लग रहा था, दरबार में भी उनका वही हाल रहा। मन में अवसाद हो तो कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेनालीराम महाराज की मनन स्थिति का अनुमान लगा चुका था और महाराज किस प्रकार की चिंता में हो सकते हैं इस बात का अनुमान वह नहीं लगा पाया था। दरबार संपन्न होने के बाद जब सारे सभासद लौट गए तब तेनालीराम ने महाराज के पास जाकर उनसे उनकी बेचैनी का कारण पूछा। और तेनालीराम तो अब तक महाराज का अंतरंग हो चुका था, अर्थात उनकी फैमिली मेंबर के जैसा था, जिससे महाराज सहजता से अपनी बातें कर लेते थे। और महाराज ने फिर तेनालीराम को अपनी पुत्री की व्यथा कथा और दामाद की कटु वाणी के बारे में पूरी बातें बता दी। इससे महाराज का मन हल्का हुआ और उन्हें विश्वास था कि समस्या उचित व्यक्ति तक पहुंच गई है और अब उसका समाधान भी सहजता से हो जाएगा। तो बच्चों क्या समाधान निकालेगा तेनालीरामा, ये तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चों चलो चलो फिर से बैठो रेडियो के पास। अब हम सुनाने वाले हैं रक्षाबंधन के मैसेजेस जो आप सभी ने भेजे हैं। तो मनी दीदी कौन से मैसेजेस आए हैं?
2: हाँ परी, ये मैसेज है भूमि का, जिसने बहुत ही सुंदर मैसेज भेजा है रक्षाबंधन पर। मैं उनका मैसेज पढ़ती हूँ। राखी का धागा है प्यार की निशानी, भाई बहन के रिश्ते की अमर कहानी। स्नेह और विश्वास का यह त्योहार खुशियों से भर दे हर घर आंगन और द्वार। तो बहुत बढ़िया भूमि, बहुत बढ़िया।
1: तो चलो बच्चों, मैसेजेस तो ढेर सारे आए हैं लेकिन सभी तो सुनाना मुश्किल है, इसीलिए ये एक भूमि का मैसेज हमने सुनाया। अब बच्चों चलो फिर से टंग ट्विस्टर हो जाए। आज का टंग ट्विस्टर बच्चों नोट कर लो। तोता कहे तोते को, तोता तोते से तोतला, तोते ने तोते को तोतला कहकर तोतला दिया।
2: क्या क्या क्या, तोता तोते का कुछ सुना रहे हैं तो बहुत नया है। तोता कहे तोते को, तोता तोता तोतले से तोतला, ऐसा ही है ना?
1: हाँ मनी दीदी।
2: और क्या है, तोते ने तोते को तोतला कहकर तोतला दिया। अरे रे रे रे, बेचारा तोते का तो हाल बिगड़ गया।
1: हाँ मनी दीदी। तो बच्चों 94-14-15-14-15 पर हमको ये टंग ट्विस्टर जल्दी से रिकॉर्ड करके भेज दो।
2: हाँ, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और आपकी प्यारी प्यारी आवाज में हम ये जो टंग ट्विस्टर है वो सुनाएंगे। तो बच्चों जरूर आप ये आवाज रिकॉर्ड करके भेजना।
1: नंबर तो आपको याद ही है,
2: 94-14-15-14-15।
1: हाँ, और हम फिर करते हैं अब गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

नावा में तो होमे तो होमे तो पैयरिया में जाओ सतुड़ी तीज मनावा। तीज आई सावण री हरियाली छाई रे, तीज आई सावण री हरियाली छाई रे। सखिया झूला झूले मन में खुशिया लाई रे, होमे तो होमे तो होमे तो पैयरिया में जाओ सतुड़ी तीज मनावा। तो आज बड़ी तीज जिसको हम सातुड़ी तीज कहते हैं, तो सातुड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जो महिला इस दिन श्रद्धा और प्रेम से व्रत रखे, सातुड़ी तीज की कथा सुने, तो कहते हैं कि उनके मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाया हुआ वह सातु। हाँ, आगे डिस्टेंस छोड़ती हूँ, क्या है क्या नहीं, क्यों सातुड़ी तीज मनाई जाती है आज के दिन, तो ये जरूर आप जानेंगे। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय भी देने वाली हूँ। तो आज हम तीज की ही बात करेंगे। आज तीज का त्यौहार है। राजस्थान में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष करके हमारी बहनें। तो इसी पर हम बात करेंगे, कैसे मनाया जाता है, क्या किया जाता है, और रेसिपी रेसिपी में भी आज मैं आपको सातु ही सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हैं।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: आई आई पेल सावन की तीज ओ रसिया, तीज ओ रसिया।

जयपुर ने थेरे बादो चालो जी माने जयपुर ये थेले चालो। तो पुनः आपको बड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का फिर से स्वागत है आशियाना कार्यक्रम में। आज का विचार है बहुत ही सुंदर कि त्योहार की सुंदरता धन दौलत में नहीं बल्कि प्रेम श्रद्धा परिवार और रिश्तों की मिठास में होती है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ, एक कहानी के साथ करना चाहूँगी। एक समय की बात है, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जहाँ एक साहूकार रहते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, एक ही इकलौती बेटी थी जिसकी शादी कर दी गई। धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी और साल भर में तो व्यापार बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। उधर पहली तीज आई, सातुड़ी तीज, तो ससुराल में बेटी सोच रही थी कि माँ का फोन आएगा, माँ बुलाएगी, सातुड़ी तीज आ रही है। बड़े वो कहते ना, मन ही मन में खुशियाँ छा रही थी कि बस अब पियर जाने के दिन आ रहे। देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कहते हैं ना ससुराल में कितना भी सुख हो लेकिन मायके की याद तो आती ही है सभी को। ठीक है, तो वो भी यही सोच रही थी, उसको सावन के झूले याद आ रहे थे, खेतों में हरे हरे अनाज याद आ रहे थे कि कैसे खेतों में हरियाली छाई रहती है, कैसे घर घर में झूले पड़े रहते हैं, नीम के डाल पर झूला झूलते हैं, और कैसे हम सखियाँ मिल करके मंगल गाती है, कैसे इस त्यौहार का आनंद लेती है। तो वो सारी चीज़ें उसको याद आने लगी और सोच रही थी कि माँ पिताजी ज़रूर बुलाएंगे। इधर माँ भी चिंता कर रही थी कि बेटी की पहली तीज है और घर में कुछ है नहीं, क्या करे, कुछ तो रखना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, बेटी को भी बुलाना चाहिए। पहली तीज पर तो बेटी जमाई भी आते हैं लेकिन आएंगे तो उनको बहुत सारा नेक देना पड़ेगा, घर में कुछ है नहीं, क्या करे।

बहुत चिंता कर रही थी तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ सेठानी जी, क्यों चिंतित हो, आजकल तो बहुत ही परेशान दिख रही हो। तो फिर सेठानी ने कहा कि सेठ जी बात ही चिंता जैसी है कि भाई ऐसा क्या हो गया। सेठानी ने कहा, देखो घर में कुछ है नहीं, बेटी की पहली तीज आ रही है, नहीं बुलाएंगे तो ससुराल वाले ताने मारेंगे कि शादी तो धूमधाम से करवा दी, अब क्या हो गया जो बेटी को लिवाने ही नहीं आए, और सातू भी नहीं भेजा तो कम से कम सातू तो भेजे, बेटी को नहीं लेके आएंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि बहुत सारा देना पड़ेगा नेक चार्ज, लेकिन सातू तो भेजना ही चाहिए, पहली तीजे अच्छा नहीं लगता। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है सेठानी जी, क्यों चिंता करते हो, देख लो घर में आटा पीटा जो भी है सबका बना दो, अपना देखा जाएगा। तो बोले ठीक है। तो जितना आटा था सेठानी जी ने तो सातू बना दिया, सातू बना करके पिंडा भेज दिया उसके ससुराल। बेटी को पता चला कि सातू आ गया, माँ ने सातू भिजवा दिया, लेकिन देखा कि पोटली तो छोटी सी है, तो बेटी को जैसे ही पता चला सातू आया, वो चुपचाप उसने लेके अपने कमरे में रख दिया। बोले कि इतना बड़ा परिवार, इतना पैसा वाला घर, और अगर ये सातू बताऊंगी तो इन लोगों को पता नहीं क्या विचार आएंगे, क्या मुझे कहेंगे, कहीं ताना मारेंगे कि देखो इतना सा सातू भेजा। तो वो उसने किसी को कुछ कहा नहीं कि होगा सो देखा जाएगा, और वो माता पार्वती जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। इधर माँ भी बहुत ही चिंतित थी कि इतना सा सातू भेजा है, बेटी को तो लिवाने का बोला ही नहीं है, बेटी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में कुछ है ही नहीं, मैं कैसे बेटी को घर में लाऊं, बहुत चिंता कर रही थी। उधर बेटी चिंता कर रही थी कि माँ ने सातू भेजा वो भी इतना सा, और मेरे को तो लिवाने का कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या मुझे मायके नहीं बुलाएगी मेरी माँ। तो आंसू आ गए माता पार्वती जी की याद में, रोते रोते सो गई। सुबह देखा तो पिंडा तो बहुत सारा हो गया सातू, और सारा जो विधि विधान से भेजा जाता है इतना सातू हो गया। तब फिर उसने अपने सासू माँ को बुलाया कि सासू माँ कल आप नहीं थे और ये पियर से सातू आया है। तो सासू माँ ने देखा सातू तो बहुत आया है, तो सातुड़ी तीज के दिन बहू को घोरत दिलवा दिया और बांट दिया अड़ोस पड़ोस में मेहमानों को, बहुत मेहमानों को, अपने बहन बेटियों को बुलाया। कहते ना कि बाहर त्यौहार आते हैं तो बहन बेटियों को सबसे पहले बुलाया जाता है, क्योंकि देखिए किसको किसके भाग्य का खाने को मिलता है कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसलिए अपनी बहन बेटी को कभी भी अपने घर से वंचित मत करिए, हर त्यौहार पर आप उनको याद करिए, जो विशेष करके बहन बेटियों का होता है। तो घर की बहन बेटियों को बुलाया, उनको भी पिंडा भर भर के दिया, लेकिन सास सोच रही थी कि क्या बात है, इस बार तो बहू को बुलाया नहीं मायके, लेकिन न सास ने कुछ कहा न बहू ने कुछ कहा, और बेटी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि ज़रूर मेरे माता पिता पर तकलीफ आई होगी, तभी उन्होंने सातू भी इतना सा भेजा और मुझे बुलाया नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो ईश्वर से हमेशा दुआ करने लगी। इधर धीरे धीरे माता पिता के वापस ठीक होने लगा, व्यापार चलने लगा, और घर में फिर से वही रौनक आ गई जो पहले थी। फिर माँ ने दूसरी सातुड़ी तीज आई, तब तक सब कुछ अच्छा हो गया था। तो राखी पर, राखी के एक दिन पहले ही बुला लिया था बेटी को, तो बेटी ने कहा कि माँ पहले सातुड़ी तीज पर तो मायके बुलाया जाता है, आपने बुलाया ही नहीं, दूसरी पर थोड़े ना इसकी वैल्यू होती है, हर वैसे तो हर तीज पर बेटियाँ मायके ही जाती है। तो बोले पहली पर क्यों नहीं बुलाया माँ। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बेटा ये परिस्थिति थी, लेकिन माता रानी ने सब ठीक कर दिया। तो बेटी भी खुश हो गई कि कोई बात नहीं माँ, परिस्थिति तो आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी आपने भेजा है, और वो पिंडा इतना ज़्यादा हो गया था कि सभी ने बहुत सराहना की, तब से ये परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि सब ने देखा कि अरे इनके तो इस तरह पिंडे का रिवाज है, और फिर बाद में पता चल गया आया तो थोड़ा था लेकिन माता रानी की कृपा से ज़्यादा हो गया, तब से सातुड़ी तीज शुरू हो गई और सभी ने मनाना शुरू कर दिया, तीज पर जरूर सातू का पिंडा बना करके पासते ही है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। इसीलिए कहते हैं कि त्यौहार की सुंदरता धन दौलत में नहीं बल्कि प्रेम श्रद्धा परिवार और रिश्तों की मिठास में होती है। इसलिए किसी के भी कम ज़्यादा आए वो अपने
पियर के परिस्थिति को आके नहीं और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें। यही सच्चा संदेश देता है आज का विचार। तो आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का सुंदर से घरेलू नुस्खे आपको देना चाहूंगी। दांत निकलते हो तो क्या करना चाहिए? भाई दांत बच्चों के आसानी से निकले इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ करते रहना। डॉक्टर की सलाह तो आपको लेनी ही है, साथ ही साथ आप छोटे बच्चों को रोज छाछ पिलाइएगा, इससे दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है, ठीक है, और दांत का रोग भी नहीं होता है। तो छोटे बच्चों को रोज छाछ पिलाने से दांत आसानी से आते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगला उपाय है, दांत निकलने वाले बच्चों के मसूड़ों पर शहद रगड़िए, इससे दांत बिना कष्ट के निकलेंगे। छोटे बच्चों के मसूड़ों पर आप शहद थोड़ा सा घिसिए हल्के हल्के उंगली से, तो इससे भी दांत सहजता से निकलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगला उपाय भी सुन लीजिए। तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला करके मसूड़ों पर लगाइए, इससे थोड़ा सा चटाने से भी दांत बिना कष्ट के निकल आते हैं। तुलसी के पत्तों का चूर्ण अनार के शरबत के साथ देने से भी बच्चों के दांत सरलता से निकलते हैं। तो देखिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, उस नुस्खे को आजमाइएगा। सारे के सारे नहीं आजमा देना है कि उषा दीदी ने इतने सारे सुनाए तो चलो सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सिर्फ एक नुस्खे को फॉलो करना है। तो तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर मसूड़ों पर लगाइए, इससे भी थोड़ा सा, मतलब इससे भी सहजता से दांत निकलते हैं। अगर आप चटाएंगे तो भी दांत सहजता से निकलेंगे, ठीक है। और तुलसी के पत्तों का चूर्ण अनार के शरबत के साथ देंगे तो भी बच्चों के दांत सरलता से निकलेंगे। और लास्ट उपाय है, दांत निकलने के समय अंगूर का रस 2 चम्मच रोज पिलाते रहिए, इससे दांत शीघ्र निकल आते हैं। बच्चा सुडोल रहता है, स्वाद के लिए चाहे तो आप शहद मिला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अंगूर का रस तो आपको पिलाना ही है बच्चे को, तो इससे क्या है कि दांत सहजता से निकलेंगे और बच्चा भी सुडोल रहेगा। और अगर स्वाद चाहिए तो फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। तो ये हुआ आज के घरेलू उपाय, तो आप आजमा सकते हैं। बच्चों के दांत निकलते हैं, दाढ़े आती है तब काफ़ी समस्या होती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को बुखार आ जाता है, बच्चे रोते रहते हैं, बहुत सारी समस्या आती है। तो इस तरह आप इन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं और सहजता से बच्चों के दांत आ सकते हैं, तकलीफ नहीं होगी उनको। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आज की तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, ठीक है। सातुड़ी तीज के अलावा भी इसके क्या क्या नाम है जो आपको बताना है? सातुड़ी तीज तो है ही है आज, अब इसके और भी क्या क्या नाम है वो आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे हैं दीदी?
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे काम कर रहे हैं, आप आ गए तो अच्छा हो रहा है। बस हम हर रोज रेडियो सुनते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बातें भी अच्छी सुनने को मिलती है और कोई दिक्कत भी नहीं रहती और बस रेडियो सुने काम करे अच्छा है।
0: जी जी जी बिल्कुल। मारी धरती रो रंग निरालो, मारी बोली मीठी गणी, पग पग पे संस्कारारी खुशबू, मारी पहचान ही सबसु गणी। तो राजस्थान री पहचान सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ की त्योहार आज कुछ अलग ही है। ये तीज है जो सिर्फ मेरे ख्याल से राजस्थान में ही मनाई जाते हैं, फिर शायद मध्य प्रदेश में भी मनाई जाते हैं, लेकिन राजस्थान में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे अगर आपको नॉलेज हो तो, कैसे मनाते हैं, क्या किया जाता है, नहीं तो आप गुजरात का बताइए।
1: हमारे तो दीदी ऐसा है नहीं, गुजरात में तो तीज, लेकिन आज क्या दीदी हमारे यहाँ तीज चौथ दोनों साथ में किया है
0: जी,
1: तो महिलाएं तो ज्यादातर चौथ ही कर दिया है क्योंकि तीज कल सिद्ध नाग पंचमी हो रही है और महिलाओं का दिन आज के दिन दीदी वो बाजरे के रोटे और मूंगी खाते है आज, और कुछ नहीं खाते है।
0: अच्छा।
1: आज कोई हाँ कोई जो गेहूं के आटे गेहूं के कोई चीज नहीं खाते आज,
0: आज के
1: और
0: दिन
1: कोई सब्जी भी नहीं खाते आज के दिन, और कोई सब्जी बस मग और रोटला बाजरे का रोटला ही खाता है।
0: और व्रत रखती है महिलाएं?
1: हाँ व्रत तो रखती है आज, वो जो जो जो उसकी जो वार्ता आती है वो बुक में आती है तो वो सुनेगी और इस हिसाब से आज व्रत भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: आज बोर चौथ भी हमारे इधर बोला जाता है, उसको बोर चौथ बोलते हैं।
0: बोर चौथ कहते हैं गुजरात में। ओके।
1: तो हाँ बोर चौथ बोलते हैं, तो आज हमारे तीज नहीं मनाई जाती, सदी चौथ ही मनाई गई है आज।
0: जी जी जी।
1: और कल हमारे यहाँ नाग पंचमी है।
0: अच्छा।
1: नाग देवता की पूजा होगी और नाग देवता का व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे।
0: जी जी जी। नाग पंचमी तो सब तरफ मनाई जाती, राजस्थान में भी मनाई जाती है, लेकिन बोर चौथ राजस्थान में नहीं मनाते।
1: लेकिन हमारे तीज का तो हमको कोई नॉलेज नहीं है आपके राजस्थान का, लेकिन आप बता रहे हैं तो हम सुनते रहते हैं क्योंकि हमारे तो तीज का तो महत्व नहीं होता है, चौथ का महत्व से शुरू होता है हमारे तक।
0: जी जी जी। वो कहते हैं ना चार कोस में पानी बदले आठ कोस में वाणी, तो एक से दूसरे स्टेट अगर हम एक से दूसरे गाँव जाते तो भी थोड़ा सा रीति रिवाज में भिन्नता नजर आती है, तो फिर पूरा स्टेट ही चेंज हो गया।
1: लेकिन आपका राजस्थान का त्यौहार तो दीदी बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि हमको पता है कि हमारे कई सारे मित्र राजस्थान के हैं।
0: जी जी।
1: तो वो भी बताते हैं कि भी हमारा तो हम भी कभी कभी राजस्थान में आते हैं, गांव जाते हैं तो बहुत एक खुशियां रहती है राजस्थान की महिलाओं को इस त्यौहारों की। तो बस सभी हमारे मित्रों को आपको नमस्ते जी।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका,
1: मैंने आपको दे दिया है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और आज राजस्थान में तीज जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं, इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं और हमारी महिलाओं का तो पूछे मत। और आज तो भाई शादी के बाद जिनकी पहली तीज है वो तो फिर पूरे ससुराल वालों के चांदी चांदी है। जैसा कि विचार में भी कहा था कि बेटी के यहाँ बहुत कुछ भेजा जाता है, सातु का पिंडा भेजा जाता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा शुरुआत से आपको बताती हूँ ताकि आप अच्छी तरह इस त्यौहार को समझ पाएंगे। तो राजस्थान में क्या ये तीज मनाई जाती है, रक्षाबंधन के बाद आने वाली तीज जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार जी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम अच्छे, और आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब अभी दे सकता हूँ?
0: अच्छा ठीक है, दे दीजिए, नहीं तो वो फेर देंगे तो अच्छी बात है।
2: अच्छा अच्छा, अच्छा
0: तो क्योंकि सरल प्रश्न है फिर भी लोगों को पता नहीं आवे नहीं आवे, तो उनको भी तो थोड़े से माइंड का एक्सरसाइज उनका भी होना चाहिए। हाँ और इस त्योहार, हाँ आप अगर कोई त्योहार मनाते हो आज के दिन तो बता सकते हो।
2: आज के दिन तो हमने त्योहार अभी तो कोई मनाया नहीं है, लेकिन आज तो ऐसे तो आप कजरी वो चीज बोलते हैं ना, सातुड़ी थी।
0: हाँ जी।
2: तो उसमें मेरे को तो मालूम है।
0: जी जी जी, तो आप बताइए थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: में क्या है कि वो अपने ये चीज को कई कई लोग हैं ना, ये अपने जो रामापीर का भी व्रत रखते हैं, जो जो अपने जो झाड़ पौधे जो जो भी होते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं आज के दिन।
0: जी जी
2: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी सुन रही हूँ सुन रही हूँ।
2: हाँ तो जो पेड़ पौधे भी रहते हैं उसकी भी से ये पूजा पूजा आज के दिन करते हैं, और बस वही वही है, फिर बाद में मैं वो देखता हूँ नाम उसका।
0: अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, तो आप भी प्रश्न का जवाब तो दे सकते हैं। मैं फिर से आज के प्रश्न को दोहरा रही हूँ कि आज के तीज को सातुड़ी तीज तो कहते ही है, इसके अलावा और भी किस किस नाम से जानी जाती है आज की तीज, वो आपको बताना है। और देखिए बात चल रही थी तीज मनाने की, तो ये रक्षाबंधन के बाद जो तीज आती है इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। सातुड़ी तीज क्यों मनाई जाती है वो तो आपने जान ही लिया कि कैसे सेठ जी की परिस्थिति नहीं होती है, फिर भी वो थोड़ा सा पिंडा भी भेजते हैं, लेकिन ज़रूर भेजते हैं। तो आज भी ये परंपरा राजस्थान में पूरी तरह इसको मनाई जा रही है, अभी भी इस परंपरा को जीवित रख रखा है सभी ने। चाहे परिस्थिति कितनी भी हो लेकिन बेटी के कम से कम 1.25 किलो का पिंडा तो भेजते ही है। तो इसमें क्या होता है, सातू बनाया जाता है। सातू 4 प्रकार के होते हैं, मूंग की दाल का बनाया जाता है, मूंग की दाल के मोगर का, चावल का, मैदे का और बेसन का। हेलो
3: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, दयाराम जी बोल रहे।
3: मधुबन प्रोग्राम में मैडम जी, अतर सिंह यादव बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: जयपुर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। जी बहुत बहुत स्वागत आपका यादव जी, पहली बार जुड़े हैं आप रेडियो से।
3: रोचक प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने सवाल किया कि सातुड़ी तीज का और दूसरा नाम क्या है
0: जी,
3: और आज किस नाम से आज मतलब तीज को बोलते हैं, ये सवाल है। तो इसके उपलक्ष में मैंने फोन किया मैडम जी।
0: हाँ जी, तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। आप सुनते हैं रेडियो मधुबन सुनते हैं आप?
3: मैं बहुत सुनता हूँ मैडम जी, लेकिन कभी कभी सवाल का जवाब के लिए कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद आंसर कोई नहीं दे रहा, तो मैं दे देता हूँ।
0: क्या बात है, मेरे को तो लग रहा है कि आप पहली बार जुड़े हैं आशियाना कार्यक्रम।
3: हाँ मैडम जी, लेकिन मैं श्रोता बहुत पहले से हूँ आपका।
0: अच्छा, अरे वाह।
3: मधुबन का मैं श्रोता बहुत पहले से हूँ मैडम जी, लगातार सुनता रहता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो बीच बीच में कभी अपनी आवाज सुना दीजिए जुड़ते रहिए।
3: आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जैसे मधुर आवाज नहीं है ना मैडम जी हमारी।
0: अरे क्या बात करते हैं आप, इतना मीठा बोल रहे फिर भी, बहुत अच्छी आवाज है आपकी।
3: आगे तो आपकी आवाज के आगे तो हमारा क्या है कि बात करने का मन ही नहीं कर रहा। आपको स्टूडियो में लिया है, सिलेक्शन किया किसी ने, तो बहुत सोच के ही किया है। आप अनुपम जादू खेल देती हो प्रोग्राम में।
0: ये देखिए आपका बड़प्पन है भाई साहब, बाकी हम तो नॉर्मल है आपकी तरह ही है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं जुड़ सकते। आप जुड़िए, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है, मीठी है जी। तो बता दीजिए, आप जवाब देना चाहते दे दीजिए प्रश्न का।
3: कजली तीज भी बोलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा ठीक है
3: जी,
0: बहुत बहुत आभार, जुड़ते रहिएगा आप।
3: और साथ ही आपके एक कार्यक्रम की जो बड़ी प्रशंसा है वो बहुत बड़ी, तो वो मुझे आप जो ये स्वास्थ्य के जो नुक्से टिप्स जो आप बताते हो, ये आपके बहुत ही रोचक और फायदेमंद चीज है।
0: अच्छा,
3: इन चीजों को क्या है, हमारे पूर्वजों से सुनते थे और लोग अभी भूल गए हैं, आप पुनरावृत्ति कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। आप इन चीजों को हमारे मतलब ध्यान से निकल जाती हैं, तो इनका बहुत बहुत बड़ा मतलब लाभ है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जो मतलब बहुत जरूरी भी है आज के समय।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार। आपको घरेलू नुस्खे अच्छे लगते हैं, कभी आजमाया है क्या आपने कोई नुस्खा?
3: मैडम जी, ये जो आप बताते हैं ये नुस्खे, कभी कभी क्या है घर में प्रॉब्लम, शरीर में बच्चे से प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो पड़ोस में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो पड़ोस तक भी इन नुस्खों का बहुत महत्व है मैडम जी, बताने पे तुरंत फायदा होता है।
0: अच्छा, क्या बात है।
3: और सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब आज के टाइम तो साधन है, पहले साधन नहीं थे
0: जी।
3: और रात के समय बहुत परेशानी का कारण बन जाता था, ऐसे परेशान होता था पेशेंट
0: जी।
3: और आज के समय मतलब उन नुस्खों का फायदा उठा के याद करते हैं, तो अब आपने मधुबन में जो सुनाया तो उसके बाद में हमने देखा मैडम जी, तो बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे नुस्खे और बहुत अच्छे ढंग से बताते हो, मतलब पहले की भूल गए हम, ये पुनरावृत्ति होती है तो बहुत बहुत अच्छा मतलब याद हो जाता है।
0: जी जी जी। यादव जी, आप क्या काम करते हैं?
3: मैं मैडम जी पहले आर्मी में था, फिर आर्मी से सेवानिवृत्त होकर के और मैं जयपुर में सिक्योरिटी का काम किया, फिर सिक्योरिटी के बाद में मुझे ठाकुर जी ने, राधा किशन जी ने मुझे अपनी सेवा में ले लिया, तो इन्होंने मुझे सेवा में 50 साल और एक दिन पे मेरी राजस्थान सरकार की तरफ से नियुक्ति आ गई।
0: अच्छा,
3: तो
0: क्या बात है।
3: मैं राधा किशन जी का अभी गुजारी हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर
3: जी।
0: जी, अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े हैं इसके लिए।
3: और आप जो धार्मिक गाने पेश करते रहते हैं उनमें तो बहुत ही रंग भर जाता है।
0: थैंक यू
3: जी मैडम
0: जी,
3: बहुत ही रोचक प्रोग्राम लगता है मुझे
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम पसंद आता है, हमें भी खुशी हुई, बहुत बहुत आभार
3: मैडम जी।
0: हाँ जी, तो ये थे यादव जी जयपुर से, और बात चल रही थी सातुड़ी तीज की। सातुड़ी तीज को धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसमें आपको बता रही थी कि इस तरह 4 प्रकार के सातु बनाया जाता है, वो भी कब बनाया जाता है, जब बेटी की शादी के बाद पहली तीज आती है तब। बाद में तो 2 प्रकार के ज़्यादा बनता है, मैदे का और बेसन का, लेकिन बेटी की शादी होती है, शादी के बाद पहली तीज आती है, तब ये 4 प्रकार के सातु बनाया जाता है, जिसमें मूंग की दाल का सातू जमाई राज के लिए बनाया जाता है, उनके लिए डिब्बे में अलग से भरा जाता है। फिर चावल का सातू बनाया जाता है, चावल के लोट का, वो सासू माँ के लिए बनाया जाता है, वो अलग डिब्बे में भरा जाता है। ठीक है, मैदे का सातू बनाया जाता है, वो आप कोई भी खा सकते हैं। और चने का सातू, ये तो पिंडा इसका ही बनाया जाता है, चने के सातू का, और 21 पिंडा, इसके 21 पिंडे बांधे जाते हैं, 21वां बड़ा होता है जो स्टील का बड़े कोठी होती है उसमें भरा जाता है, भले बड़ा डिब्बा होता है उसमें भरा जाता है, बाकी छोटे छोटे डिब्बे लाते हैं 20, और उसके अंदर सातू बना करके सातू के लड्डू रखेंगे। एक लड्डू का वजन कम से कम 250-300 ग्राम का होता है, तब उसको परफेक्ट सातू कहा जाता है। और उसके अंदर चांदी की घुघरी या कुछ भी चांदी का, आपको कोई भी चीज़ टूट गई हो उसमें से थोड़ा तोड़ तोड़ के भी आप रख सकते हो, छोटे छोटे से पीस, तो वो रखा जाता है। पहले के समय में एक एक का सिक्का रखते थे, अभी 5-5 का सिक्का लड्डू के ऊपर ही चिपका दिया जाता है। ठीक है, और साबुत मूंग अंदर रखा जाता है, सोपारी रखी जाती है, और एक जो माता रानी की चुनरिया होती है छोटी छोटी, उससे उस डिब्बे को बांधा जाता है, उस डिब्बे को पैक किया जाता है, और वो 20 सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। 21वां खुद बेटी के लिए भेजा जाता है, जो वो बेटी उसको 21वां पिंडा जो होता है सबसे बड़ा, उसको फिर सातुड़ी तीज जो आज है, आज के दिन चंद्र दर्शन के समय उसको काटते हैं, पहले चाकू से कट लगाते हैं, उसके बाद पतिदेव अपनी पत्नी को खिलाते हैं, उसके बाद फिर वो सत्तू कोई भी खा सकता है। तो इस तरह सत्तू का रिवाज है, और पहली तीज है तो सभी के कपड़े वगैरह, परिवार में जितने भी सदस्य है सभी के कपड़े रखे जाते हैं। कहते ना कि पहली सातुड़ी तीज आती है बहुत खर्चा हो जाता है मायके वालों का, लेकिन दिल से करते प्यार से करते, जैसे पहले ही बताया था आपको इंट्रो में विचार में, कि श्रद्धा और प्रेम से जो रखा जाए तो सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, कम होता है तो कम भी रखते हैं, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा भी रखते हैं। लेकिन आजकल तो क्या है, पहले थोड़े से ताने वगैरह बहुओं को दिया जाता था, देखो क्या आया तुम्हारे पीर से, आजकल ये ताने बाने बंद हो गए, जानते हैं कि भाई परिस्थिति नहीं है पीर वालों की, तो थोड़ा आया है लेकिन रखते ज़रूर है। परिस्थिति ज़्यादा है तो मांड चुन करके बहुत कुछ रखा जाता है। और भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनने के बाद सातुड़ी तीज की और भी आपको जानकारी दूंगी। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: सुप्रभात।
1: बहुत अच्छे हैं, दुकान पे है आप तो सुन रहे हैं आशियाना कार्यक्रम।
0: जी जी जी।
1: और बात कर रहे थे त्योहारों की, आज सातुड़ी तीज की बात।
0: हाँ जी
1: है, तो हमारे गुजरात में तो बहन जी ये नहीं मनाते सातुड़ी तीज तो, लेकिन सुबह में मेरे घर से और सुबोध की बहू बोलते थे कि भाई बोर्ड चौथ आज है
0: जी,
1: चौथ मनाते हैं
0: जी,
1: तो ये बोलते थे कोई ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब विधि की बात कर रहे थे
0: जी।
1: मैंने बोला कि जो कुछ लाना हो तो बोलो तो ला दे
0: जी।
1: तो हमारा गुजरात में बोर्ड चौथ का महत्व है, कोई कोई मनाते होंगे, लेकिन हमें हमारे गांव में तो ये आज मनाते हैं बोर्ड चौथ बोलते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: ठीक है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: कल नागपंचमी, आज चौथ मनाएंगे तो कल नागपंचमी।
0: जी जी जी, तीज चौथ इकट्ठी है।
1: हाँ
0: जी।
1: फिर राधन सतम आठम, ये सब हमारे श्रावण मास में आएंगे अब अभी।
0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। कहते हैं मारी धरती रो रंग निरालो। चलिए हमारे श्रोता बंधु से पहले बात करेंगे, जिनका फोन कट रहा है वो फिर से लगा सकते हैं। माथे बोरला हाथा में चूड़ा लाल चुनरिया लहराए, मारी राजस्थान री छोरी देखे तो चांद भी शरमाए। आप सभी को पुनः बड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में हम सातुड़ी तीज मना रहे हैं। सातुड़ी तीज कैसे मनाई जाती है वो आप सभी जान रहे हैं, किस तरह की परंपरा है, कैसे रस्म रिवाज निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो इसमें आपको बता रहे थे कि इस तरह सत्तू चार प्रकार के बना करके रखा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बनाया जाता है चने का। कोई 21 किलो का पिंडा रखते हैं, कोई 11 किलो का, कोई 5 किलो का, कोई 51 किलो का। अभी कल किसी का फोन आया तो बोले 51 किलो का पिंडा रख रहे हैं, मतलब पिंडा जो बड़ी, आपको बताया ना 21 पिंडे बनाए जाते हैं, इस तरह कैसे बनाया जाता है वो भी आपने जाना है। तो क्वांटिटी में बेसन का ही सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, बाकी मूंग की दाल का ठीक है, किसी को पसंद हो तो थोड़े से दो चार लड्डू ज़्यादा बना दिया जाता है, बाकी सवा किलो का बनाया जाता है, सवा किलो का ही चावल का बनाया जाता है। मैदे का ठीक है, 2-3 किलो का, 4 किलो का बनाया जाता है, और बाकी जो क्वांटिटी होती है वो टोटल सातू इसका बेसन का बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उषा दीदी बार बार सातू का नाम ले रहे, लेकिन कैसा होता है वो मैं आपको रेसिपी में सिखाऊंगी, ठीक है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, ओम शांति हमारी प्यारी बहन उषा जी।
0: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे प्यारे मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो फोन करके अपनी जो बात रख रही है, उन सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। और दीदी आप आए स्टूडियो में तो और भी अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। वैसे तो मैं किसान हूँ, तो अभी बाजरे में पानी भी लगा रहा हूँ।
0: अच्छा, दोनों ही काम कर रहे हैं आप।
2: इसके साथ साथ रेडियो मधुबन एप्लीकेशन के माध्यम से रेडियो भी सुन रहा हूँ, मेरी जेब में, लेकिन फुहारे भी लगा रहा हूँ, पानी से घुमा रहा हूँ।
0: जी जी जी।
2: और तन मन से रेडियो भी सुन रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और आज का दीदी भी से
0: जी, आज सातुड़ी तीज मना रहे हैं, तो कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है, आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, बताएंगे?
2: जी जी, मनाते थे, लेकिन पहले तो बहुत सारे जो हमारे जो माताएं थी, हमारे जो सासू माँ थी, तो वो इस सातुड़ी तीज को अपनी बहुओं को इकट्ठी करके बिठा के फिर सातुड़ी तीज की जो कहानी आती थी वो सुनाती थी, बहुत अच्छी कहानी। और फिर जो सात पेंडे बनाती है तो उसका गणपति भगवान को भोग लगाती है और भगवान शिव को भोग लगाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और आजकल तो नए जमाने की नई दूल्हे नई जमाने की जनरेशन है, तो इसमें ज्यादा विश्वास नहीं रख रही है दीदी
0: जी।
2: और जो पुराने वाली है महिला है, जो हमारी दादी है, हमारे सासू माँ है, हमारी बहनी बुआ है, वो भी अभी तक अपना ये जो कहानियां उनको भी आती है वो सुनाती है बहू को इकट्ठा करके बिठा के। आजकल की जो है उनको तो कुछ आता ही नहीं, कहानियों में रुचि नहीं रखती है, तो कहाँ से आएगी दीदी।
0: जी जी जी जी।
2: और ये तो बहुत ही अपनी खूबसूरत परंपरा है और जो हमारी संस्कृति कल्चर है और हमारे एक त्योहारों का देश ही है, तो हम मनाती है दीदी, बहुत धूम से मनाती है
0: जी।
2: और सवाल का जवाब अभी चाहे तो मैं दे दूं, नहीं तो ऑफलाइन दे दूंगा।
0: ठीक है, दे दीजिए, अगर आपको समय मिले फोन कर सकते हो तो ऑफलाइन, नहीं तो अभी दे दीजिए।
2: जी मैं अभी बता लेता हूँ
0: जी।
2: तो सातुरी तीज के और नाम है कजली तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज और भाद्रपद तीज। नमस्कार, ओम शांति।
0: ठीक है, बहुत बहुत आभार दयाराम जी आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से। और तीज की बात चल रही थी, देखिए तीज आती है उसके एक दिन पहले बीज होती है, बीज के दिन दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है जो पूरा परिवार मिलकर के खाते हैं। और रात को फिर महिलाएं क्या करती, सुबह 3-4 बजे ही उठ जाती है, जिसको अदरत्या कहते हैं। तो 3-4 बजे तो बहुत लेट हो जाता है, 3:30 बजे उठती है महिलाएं, तो अदरत्या खोलती है, मतलब इसको राजस्थानी में अदरत्या बोलते हैं, मतलब रात को उठ करके मुंह जूठा करना। तो सबसे पहले तो नींबू लिया जाता है और फिर जो दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है वो थोड़ा सा खाया जाता है, उसके बाद पान खा करके महिलाएं, मतलब पहले ऐसा रिवाज था, आज तो महिलाएं उठती भी नहीं है, कहीं कहीं पर उठती है, कहीं कहीं पर नहीं उठती है, उठ करके खा पी के वापस सो जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सभी महिलाएं अगर नहीं उठते थे तो एक दूसरे को उठाने जाते थे कि भाई उठो उठो, अदरते का टाइम हो गया, तो 3:30 बजे सभी उठ जाते थे, उठ करके एक बार तो फटाफट अपने अपने घर में थोड़ा बहुत खा लेते थे, पूछ लेते थे अड़ोस पड़ोस में, भाई आपके दाल बाटी चूरमा बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा तो हमारे रखा है, हम आपको दे देवे, ऐसे हिलमिल करके एक दूसरे का सहयोग दे करके चलते थे। और फिर उसके बाद झूला झूलने चली जाती थी महिलाएं, नीम के डाल पर झूले हर मोहल्ले में होते थे और हर मोहल्ले में नीम का पेड़ तो होता ही था, तो झूले का आनंद लेते, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके महिलाएं भजन कीर्तन करते थे। अब आज तो ये थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, आजकल महिलाएं क्या है, समिति, जो अपने अपने समाज के समिति होती है वहाँ महिलाएं जाकर के आनंद पूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। और महिलाएं जैसे झूला, तो भाई आजकल तो झूला तो बढ़ ही गए, हर गार्डन में झूला होता है ना, तो गार्डन में जाती है महिलाएं, घरों में भी झूले होते हैं आजकल, तो वो गुजराती झूला जिसको कहते हैं ना, वो पाटिया लगा करके आजू बाजू वो साकले बंधी हुई होती है, रस्सी वाले झूले देखने को कम मिलते हैं अभी, वो झूले ज़्यादा है, खैर फिर भी झूला झूलती है महिलाएं, ठीक है। और सुबह जल्दी उठ जाती है, उसके बाद सुबह जो 3-2:30 बजे खाया वो खाया, उसके बाद पूरे दिन उपवास रखेगी महिलाएं, ठीक है, भले देव दर्शन जाएगी, अच्छा पहन ओढ़ करके मंदिर, बड़ों के पाँव छूने आशीर्वाद लेने जाएंगे, लेकिन खाएगी कुछ नहीं। बहुत सारी महिला आज के दिन पानी भी नहीं पीती है, लेकिन देखिए समय के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही है, जितने साधन बढ़ रहे उतनी बीमारियां बढ़ रही है, किसके क्या तकलीफ, इसके क्या तकलीफ है। तो मैं तो कहती हूँ कि हठयोग नहीं करना है, जिद नहीं करनी है कि मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, डायबिटीज़ है, कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए जैसा शरीर माने वैसे रहिए, मन अच्छा रखिए, निर्मल रखिए, स्वच्छ रखिए, ठीक है। तो इस तरह उपवास किया जाता है पूरे दिन, फिर शाम के समय संध्या के समय में पूजा होती है, महिलाएं सब अच्छे जूते, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गहने घाटे पहन करके महिलाएं इकट्ठी होती है, फिर शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। इसमें माता रानी की पूजा ज़्यादा होती है, खाली कहानी में शिव जी का नाम आता है, बाकी माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद देखे, फिर एक दिन पहले सब मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, राजस्थान में ये अच्छा रिवाज है, कोई भी त्यौहार आता है उसके 1-2 दिन पहले मेहंदी ज़रूर लगाएंगे सभी, दोनों हाथ दोनों पैरों के, छोटी बच्चियाँ होगी तो उनके भी मेहंदी लगाएंगे, ये भी बहुत अच्छी परंपरा है। तो संध्या समय में सभी पूजा करेंगे, पूजा करके फिर कहानी कहेंगे, कहानी कह करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। ठीक है, चंद्र की भी पूजा होती है। और अर्घ देने के बाद फिर जब चंद्र दर्शन, कहते हैं ना कि उस समय अर्घ तो दे दिया जाता है, चंद्र दर्शन होता है तब महिलाएं चंद्र दर्शन करती है, फिर से चंद्र को धूप दी जाती है, उसके बाद भोजन किया जाता है। उस समय पिंडा को पासते हैं। ठीक है, तो पिंडा को पासते बोले तो सबसे पहले पिंडा खोलते हैं, पिंडा खोल करके दूध, कच्चा दूध लेके आते हैं, गर्म किया हुआ नहीं, कच्चा दूध होता है और ये सत्तू होता है बेसन का। ठीक है, तो ये हर एक के अलग अलग डिब्बों में पैक होता है। तो अपना अपना पिंडा हस्बैंड खोलेंगे और खोल करके वो चम्मच से या चाकू से उसको बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे बोले तो उसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे लड्डू को। फिर वो अपने हाथ से अपनी पत्नी को खिलाते हैं, और संयुक्त परिवार है तो अपने हाथ से भी नहीं खिलाते, पहले तो बहुत मर्यादा रहती थी, खाली वो बड़ा करके चले जाते थे, फिर महिला खुद ही खा लेती थी। एकल परिवार बड़े हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पति खिला रहा है अच्छी बात है, मैं तो कहूँ सभी के अंदर प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे और सभी प्यार से रहे। तो उसके बाद फिर भोजन करते हैं, पतिदेव को तो पहले ही खाना खिला दिया जाता है, इसमें व्रत नहीं करते पतिदेव, सिर्फ महिलाएँ व्रत करती है। तो फिर वो अगर देना होता है तो सास को जेठानी को सग दी जाती है, सग बोले तो एक बड़ा सा लड्डू एक अलग डिब्बे में रखा जाता है, ऊपर ब्लाउज पीस और 101 रुपये 51 रुपये सामर्थ्य अनुसार रख करके संकल्प लेकर के फिर बड़ों को दिया जाता है, उसके बाद वो पिंडा पास करके खाते हैं। ठीक है, और बहुत जने तो खाली बस कच्चा दूध और सत्तू ही खाते हैं। और समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, पहले ऐसा तो होता था, अभी तो महिलाएं पहले मुंह सत्तू ले लेती उसके बाद भोजन करती है, जो भोजन में खाना हो खाओ, फिर आप नमकीन पकौड़े गुलाब जामुन वगैरह वगैरह जो भी आप बनाना चाहो बना करके खा सकते हो, तो सब बना करके रख दिया जाता है, क्योंकि भाई पूरे दिन के भूखे प्यासे हैं, तो अब रात को तो नहीं बनाएंगे ना, इसलिए शाम को ही बना दिया जाता है। जब पुरुष लोग बच्चे लोग खाना खा लेते हैं फिर उनका ढक के रख देते हैं, फिर इस तरह चंद्र दर्शन करने के बाद सभी भोजन करते हैं। और ये त्यौहार भी पाँचम तक चलता है, पाँचम को फिर बेटी को विदा किया जाता है। और यथा योग्य जो भी माता पिता को बच्चों को कभी बेटियों को खाली हाथ तो भेजते नहीं रक्षाबंधन पर, पहले तो महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना बेटियां रहती थी, लेकिन अब तो समय का अभाव है सभी के पास, इसलिए कम से कम अगर रुकने का टाइम नहीं है लेकिन शादी के बाद जो फर्स्ट तीज आती है तो कम से कम रक्षाबंधन पर आती है बेटियां, तो पांचम के दिन ही उनको भेजते, इतने से दिन तो उनको रुकना ही पड़ता है क्योंकि पहली तीज है और माता पिता की भी चाहना रहती है। और ऐसा रिवाज भी है राजस्थान में, नहीं तो ससुराल वाले भी कहेंगे बहुत जल्दी आ गई, भले झोप करती हो उस समय छुट्टियां दिलाते हैं कि भाई 5 दिन 8 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ेगी, और इस तरह इसी बहाने चलो बेटियां थोड़े मायके में रुक जाती है, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है।

कितनी मोहल्ले की महिला इकट्ठी होगी, लेकिन समाज में होंगे तो आप पूरे समाज की महिला इकट्ठी हो जाती है, तो और भी रौनक आ जाती है और भी त्योहारों पर चार चांद लग जाते हैं जब सब मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस तरह सातुड़ी तीज मनाई जाती है। पुनः आप सभी को सातुड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का प्रश्न है, सातुड़ी तीज के अलावा आज की तीज को और किस किस नाम से जाना जाता है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज आपको सिखा देते हैं सातू बनाना। वैसे सातू पहले भी सिखाया था, फिर भी देखिए नए नए श्रोता भी जुड़ते हैं और कोई लिखते नहीं है तो भूल भी जाते हैं, तो चलिए फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। और अच्छी तरह याद करिएगा और ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है सातू। तो बेसन का सातू सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको यही सिखा रही हूँ। बेसन ले लीजिए, ठीक है, बहुत बारीक वाला नहीं लेना है, बहुत मोटा वाला भी नहीं, बहुत बारीक वाला भी नहीं, मीडियम बेसन लेना है आपको, ठीक है। और बेसन को छान लीजिए। छानने के बाद अब आप दूध और घी गरम करिएगा, ठीक है। दूध गरम करिए क्वांटिटी के अनुसार, कितना आपने लिया है आटा उस अनुसार आप ले लीजिए। ज़्यादा भी हो गया गरम तो कोई बात नहीं, उस पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं। तो दूध में थोड़ा सा घी डाल करके गरम कर दीजिए। और अब ये जो आपने सातू के लिए आटा छाना है, बेसन छाना है, उसमें ये दूध की धार चारों तरफ डाल दीजिए और दोनों हाथों से ऐसे आप ऊपर नीचे करिए कि सभी में ये दूध और घी लग जाना चाहिए। और ज़्यादा भी नहीं डालना है, रखना है आपको थोड़ा सा सूखा सूखा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है और बिल्कुल गीला भी नहीं करना है। दोनों हाथों से आप ऊपर नीचे करके फिर इनको दबा करके 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब आप गेहूं का छलना लीजिए, दूसरे बड़े बर्तन में, दो चौड़े बर्तन में अब ये बेसन ले करके आप छानिए। छानना है क्योंकि अब ये जो आपने दूध और घी का मकरोवा दिया ना, तो ये थोड़े से डगले की तरह हो जाएंगे, घाटे बन जाएगी इनकी, तो आप छानिएगा, दबा के भी आप छान सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं के छलने से छानना है, उसके बाद आप धीमी आंच पर कढ़ाई में इसको सेकिए। सेकने का ही टाइम लगता है, मेहनत इसी में है, सातू ऐसे नहीं बनता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत इसमें सेकने की मेहनत करनी पड़ती है। तो आप धीमी आँच पर इसको सेकिए। जब सोनी सोनी खुशबू आने लगे, वो देखिए कच्चापन होगा उसकी खुशबू अलग होगी, जब सिकते हैं चीज़ तो उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। तो अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि सातू आपका सिक गया। फिर भी देखिए पहले के लोग कैसे टेस्ट करते थे, थोड़ा सा सातू ले लेते थे, उसमें घी शक्कर डाल करके थोड़ा सा टेस्ट करते थे, फिर बोलते थे फूफा जी मान लो वो उड़ा, मुँह से उड़ा सातू, तो कहते कि अरे भाई घी कम है, हल्का सा कच्चापन है। तो इस तरह टेस्ट करते थे, मज़ा आता था, एक एंजॉय वाली बात कही है, बाकी तो आप कच्चेपन और सिक जाता है उसका कलर ही चेंज हो जाता है, खुशबू चेंज हो जाती है, वो पता चल जाता है, ठीक है। सेक लीजिए, सेकने के बाद फिर आप चावल वाले छलने से इसको छानिए। पहले गेहूं के छलने से छाना, अब चावल के छलने से इसको छानिए। छानने के बाद जो ऊपर वो डगले डगले होते हैं उनको आप मिक्सर में पीस करके फिर से इसको सेकिएगा। सेक करके अब इस जो सभी आपने छाना है उसमें डाल सकते हैं। फिर शक्कर पीसिएगा, पीसी हुई शक्कर डालिए और घी डाल दीजिए, घी इसमें अच्छा चाहिए, अच्छी तरह डाल करके फिर इसको हिला करके आप लड्डू बनाना चाहे तो लड्डू बनाइए डिब्बे में, ऐसे कैसे जमाना चाहे तो डिब्बा लीजिए, डिब्बे में आप डालिए ये बेसन सिका हुआ पूरा सत्तू डाल करके अच्छी तरह हाथ से दबा दीजिए, थोड़ा सा थप थप करेंगे एक जैसा शेप हो जाएगा, फिर हाथ से या कटोरी से पीछे से आप दबा दीजिए। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करना हो तो आप ड्राई फ्रूट में बादाम काजू ले लीजिए और इससे ऊपर हल्का हल्का सा चिपका दीजिए, डेकोरेट हो जाएगा, जो डिजाइन डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो इस तरह सत्तू बनाया जाता है। लड्डू पसंद करते तो लड्डू बनाइएगा, ठीक है। बस ये कहने में टाइम नहीं लगता है, बताने में रेसिपी, लेकिन बनाते तब उस समय बहुत टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। तो अच्छा सेक करके खाइएगा, टेस्टी भी लगेगा। और इस तरह सातू बनाया जाता है। तो जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना चाहिए, भोग लगाने के बाद ही भोजन को करना है, ठीक है। तो ये बन गया सातू और आइए फिर से ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं बच्चों के दांत आने के, कि कैसे दांत आए तो आप पहले से क्या करेंगे कि सहजता से बच्चों के दांत निकले। फिर आज सातुड़ी तीज भी हमने धूमधाम से मनाया है, जानकारी आप सभी को मिली है, और सातू बनाना भी आपको सिखाया है। ज़रूर बना करके खाइएगा। अगर आपसे कोई भूल हो जाए या आपको और भी कुछ जानना होता है, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि आज को सातुड़ी तीज तो कहते ही है, इसके अलावा इस तीज का और क्या क्या नाम है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, उन्होंने नाम बताया है। पहले मैं सुनाना चाहूँगी आज के सातुड़ी तीज के अलग अलग नाम है। कजरी तीज, बड़ी तीज और निमड़ी तीज। कजरी तीज अलग है, फिर कजली तीज, ठीक है, और बुढ़ी तीज भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अलग अलग नाम है, तो थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देती हूँ। कजरी तीज, इसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसमें कजली गीतों का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसको कजरी तीज कहते हैं। बड़ी तीज, राजस्थान और अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज की तुलना में बड़ी तीज कहा जाता है, तो हरियाली तीज भी कहते हैं। आज के दिन को भादुड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज, ये नाम बरसात और कजली वन की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कजली तीज कहते हैं। बुढ़ी तीज क्या है, कई जगहों पर बुजुर्ग इसे बुढ़ी तीज के नाम से भी याद करते हैं। और निमड़ी तीज का मतलब है, इस दिन माता पार्वती के प्रतीक रूप में नीम की टहनी की भी पूजा की जाती है, इसलिए इसे निमड़ी तीज भी कहते हैं। तो जिन्होंने ये सारे नाम बताए हैं, उन सब के लिए पहले तो ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी। तो जुड़े हैं हमारे श्रोता बंधुओं में सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपका सही जवाब है। सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी सही जवाब दिया है। फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी सही जवाब दिया। किसी ने एक नाम बताया, किसी ने दो नाम बताया, किसी ने पूरा भी बताया। यादव जी जयपुर से, आपका भी सही जवाब है। कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी रामपुरा से, शुभा जी चित्तौड़गढ़ से, हेमा जी कप्पासन से, प्रेम जी प्रेम घोड़ उदयपुर से, राधेश्याम जी चित्तौड़गढ़ से, अलका जी कप्पासन से, आप सभी का सही जवाब है। इसके लिए पुनः आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी विषय में भी जुड़े हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। और आज का मीठा मोती है, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अब मैं आपको आज एक सौगात देना चाहूँगी। फिर से आज बहुत ही सुंदर तीज पर गीत बनाया है, तो हमारे भाइयों को और विशेष करके सभी बहनों के लिए आज की सौगात गीत के रूप में। तो आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। घूमर घूमे ढोल नगाड़ा बाजे तीजरी आई बहार, घूमर घूमे ढोल नगाड़ा बाजे तीजरी आई बहार, मारी राजस्थान रे आन मान पे, मारी राजस्थान रे आन मान पे, सो बार करूं मैं प्रणाम, सो बार करूं मैं प्रणाम। सातुड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे, सातुड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात

थोड़ी झूला पड़ा नीम की डाल, सातूड़ी तीज आई रे, सातूड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई रे।

हर मन खुशिया सुछल के सातूड़ी तीज आई रे, सातूड़ी तीज आई रे, खुशियों की सौगात लाई।

री जाए, पिया संग झूला झूले, सातूड़ी तीज आई रे, सातूड़ी तीज आई रे, खुशियों की सो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो ईजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो वॉट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ये आजादी के सुनहरे सवेरे से पहले गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी के बजाय एक कानूनी अंधेरा लेकर आती थी। धरती की मांग स्वार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, फसल जवान होती, मगर इस पर किसान का कोई हक ना होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई जालिम सरकार की। ऐसा होने से भूख और त्राहिमान बढ़ने लगा। हुकूमत चाहती भी यही थी कि किसानों के देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया जाए। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा में आज आप सुनेंगे देश के इतिहास का एक और अध्याय जो जुड़ा हुआ है मातृभूमि की नींव से। आज हम सुनेंगे उस शख्स की कहानी जो देश पे जान लुटाने वाला और देश का सच्चा भक्त है, भगत सिंह की कहानी, जिनके पास बन्नो भी पहुंच चुकी है। तो आइए सुनते हैं देश के युवा क्रांतिकारी की कहानी।
3: चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगत सिंह जी कहाँ मिलेंगे?
4: बेटा, भगत जी तो अभी अपने साथी सुखदेव के घर पर रुके हुए हैं। तुम आगे आ गई हो, इसके पहले वाली गली में है उनका घर।
3: अच्छा चाचा, धन्यवाद।
4: हाँ, ठीक है।
3: कोई है?
5: हाँ जी, कौन?
3: मैं हूँ बन्नो, मुझे भगत सिंह जी से मिलना है।
5: आप कौन जी, और मुझसे क्यों मिलना?
3: मैं हूँ बन्नो, मुझे सब प्यार से पुचकी बुलाते हैं। मुझे गांधी दादू ने भेजा है आपके पास कहानी सुनने के लिए।
5: कहानी? कैसी कहानी?
3: अरे बाबा, आपकी कहानी, देश के स्वाधीनता की कहानी।
5: अच्छा, ठीक है, पहले तुम अंदर आओ। एक बात बताओ बन्नो, तुम इस सदी की तो नहीं लगती, फिर कहां से आई हो?
3: मैं 21वीं सदी से आई हूँ और स्वाधीनता की कहानी सुनना चाहती हूँ आपसे।
5: अच्छा ठीक है, चलो तुमको उस दौर में ले चलता हूं जहां इंकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये हमारे दिल की धड़कन थी। 8 अप्रैल 1929 का दिन, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके भारतीय समर्थक एक के बाद एक दमनकारी कानूनों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये कानून हमारी आवाज को कुचलने और मजदूरों के संघर्ष को रोकने के लिए लाए गए थे।
3: फिर आपने क्या किया? कैसे आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई?
5: हमारा संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम जानते थे कि यह सरकार जनता की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, उसे केवल अपनी सत्ता की भूख और दमनकारी नीतियों से मतलब है। हमने बहुत सोचा और फिर तय किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इन बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचा सके।
3: वो कैसे किया? बम फेंक कर? उनके कान के ताले तोड़े थे क्या?
5: हाँ, बम।
3: लेकिन उससे तो लोग जख्मी हो जाएंगे ना?
5: नहीं, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना था। जो जानबूझकर बहरे बने हुए थे। हमने बमों को इस तरह से बनाया था कि उनसे जान का खतरा कम से कम हो। वो धुआं और शोर पैदा करने वाले थे ताकि पूरा सदन हमारे मकसद को नजरअंदाज ना कर सके।
3: बाप रे, ये सब आपने अकेले किया?
5: अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा साथी बटुकेश्वर दत्त था। हम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। हमने सोच लिया था कि हम भागेंगे नहीं बल्कि गिरफ्तार होंगे ताकि अपनी बात को अदालत के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके। असेंबली में उस वक्त अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, हमने योजना के मुताबिक कार्यवाही शुरू कर दी। पहले बम का धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर भागने लगे। कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी मच गई। फिर बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। बम फेंकने के बाद हमने अपनी जगह से खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद हमने हवा में लाल रंग के पर्चे फेंके।
3: क्या लिखा था उस पर्चे पे?
5: उन पर्चों पर हमने लिखा था, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। हमने साफ साफ लिखा था कि हमारा मकसद किसी की हत्या करना नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है। जब पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई तो हमने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने वो संदेश दे दिया था जिसे यह बहरी सरकार कभी सुनना नहीं चाहती थी। हम जानते थे कि हमें सजा मिलेगी, लेकिन ये सजा हमारे लिए गर्व की बात होगी।
3: लेकिन आप दुनिया को क्या बताना चाहते थे?
5: हम दुनिया को बताना चाहते थे कि क्रांतिकारी सिर्फ गोली नहीं चलाते बल्कि वो विचारों की क्रांति भी करते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति के प्रतीक मात्र हैं। असली क्रांति तो विचारों की दुनिया में होती है, और हमारी क्रांति की आवाज दिल्ली की उस असेंबली से निकलकर पूरे देश में गूंज चुकी थी। इंकलाब जिंदाबाद!
3: वाह, क्या बात है, आपने तो असंभव को संभव कर दिया।
5: चल बन्नो, तुझे मैं एक और कहानी सुनाता हूँ।
3: एक और कहानी?
5: हाँ, सुनोगे?
3: क्यों नहीं, जरूर सुनाइए सुनाइए।
5: ये कहानी है हमारे लाला जी की, लाला लाजपत राय की। लाला जी, हम उन्हें पंजाब केसरी कहते थे। उनकी एक आवाज पर पंजाब का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता था। 30 अक्टूबर 1928 का दिन, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हम लाहौर में इकट्ठे हुए थे। उस दिन सड़कों पर एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी। हम सभी अपनी आवाजों को एक साथ बुलंद कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। उनका एक अधिकारी स्कॉट, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, और उस लाठी चार्ज में लाला जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने देखा नहीं था कि कौन मार रहा था, बस इतना कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उनका यह बयान उनकी अंतिम इच्छा बन गया। एक महीने बाद 17 नवंबर को लाला जी हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय अपमान था, एक चुनौती थी जिसे हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया।
3: फिर क्या किया आपने?
5: मेरे खून में उबाल था। हमारी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथी भी खामोश नहीं बैठ सकते थे। हमने तय किया कि इस अपमान का बदला लेना होगा। जिस अधिकारी ने हमारे लाला जी की हत्या करवाई थी ना, उसे सजा देनी होगी। हमारा प्लान बना।
3: कैसा प्लान?
5: सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और मैं। 17 दिसंबर का दिन तय हुआ। हमें जानकारी मिली कि अधिकारी पुलिस मुख्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर आएगा। हम इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त जय गोपाल ने इशारा किया, स्कॉट आ गया है। राजगुरु ने निशाना साधा, मैं भी तैयार था। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार पास आया, राजगुरु ने गोली चलाई। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागा और पास जाकर अपनी पिस्तौल की 3 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। फिर हम वहां से निकल गए। अगले दिन पूरे लाहौर में दीवारों पर एक पर्चा चिपका दिया गया था, जिस पर लिखा था, जेपी सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। हम जानते थे कि हमने स्कॉट की बजाय एक दूसरे अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया था। ये गलती थी, पर हमारा मकसद साफ था। हमने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, हमने तो उस ब्रिटिश सरकार के अहंकार को मारा था जिसने लाला जी जैसे महान नेता की जान ली थी। सैंडर्स तो बस उस क्रूरता का प्रतीक था।
3: तो आपने ऐसे बदला लिया?
5: ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था बन्नो। ये उन लाखों भारतीयों के लिए एक आवाज थी जो मानते थे कि अहिंसा की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये क्रांति की ज्वाला को और भी तेज से जलाने का एक कदम था। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी युवक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना थी, पर इसका असर बहुत बड़ा था। इसने भारत के नौजवानों में एक नई आग भर दी थी, और मुझे पता था कि यही आग एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य को राख कर देगी। वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम। कितनी रोमांच से भरी घटना थी। मन कर रहा है और भी कई किस्से सुनूं, मगर अभी मुझे जाना होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे।
5: हाँ जी, ध्यान से जाना। हाँ।

0: अरे बन्नू, किधर चल दी?
1: अरे दीदी आप, मैं तो भगत सिंह जी से मिलने आई थी, आप ही के टाइम मशीन से।
0: अच्छा, क्या कहा उन्होंने?
1: उन्होंने बहुत सारी रोमांचक कहानियां सुनाई। और पता है दीदी, उनकी कहानियों को सुनकर मुझे भारत माँ के लिए की गई संघर्षों के बारे में जानने का और भी उत्साह बढ़ गया है। मगर मुझे उनसे उनके बारे में और भी चीजें पूछनी थी, मगर भूल गई।
0: बन्नो, तुमको पता है भगत सिंह देश के ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिनसे ब्रिटिश भी डरते थे। इसीलिए तो चालाकी से और छल से उन्होंने उनको फांसी का दंड दे दिया।
1: फांसी? पूरी कहानी बताओ ना दीदी।
0: पहले चलो 21वीं सदी में वापस चलते हैं। जाते जाते मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगी।
1: हाँ दीदी चलो।
2: और यही रुकती है आज की कहानी। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नारे में बदल जाती हैं। आज आपने भगत सिंह और उनके साथियों की गाथा सुनी, हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लेने का साहस और मौत से पहले होठों पर वही एक पुकार, वंदे मातरम। सोचिए, जिस क्षण किसी माँ ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा होगा, उसके दिल में आंसू नहीं, यही नारा गूंजा होगा। जिस पल किसी युवक ने जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी आखिरी सांस ली होगी, उस सांस में डर नहीं, मातृभूमि का नाम होगा। वंदे मातरम एक गीत नहीं था, ये वो सहारा था जिससे टूटते हुए लोग खड़े हो गए। ये वो शब्द था जिसे बोलते हुए किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस एक नारे में पूरा भारत साथ खड़ा था। जब भगत सिंह ने इसे पुकारा तो वो फांसी की ओर नहीं बढ़े, वो अमरता की ओर चले गए। और उस दिन से हर पीढ़ी के सीने में ये नारा धड़कन बनकर बस गया। आज भी अगर हम आजाद हैं तो इसलिए नहीं कि जंजीरें टूट गई थी, बल्कि इसलिए कि वंदे मातरम कभी टूटने नहीं दिया गया। और अब सवाल ये नहीं कि कहानी खत्म हुई या नहीं, सवाल ये है जब अगली बार ये नारा गूंजे तो क्या हम उसके अर्थ को उतनी ही ईमानदारी से महसूस कर पाएंगे। जाने के लिए बने रहिए एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के साथ। सुनते रहिए, खामोशी में भी सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक नारा पूरी सभ्यता को जिंदा रखता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन, वंदे मातरम, जय हिंद।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुँचाने के लिए एक मंच देते हैं, जिसका चलते सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना भाव और भावना को रखते हैं और कार्यक्रम सुंदर बन जाता है। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास का जो गतिविधि है, हमारा अंचल में हमारा गांव में जो गतिविधि हो रही है, क्यों सीमित रहे अपना गांव और अंचल में, जन जन तक पहुंचे, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रेडियो मधुबन शाखा और राजकीय विद्यालय के मिली सहयोग से आज का कार्यक्रम सुंदर में प्रस्तुति होगा। तो आज हम आबरोड ब्लॉक से सीधा चलते हैं रेवदर ब्लॉक में, जो रेवदर तहसील के बांट ग्राम पंचायत है, उसके अंदर में हमारा इस प्रोग्राम आज आपके पास रखने जा रहे हैं। क्योंकि बांट एक दूरस्थ गाँव है आबरोड से, तो आज बच्चों का आवाज़, विद्यार्थियों का आवाज़, भाव और भावना लेकर पहुँचेंगे। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति सुनेंगे। हमारा होवनहार छात्राएं उपस्थित है, एकता, रिया कुमारी और मंजुलता शिवानी इस कार्यक्रम को सजाएंगे, तो उनको स्वागत करते हैं। तो शुरू हो जाए, एक प्रार्थना के रूप में माँ सरस्वती को याद करते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते तो प्रभु याद में, माँ सरस्वती का याद में, अपना कुल देवी कुल देवता, जिसको हम भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी नाम से हम पुकारते, हमारे भगवान कहे अल्लाह कहे खुदा कहे जो भी नाम से आप पुकारते उनको स्मरण करते हैं, जिसका चलते कार्यक्रम व कोई भी कार्य अच्छा हो जाता है। तो आज विद्यालय में जब पहुँचे तो प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रार्थना के रूप में अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। तो एक प्रार्थना सुनते हैं बच्चों से।
1: मेरा नाम एकता कुमारी है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं से पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं बांट से आती हूँ।
2: मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
1: जय।

0: ಬಟಕೆವೇ ಕೋರಾದಿ ಕಾಂಡ ಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತ ಭವಾನಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ವೀಣಾವಾದಿ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इतने दुरुस्त जगह में जब आए तो दुरुस्त बच्चों को तंदुरुस्त होकर अपना बात को रखें, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, जो इससे पता चलता बच्चे किस तरह कार्यक्रम को सजाते हैं और धन्यवाद देते हैं. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर.

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए आप सब सुन पा रहे खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रेबदर तहसील में आते हैं मंडर का आसपास है, तो बहुत दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुनाने के लिए पहुंचे, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब मन का बात सच्चे दिल से गाते हैं समूह रूप में। तो आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी सजा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे पास उपस्थित है आरती और रिंकू, है ना। तो अपना अपना नाम और क्लास और कहाँ से वो चीज़ बताएंगे और हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे। भाई एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा हो, जो भी अपना अंदर में आता है अचानक में जब आए अचानक में ही एवर रेडी जो है, ना ज़्यादा ना कम वो दे रहे हैं। तो हम बोल भाई ठीक है, जितना आपका पास है वो विशेषता गीत का माध्यम से, संगीत का माध्यम से, भाव का माध्यम से प्रकट करिए। तो शुरू।
1: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
3: मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
4: मैं मर भी जाऊँ तो वतन याद।

0: मध्य ओरिया बंद रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। चाहे मैंने पहले भी बताया था भाई, एक अंतरा हो चाहे एक मुकड़ा हो, जो है तो हमारा उससे पता चलता बच्चों का स्वर और लय। तो इस कड़ी को ही और साथ देने के लिए और कुछ छात्रा है तो उनको भी स्वागत करते हैं। तो रेडी बच्चे? ओके, शुरू करिए आप भी।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ चाहे रिंकू हो चाहे आरती हो चाहे सभी जो नाम बताए अपना अपना, तो उन सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट की आवाज, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमारा साथ बहुत सारा छात्राएं उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और सजबाज होकर अपना स्वर लय को सेट होते हुए आए हैं अपना प्रस्तुति देने के लिए। तो देर किस बात की, एक देशभक्ति गीत हो, क्योंकि भारत देश महान है। जिस गांव जिस अंचल में रहते हैं वो गांव और अंचल भारत में आता है, तो भारत को समर्पित, देश को समर्पित एक भक्ति भरा देशभक्ति सुनेंगे बच्चों से, है ना। बच्चे रेडी, सभी अपना अपना भाव को प्रकट करेंगे देश हित में, जन हित में, लोक हित में। तो सुनते हैं

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आज तो बच्चे विद्यार्थियों का आवाज बच्चे के रूप में दे रहे हैं और बच्चे सच्चे होते हैं, चाहे उनका अंदर में जो भी भाव और भावना है देश का प्रति हो, चाहे खुद का प्रति हो, चाहे राज्य के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, चाहे विश्व के प्रति हो, सब में तत्पर रहते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद आप सब सुन पा रहे खासकर रेडियो मधुबन, जो कि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। आज हम दूरस्थ जगह में पहुंचे तो दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुना रहे हैं, तो खुशी लग रहा है क्योंकि कोई उल्लाना न दे जे हमारा पास रेडियो मधुबन पहुंचा नहीं, हमें मंच नहीं दिया, कोई नहीं कहे जे हमें रेडियो मधुबन चांस नहीं दिया, तो कम से कम एक बार तो चांस मिलना चाहिए। उल्लाना नहीं देंगे, है ना बच्चे, आपको मिल रहा है इसलिए आप उल्लाना नहीं देंगे जे हमें रेडियो मधुबन का साथ रूबरू नहीं हुए हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए एक का बाद एक प्रस्तुति सुनने को मिल रही है और हमारा विद्यार्थियों में खासकर बालिका विद्यार्थी कम नहीं है, हर प्रोग्राम में भाग लेते हैं क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में बालक से बालिकाएं ज़्यादा भाग ले रहे हैं क्योंकि उनका अंदर में ना कोई झिझक ना कोई डर ना कोई भय, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई सजबाज नहीं। अचानक में जब पहुँचे अचानक में एवरेडी का पार्ट पक्का करते हैं तो सुंदर प्रस्तुति के लिए तैयार है एक सीख भरी गीत जिसमें पूरा साहस उद्यम उमंग उल्लास को लेकर पहुंचेंगे। तो सभी को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजाने के लिए। शुरू होंगे 1 2 3 शुरू।

क्या बात क्या बात, बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए। और देखिए बच्चों के अंदर में जो विशेषता है, आज रेडियो मधुबन जो मौका दिया वो मौका का फायदा ले रहे हैं और हमें भी खुशी है, बच्चों को एक मंच मिल रहा है और इसका माध्यम से अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब अभिभावक माता पिता बंधुगण और दोस्त लोग सुनेंगे तो विद्यालय का नामांकन में भी वृद्धि होगा और बच्चों को ओपन राउंड में उनको कोई पूछने के लिए भी, उनका बारे में जानकारी के लिए भी पहुंचते हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है। सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन लेकिन अल्प विराम के बाद, क्योंकि समय को देखते हुए बच्चों का जो भाव और भावना को, चाहे एक मुखड़ा हो चाहे एक अंतरा हो, उससे पता चलता है कैसे और किस तरह प्रस्तुतिकरण करता है, तो उससे पता चल जाता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और विद्यार्थियों से हम भी विद्यार्थी बन के उनका विद्या का अर्जन का साथ साथ उनका अंदर में जो भाव है, भावना है, संगीत में जो रुचि है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, इस तरह मंच का माध्यम से निखारते हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए बच्चिया उपस्थित है, तो सभी विद्यार्थियों को स्वागत करते हैं इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, एक को देकर दूसरे भी, सर मैं भी मतलब क्यों नहीं भाई, आज तो चौका छक्का लगाना है, मौका मिला है, मौका का फायदा लेना चाहिए, कभी कभी मिलता है इस तरह मौका। तो आज जब रेडियो मधुबन का टीम पहुंचे हैं तो हमारा अलेक जी जो कि एडिटर भी आए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनको भी सुनने को मिलता है, सुनाने को भी मौका मिल जाता है। तो सभी को लेकर संगठित रूप में किस तरह बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर रुकना है और किस तरह स्वर और लय के साथ करना है वो भी बताते हैं, जिसका चलते उनको एडिटिंग में दिक्कत नहीं होता है। सभी को एक साथ करके संगठित रूप में एक के बाद एक रिकॉर्डिंग कराए। तो लेते हैं बच्चों से आवाज़ सुनने के लिए, सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनिए अगला प्रस्तुति।
1: तेरा

बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए एक सीख भरी पूरा त्रिरंगा जो कि देश का झंडा है, तो उनको सलाम करते हुए और देश भक्ति में ओत प्रेत होकर सभी ने अपने प्रस्तुति दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रेबदर तहसील के एरिया में आता है। तो बच्चे बारी बारी अपना आवाज को बुलंद से दे रहे एक सीख भरी गीत के लिए उपस्थित है। तो जैसे कि नाम है झलक और जयश्री, है ना, झलक और जयश्री को स्वागत करते हैं, जो कि अपना अपना परिचय कौन सा क्लास और कहाँ से वो चीज़ रखेंगे, है ना। तो रेडी हो जाए, शुरू करें, चलिए देर किस बात की, शुरू करिए।
1: मेरा नाम झलक कुमारी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
2: मेरा नाम जयश्री कुमारी, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट, जिला सिरोही है।

मैं ही ताली बजा दिया आप लोग के लिए, क्योंकि आप तो है ही महान और हमें खुशी है इस तरह प्रेरणादायी सीख भरी गीत का माध्यम से अपना भाव को प्रकट किया। हमारा श्रोता मित्र लिसनर सुन रहे ध्यान से, अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए वो भी एक सीख लेकर सुनते हैं। और आप लोग इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, हर विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिकता पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज बांट राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सुन पा रहे हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए अच्छा गीत सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन के द्वारा भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणादायी और भक्ति भावना में ओतप्रेत होकर गीत सुनाते हैं हमारा शेड्यूलर बीके शुभश्री बहन, उनको भी स्वागत करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से हम तो रिकॉर्डिंग बाहर से लाते हैं और वो स्टूडियो में रहकर सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, जैसे अभी ब्रेक का पहले में सुन रहे थे, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए साथ दे रहे हैं मंजुल, ये शायद अंतिम प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति में अंतिम आवाज आपके पास हम रख रहे हैं, तो शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
1: मेरा नाम मंजुला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से स्कूल आती हूँ।

ना रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में होने वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में होने वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार।

0: यारिया मिला दे ओए।
1: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इस कड़ी को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम। चलिए इस कड़ी में ही और एक जोड़ देते हैं, जिसको सजाने के लिए मंजुलता और खुशी भी हाथ उठा रहे, तो उनको भी चांस देते, भले एक अंतरा हो चाहे एक मुकड़ा हो, प्रिपरेशन होकर आए तो उनको भी कैसे भूलेंगे। तो आ जाइए, आप भी अपना प्रस्तुति दीजिए।
0: मेरा नाम मंजुला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से आती हूँ।
2: मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
0: मारिया।

0: ज्ञान गणी पाई मने श्याम श्याम राखू गोद चंदी के लगाई मने तेरी याद खड़ी माई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रस्तुति में अंतिम रूप में सुंदर लग रहा है, चार चांद लगा दे, 20 लाखों लगाकर आपने स्वर और लय का साथ सुंदर प्रस्तुति दिए। चाहे सीख भरी गीत हो, चाहे भाव विभोर होकर अपना बात को रख पड़े उमंग उल्लास का साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रेबदर तहसील से आपका पास हम रखे हैं। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर को आज आपका पास रखें। सुनते रहिए सभी को पुनः नाम का साथ। धन्यवाद, आभार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, जिन्होंने उसे नई पहचान दी, नई उड़ान दी। तो आज हमारे समक्ष ऐसे ही एक अतिथि हैं जिन्होंने संगीत को सच में जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी की, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, शोध निर्देशक है, गुरु है। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने

0: 40 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने एमए किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
1: जी
0: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
1: जी।
0: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी जी एल गुणे जी,
1: जी।
0: ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है, फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
1: क्या बात है।
0: हाँ, और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं, मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
1: तो
0: शिष्याओं के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया, कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं। तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी, सन 19,
1: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ ये।
0: हाँ, 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था, फिरोजाबाद में। तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते थे, इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया, प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ ताल, लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
1: क्या बात है। आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें।
0: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें साधना करी। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
1: मिला,
0: ससुराल में भी मिला।
1: क्या बात है।
0: तो मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है।
1: क्या बात।
0: मेरे ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान,
1: अच्छा,
0: डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, जिनको की पढ़ाया जाता है।
1: वाह।
0: एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में, पिताजी की किताब, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है।
1: वाह।
0: आप देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें जो पुस्तक लिए है संस्कृत की, उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे। तो मैं अपनी शिक्षक, जो हमारी यूनियन होती थी, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व भी प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है। उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहें।
1: जी।
0: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संगीत से, के अनुशासन से जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है, जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
1: क्या बात है। अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी, क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हों या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये
0: जी जरूर कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी
1: जी।

0: नमिता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहे और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिकृत ना कत्ता धागे त्रिकृत धीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशें सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में, बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँ,
1: जरूर,
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताएं?
1: जी जरूर बताऊं। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्रों, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहां मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है, तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा, कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में को भी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, हाँ, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की। तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहां भी चर्चा चली थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही, हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, पैसे को नहीं देखना है, मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरुजी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, और 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माता जी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: जब मैं एमए पास किया तुरंत ही मेरे पास नौकरी, एक जगह लोगों की रखती उस समय, एमए पास करके लग जाती थी एक तो। फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहाँ मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए, लड़की है तो हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू की प्रारंभ की।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी, कि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाएं हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
1: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको, राम

0: सीधा सीधा है इस तरह से, ज्यादा उसको टेक्निकल ना, शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्ति संगीत है, और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको, और सरंगम के माध्यम, जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है, और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है
1: जी।
0: श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता, ये सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है, तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं, क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर आप सीखते हैं, गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी है जीवन
0: उसमें,
1: में।
0: उसमें कई कई राग, उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है,
1: प्रेरणा बन जाती
0: कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खो के ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: संगीत से जुड़े
0: अनंत।
1: तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी, मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी, जैसे आपने अभी जो राग सुनाया, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है। मान जा, दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है, और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज़ में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त प्रमुखारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से, ईदगाह से अंशुना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ, जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बने रहें, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज़ की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है, कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, कोई विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए हैं आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम उनकी, सा सा रे रे गामा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के होंगे, सारेगा सारेगामा सारेगा सारेगामा सारेगामा, इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में, घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा,
1: प्रैक्टिस जब भी करनी चाहिए जब आपका गुरु कह दे कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दें, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु जो भी है, क्लास में पढ़े अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाएं। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप
0: जी,
1: क्लासिक, बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, NM राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे, हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरीला निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्यों गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है, तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया, मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी लोग गदगद हो जाते थे, तो हमें संगीत में गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है, वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं क्योंकि मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाथ अंदर का जगाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है,
0: आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: माता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
1: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी हैं
0: जी,
1: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी बहुत अच्छी, किशोरी मुनजन के क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
0: आपको गजल का भी शौक है?
1: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाची हूँ तिनका मात्र हूँ।
0: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने

0: उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही, आपको शौक है क्या, तो वो पंक्तियां आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने की।

0: आपने श्रद्धांजलि दी जी। और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की।
0: अच्छा,
1: तो मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी।
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से गीत थी, वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगी तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी। उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी।

0: हमको कभी। आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है, और उसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना, कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संगीत को
1: संघर्ष किया
0: सीखा सीखा
1: जी
0: बहुत,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी उस सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने।
1: जी जी
0: माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया, और पिता ने मुझे आगे, मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। तो
1: अच्छा
0: कितने, ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है
1: जी, ऐसे पिता, ऐसे माता पिता, ऐसे घर
0: जी।
1: मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा, आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी
0: पढ़नी
1: चाहिए,
0: चाहिए, बहुत
1: बहुत
0: प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी
1: सबको
0: चाहिए
1: पढ़नी
0: जी।
1: चाहिए जी। जैसे कि अमिता जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया। करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं। अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक पीएचडी भी करवाई है,
0: जी
1: तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे, या क्या अनुभव
0: जी जी
1: था आपका?
0: जी बहुत अच्छा। शोध कराने में जब मैं 96 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला, तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है। ये देखिए, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे पीएचडी, तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास, अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए। मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार। एक आईटीसी से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक,
1: जी
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, पर कहती है नहीं, मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरु जी के योगदान के ऊपर, जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उम्दा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मज्ञ भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया। लताफत हुसैन खां का संगीत में योगदान,
1: जी
0: मीडियम उनका इंग्लिश था, तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो टिनी टार्ड में चली गई थी जैसे
1: अच्छा
0: अवार्ड हुई,
1: जी
0: और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको, रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने, उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले उन्होंने। उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया
1: क्या
0: अपने
1: बात
0: गुरु
1: है।
0: जी की गायकी के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका काम हुआ। आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रिनी टावर में सेटल हो गई
1: क्या बात
0: जी। अब तो रिटायर हो गई हैं, आ गई हैं।
1: जी
0: दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर है आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार हैं, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो। तो
1: अच्छा
0: जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया इस मामले में, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी
0: संगीत के प्रचार प्रसार में, उस
1: बिल्कुल
0: लड़की ने भी बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले। जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी,
1: जी
0: उसको कहने में, उसका प्रचार प्रसार करने में
1: जी
0: एक सशक्त माध्यम था।
1: जी बिल्कुल
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो
1: बिल्कुल
0: तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको पांच विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिन्हें उनको नेट क्वालिफाइड थे, हाँ
1: अच्छा
0: उनको JRF मिलती थी।
1: जी
0: हाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी
1: जी
0: एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया है, नियुक्ति हुई है।
1: जी
0: एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय हैं, उनका भी आगरा में कुंडों में जगह है, वहाँ उनका हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी हैं,
1: जी
0: विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी
0: तो
1: क्या
0: काफी
1: बात।
0: ओल्ड है, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाह
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी, मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, कि इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे, मुझे लगा शायद मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह।

0: दी है ना, शोध प्रविधि, और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन। जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने, अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं। संगीत में खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं, क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोई कराता नहीं था। होते थे आप देखें गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या है वो उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है, मतलब रिसर्च जो सर्चेज हुई है उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला, जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है।
1: गाइड की बहुत मेहनत होती है। ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही हैं, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे। अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई भी अपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण, तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के। और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए। तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी, एक सशक्त माध्यम, दिव्यांग है
1: जी,
0: और उसने संगीत सीखा है
1: जी, जी।
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। नहीं तो कोई कहता अरे ये ऐसे है वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि संगीत के माध्यम से क्या उनकी भागीदारी कितनी निश्चित है, कितना उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है समाज में।
1: पीएचडी की
0: टॉपिक है जी जी,
1: क्या बात है,
0: रेयर टॉपिक। अनुभव हुए इसमें, जितने भी आर्टिस्ट मंच पे आते थे तो हम ढूंढते थे दिव्यांग है उनके अनुभव लेना, उनकी फिर डाटा निकाला वहां से, जो एक सूरकुटी है आगरा में
1: जी जी,
0: वहां से डाटा निकाल के फिर काम किया इस तरह।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और बच्ची ने भी बहुत मन से किया, हालांकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से, क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है कि उतना हर छात्रा उतनी लगनशील नहीं होती है, तो मैं उतना उसको अच्छे से गाइड करूँ, वो पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको। अब देखते हैं आगे एक और वाइवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न, मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग है। और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी सीख रहा है हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं। तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें उस गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, गौ कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग हैं, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया
0: जी? मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक मीराबाई थी, भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई, तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना, और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की, इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्यकाल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही, तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया, तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था
1: जी। समर्पण की बात आती है तो मीरा बाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता
0: जी।
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू
1: जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे हम भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीरा बाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को
0: जी? जरूर, थैंक यू मैम।

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, हर रिश्ते में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगी और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहाँ भी सीख के आई हूँ, यही और ज़्यादा प्रबल हो गई और तो मुझे वहाँ इसीलिए बहुत अच्छा लगा। जी, आनंद, आनंद मतलब पराकाष्ठा आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरक। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहाँ सुन के, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी, ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई, आपके सामने मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ, ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींचकर बाहर निकाल लेता है, और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ओम शांति। आज पहली सितंबर 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सर्विस की बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम्हें अपने हमजिंस का कल्याण करना है, परिवार वालों को ज्ञान सुनाना है, क्योंकि अगर परिवार में रहते हुए एक हंस होगा, दूसरा बगुला होगा, तो फिर शांति बनी नहीं रहे। सुख शांति घर में हो, उसके लिए बाबा कहे, तुम बच्चों को सबसे पहले ये ज्ञान अपने परिवार वालों को सुनाना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, उन्हें समझाओ, शिव जयंती मनाते हैं, जयंती माना किसी का जन्मदिन। तो शिव ने जन्म कब लिया, किस रूप में लिया, निराकार शिव की जयंती कैसे हो सकती है, और अगर जयंती है यानी जन्म लिया है तो फिर मृत्यु भी हो सकता है, फिर वो पतित पावन कैसे हैं, सदगति दाता कैसे हैं, आकर के उसने क्या किया, ये सब बातें बाबा कहते तुम बच्चों को समझानी है और उनकी बुद्धि में यह स्पष्ट ज्ञान रचता और रचना का देना है। जब तुम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो लोग समझते हैं ये प्रश्न तो ब्रह्मा कुमारियां ही पूछ सकती है। बाबा कहते हैं, वास्तव में इस समय बाबा आकर के तुम्हें सच्चा ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान तुम्हें सबको देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस ज्ञान को जीवन में धारण कैसे करना है वो विधि बतानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिंस का कल्याण करो। आज की मुरली से प्रश्न है कि श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बना सकते हैं। उत्तर है, अवस्था को एकरस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है। बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाप को ही याद करेंगे, एक बाप को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप। रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, फादर भी कहते हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक श्री कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब श्री कृष्ण तो वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था, तो भला गीता कब सुनाई, बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी, राधे कृष्ण की क्या लगती थी, राधे को भगवती और श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, इन दोनों का क्या संबंध है, ये किसको भी पता नहीं है।
श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी है, बाबा कहते कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी है वह सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा। तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है, जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे, तब कहेंगे कि जयंती है। आत्मा की जयंती नहीं होती क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अविनाशी है, ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को यह ख्याल रहने चाहिए। यहां से अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती है, चिंतन नहीं चलता। गुरु आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए, बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती माना ही बर्थ, निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो फिर उसका बर्थ कैसे मनाया जाता है? किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ, जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है।

कोई कोई दो तीन वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए, इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना, ये यहां की बात है। वहां तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं है। सतयुग में तो आज्ञा मानने का न मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले शुरू करो अपने घर से। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता है तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है। बच्चों को भी भू भू करना है, अपने हमजिंस का कल्याण करें, उनको भी बताएं बाप को याद करो, अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिंस का कल्याण करना। माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिंस का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है, ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। जो बाबा आकर के हमें इतना ऊंचा वर्षा देते हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले को तो कितना याद करना चाहिए। यहां तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। अपने से बातें करना अर्थात उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से भी रूरिहान करो और अपने लिए भी श्रेष्ठ चिंतन करें। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे, ऐसे बाबा से बातें करें। 63 जन्म में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। ऐसे ऐसे बाबा से हर घड़ी हर कर्म करते हुए याद करना चाहिए, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। और साथ ही अंदर में दृढ़ संकल्प भी करें कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए

सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे, फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है, ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी, भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नंस बहुत फिरती रहती है, घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबल लो यह लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, बल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खलास, सब भूल जाता है। इसके लिए गाया हुआ है कि बंदरों के आगे रत्न रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक देते हैं, यह भी कुछ समझते नहीं है। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, बाप भारत में आते भी एक ही बार है। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। बाबा कहते तुम बुलाते आए तो मैं आया हूं, किस लिए? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, अभी तो सब नरकवासी है। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो, बाबा कहते तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो, शिव भगवान वाच। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूं। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी है पतित पावन सीताओं के राम, अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियां अथवा सीताएं, वो पुकारती है हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, वास्तव में राजा राम की बात नहीं, मुख्य भूल है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते मुख्य भूल है ही यह, पूछना चाहिए श्री कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। पहले है गोल्डन एज सिल्वर एज, फिर कॉपर एज आयरन एज, इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। यह कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया,
इसमें एक भी सतु प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है, नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बात। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं, बाबा कहते खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प कल्प के संगम युग आता हूं। खुद भगवान कहते हैं मैं कल्प कल्प कल्प के संगम युग आता हूं पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, यह शरीर के ऑर्गन्स है, ये कर्मेंद्रिया शरीर के ऑर्गन्स है। बाप कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूं वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परमधाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते इसलिए हो कि भगवान मिलेगा, वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? तो पहले बाबा ने समझाया राधे कृष्ण का संबंध क्या है, फिर बाबा ने शिव जयंती पर समझाया, फिर बाबा कहते हैं या से कृष्ण और राम को श्याम क्यों बना दिया, उस पर भी समझा सकते हो। अब बाबा कहे लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा ब्रुकुटी के बीच में। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे, गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णु गुरु को याद करो तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे, ये टाइम वही है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं। बाबा भी किनको याद करते हैं? जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उनको याद करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मददगार है। बाबा कहते वो मेरे मददगार है, बहुतों का कल्याण करते हैं तो वो मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसीलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे, भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी है। जब भगवान के सामने बैठे हैं और फालतू ख्यालात आते हैं तो अपने को ही मारते हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहां तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे
और 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते, बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनको बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे, यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। बाबा ही आकर एक देवी देवता धर्म की स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी है और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना, तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। आज का स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 1 सितंबर होने कारण आज से अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, वर्तमान समय आप बच्चे अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपके सब भंडारे निरंतर खुले रहने चाहिए। अनादि आदि दातापन के संस्कार अपने जीवन में सदा इमर्ज रख। परमात्मा संदेश वाहक बन, विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैलाओ। बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। महान दाता बनो, महान दाता बनो। अच्छा।